0: entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2,117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं जब उनके सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलेकणी, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का जायंट माना जाता है, आईटी को लेकर देश के सामने जब कोई बड़ी चुनौती होती है या कोई लक्ष्य होता है तो सबको याद यही शख्स आते हैं। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन में जब एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का विचार आया तो उन्हें शिद्दत से ये याद आए, यानी कि नंदन नीलेकणी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि नीलेकणी ही वो शख्स हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं।

जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे इंसान को सही राह दिखाना होती है। नीट पेपर लीक की समस्या जब विकराल हुई और केंद्र सरकार को सीमलेस, स्नैगलेस और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की दरकार हुई तो याद आया वो शख्स जिसे हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट ऑफ आधार के नाम से जाना जाता है, नंदन निलेकणी। जी हाँ, वही नंदन निलेकणी जिन्हें 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हीं नंदन निलेकणी को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए दोष रहित, त्रुटि रहित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी

0: नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदा नीलेकणी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर बनी हाई पावर टास्क फोर्स की सदारत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें मनमोहन सिंह ने साल 2009 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का चेयरमैन बना दिया था, ताकि आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन नीलेकणी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन नीलेकणी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज 100% सच साबित हो रही है।
2: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address, and it has online authentication capability so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs the ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion, because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
1: काबिल-ए-गौर है कि नंदन नीलेकणी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
3: आधार KYC was sufficient to open a bank account or to get a mobile connection. And in 2014, soon after Prime Minister Modi came to power, on August 28, 2014, he launched the Jan Dhan Yojana program, which is the world's largest financial inclusion program. And more than 400 million bank accounts were opened for people. And they were able to do that very quickly because with Aadhaar eKYC, you could do an online opening of a customer account.
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस DPI की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन नीलेकणी हैं। UPI ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। UPI कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन नीलेकणी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन नीलेकणी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज

0: हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। यूपीआई के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो यूपीआई के जरिए 314 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ।
1: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 16 had all these momentous events that all led to this massive transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next generation payment system on April 11, 2016. And as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened. And today, this is the world's largest payment system.
0: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में नीलेकणी की अहम भूमिका रही है। नीलेकणी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैगअप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन नीलेकणी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन नीलेकणी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी पीएम मोदी और नंदन नीलेकणी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन नीलेकणी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
1: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman of the Unique Identification Authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses. I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology and how it can be used. And we had a very good 90-minute session. We talked about various kinds of things, including technology. And he was very, very appreciative of what is possible. And he showed that in his state. He showed that in every aspect of using technology.
0: पहली मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी ने नंदन नीलेकणी की अतुल्य तकनीकी दक्षता को परख लिया था। उधर नंदन नीलेकणी को भी पहली मुलाकात में ही इल्हाम हो गया कि इस नेता में तकनीक आधारित विकास का व्यापक विजन है। यही वजह है कि पहली मुलाकात के दौरान ही टेक्नोलॉजिकल विजन और टेक्निकल स्किल के बीच का अटूट रिश्ता कायम हो गया, जो 15 साल बाद उम्मीदों और संभावनाओं के चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज देश के विजनरी युवाओं को एक फुलप्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की सख्त दरकार है। नंदन नीलेकणी से पीएम मोदी के साथ ही देश के लाखों युवाओं को भी उम्मीदें हैं कि वो आधार और UPI जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान पेश करेंगे।
2: शुरू से ही बहुत जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में नीलकणी ने IIT में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर IIT में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर नीलकणी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में IIT क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे IIT क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
0: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन नीलकणी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव नीलकणी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन नीलकणी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने IIT एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। IIT क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर IIT मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन नीलकणी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
3: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइन्ड एनी IIT एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन IIT चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन IIT बॉम्बे। सो दैट्स हाउ, एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज़ आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर IIT बॉम्बे।
0: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन नीलकणी ने किस मना स्थिति में की ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी IIT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन नीलकणी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलकणी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन नीलकणी को कर्नाटक के ही धारवाड़ में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन नीलकणी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन नीलकणी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
3: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12, and then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties, and he had to keep finding new jobs time on, and therefore he said for the stability of my education, he put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC. And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
0: धारवाड़ में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन नीलकणी ने IIT में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड़ जैसे छोटे शहर में ना तो IIT की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
3: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
0: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन नीलकणी IIT में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे, और जब चाह प्रबल होती है तो राह बांह फैलाकर स्वागत करती है। दरअसल तब IIT बॉम्बे से नंदन नीलकणी के कुछ कजन्स बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन की आईआईटी में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
3: Fortunately for me, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they sent me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
0: आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद नंदन इलेकणी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पुणे स्थित पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन इलेकणी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहां उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन इलेकड़ी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन इलेकड़ी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इन्फोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन इलेकणी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इन्फोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन नीलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैसडेक पर लिस्ट होने वाली इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैसडेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन नीलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन नीलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं हैं, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्लेस के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस आईआईटी बॉम्बे के नंदन नीलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन नीलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन नीलेकणी सिर्फ आईटी जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने नंदन नीलेकणी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना और समझा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Tune in How To A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: तो चलिए अब बात अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब देखिए, राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं।

0: सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रिकालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर के दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है। हर नकाशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
3: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
2: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
4: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music plus ad-free ESPN Radio. And fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलतबेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल्थ तकनीक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं। वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: J-20 चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशून इलाके में डिप्लॉय किया, शीगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है, हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा, रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रेडार काम करते हैं। एक रेडार एल बैंड पर काम करता है, एक रेडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रेडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहाँ विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता, जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है, जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही फिफ्थ जेनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर फिफ्थ जेनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है, J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वही रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकम इन आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं, तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफाल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है, वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
0: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: अच्छी खबर,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात एक ऐसी खबर की जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर नर्मदा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का अद्भुत और मनमोहक नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी पर गिरने वाली रिमझिम फुहारें प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। इन खूबसूरत नज़ारों के दीदार के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं, और बारिश के मौसम में तो ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और भी ज़्यादा भव्य और मनमोहक नज़र आता है। तो देखिए बात बारिश की हो रही है, मॉनसून सीजन की हो रही है, तो मॉनसून सीजन में गुजरात से दो और तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर नवसारी की है। यहाँ डांग जिले में बारिश के बीच मां तेंदुआ अपने दो शावकों को सड़क पार कराते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कितनी सावधान और सुरक्षित तरीके से मां तेंदुआ अपने दोनों शावकों को अपने साथ सड़क पार करा रही है। इसी बीच वन विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि जब कोई वन्य जीव सड़क पार कर रहा हो, सड़क क्रॉस कर रहा हो, तो उसके पास ना जाएं और गाड़ी सावधानी से चलाएं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर जूनागढ़ से सामने आई है और यहाँ पर मॉनसून के इस मौसम में जंगल का राजा यानी कि शेर घास खाता हुआ नजर आ रहा है। शेर को घास खाता देखना आपको अचंभित भी कर सकता है, हैरान कर सकता है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए यह आम बात है। विशेषज्ञों के मुताबिक शेर ले लीजिए, बाघ, तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों के पेट में शिकार के बाल, चमड़ी और हड्डियों के टुकड़े रह जाते हैं, तब वो पाचन तंत्र में सुधार के लिए फाइबर से भरपूर खास घास का सेवन करते हैं। चेन्नई में हुई पुलिस मेडल सेरेमनी में स्निफर डॉग रॉकी ने सबका दिल जीत लिया। देखिए, जब उसने फूलों के गुलदस्ते से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का स्वागत किया, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को मेडल से सम्मानित करने आए थे दरअसल, और इस कार्यक्रम में स्निफर डॉग रॉकी सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच की ओर जाते हुए अपने मुंह में फूलों की टोकरी लिए हुए नजर आ रहा है। मंच पर पहुंचने पर डॉग ने मुख्यमंत्री के सामने सिर झुकाकर उन्हें सलामी दी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें सल्यूट किया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
0: Good news today.
3: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर।
5: कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम, युवाओं के चलते ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का किया ऐलान। 7 राज्यों के लिए 2,117 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि जारी। राहत बचाव एवं पुनर्वास होगा आसान। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की हुई शुरुआत। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति महीने। रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य। गुरुग्राम में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। सोहना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा चालान, पुराने रिकॉर्ड का भी होगा डिस्प्ले। मॉनसून में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का शानदार नजारा। पहाड़ी और हरियाली के बीच जादुई एहसास, पूरी तरीके से लबालब नजर आई नर्मदा नदी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं जब उनके सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलेकणी, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का जायंट माना जाता है, आईटी को लेकर देश के सामने जब कोई बड़ी चुनौती होती है या कोई लक्ष्य होता है तो सबको याद यही शख्स आते हैं। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन में जब एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का विचार आया तो उन्हें शिद्दत से ये याद आए, यानी कि नंदन नीलेकणी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि नीलेकणी ही वो शख्स हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं।

0: जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे इंसान को सही राह दिखाना होती है। नीट पेपर लीक की समस्या जब विकराल हुई और केंद्र सरकार को सीमलेस, स्नैगलेस और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की दरकार हुई तो याद आया वो शख्स जिसे हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट ऑफ आधार के नाम से जाना जाता है, नंदन निलेकणी। जी हाँ, वही नंदन निलेकणी जिन्हें 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हीं नंदन निलेकणी को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए दोष रहित, त्रुटि रहित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1: हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदन निलेकणी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर

0: आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन नीलेकणी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन नीलेकणी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, वो आज 100% सच साबित हो रही है।
1: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address. And it has online authentication capabilities so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs the ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
0: काबिले गौर है कि नंदन नीलेकणी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी, वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
2: आधार KYC वाज सफिशिएंट टू ओपन अ बैंक अकाउंट और टू गेट अ मोबाइल कनेक्शन एंड इन 2014 सून आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर ऑन ऑगस्ट 28, 2014 ही लॉन्च्ड द जनधन योजना प्रोग्राम व्हिच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम एंड मोर देन 400 मिलियन बैंक अकाउंट्स वर ओपन फॉर पीपल And they were able to do that very quickly because with Aadhaar eKYC, you could do an online opening of a customer account.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस DPI की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन नीलेकणी हैं। UPI ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। UPI कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन नीलेकणी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन नीलेकणी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए UPI के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन होता है। UPI के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो UPI के जरिए 314 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ।
2: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 16 had all these momentous events that all led to this massive transformation.

0: transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next-generation payment system on April 11, 2016, and as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened, and today, this is the world's largest payment system.
1: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन निलेकणी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में नीलेकणी की अहम भूमिका रही है। नीलेकणी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैगअप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन निलेकणी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन निलेकणी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी पीएम मोदी और नंदन निलेकणी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन निलेकणी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
0: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman of the Unique Identification Authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses. I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology and how it can be used. And we had a very good 90-minute session. We talked about various kinds of things, including technology. And he was very, very appreciative of what is possible. And he showed that in his state. He showed that in every aspect of using technology.
1: पहली मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी ने नंदन निलेकणी की अतुल्य तकनीकी दक्षता को परख लिया था। उधर नंदन निलेकणी को भी पहली मुलाकात में ही इल्हाम हो गया कि इस नेता में तकनीक आधारित विकास का व्यापक विजन है। यही वजह है कि पहली मुलाकात के दौरान ही टेक्नोलॉजिकल विजन और टेक्निकल स्किल के बीच का अटूट रिश्ता कायम हो गया, जो 15 साल बाद उम्मीदों और संभावनाओं के चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज देश के विजनरी युवाओं को एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की सख्त दरकार है। नंदन निलेकणी से पीएम मोदी के साथ ही देश के लाखों युवाओं को भी उम्मीदें हैं कि वो आधार और UPI जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान पेश करेंगे।
2: शुरू से ही बहुत जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में निलेकणी ने IIT में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर IIT में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर निलेकणी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में IIT क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे IIT क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
3: बे
1: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन नीलेकणी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव नीलेकणी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन नीलेकणी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने IIT एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। IIT क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर IIT मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन नीलेकणी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
3: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइंड एनी IIT एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन IIT चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन IIT बॉम्बे। सो दैट्स हाउ, एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर IIT बॉम्बे।
1: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन नीलेकणी ने किस मनस्थिति में की ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी IIT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलेकणी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन नीलेकणी को कर्नाटक के ही धारवाड़ में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन नीलेकणी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन नीलेकणी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
3: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12, and then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties, and he had to keep finding new jobs time on, and therefore he said for the stability of my education. He put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC. And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
1: धारवाड में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन नीलेकणी ने IIT में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड जैसे छोटे शहर में ना तो IIT की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
3: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams, and we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
1: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन नीलेकणी IIT में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे, और जब चाह प्रबल होती है तो राह बांह फैलाकर स्वागत करती है। दरअसल तब IIT बॉम्बे से नंदन नीलेकणी के कुछ कजन्स बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन के IIT में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
3: Fortunately for me, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they send me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
1: IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद नंदन नीलेकणी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पुणे स्थित पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन निलेकणी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहाँ उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन निलेकणी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन निलेकणी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इन्फोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन निलेकणी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इन्फोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन निलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैसडेक पर लिस्ट होने वाली इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैसडेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन निलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन निलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं हैं, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्रेज के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस IIT बॉम्बे के नंदन निलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन निलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन निलेकणी सिर्फ आईटी जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने नंदन निलेकणी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना और समझा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: तो चलिए अब बात अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब देखिए, राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देख आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं।

0: सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रि कालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर के दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है। हर नक्काशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई इस स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, बॉक्सिंग में एक दिन में 7 गोल्ड मेडल, पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड मेडल, 39 मेडल के साथ चौथे नंबर पर भारत।

गर्मा देश। पदक वीरों के घरों में जश्न का माहौल। बधाई देने और मिठाई खिलाने के लिए उमड़े लोग। हिसार से लेकर कोटा तक खुशियां ही खुशियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। 100 हफ्ते का देशव्यापी अभियान होगा शुरू। स्कूल, कॉलेज और कई संस्थाओं के युवा और प्रतिनिधि होंगे शामिल। मौसम विभाग ने अलप्पुझा, कोटायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, वायनाड सहित केरला के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी में तड़के 4:14 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.9 मापी गई। दिल्ली के उत्तरी जिले में धरती के 8 किलोमीटर अंदर था भूकंप का केंद्र। आस्था के महीने सावन का आज पहला रविवार। देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा पाठ के लिए उमड़े श्रद्धालु। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में 3 से 12 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित हिरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है। बताओ, विभीषण राक्षस वंश में जन्म लेता है, वो भी राम जी का प्यारा बन जाता है। हम ये कहना चाह रहे, बुरा न मानना, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बुरा न मानना, समझदार हो, और मान भी जाओ बुरा तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आए। सुनो भैया, जब लंका में रहने वाले विभीषण जो राक्षस कुल में जन्म लेता उसको राम जी मिल सकते हैं, तो हम लोग भी यदि भगवान का भजन करें, भारत में रहते हैं तो हम लोगों को तो भारत के राम जल्दी ही मिल जाएंगे, हैं? हम लोगों को तो मिल ही जाएंगे, वो तो भारत में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन हमने कल, शायद कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। आओ, आओ, आओ, आओ, वो लोग क्योंकि ये समझते यही तो है, अभी चले जाएंगे, तब तक ट्रेन निकल ही जाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और इसी पे बोले, कह दो बोलो, अभाव में जितना भजन हो सकता प्रभाव में उतना भजन नहीं होता है। हाँ, अभाव में बहुत भजन होता है, इसलिए तुम देखना गरीब आदमी ज्यादा भक्त होता अमीरों के मुकाबले। अमीर की भक्ति फोटू वाली होती है, गरीब की भक्ति हृदय वाली होती है। दोनों की भक्ति में अंतर है, ऐसे समझे। यदि आज के मॉडर्न जमाने से समझाएं तो अमीर की भक्ति रील वाली होती है, गरीब की भक्ति रियल वाली होती है। हाँ, लेकिन सब नहीं, कुछ अमीर भी ठीक ठाक होते हैं, वो भी भक्त होते हैं, जरूरी नहीं कहें अब भाई अमीर हो गए तो कोई पाप थोड़ी है, तो वो भी कुछ भक्त होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोला और जोर से बोलो। तो हनुमान जी विभीषण को कहते हैं, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें विभीषण से कह रहे हम राम जी से मिलवाएंगे। अब हनुमान जी ने पूछा, जानकी माता कहाँ है? इतना सुनते ही विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात, क्यों रो रहे हो? विभीषण ने कहा, अशोक बाटका में माता जानकी जी बैठी। अच्छा बताओ, बाटका का नाम अशोक, माता जी शोक में, क्योंकि ये लंका है। जहां नाम कुछ और हो काम कुछ और हो, समझ जाना लंका है। बोलो सीताराम, नाम तो अशोक बाट का है, माता सीता शोक में। अब विभीषण ने हालत बताई जरा हनुमान जी को,

0: हम माता जानकी जी को देखना चाहते, हमारे मन में दुख हो रहा, एक बार दर्शन करा दो फिर हम चले जाएंगे, राम जी को बताएंगे। विभीषण जी ने कहा कि डायरेक्ट जाना मुश्किल है पर उपाय है। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, युक्ति बताई, आप ऐसे जाओ पागलो। हनुमान जी को यदि विभीषण ना मिलते तो माता जानकी ना मिलती, और विभीषण को यदि हनुमान जी ना मिलते तो कभी उसे राम नहीं मिलते, उन्हें भी राम नहीं मिलते। सीधी सी बात महाराज जी, संगत का बड़ा प्रभाव है। एक संगति ने हनुमान जी की खोज पूरी कर दी कि लंका में भी माता जानकी यानी भक्ति मिल गई, और एक संगति ने विभीषण की जिंदगी बदल दी कि राम जी भी मिल गए और राजा भी बन गए। ये संगत का प्रभाव है।
1: बहुत से लोग हमें मिलते हैं, अब हम ही को फंसते हैं, क्या बताएं। एक आदमी और हमें मिला, बोला पंडित जी, हमने कहा हाँ जी, बोले अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम हनुमान जी को जो है 5 किलो लड्डू घी के चढ़ाएंगे। तो हमने कहा देखो, पहली बात तो ये कि हनुमान जी तुम्हारे घी के लड्डुओं के भूखे नहीं है, और दूसरी बात अपना काम बताओ। बोले काम ये है कि हमारी जमीन बिक जाए पर महंगी बिक जाए। हमका हनुमान जी को अगर जमीन ही बिकवानी होगी और महंगी बिकवानी होगी, तुम्हारी क्यों बिकवाएंगे, हमारी नहीं बिकवाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती कि आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम ऐसा कर दो भगवान तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम दंड भरते आएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती, हनुमान जी की कृपा तो संबंध से होती है। इसको तो अनुबंध कहते हैं। ये तो बिजनेसमैनों में होता है, व्यापारियों में, कि तुम हमारा बिजनेस का सामान ले लो, हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, ये कर दो तो हम वो करेंगे, ये बिजनेसमैनों में होता, भक्त और भगवान में नहीं होता है। भक्त और भगवान तो स्वतंत्र होते हैं भैया, भक्त तो भगवान पर सर्वस्व लुटा देता है, और भगवान भी ऐसे हैं कि वो अपनों भक्त को जी भर करके दे देते हैं। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। और जो भक्त भगवान के भरोसे होता, ऐसे समझो, मेला में एक 5 साल का बच्चा गया, एक 15 साल का, एक माताजी के दोनों बेटे, एक 15 साल 20 साल का था, एक 5 साल का। मेला बहुत भरा हुआ था पर माता जी की नजर बार बार 5 वर्ष वाले बच्चे पर जा रही थी, जो 5 वर्ष का बालक था उसी पर नजर जा रही थी, ये गुम ना जाए, गायब ना हो जाए, भग ना जाए, चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। बार बार हाथ पकड़कर 5 वर्ष के बच्चे को माताजी कभी गोद ले लें, कभी उंगली पकड़ लें, कभी सिर पर हाथ रख ले मैं। क्यों? क्योंकि 15-20 वर्ष का बच्चा तो सब अपने मन से करेगा, पर 5 वर्ष का बच्चा तो अपने मन से नहीं कर पाएगा, उसकी चिंता माँ को होती है। उसी प्रकार भैया, तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम्हें स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा, और तुम ध्यानी बनोगे तो तुम्हारी परवाह भगवान को करनी पड़ेगी। कल हम लोग कमरे में बैठे बैठे परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की चर्चा कर रहे थे, श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, आहा कितने अद्भुत महात्मा हैं। उनकी चर्चा जब आप लोग कर रहे थे तो हमें उनकी कुछ को, भारत में अभी भी कुछ संत दर्शनीय है, बाकी तो भैया प्रदर्शनीय है। बुरा ना मानना सांचौर वाले लोगों, तुम हमारी आत्मा हो, हम सच बात बोल रहे हैं, साधु हो जाना कठिन नहीं है, साधु बन जाना बहुत कठिन है। कपड़ा पहन लेना बहुत सरल है, बाल रखा लेना सरल है, माला पहन लेना सरल है, लेकिन भजन जीवन में उतारना और संत का आचरण जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभी भी अपने भारत में परम पूज्य जैसे पथमेड़ा वाले श्री गौरशी मनीषी परम पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, क्या अद्भुत विभूति है। कभी फोटो टीवी पर नहीं आती, कभी फोटो नहीं खिंचवाते, कभी स्पर्श नहीं करवाते। क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं। भारत में कुछ ही महात्मा हैं जो दर्शन करने योग्य हैं। आज ही आते समय हमारी बात बरसाने वाले परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी से हो रही थी। आहा, क्या विभूति है। श्री राधा रानी जी की कितनी अद्भुत भक्ति है। बात करते करते ही उनके नेत्र सजल हो जाते। 18-18 घंटे श्री राधा रानी जी का भजन करते, एक ही झोपड़ी में पड़े रहते, ब्रज छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते। भैया ऐसे संतों का भारत में अब होना बड़ा कठिन है। चाहे वो पथमेड़ा वाले महाराज जी हो, चाहे वो बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी हो, चाहे वह जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट वाले पूज्य गुरुदेव भगवान हो, चाहे वह मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजनदास जी महाराज जी हो, ऐसे संतों के दर्शन वर्तमान के समय में सतयुग स्वर्ण काल युग है। इस कलिकाल में ऐसे संतों के दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना है। बोलो जय सियाराम। तो हम आपको बता रहे थे कि भगवान को चिंता होती है, तो मामा जी का एक बाकिया है। जिन संत के बारे में हम बता रहे उनका शरीर तो नहीं है पर वो आज भी है, बिहार प्रांत के बक्सर जिले में पांडे पट्टी नामक गांव में आपका जन्म हुआ था। श्रीमन नारायण चतुर्वेदी जी के यहां, आहा, बड़े अद्भुत महात्मा। गुरुजी ने इनका नाम श्री नारायण दास भक्तमाली जी रखा। होमगार्ड की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ दी और गीतों को संगीतों को गा गा कर मंदिरों में जाकर के भगवान के भजन सुनाने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, भक्तमाल जी की कथा पढ़ने के लिए वृंदावन आना था, तो यह पटना रेलवे स्टेशन पर गए। तो टिकट के लिए रुपया तो थे नहीं, पर इन्होंने सोचा अब जो होगा श्री किशोरी जी कृपा करेंगी, अब वहीं देखा जाएगा। और पटना रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गए। अब टिकट है नहीं, कैसे जाएं? महात्मा आदमी कहीं टीसी पकड़ ले, बेइज्जती कर ले, जेल में डाल दे, अच्छा नहीं लगेगा। वहीं एक कोने में रेलवे स्टेशन पर बैठकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। श्री किशोरी जी को प्रणाम करने लगे और आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। भैया आपने अपने मुंह से खुद इस घटना को कई बार कहा। भक्तमाली जी कहते हैं कि हमारे सामने बैठे हुए एक सरदार जी उठे और झट से अपनी टिकट निकाल कर बोले, क्यों बाबा दिल्ली जाना है क्या? तो मामा जी बोले कि हमको दिल्ली नहीं जाना, हमको तो वृंदावन जाना है, पर आप क्यों पूछ रहे? तो सरदार जी बोले, महाराज हमें कोई जरूरी काम आ गया और हमारी टिकट दिल्ली तक की है, हमें जरूरी काम से वापस जाना है, हमारा फोन आ गया, अगर तुम्हें दिल्ली जाना हो तो ये टिकट हमारी ले लो, हमारी टिकट स्लीपर में है, बढ़िया रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में बैठ करके चले जाओ। मामा जी कहते हमारी आंखों से आंसू आ गए, धन्य है किशोरी जी की कृपा, कि अचानक सब व्यवस्था कर दी और उन्होंने टिकट ली और श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। भैया, इस घटना से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो तुम्हें अपनी चिंता स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, भगवान को तुम्हें तुम्हारी सारी चिंता करनी पड़ेगी। आपकी चिंता भगवान की हो जाएगी, आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाएगी। और सांचौर के पागलों, मेरी आत्माओं, हम हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कहना चाह रहे हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, हमारे वीर बजरंग बली की हो जाएगी। हमारे हनुमान जी की हो जाएगी, व्यवस्था करने का काम हनुमान जी का हो, और हनुमान

0: मेरी प्रिय आत्माओं, भगवान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर तुम भगवान के भक्त हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के साधक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के उपासक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारोगे, अगर तुम हनुमान जी की पूजा करोगे, अगर तुम हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारी चिंता नहीं बचेगी, समस्त चिंताएं हमारे श्री वीर बजरंग बली की हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज सर्व प्रकार समर्थ हैं, सभी प्रकार से बलवान हैं, सभी प्रकार से निपुण हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम भी हैं, बुद्धि बल भी तेज है। लेकिन भैया हम हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं पर अपने स्वार्थ के लिए हनुमान जी की भक्ति करते, अपितु हम लोगों को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। एक बात हो, देखो झंझटों जितनी ज्यादा हो उतनी आफत। कई लोगों को लगता है हमारे पास पैसा नहीं है, बड़ी आफत है, गरीबी बहुत है। बात ठीक है तुम्हारी, पर जितने झंझट आ जाएंगे, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो फिर टेंशन होगी। आज तुम्हें टेंशन है पैसा नहीं है, और कल तुम्हें फिर नई टेंशन हो जाएगी कि पैसा है तो रखें कहां। एक नई टेंशन, इनकम टैक्स की टेंशन, ईडी की टेंशन, जीएसटी की टेंशन, है कहां खर्च करें दुनिया को पता ना लग जाए, फिर और नई आफत खड़ी हो जाएगी। आज भी तुम झंझट में पड़े के है नहीं, कल फिर नए झंझट में पड़ोगे कि क्यों है इतना। बोलो सीताराम, ये झंझट है, बहुत खतरनाक झंझट होते हैं। इसीलिए जो झंझट नहीं है भगवान को धन्यवाद दो, बोलो जय सियाराम। एक आचार्य जी कथा सुनाते थे, बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। एक महात्मा मरने लगे तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी कोई ज्ञान दो ज्ञान, तो गुरुजी बोले एक ही ज्ञान है, बिल्ली मत पालना। एक ही ज्ञान है, क्या नहीं पालना, बोलो बोलो, बिल्ली मत पालना। अब महात्मा मर गए, अब शिष्य बड़ा हैरान कि गुरुजी कह गए बिल्ली मत पालना, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। दूसरे महात्मा ने बताया, बोले हम तुम्हारे गुरुजी को जानते हैं, हमें पता है हकीकत। बोले क्या, बोले क्या है, जब तुम्हारे गुरुजी नए नए बाबा बने तो जिस कुटिया में रहते थे वहां चूहे बहुत रहते थे, चूहे कपड़े फाड़ देते थे, चूहे लंगोट फाड़ देते थे। तो गांव वालों ने कहा महाराज चूहे अगर कपड़े फाड़ देते हैं,
1: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है, क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators, dive with sharks, explore the unexplored, from nature, science, and space, to premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा बरकरार। बॉक्सिंग में एक दिन में 7 गोल्ड मेडल। पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड मेडल, 39 मेडल के साथ चौथे नंबर पर भारत। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से झूमा देश, पदकवीरों के घरों में जश्न का माहौल। हिसार से लेकर कोटा तक खुशियों ही खुशियां। सौ हफ्तों का देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। स्कूल, कॉलेज और कई संस्थाओं के युवा और प्रतिनिधि होंगे शामिल। केरला के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, सावधानी की अपील। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में 3 से 12 अगस्त तक स्कूल रहेंगे बंद। शिव भक्तों में दिख रहा है उत्साह, शिवालय में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार। एक दिन में 8 गोल्ड मेडल जीतकर मेडल टैली में चौथे नंबर पर पहुंचा भारत। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया 62 गोल्ड के साथ टॉप पर है, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे नंबर पर है। पुरुष मुक्केबाजी के 60 किलो वर्ग में भारत ने झटका गोल्ड। बॉक्सर सचिन सिवाच ने शानदार प्रदर्शन से जीता गोल्ड मेडल। बॉक्सर अंकुश पंघाल ने शानदार प्रदर्शन किया, 80 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, 75 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल ने अपने नाम किया। बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने 70 किलो वर्ग में जीता गोल्ड मेडल, इंग्लैंड की चेंटेले रीड को हराया। मुक्केबाज प्रिया घांघस ने महिलाओं के 60 किलो वर्ग में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। कनाडा की मैरी बाथोल अल अहमदिया को हराकर गोल्ड अपने नाम किया। मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने भी लगाया गोल्डन पंच। साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग बॉक्सिंग में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। कनाडा की सवाना डोल मागो को मात दे। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड मेडल, नॉर्दर्न आयरलैंड की मिकाइला वॉल्स को हराया। भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता रजत पदक। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि ने जीता सिल्वर मेडल। जूडो में उन्नति शर्मा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। महिला जूडो के 63 किलोग्राम वर्ग में उन्नति को ब्रॉन्ज मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप से भारत को 2 मेडल मिले। प्रवीण चित्रोवेल ने 16.58 मीटर के जंप अटेम्प्ट के साथ सिल्वर अपने नाम किया। पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए आई दोहरी खुशी। शॉटपुट F57 इवेंट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड मेडल। शुभम जोयाल ने शॉटपुट F57 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 5000 मीटर इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से झूमा पूरा देश। खिलाड़ियों के घरों में मनाया जा रहा है जश्न। हरियाणा के भिवानी में सचिन सिवाच के घर में जश्न का माहौल बना। बॉक्सिंग में सचिन ने 60 किलो वर्ग में जीता है गोल्ड। बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली साक्षी चौधरी के घर बधाई देने वालों का तांता लगा। बेटी की शानदार उपलब्धि पर माता पिता ने जताई खुशी। मुक्केबाज प्रिया घांघस ने गोल्ड मेडल जीतने पर भिवानी में उनके घर के बाहर उमड़े लोग, तो वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। राजस्थान के कोटा में भी जीत का जश्न मना। बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर अरुंधति चौधरी के परिवार में खुशी का माहौल। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय महीने सावन का आज पहला रविवार। देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा पाठ के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा के चलते 3 से 12 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद, जिला प्रशासन का आदेश। मेरठ में भारी संख्या में कांवड़ियों की हो रही है आवाजाही, कांवड़ मार्गों पर यातायात डायवर्जन योजना लागू की गई। कांवड़ यात्रा 2026 सुसकुशल संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को परखा, रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया। उम्र पर भारी पड़ी आस्था, झारखंड के धनबाद में बुजुर्ग पुरुष और महिला भी कांवड़ यात्रा में हो रहे हैं शामिल। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कांवड़ की चर्चा, तो वहीं मैकलोरिन स्पोर्ट्स कार में सवार नजर आए भगवान शिव शंकर। लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को कांवड़ के रूप में किया गया इस्तेमाल, शिव भक्तों ने महज 8 लाख में स्पोर्ट्स कार को बना दिया कांवड़ का रूप। सावन के महीने में दिख रहे कांवड़ के अलग अलग रंग, सनातन एकता के लिए 51 लीटर जल लेकर 350 किलोमीटर की यात्रा पर निकले शिव भक्त। अर्धनारीश्वर कांवड़ भी आकर्षण का केंद्र, 100 किलो वजन के 9 फीट ऊंची है ये विशाल कांवड़। सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा धाम जा रहे हैं भक्त। श्रावण मेला 2026 के चलते बाराबंकी में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, कई मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद, प्रशासन की भीड़ नियंत्रण पर लगातार नजर। हरिद्वार में धूमधाम से चल रहा है कांवड़ मेला, हर की पैड़ी सहित पूरे हरिद्वार में शिवमय हुआ माहौल, सजी धजी कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं कांवड़िये। सावन के महीने में आकर्षण का केंद्र रहती हैं अलग अलग कांवड़, इसी कड़ी में फिटनेस और नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देती है बागपत पहुंची अनोखी जिम वाली कांवड़। कांवड़ में आगे विराजमान है भोलेनाथ और पीछे बना है पूरा जिम, इस कांवड़ को अपने कंधों से खींचकर करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं पुलिस जवान। 22 जुलाई को हरिद्वार से गंगा जल लेकर यात्रा पर निकले हैं अमित, दिल्ली के नजफगढ़ तक जाएगी ये जिम कांवड़। अलवर से देश की सबसे लंबी 2300 किलोमीटर की डाक कांवड़ हुई रवाना, गोमुख से जल लेकर सोमनाथ में किया जाएगा भगवान शंकर का जलाभिषेक। गोमुख से पवित्र गंगा जल लेकर चला मध्य प्रदेश के 150 से ज्यादा शिव भक्तों का विशाल जत्था, पदयात्रा करते हुए लौट रहे हैं कांवड़िये। मुरैना जिले के एक ही गांव के रहने वाले सभी कांवड़िये 22 जुलाई को गोमुख से गंगा जल लेकर पैदल पूरा कर रहे हैं 800 किलोमीटर का सफर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुआ बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार, भस्म आरती में शामिल हुए बड़ी तादाद में श्रद्धालु। सावन में श्रद्धालुओं के बीच बढ़ी चांदी के बेलपत्र और पूजा सामग्री की डिमांड, ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं सामग्री। सावन में चांदी और सोने के नए नए डिजाइन की पेश की जा रही है पूजा सामग्री, सावन का सोमवार आने से पहले बाजारों में रौनक। वुडन सिटी सहारनपुर में लकड़ी से जुड़े कारीगरों और कारोबारियों के आए अच्छे दिन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। सहारनपुर की काष्ठकला को नई तकनीक, आर्थिक मदद और ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का काम किया जा रहा है, बनाए गए प्रोडक्ट की विदेश में भी मांग है। वाराणसी में जीआरपी आरपीएफ की टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, ट्रेन से 1 दर्जन कछुओं को किया गया बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद कछुओं की अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए। यूपी के फरुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खेतों और गांवों में भरा पानी, गंगा किनारे बसे हुए करीब आधा दर्जन गांवों में कटान का खतरा भी बढ़ा। असम में बाढ़ के प्रभावित जिले शिवसागर पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा, पीड़ितों और राहत के काम में लगे वॉलंटियर्स से बात की, मदद का भरोसा दिया। दिल्ली में तड़के 4:14 पर महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.9 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र दिल्ली के उत्तरी जिले में था, इसकी गहराई 8 किलोमीटर थी।

आयोजित होगी शताब्दी सेलिब्रेशन। डॉक्टर राही मासूम राजा की शायरी और गीत सुनाए जाएंगे। पंजाब के कई शहरों में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस के साथ मीटिंग के बाद बनी सहमति। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जगह जगह लगे कूड़े के ढेर से मिलेगी निजात। मंत्री का भरोसा, आने वाले दिनों में कर्मचारियों की मांगें पूरी की जाएंगी। गुरु पूर्णिमा उत्सव के मौके पर देश विदेश से आए लाखों साईं भक्तों ने शिरडी साईं बाबा के दरबार में चढ़ाया रिकॉर्ड चढ़ावा। महज 3 दिनों में भक्तों ने मंदिर को मालामाल किया। 28 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित उत्सव में 3 लाख से ज्यादा साईं भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। कुल 7 करोड़ 81 लाख रुपयों की गुरु दक्षिणा अर्पण की। दान पत्र से मिले 3 करोड़ 29 लाख रुपए, 2 करोड़ 7 लाख रुपए रहा ऑनलाइन दान। 1 करोड़ 50 लाख के सोने चांदी के आभूषण भी चढ़ाए गए। दर्शन और आरती पास से 87 लाख रुपए मिले तो वहीं 5,65,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को सोने के 2 बेशकीमती मुकुट के साथ नकाशीदार हार भी चढ़ाया गया। इसमें सोने के बने 2 ओम के अक्षर भी शामिल थे तो वहीं तकरीबन 1.5 करोड़ का 1100 ग्राम सोना और 2 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई। इस साल साईं दरबार में गुरु पूर्णिमा पर पिछले साल से 1.5 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा मिला। पिछले साल गुरु पूर्णिमा उत्सव में चढ़ाया गया था 6 करोड़ 31 लाख रुपयों का चढ़ावा। अंबाजी पहुंची संत रविदास यात्रा। 650वीं जयंती के मौके पर हुआ कलश पूजन आयोजित। संतों की मौजूदगी में कलश यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। भक्तिमय नजर आया पूरा वातावरण। कर्णावती अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर पर खत्म होगी काशी से शुरू हुई भव्य कलश यात्रा। दूर दूर से आए श्रद्धालु ले रहे हैं यात्रा में हिस्सा। पाली में रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास पहल देखने को मिली। सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध कराए गए। वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं विशेष राखी के लिफाफे। बहनें अपने राखी सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से भेज सकेंगी। मैसूरू के पीएम मोदी की सौगात मिली मैसूरू को तो वहीं श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकृष्ण परमहंस मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। विवेकानंद पर आधारित एक विशेष फिल्म भी देखी। करीब 81,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है स्मारक। इसमें एक एम्फी थिएटर, क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी, ध्यान और योग हॉल और एक बुक स्टॉल शामिल है। पीएम मोदी ने परिसर में पौधारोपण किया। श्री रामकृष्ण विद्याशाला स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक परिसर में पहुंचने पर सबसे पहले वहां पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक पुरस्कार। अमित शाह ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। अजीत डोभाल को राष्ट्र की सुरक्षा में उनके अद्वितीय और साहसिक योगदान के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। शाह बोले, देश की सुरक्षा मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका है। केरला कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं अजीत डोभाल। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए हैं। चेन्नई के राजरत्नम स्टेडियम में आयोजित पुलिस मेडल समारोह। सीएम जोसेफ विजय का स्वागत करने वाले स्निफर डॉग रॉकी ने जीता सबका मन। समारोह के दौरान मुंह में फूलों की टोकरी लेकर मंच पर सीएम का स्वागत करने के लिए पहुंचा स्निफर डॉग रॉकी। मुख्यमंत्री ने भी मुस्कुराते हुए रॉकी को पुचकारा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी। सोना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर सार्वजनिक होगा चालान का पूरा रिकॉर्ड। ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने वालों का चालान नहीं भरने वालों को बेनकाब करने के लिए अनूठी पहल की। लोगों में नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी को दिया जाएगा बढ़ावा। आम लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 202 रुपए घटी। कोलकाता में 209 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। कर्नाटक के हुबली में 3 दिन का जैक फ्रूट फेस्टिवल। कटहल से बने व्यंजनों का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। बाढ़ बारिश से प्रभावित राज्य को गृह मंत्रालय

0: तो वहीं SDRF के तहत बाढ़ प्रभावित राज्यों को 2000 करोड़ से ज्यादा की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी। असम में भारी बाढ़ के बीच एक दूसरे का सहारा बने लोग। जोरहाट के क्वारी गांव में लोगों ने बचाई लगभग 2000 जिंदगियां। बागेश्वर में पिछले एक हफ्ते से जारी यह बारिश, रखोली के पास सड़क में भरभराकर गिरते पहाड़ का मलबा कैमरे में कैद हुआ। बारिश के कारण 8 प्रमुख सड़कें हुई बंद, ग्रामीण इलाकों से टूटा संपर्क, आवागमन हुआ प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, कई सड़क मार्ग हुए प्रभावित, शिमला के रास्ते पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या शंख बजाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या शंख से माता लक्ष्मी का भी कोई संबंध है? क्या महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए? क्या है शंख का महत्व और क्या है शंख का पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: ट्यून इन हाउ टू, अ ब्रीफ लुक एट ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
3: मिस्ड आउट ऑन योर लेटेस्ट पॉडकास्ट एपिसोड्स? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा उपासना करें तो सूर्य देव से विशेष वरदान आपको मिल सकते हैं। क्या तरीका है, इस पर बात करेंगे। देखिए, वैसे तो सूर्य भगवान की उपासना रोज की जाती है, नियमित की जाती है, लेकिन रविवार को सूर्य देव की उपासना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है, देखिए, रविवार का संबंध सूर्य देव से माना जाता है और रविवार के दिन जब आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो वो उपासना विशेष फलदायी होती है। अगर आप सप्ताह में किसी भी दिन सूर्य देव की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार के दिन अगर आप सूर्य देव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। रविवार को सूर्य देव के विशेष उपाय करना लाभकारी होता है, विशेष फायदा होता है अगर रविवार को सूर्य देव की उपासना की जाए। देखिए, सूर्य का सबसे ज्यादा और सबसे गहरा संबंध होता है आपके आरोग्य से, आपके स्वास्थ्य से। रविवार को स्वास्थ्य का, आरोग्य का वरदान कैसे मिलेगा? रविवार को प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी सी रोली मिलाइए और इसके बाद सूर्य देव का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिएगा और लोटे के किनारे जो जरा सी रोली लगी रह गई है इस रोली का स्वयं को तिलक लगाइएगा। अगर हर रविवार को प्रातः काल आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, आप आरोग्यवान होंगे। रविवार के अन्य उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ हो, खराब हो, तो हृदय रोग की संभावना जीवन में बनती है। तो हृदय रोग से राहत कैसे मिले? रविवार को प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करें, जल में लाल पुष्प डालिए, लाल फूल डालिए। अगर जवा पुष्प हो, गुड़हल का फूल हो तो ज्यादा उत्तम होगा। और इसके बाद सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाइए, लाल चंदन की माला अर्पित करिए। इसके बाद उसी माला से ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। पूजा के बाद उस माला को गले में धारण करिए और उस माला को हमेशा गले में पहने रखिए। हर रविवार को माला गले से निकाल कर उस पर मंत्र का जप करके दोबारा उस माला को गले में पहन लीजिएगा, हृदय से संबंधित समस्याओं में सुधार होगा।
अगर आपके जीवन में शत्रु ज्यादा हैं, विरोधी ज्यादा हैं, जीवन में बाधाएं ज्यादा पैदा करते हैं, तो शत्रुओं और विरोधियों पर विजय कैसे मिलेगी? रविवार के दिन का उपवास रखिएगा और नमक मत खाइएगा। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और विजय प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे, जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। रविवार के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर सूर्य देव की कृपा आपको चाहिए तो रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन कौन कौन से काम करना कल्याणकारी होगा? संभव हो तो रविवार को भगवान सूर्य को जवा पुष्प यानी गुड़हल का फूल या आक के फूल अर्पित करें। वैसे भी अर्पित कर सकते हैं और जल में डाल कर भी अर्पित कर सकते हैं। रविवार को जैसी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से गुड़ का, गेहूं का, गेहूं के आटे का और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार को उपवास रखें, नमक का सेवन ना करें या रविवार के दिन सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको माणिक्य धारण करने की सलाह दी गई है जो कि सूर्य का रत्न है, तो तांबे या सोने की अंगूठी में रविवार को दोपहर के समय में माणिक्य धारण करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए फिर आपको बता दूं कि अगर आप सूर्य देव की नियमित उपासना नहीं कर पाते तो रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का या सूर्याष्टकम का पाठ करें। अगर भोजन ग्रहण करते हैं रविवार को तो प्याज लहसुन का सेवन ना करें और अगर उपवास रखते हैं तो नमक नहीं खाएंगे, सूर्यास्त के पहले कोई मीठी चीज खा सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं सूर्य देव को रोज जल चढ़ाना चाहती हूं लेकिन मेरे घर से सूर्य के दर्शन नहीं होते, सामने बिल्डिंग है नहीं दिखाई देते। तो अगर आपको सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते और आप सूर्य देव की प्रातः काल पूजा करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सूर्य देव के 21 नाम शास्त्रों में दिए गए हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो भी आपको सूर्य देव के 21 नाम मिलेंगे। तो रोज सुबह स्नान करके पूर्व की तरफ चेहरा करके अगर आप सूर्य देव के 21 नाम पढ़ेंगे तो आपके सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप।
अगर जीवन के किसी क्षेत्र में विजय चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें, बड़ी से बड़ी परीक्षा, मुकदमों, झंझट में आपको विजय मिलेगी। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।

0: सोमन राणा ने जीता गोल्ड मेडल 39 मेडल के साथ चौथे नंबर पर भारत। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से झूमा पूरा देश। पदक वीरों के घरों में जश्न का माहौल। हिसार से लेकर कोटा तक खुशियां ही खुशियां। 100 हफ्ते का देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। स्कूल कॉलेज और कई संस्थाओं के युवा और प्रतिनिधि होंगे शामिल। केरला के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल। सावधानी की अपील। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में 3 से 12 अगस्त तक स्कूल रहेंगे बंद। शिव भक्तों में दिख रहा उत्साह। शिवालय में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, शंख जो है हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शंख को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। शंख का उपयोग आमतौर पर हम पूजन पाठ के दौरान करते हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शंख का सही तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और शंख के चमत्कार क्या हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, शंख का प्रयोग सामान्यतः शिव जी की पूजा में नहीं किया जाता। शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित है। अगर आप शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि शंख का उपयोग अमूमन हम पूजन पाठ के दौरान करते ही हैं, लेकिन शंख जिसको पवित्रता शुभता का हम प्रतीक मानते हैं, ओम का प्रतीक मानते हैं, उसका धार्मिक महत्व आखिर क्या है?
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शंख के बारे में और शंख के प्रयोग के बारे में। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है या समुद्री जीव का खोल है। पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है और चूंकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ था, इसीलिए कहीं कहीं पर शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। मान्यता ऐसा कहती है कि जहां शंख होता है, जहां शंख का प्रयोग होता है, वहां लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में इसको बजाना शुभ मानते हैं। इसकी ध्वनि को, इसके साउंड को पवित्र माना जाता है। घर में पूजा की वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है और शंख को दीपावली पर, होली पर, महाशिवरात्रि, नवरात्र, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, इस शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। जैसे आपके पूजा स्थान पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां होते हैं, तमाम पवित्र चीजें रखी होती हैं, उसी तरह से अपने पूजा स्थान पर आपको शंख भी रखना चाहिए और इसका नियमित प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आसानी से आ सकेगी।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो देखिए, सनातन धर्म में तो शंख को काफी महत्वपूर्ण माना ही जाता है, लेकिन अब पंडित जी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक नजरिए से अगर हम इसे देखें, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, शंख क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: देखिए, शंख के पीछे धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, ये आपने समझा। वैज्ञानिक रूप से समझिए, विज्ञान के अनुसार शंख की ध्वनि महत्वपूर्ण होती है। जो ध्वनि है, साउंड है, वो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और शंख की विशेष ध्वनि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण का परिष्कार होता है, और जहां तक इसकी ध्वनि जाती है वहां तक जो हवा में, वायु में कीटाणु हैं उनका नाश हो जाता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भरकर रखा जाता है और बाद में इसको पिया जाता है। ऐसा करने से शरीर में कैल्शियम बेहतर होता है। अगर आप नियमित रूप से शंख बजाते हैं तो इसकी ध्वनि की वजह से आपका पूरा घर पवित्र होता है। शरीर की बात करें तो हृदय रोग के मामले में और फेफड़ों की बीमारियों के मामले में लाभ होता है। ये बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से शंख बजाएं तो आपकी वाणी शुद्ध होगी, स्पष्ट होगी और आपका वाणी दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो शंख नियमित रूप से बजाने से इसके साउंड का बहुत फायदा मिलता है। हृदय मजबूत होता है, लंग्स मजबूत होते हैं और सेहत बेहतर बनी रहती है।
0: तो शंख के महत्व के बारे में ये जो चर्चा है यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, मानसिक तनाव से इस समय बचाव करिए, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, काम ज्यादा रहेगा, व्यस्तता ज्यादा रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए, अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न सुरेश भाई ने हमें लिखा है। सुरेश भाई हमें अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1970। जन्म का समय शाम के 4 बजे। जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। सुरेश भाई कह रहे हैं कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और मेरे ऊपर थोड़े कर्जे भी हो गए हैं, तो मेरा व्यापार कब तक बेहतर चलेगा और कर्ज से मुक्ति मुझे कब तक मिलेगी। सुरेश भाई, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका समय बेहतर हो गया है और ऐसा लग रहा है कि जुलाई 2026 के बाद से आपका व्यापार लगातार बेहतर होगा। इस व्यापार में आप लगातार उन्नति करते चले जाएंगे। कर्ज धीरे धीरे उतर पाएगा, लेकिन लगभग 1.25 साल में आप कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारा ये कार्यक्रम यानी कि गुड लक टुडे रोज देखते हैं, हमारे कार्यक्रम को काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए, बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न मीनाक्षी ने हमें हैदराबाद से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1986। जन्म का समय शाम के 7:55 जन्म स्थान है करीम नगर। ये कह रही हैं कि काफी दिनों से ये और इनके पति मिलकर के एक मकान लेना चाहते हैं, लेकिन मकान नहीं ले पा रहे हैं। बार बार प्रॉपर्टी खरीदने में लेने में अड़चने आ रही हैं। तो अपना मकान कब तक खरीद पाएंगे, अपने मकान का लाभ कब तक होगा। मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने की कोशिश करें। साल 2026 के अंत तक आते आते आप कोई ना कोई मकान या फ्लैट खरीद लेंगी, ये संभावना कुंडली में बन रही है। सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि मकान का टोटल नंबर या फ्लैट का टोटल नंबर 8 नहीं होना चाहिए। एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार शंख कितने प्रकार के होते हैं और इनके अलग अलग तरह की महिमा क्या होती है।
1: देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं और हर तरह का शंख जीवन में अलग अलग प्रभाव पैदा करता है। हर प्रकार के शंख की विशेषता अलग है। हर प्रकार के शंख से और शंख की पूजा करने का तरीका भी अलग है। शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। शंख 3 प्रकार के होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख। भगवान विष्णु का शंख दक्षिणावर्ती है, लक्ष्मी जी का शंख वामावर्ती है। वामावर्ती शंख सामान्यतः बजाया नहीं जाता। वामावर्ती शंख अगर आप अपने घर में स्थापित करें और इसकी पूजा करें तो धन का अभाव नहीं होता है। वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यावर्ती शंख के अलावा महालक्ष्मी शंख, मोती शंख और गणेश शंख भी पाया जाता है और इनका अलग अलग प्रयोग पूजा उपासना में किया जाता है। सामान्यतः जो वामावर्ती शंख है, अगर वो आप अपने पूजा के स्थान पर स्थापित करें, या मोती शंख अगर पूजा के स्थान पर स्थापित करें, तो ऐसा करने से जीवन की धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, कारोबार में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए काम का अवसर मिलेगा। यात्रा के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सामान्य रूप से अगर कोई शंख का प्रयोग करना चाहता है तो किस तरीके से किया जाए, क्या सही तरीका है इसका?
1: देखिए, आपको अगर शंख का प्रयोग करना है तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना चाहिए। सफेद रंग का शंख बाजार से आप अपने घर पर ले आएं, इसको गंगा जल से और जरा सा दूध से धो करके शुद्ध कर लें। इसके बाद गुलाबी कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट करके पूजा के स्थान पर रखिएगा। सुबह और शाम पूजा के बाद 3-3 बार शंख बजाइएगा और शंख बजाने के बाद इसको धो करके पुनः पूजा स्थान पर रखिएगा। शंख बजाने के बाद बिना धोए हुए पूजा स्थान पर नहीं रखेंगे, क्योंकि शंख जूठा हो जाएगा। धो करके दोबारा पूजा स्थान पर रख सकते हैं।
0: पंडित जी, अगर कोई शंख का प्रयोग कर रहा है तो किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
1: अगर आप शंख बजाते हैं या शंख बजाना चाहते हैं तो शंख के प्रयोग में क्या सावधानियां रखें? शंख को किसी वस्त्र में लपेट कर या पूजा स्थान पर आसन पर रखना ज्यादा बेहतर होगा। सुबह और शाम के समय में ही शंख बजाया जाता है पूजा के साथ, बाकी समय हर समय शंख न बजाएं। शंख को बजाने के बाद पूजा स्थान पर धो करके ही रखना चाहिए। अपना शंख किसी और को न दें और दूसरे का शंख स्वयं प्रयोग न करें। शंख जो है, अगर मोती शंख है या वामावर्ती शंख है तो वो बजेगा नहीं। उसको आप केवल पूजा स्थान पे रखें, नियमित रूप से उसे धोते रहें, साफ करते रहें। रोज पूजा के दौरान उसको धूप बत्ती दिखाते रहें। ऐसा करने से शंख के साथ जो शुक्र का तत्व है, जो बुध का तत्व है, वो मजबूत होगा और आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रिश्तों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बाधा आ सकती है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, संयम और शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न इंदिरा जी ने हमें लिखा है और इंदिरा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जून 1962, जन्म का समय सुबह के 8:55, जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। इंदिरा जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं चल रही है, हर समय चिंता और तनाव के हालात बने रहते हैं, तो मेरी मानसिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा? इंदिरा जी, आपकी कुंडली में जो आपकी मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए आपको किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में साइकोलॉजिकल बीमारियां होने की संभावना बनी हुई है। तो सबसे पहले किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। दूसरे नंबर पर एक पन्ना धारण कर लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार या इससे ज्यादा नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो मानसिक समस्याओं से, मेंटल डिप्रेशन से आपको जल्दी छुटकारा मिल सकेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखेंगे कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानी है, तकलीफ है, जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं, इसी ईमेल आईडी पर अपने सवाल लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न अमरनाथ जी ने हमें लिखा है और अमरनाथ जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1973। जन्म का समय रात के 8 बजे। जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। अमरनाथ जी कह रहे हैं कि मैं काफी समय से एक नौकरी में काम कर रहा हूं, लेकिन अभी मेरी नौकरी जाने की नौबत आ गई है, तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर नौकरी छूट जाती है तो आगे मैं क्या करूं और मेरा करियर कैसा रहेगा। अमरनाथ जी, आपकी कुंडली में इस समय नौकरी बदलने के योग चल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दिसंबर 2026 के पहले पहले आप नौकरी बदल के किसी और नौकरी में चले जाएं। अगर इस समय नौकरी में परिवर्तन करते हैं या नौकरी बदल करके कहीं और जाते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, भविष्य में करियर में दिक्कतें नहीं होंगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, अगर इसका पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
0: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि कहते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्या ये सही है और इसके पीछे वजह क्या है?
1: जी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई महिला शंख बजाती है तो उसका पाप पुण्य से या गलत सही से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये कहा गया है कि गर्भावस्था में अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में हो या किसी महिला का ऋतु काल चल रहा हो, उसके पीरियड्स का समय चल रहा हो, तो उस समय शंख बजाने से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। तो गर्भावस्था और ऋतु काल को छोड़ करके कभी भी महिलाएं नियम के अनुसार शंख बजा सकती हैं।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिनका जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट चपेट से बचाव करें, करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस साल आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि जो काम लंबे समय तक करना हो, जो स्थायी प्रकृति के काम हो, क्या वो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए? देखिए, सोमवार के दिन के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, तो सोमवार के दिन गति यानी स्पीड और जल्दी समाप्त होने वाले काम करने चाहिए। सोमवार के दिन वाहन खरीदना, यात्रा करना, रंगाई पोताई करने का काम अच्छा होता है। इस दिन नौकरी की शुरुआत और घर के निर्माण जैसे लंबे समय तक चलने वाले या लंबे समय तक फायदा देने वाले काम नहीं करने चाहिए।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर यानी कि अच्छा पहर कौन सा है।
1: शुभ पहर का समय है शाम को।

0: को बताते हैं कि अगर आपकी संतान भटक रही हो, गलत संगति में हो, नशे की तरफ जा रही हो, गलत आदतें हो, आपका बेटा या बेटी अगर भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। इसके बाद हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का जप करेंगे 108 बार या 27 बार। हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगा करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Hey, it's Billy Bush. Tune in to my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना क्यों विशेष होती है? रविवार के दिन की पूजा से स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और रविवार के दिन कौन से काम करके सूर्य की कृपा पाई जा सकती है? क्या है रविवार और सूर्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत।

0: connection.
1: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
2: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: और चलिए अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। सावन के पावन महीने में आस्था की लहर देखने लगी है, जिधर देखो उधर कंधों पर कांवड़ लिए हुए शिव भक्त नजर आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य पर निकल रहे हैं। तो बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचने की राह पर है। चलिए आपको हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाते हैं।

0: रंग बिरंगे कावड़, कोई छोटा तो कोई बड़ा, लड़ियों और फूलों से अनमोल सजावट। भोले के रंग में रंग जाने की बेफिक्री है, बिंदासपन है और भक्ति की अपार श्रद्धा। तभी तो हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य पर निकल रहे हैं कावड़िये। सावन का आज तीसरा दिन है। प्रशासन के मुताबिक अभी तक 10 लाख से ज्यादा कावड़िये गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। अलग अलग रंग और अलग अलग ढंग से हाथों से बनाई कावड़ लेकर निकले लोगों का जोश देखते ही बन रहा है।
1: हमें भिवानी के लोगों की खास आदत होती है जो कि हम हाथों से कावड़ बनाते हैं और बहुत सुंदर सजाते हैं। हम ये कावड़ हरिद्वार से चलकर पैदल जाएगी, एक कंधे की कावड़ है और भिवानी जाके प्रस्थान करें, अपने मंदिर के शिवालय में चढ़ा दें। मन में कामना लेके जा रहे हैं, बोले की इच्छा है, जो करेंगे अच्छा करेंगे सब कुछ।
2: कावड़ लेके जा रहे हैं और कावड़ बनाएंगे, क्या है किसी के मन में, क्या है आप कावड़ लेके जा रहे हैं?
1: मन में तो बोले बोले की मर्जी है, बोले बोले खुला हुआ तो कावड़ लिया हुआ। हाँ,
3: ये हरिद्वार से रेवाड़ी
2: इतना लंबा सफर है, कोई परेशानी की?
3: ये 300 किलोमीटर का सफर है।
2: कोई परेशानी?
3: कोई परेशानी नहीं।
2: कहते जाएंगे पैदल भगवान से?
3: पैदल पैदल
2: कावड़ लेके जा रहे हो?
1: हाँ बोले।
2: कोई इच्छा करी है भगवान कब से?
1: इच्छा बोले मांग रखी, पूरी होगी जरूर, होगी पूरी।
2: कितनी दूर लेके जाओगे?
1: 350 किलोमीटर बोले।
2: कोई परेशानी नहीं?
1: कोई परेशानी नहीं।
0: जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने इस कावड़ उत्सव के लिए खास तैयारी कर रखी है। कावड़ मेला और घाटों और हाईवे पर ड्रोन के जरिए और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से लगातार नजर रखी जा रही है। कावड़ियों के लिए इंतजामों और सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। यही नहीं, प्रशासन कावड़ियों से सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है।
4: हरिद्वार में विभिन्न राज्यों से, जिलों से कांवड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं। जो हमारी कांवड़ पटरी है वो या हाईवे हो, वहाँ पर लगातार अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो राज्य सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस हैं कि कांवड़ श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं दी जाएं, भले वो स्वास्थ्य की हो, पीने का पानी हो, शौचालय हो, और कोई भी समस्या अगर उनकी है तो उसको हम लोग उसको निस्तारण करें। 141 सेक्टर्स में पूरे मेला क्षेत्र को डिवाइड किया गया है और उस क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमण करके समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। अभी तक करीबन 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु ऑलरेडी हमारे यहाँ से कांवड़ श्रद्धालु जल लेकर जा चुके हैं।
0: हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके मुताबिक आवश्यकता के अनुसार गंगा जल ले जाना, डीजे की आवाज कम रखना, नशा न करना जैसे एहतियात शामिल है।
5: और सावन के महीने में भगवान शंकर का वास हरिद्वार में माना गया है। आप देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हर जगह से हमारे भगवान शंकर के गण हरिद्वार में आ रहे हैं। यहाँ से जल लेके अपने अपने मंदिरों में जाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। और मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, कृपया 10-10, 12-12 मटके ना लेके जाए। जान है तो जान है, और मैं चाहूंगा आपकी यात्रा नशा मुक्त हो। और ये जो डीजे बड़े बड़े आ रहे हैं, जब ये डीजे बजता है हमारे पूरे मकान हिल जाते हैं। कृपया थोड़ा सा साउंड कम करें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, और भगवान शंकर का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे।
0: पंचांग के मुताबिक फिलहाल पंचक लग गया है, जिसके चलते कांवड़ियों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन फिर भी कांवड़ियों का आना और जाना जारी है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे।
6: जितनी शक्ति उतनी भक्ति, और शिव जैसा चाहते हैं भक्त अपनी श्रद्धा उसी अनुसार प्रकट भी करते हैं। शायद इसलिए अलग अलग तरह से अपनी आस्था के लिए लोग अलग अलग संकल्प लेते हैं और उसी के अनुसार कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं, और भोलेनाथ भी उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कांवड़ यात्रा के रंग।
7: सावन महीने के आरंभ होते ही हर तरफ भगवा रंग की लहर हर ओर दिखाई देने लगी है। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर तरफ भगवाधारी कावड़ियों का झुंड दिखाई देने लगा है। हर कोई कावड़ रूपी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महादेव का जलाभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की है। यहाँ पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। यहाँ से कावड़ियों का हुजूम निकल रहा है देवघर के लिए, जहाँ वो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचकर उनका जलाभिषेक करेंगे।
8: सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होते ही हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। चाहे शिवालय हो, सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, हर तरफ भगवाधारी शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर है। यहाँ से तमाम कांवरिये बाबा देवघर की तरफ रवाना हो रहे हैं, बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने के लिए रवाना हो रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा माहौल भक्तिमय है स्टेशन पर।
7: बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई कांवड़ यात्रा के लिए निकल पड़ा है। कामना यही है भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से ही भोले भंडारी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं।
9: बनारस में जल डालने हैं बाबा जी को, और उसके बाद जो है यहाँ से जाएंगे बाबा धाम सुल्तानगंज, वहाँ से जल भर के पैदल यात्रा करेंगे, उसके बाद जाएंगे देवघर बाबा धाम, वहाँ जल डालेंगे बाबा जी को।
7: इन लोगों की यात्रा की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक से हुई, जो बाबा बैद्यनाथ के अभिषेक के साथ समाप्त होगी। लेकिन बिहार के समस्तीपुर से भी युवाओं की एक टोली निकली है, वो भी स्केटिंग करते हुए। इन युवाओं का लक्ष्य देवघर में बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने का है। 30 जुलाई से शुरू हुई इनकी यात्रा उम्मीद के मुताबिक 6 अगस्त को समाप्त होगी। गेरुआ रंग के कपड़े, पीठ पर तिरंगा और भोले भंडारी का झंडा। स्केटिंग करते हुए ये टोला बाबा बैद्यनाथ के नगर की ओर बढ़ चला है। हाईवे पर स्केटिंग और जुबान पर भोले का जयकारा। जिस रास्ते से ये टोली निकल रही है, सबकी निगाह उत्सुकतावश उधर चली जा रही है। इस टोली के साथ कुछ युवा बाइक पर सामान और खाने पीने की वस्तुएं लेकर भी चल रहे हैं।
10: समस्तीपुर ताजपुर से यात्रा प्रारंभ हुआ 30 तारीख से हुआ। आज हम लोग यहाँ बेगूसराय, मात्र हम 2 दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है। तीसरा दिन जल उठाएंगे और दूसरे 3 दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे।
7: करीब 420 किलोमीटर की यह यात्रा देवघर में महादेव की पूजा अर्चना के साथ संपन्न होगी। अब इस कावड़ दल से मिलिए। इस दल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 150 से ज्यादा कावड़िये हैं और सभी एक ही गांव के निवासी हैं और पूरे रास्ते एक परिवार की तरह यात्रा कर रहे हैं। यह लोग 22 जुलाई को उत्तराखंड के गौमुख से गंगा जल लेकर चले हैं और इनकी यात्रा गांव जाकर पूरी होगी। उनकी यह यात्रा 800 किलोमीटर से अधिक की होने वाली है, जिसे पूरा करने में अभी और 10 दिन लगने हैं। ये जत्था हर रोज करीब 50 से 60 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है।
11: गंगोत्री से कामल लाए, जिला मुरैना कुंवरपुर गांव है मेरा, सिद्ध बाबा के मंदिर पर ले जा रहे हैं जल। बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए बढ़िया मस्ती में जा रहे हैं।
7: जैसी शक्ति वैसी भक्ति। इस दल में शामिल शिव भक्तों का कहना है कि ये पूरी तरह से बाबा की कृपा और बुलावे का परिणाम है। गांव के इतने लोगों ने संकल्प लिया और कारवा निकल पड़ा। जुबा पर भोले का नाम और श्रद्धा अपार, यही है इस पावन महीने में भक्ति का अनूठा परिणाम। चंदौली से उदय गुप्ता, बेगूसराय से सौरभ कुमार और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब बात करते हैं अयोध्या के श्रीराम मंदिर की। अब राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमराज में कैद भी कर रहे हैं।

0: सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रि कालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर के दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा, स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है, हर नकाशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना क्यों विशेष होती है? रविवार के दिन की पूजा से स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है और रविवार के दिन कौन से काम करके सूर्य की कृपा पाई जा सकती है? क्या है रविवार और सूर्य का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
5: 8:00 गुड न्यूज टुडे पर
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
13: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स,
14: Sage University, transforming your passion into profession.
15: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा, बॉक्सिंग में एक दिन में 7 गोल्ड मेडल, पैरा एथलेटिक्स शॉर्ट पुट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड मेडल, 39 मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर पहुंचा भारत। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से झूमा देश, पदक वीरों के घरों में जश्न का माहौल, हिसार से लेकर कोटा तक खुशियां ही खुशियां। सौ हफ्ते का देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, स्कूल कॉलेजेस और कई संस्थाओं के युवा प्रतिनिधि होंगे शामिल। फिट इंडिया मुहिम के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन, नशा मुक्त भारत बनाने और फिट रहने का दिया संदेश। केरला के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, सावधानी की अपील। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में 3 से 12 अगस्त तक स्कूल रहेंगे बंद, शिव भक्तों में दिख रहा है खासा उत्साह, शिवालय में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, अच्छी खबर के साथ। आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। भारत अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 39 पदक जीतकर मेडल टैली में चौथे नंबर पर आ गया है। आपको बता दें कल भारतीय खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था, जिनमें से मुक्केबाजी में 7 गोल्ड मेडल हाथ में आए, और इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 13 गोल्ड मेडल के साथ साथ 17 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए हैं। आपको बता दें इनमें जो खेल शामिल हैं वो हैं जूडो, पैरा एथलेटिक्स, इनमें भी भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पैरा टीम ने 20 साल के सूखे को अब खत्म कर दिया है। भारत की ओर से कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले एथलीट्स के घर पर भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उनके परिवारजन खुश नजर आ रहे हैं, खुशी की लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है। भिवानी की बेटी साक्षी चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स में 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीती और गोल्डन गर्ल बन गई हैं। साक्षी की जीत पर परिजन बेहद खुश हैं। बेटी ने देश का गौरव बढ़ाया है, किस तरह से देश गौरवान्वित किया है, किस तरह से परिजन खुश हैं, यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, भावुक हो जाने वाला ये पल है। देश की बेटी साक्षी चौधरी ने अब देश गौरवान्वित किया है, शानदार प्रदर्शन किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में और अब एक नया मुकाम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने हासिल कर लिया है। आपको बता दें 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है साक्षी ने। साक्षी की जीत पर परिजन किस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं उसकी ये तस्वीर, तो वहीं पूरे देश को भी इतनी ही खुशी है साक्षी चौधरी की जीत पर। भारत का परचम एक बार फिर से उन्होंने लहरा दिया है। अब उन्हें बेटी के घर आने का इंतजार है। परिजनों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दिन रहा। आपको बता दें रोहतक की प्रीति पवार ने भी शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 54 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता उन्होंने और देश का नाम रोशन किया है। इसी तरह बाकी खिलाड़ियों की भी बात करें तो जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और प्रिया सांगवान ने 60 किलोग्राम वर्ग में जीता है मेडल। इसके अलावा अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में, सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खिलाड़ियों के घर वाले बेहद खुश नजर आ रहे हैं जो कि जाहिर सी बात है।
10: बहुत बड़ी खुशी है जी, आज मेरे लिए इस तरह बड़ी खुशी का दिन और क्या होगा जी। बेटी गोल्ड मेडल ले आई जी देश खातर जी, इसे दिन खातर बाट देखने लग रही थे जी, तक बेटी एक दिन देश का नाम रोशन करे जी, झंडा फहरावे जी, अपना राष्ट्र का देश का झंडा सब तो ऊंचा हो जी, वो मन गर्व की बात है जी। उसका स्वागत तो जी सारा गांव में करेगा जी, हमने किए है जी जनता, खीर चूरमा खुआवांगे जी।
16: देखो जी बहुत ही ज्यादा खुशी है मेरे को, बेटी ने इंडिया का झंडा सबसे ऊपर ले गया, राष्ट्रीय गान वहाँ बजेगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बेटी ने, एक तरफा मैच जीता है 5-0 से और मेरे को उम्मीद है आगे कॉमनवेल्थ में एशियन गेम्स में भी और ओलंपिक में भी बेटी गोल्ड मेडल ले आएगी और देश का नाम रोशन करेगी।
17: बहुत अच्छा लगा, बहुत खूब बात है, मेहनत है और ऐसे ही खेलता है ये, जी लगा के जान लगा के बहुत खुश है, बहुत सभी परिवार भी गांव भी देश भी सबके लिए अच्छा है। वो तो जी चलता रहा है, होता रहा करे, बाकी इसका बॉक्सिंग में रुचि थी ज़्यादा, फिर अपने टेक राम कोच थे, उसने अपना इसको मेहनत कराई, इसने मेहनत करी तो राम बरसिया तो घाम लकड़िया तो कुछ होया, प्रैक्टिस दोनों टेम इसने करी, किसी भी कहीं भी इसको वो नहीं होया, कितने हार भी गया तो फिर जीतेगा, फिर बोला ईब नहीं तो फिर देखेंगे, उल्टा नहीं हटा अपने मेहनत पर लगे रहा, वो उसका सारी चीज बहुत पसंद है, घी खा जाओ, दूध खा जाओ, दही खा जाओ, चूरमा हो, हलवा हो, जो भी हो उसे वो खा लेता है।
18: तो उसके अंकल ने भी उसका बहुत साथ दिया, अफजल भाई सचिन तो बॉक्सिंग के सीख खूब प्लान है जी, पूरा गांव खुशी तो उसका स्वागत करेगा, सब भी उसने घर की चीज है जो वही पसंद है वही खिलाएंगे।
19: शुरू का मेरा पोता बहुत तेज, बहुत अच्छा, बहुत शुद्धा, सबके लिए सबने प्यारा लगा है, और पोते ने है ना, पोते ने जब मामू चे बना दिया सारी इंडिया बना दी, सारा गांव बना दिया, सारा गुआंड बना दिया, बुआ है भाई, मामे हैं, मामी हैं, सबका ऊंचा नाम कर दिया, बुलाओ जय हिंद, उसको चूरमा दही लस्सी आलू की सब्जी और उसको सारी चीज तैयार है, सब कोई खा लेता हो, बहुत उम्मीद लगाई सब ने, राम ने भी लगाई है, अब भाई बला हो भगवान का विशेष पोते विशेष बेटे सब कहो।
20: बहुत अच्छा लग रहा है और उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि भाई उसने देश के लिए मेडल जीता है, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम हुआ है और उसने बहुत मेहनत की थी, उसने बहुत संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। सबको बहुत खुशी हो रही है। मैं बस हमारे जो बाबा जी हैं उनका ही नाम रट रही थी कि बस जिता दें भाई को और उसको हिम्मत दें कि वो अपना बेस्ट दे। कुछ प्लान नहीं है, उसके आने के बाद ही सब कुछ डिसाइड करेंगे कहाँ ट्रिप पे जाएंगे या कहाँ घूम के आएंगे।
21: कहना तो यह जी बहुत खुशी हो रही है, बेटी ने देश के लिए मेडल जीता है और उसकी मेहनत थी जो इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। उसने 2017 से जो अब तक लगी रही है उसकी मेहनत का फल मिला आपको, तो देश के लिए गोल्ड मेडल जीता इसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एथलीट को, इतनी मेहनत करनी, हर रोज मर के जीना होता है तो उसमें कभी चक्कर आके भी पड़ सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने से। बॉक्सिंग है उसमें ऐसा पंच भी लग जाता है कभी, तो काफ़ी दिन को रेस्ट करना पड़ता है।
22: खुशी बहुत हो रही है, सब बहुत खुश हैं और उत्साह भी फील हो रहा है सब।
23: आगे फ्यूचर में और कर पाएगी वो और ओलंपिक के लिए अब नेक्स्ट उसका टारगेट ओलंपिक में गोल्ड लेना है। सब ईश्वर की कृपा है, जो सब क्या ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का प्रसाद समझ के हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसको। बिल्कुल ग्रैंड वेलकम होगा, पूरे शहरवासी है, पूरे हाडोजी वासी है, वो बच्चे का स्वागत करेंगे। वो फीवर था उसको और टेबलेट भी लिया था उसने बीच में, 8 दिन में 2 से 3 टेबलेट लिए उसने, 102 डिग्री बुखार था उसको।
24: आप देख ही सकते हैं कि हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, अजीब सफर बहुत ज्यादा मतलब नर्वसनेस के साथ हमारा निकला है, क्या ही बताऊं मैं। एंड अभी तक बहुत एंजाइटी हो रही थी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आज मुझे अपनी बहन पे बहुत गर्व है, 102 डिग्री बुखार में उसने कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीता है।
15: और चलिए आपको दिखाते हैं खबरें फटाफट जेएनटी एक्सप्रेस में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
15: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार, 1 दिन में 8 गोल्ड मेडल जीतकर मेडल टैली में 4th नंबर पर पहुंचा भारत। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 13 गोल्ड 17 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया 62 गोल्ड के साथ टॉप पर है, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे नंबर पर है। पुरुष मुक्केबाजी के 60 किलो वर्ग में भारत ने झटका गोल्ड, बॉक्सर सचिन सिवाच ने शानदार प्रदर्शन से जीता गोल्ड मेडल। बॉक्सर अंकुश पंघाल ने शानदार प्रदर्शन किया, 80 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, 75 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल ने अपने नाम किया। बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने 70 किलो वर्ग में जीता गोल्ड मेडल, इंग्लैंड की चेंटेले रीड को हराया। मुक्केबाज प्रिया घांघस ने महिलाओं के 60 किलो वर्ग में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल, कनाडा की मैरी बाथोल अल अहमदिया को हराकर गोल्ड अपने नाम किया। मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने भी लगाया गोल्डन पंच, साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग बॉक्सिंग में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल, कनाडा की सवाना डोल मांगो को मात दे। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड मेडल, नॉर्दर्न आयरलैंड की मिकाइला वॉल्स को हराया। भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता रजत पदक, पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि ने जीता सिल्वर मेडल। जूडो में उन्नति शर्मा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, महिला जूडो के 63 किलोग्राम वर्ग में उन्नति को ब्रॉन्ज मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप से भारत को 2 मेडल मिले, प्रवीण चित्रोवेल ने 16.58 मीटर के जंप अटेम्प्ट के साथ सिल्वर अपने नाम किया। पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए आई दोहरी खुशी, शॉटपुट F57 इवेंट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड मेडल, शुभम जोयाल ने शॉटपुट F57 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। बलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 5000 मीटर इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से झूमा पूरा देश, खिलाड़ियों के घरों में मनाया जा रहा है जश्न। हरियाणा के भिवानी में सचिन सिवाच के घर में जश्न का माहौल बना। बॉक्सिंग में सचिन ने 60 किलो वर्ग में जीता है गोल्ड। बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली साक्षी चौधरी के घर बधाई देने वालों का तांता लगा। बेटी की शानदार उपलब्धि पर माता पिता ने जताई खुशी। मुक्केबाज प्रिया घांगस ने गोल्ड मेडल जीतने पर भिवानी में उनके घर के बाहर उमड़े लोग, तो वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। राजस्थान के कोटा में भी जीत का जश्न मना। बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर अरुंधति चौधरी के परिवार में खुशी का माहौल। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय महीने सावन का आज पहला रविवार। देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा पाठ के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा के चलते 3 से 12 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। जिला प्रशासन का आदेश। मेरठ में भारी संख्या में कांवड़ियों की हो रही है आवाजाही। कांवड़ मार्गों पर यातायात डायवर्जन योजना लागू की गई। कांवड़ यात्रा 2026 सकुशल संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को परखा। रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया। उम्र पर भारी पड़ी आस्था। झारखंड के धनबाद में बुजुर्ग पुरुष और महिला भी कांवड़ यात्रा में हो रहे हैं शामिल। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कांवड़ की चर्चा, तो वहीं मैकलोरिन स्पोर्ट्स कार में सवार नजर आए भगवान शिव शंकर। लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को कांवड़ के रूप में किया गया इस्तेमाल। शिव भक्तों ने महज 8 लाख में स्पोर्ट्स कार को बना दिया कांवड़ का रूप। सावन के महीने में दिख रहे कांवड़ के अलग अलग रंग। सनातन एकता के लिए 51 लीटर जल लेकर 350 किलोमीटर की यात्रा पर निकले शिव भक्त। अर्धनारीश्वर कांवड़ भी आकर्षण का केंद्र। 100 किलो वजन के 9 फीट ऊंची है ये विशाल कांवड़। सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा धाम जा रहे हैं भक्त। श्रावण मेला 2026 के चलते बाराबंकी में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। कई मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद। प्रशासन की भीड़ नियंत्रण पर लगातार नजर। हरिद्वार में धूमधाम से चल रहा है कांवड़ मेला। हर की पैड़ी सहित पूरे हरिद्वार में शिवमय हुआ माहौल। सजी धजी कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं कांवड़िए। सावन के महीने में आकर्षण का केंद्र रहती हैं अलग अलग कांवड़। इसी कड़ी में फिटनेस और नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देती है बागपत पहुंची अनोखी जिम वाली कांवड़। कांवड़ में आगे विराजमान है भोलेनाथ और पीछे बना है पूरा जिम। इस कांवड़ को अपने कंधों से खींचकर करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं पुलिस जवान। 22 जुलाई को हरिद्वार से गंगा जल लेकर यात्रा पर निकले हैं अमित। दिल्ली के नजफगढ़ तक जाएगी ये जिम कांवड़। अलवर से देश की सबसे लंबी 2300 किलोमीटर की डाक कांवड़ हुई रवाना। गोमुख से जल लेकर सोमनाथ में किया जाएगा भगवान शंकर का जलाभिषेक। गोमुख से पवित्र गंगा जल लेकर चला मध्य प्रदेश के 150 से ज्यादा शिव भक्तों का विशाल जत्था। पदयात्रा करते हुए लौट रहे हैं कांवड़िए। मुरैना जिले के एक ही गांव के रहने वाले सभी कांवड़िए 22 जुलाई को गोमुख से गंगा जल लेकर पैदल पूरा कर रहे हैं 800 किलोमीटर का सफर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुआ बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार। भस्म आरती में शामिल हुए बड़ी तादाद में श्रद्धालु। सावन में श्रद्धालुओं के बीच बढ़ी चांदी के बेलपत्र और पूजा सामग्री की डिमांड। ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं सामग्री। सावन में चांदी और सोने के नए नए डिजाइन की पेश की जा रही है पूजा सामग्री। सावन का सोमवार आने से पहले बाजारों में रौनक। वुडन सिटी सहारनपुर में लकड़ी से जुड़े कारीगरों और कारोबारियों के आए अच्छे दिन। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। सहारनपुर की काष्ठ कला को नई तकनीक, आर्थिक मदद और ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। बनाए गए प्रोडक्ट की विदेश में भी मांग है। वाराणसी में जीआरपी आरपीएफ की टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। ट्रेन से एक दर्जन कछुओं को किया गया बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद कछुओं की अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। खेतों और गांवों में भरा पानी। गंगा किनारे बसे हुए करीब आधा दर्जन गांवों में कटान का खतरा भी बढ़ा। असम में बाढ़ के प्रभावित जिले शिवसागर पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा। पीड़ितों और राहत के काम में लगे वॉलंटियर्स से बात की मदद का भरोसा दिया। दिल्ली में तड़के 4:14 पर महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.9 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र दिल्ली के उत्तरी जिले में था। इसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। पीएम मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। 100 हफ्ते का देशव्यापी जनभागीदारी अभियान होगा शुरू। कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से ज्यादा जगहों से युवा शामिल होंगे। क्लब्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन, आध्यात्मिक संस्थाओं से प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। मौसम विभाग ने अल्लापुझा, कोटायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, वायनाड सहित केरला के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी। राजस्थान में भारतीय वायुसेना का हफ्ते भर चला एक्सरसाइज रोटर फ्लैप थर्ड संपन्न, तो वहीं हेलीकॉप्टर्स की युद्ध क्षमता का किया गया प्रदर्शन। लेखक और शायर डॉक्टर राही मासूम रजा की याद में माटी संस्था द्वारा मनाया जा रहा है शताब्दी सेलिब्रेशन। दिल्ली से हुई शुरुआत, कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली की तरह देश के 100 शहरों में आयोजित होगा शताब्दी सेलिब्रेशन। डॉक्टर राही मासूम रजा की शायरी और गीत सुनाए जाएंगे। पंजाब के कई शहरों में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस के साथ मीटिंग के बाद बनी सहमति। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जगह जगह लगे कूड़े के ढेर से मिलेगी निजात। मंत्री का भरोसा, आने वाले दिनों में कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाएंगी। गुरु पूर्णिमा उत्सव के मौके पर देश विदेश से आए लाखों साई भक्तों ने शिरडी के साईं बाबा के दरबार में चढ़ाया रिकॉर्ड चढ़ावा। महज 3 दिनों में भक्तों ने मंदिर को किया मालाबाल। 28 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित उत्सव में 3,00,000 से ज्यादा साई भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। कुल 7,81,00,000 रुपयों की गुरु दक्षिणा अर्पित की। दान पात्र से मिले 3,29,00,000 रुपए, 2,07,00,000 रुपए रहा ऑनलाइन दान। 1,50,00,000 के सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए गए। दर्शन और आरती पास के 87,00,000 रुपए, तो वहीं 5,65,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई। शिरडी साईं बाबा मंदिर को सोने के 2 बेशकीमती मुकुट के साथ नक्काशीदार हार भी चढ़ाया गया। इसमें सोने के बने 2 ओम अक्षर भी शामिल, तो वहीं तकरीबन 1,50,000 ग्राम सोना और 2 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई। इस साल साईं दरबार में गुरु पूर्णिमा पर पिछले साल से 1,50,000,000 से ज्यादा चढ़ावा मिला। पिछले साल गुरु पूर्णिमा उत्सव में चढ़ाया गया था 6,31,00,000 रुपयों का चढ़ावा। अंबाजी पहुंची संत रविदास यात्रा, 650वीं जयंती के मौके पर हुआ कलश पूजन आयोजित। संतों की मौजूदगी में कलश यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। भक्तिमय नजर आया पूरा वातावरण। कर्णवती अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर पर खत्म होगी काशी से शुरू हुई भव्य कलश यात्रा। दूर दूर से आए श्रद्धालु ले रहे हैं यात्रा में हिस्सा। पाली में रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास पहल, सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध। वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं विशेष राखी के लिफाफे। बहनें अपने राखी सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से भेज सकेंगी। मैसूरू को पीएम मोदी की सौगात मिली। श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। विवेकानंद पर आधारित एक विशेष फिल्म भी देखी। करीब 81,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है स्मारक। इसमें एक एम्फीथिएटर, क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी, ध्यान और योग हॉल और एक बुक स्टॉल शामिल। पीएम मोदी ने परिसर में पौधारोपण भी किया। श्री रामकृष्ण विद्याशाला स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारक परिसर में पहुंचने पर सबसे पहले वहां पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक पुरस्कार। अमित शाह ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। अजीत डोभाल को राष्ट्र की सुरक्षा में उनके अद्वितीय और साहसिक योगदान के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। अमित शाह बोले, देश की सुरक्षा मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका है। केरला कैडर के 1968 के बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं अजीत डोभाल। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए हैं। चेन्नई के राजा रथिनम स्टेडियम में आयोजित पुलिस मेडल समारोह सीएम जोसेफ विजय का स्वागत करने वाला स्नाइपर डॉग रॉकी ने जीता सबका मन। समारोह के दौरान मुंह में फूलों की टोकरी लेकर मंच पर सीएम का स्वागत करने के लिए पहुंचा स्निफर डॉग रॉकी। मुख्यमंत्री ने भी मुस्कुराते रॉकी को पुचकारा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी। सोना चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन पर सार्वजनिक होगा चालान का पूरा रिकॉर्ड। ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने वालों का चालान नहीं भरने वालों को बेनकाब करने के लिए अनूठी पहल की। लोगों में नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी को दिया जाएगा बढ़ावा। आम लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 202 रुपए घटी। कोलकाता में 209 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। कर्नाटक के हुबली में 3 दिन का जैकफ्रूट फेस्टिवल, कटहल से बने व्यंजनों का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। बाढ़ बारिश से प्रभावित राज्यों को गृह मंत्रालय से बड़ी राहत, तो वहीं एसडीआरएफ के तहत बाढ़ प्रभावित राज्यों को 2000 करोड़ से ज्यादा की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी। असम में भारी बाढ़ के बीच एक दूसरे का सहारा बने लोग, जोरहाट के क्वारी गांव में लोगों ने बचाई लगभग 2000 जिंदगियां। बागेश्वर में पिछले एक हफ्ते से जारी है बारिश, रखोली के पास सड़क में भरभराकर गिरते पहाड़ का मलबा कैमरे में कैद हुआ। बारिश के कारण 8 प्रमुख सड़कें हुई बंद, ग्रामीण इलाकों से टूटा संपर्क, आवागमन हुआ प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, कई सड़क मार्ग हुए प्रभावित, शिमला के रास्ते पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से स्थिति हुई गंभीर, जोजिला के मीना मार्ग श्रीनगर ले हाईवे पर फटा बादल, श्रीनगर ले नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हुआ बाधित। बचाव और सड़क साफ करने वाली टीमें हुई तैनात, मलबा हटाने और हाईवे को जल्द से जल्द बहाल करने के काम में जुटी जेसीबी की मशीनें। केरला के कुन्नूर में भारी बारिश से हालात हुआ गंभीर, रिहायशी इलाकों में कमर तक भरा पानी, निचले इलाके डूबे। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो का दीदार हुआ, परिंदों के लिए माकूल हुआ मौसम। गुजरात के नर्मदा में लगातार बारिश के बीच हरियाली से ढका पूरा इलाका, स्टैचू ऑफ यूनिटी का बेहद खूबसूरत दृश्य बना आकर्षण का केंद्र। सोशल मीडिया पर चर्चा में है सलमान खान और संजय दत्त का इमोशनल रीयूनियन। सलमान खान ने संजय दत्त के साथ शेयर की खास तस्वीरें और लिखा प्यारा सा नोट। एक बार फिर फैमिली एंटरटेनर फिल्म लेकर आ रहे हैं सूरज बड़जात्या। ये प्रेम मोल लिया फिल्म की शूटिंग हुई पूरी, अनुपम खेर ने साझा की तस्वीरें। फिल्म में लीड रोल में हैं आयुष्मान खुराना और शर्वरी, अनुपम खेर का भी है अहम रोल। 27 नवंबर 2024 को रिलीज होगी फिल्म। हॉरर फ्रेंचाइजी फिल्म रागिनी MMS 3 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। आयुष शर्मा, जुनैद खान और तमन्ना भाटिया स्टारर इस फिल्म में, अब एक्ट्रेस आरजे महवश की एंट्री। महवश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म रागिनी 3 का ऐलान करते हुए कुछ फोटोज शेयर की हैं। फिल्म को शशांक घोष कर रहे हैं डायरेक्ट। फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने दूसरे दिन पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा, पहले दिन तोड़ा धुरंधर और पठान का रिकॉर्ड। स्पाइडरमैन दुनिया भर में कर ली है 1500 करोड़ से ज्यादा की कमाई, वर्ल्ड वाइड खूब पसंद की जा रही है फिल्म। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने कसरत करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के लिए शेयर किया। वीडियो में मृणाल एक ओवरहेड पुलअप बार को पकड़ते हुए कर रही हैं कसरत। मृणाल ठाकुर के वीडियो में आया मजेदार मूड, जूम करने पर पता चलता है कि मृणाल एक गद्देदार बॉक्स पर खड़ी हैं और झूलते हुए मुस्कुराते हुए उसका सहारा ले रही हैं। स्पेन ने अपने देश में समंदर के रास्ते घुसपैठ रोकने के लिए उठाए बड़े कदम। मोरक्को के साथ लगती हुई सीमा पर सियूटा में 500 मीटर लंबा तैरता हुआ बैरियर लगाया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना क्यों विशेष होती है? रविवार के दिन की पूजा से स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है और रविवार के दिन कौन से काम करके सूर्य की कृपा पाई जा सकती है? क्या है रविवार और सूर्य का कनेक्शन? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
3: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
25: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
26: अविश्वास में विश्वास बसता है
27: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
28: गुड न्यूज टुडे।
29: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
27: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा, बॉक्सिंग में एक दिन में 7 गोल्ड मेडल। पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड मेडल, 39 मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर भारत। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन में झूमा देश, पदकवीरों के घरों में जश्न का माहौल, हिसार से लेकर कोटा तक खुशियां ही खुशियां। सौ हफ्तों का देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, स्कूल कॉलेज और कई संस्थाओं के युवा और प्रतिनिधि होंगे शामिल।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं जब उनके सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी है। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलेकणी, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का जायंट माना जाता है, आईटी को लेकर देश के सामने जब कोई बड़ी चुनौती होती है या कोई लक्ष्य होता है तो सबको याद यही शख्स आते हैं। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन में जब एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का विचार आया तो उन्हें शिद्दत से ये याद आए, यानी कि नंदन नीलेकणी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि नीलेकणी ही वो शख्स हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं।

जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे

0: आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदा नीले कड़ी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर बनी हाई पावर टास्क फोर्स की सदारत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें मनमोहन सिंह ने साल 2009 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का चेयरमैन बना दिया था, ताकि आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन नीले कड़ी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन नीले कड़ी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज 100% सच साबित हो रही है।
2: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address, and it has online authentication capabilities so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs the ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion, because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
1: काबिल-ए-गौर है कि नंदन नीले कड़ी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
3: आधार KYC was sufficient to open a bank account or to get a mobile connection. And in 2014, soon after Prime Minister Modi came to power, on August 28, 2014, he launched the Jan Dhan Yojana program, which is the world's largest financial inclusion program. And more than 400 million bank accounts were opened for people, and they were able to do that very quickly because with Aadhaar eKYC, you could do an online opening of a customer account.
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस DPI की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन नीले कड़ी हैं। UPI ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। UPI कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन नीले कड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजेक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन नीले कड़ी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन नीले कड़ी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए UPI के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन होता है। UPI के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है।

0: वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो यूपीआई के जरिए 314 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ।
1: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 16 had all these momentous events that all led to this massive transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next generation payment system on April 11, 2016. And as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened. And today, this is the world's largest payment system.
0: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन निलेकणी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में नीलेकणी की अहम भूमिका रही है। नीलेकणी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैगअप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन निलेकणी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन निलेकणी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी पीएम मोदी और नंदन निलेकणी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन निलेकणी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
1: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman of the Unique Identification Authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses. I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology and how it can be used. And we had a very good 90-minute session. We talked about various kinds of things, including technology. And he was very, very appreciative of what is possible. And he showed that in his state. He showed that in every aspect of using technology.
0: पहली मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी ने नंदन निलेकणी की अतुल्य तकनीकी दक्षता को परख लिया था। उधर नंदन निलेकणी को भी पहली मुलाकात में ही इल्हाम हो गया कि इस नेता में तकनीक आधारित विकास का व्यापक विजन है। यही वजह है कि पहली मुलाकात के दौरान ही टेक्नोलॉजिकल विजन और टेक्निकल स्किल के बीच का अटूट रिश्ता कायम हो गया, जो 15 साल बाद उम्मीदों और संभावनाओं के चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज देश के विजनरी युवाओं को एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की सख्त दरकार है। नंदन निलेकणी से पीएम मोदी के साथ ही देश के लाखों युवाओं को भी उम्मीदें हैं कि वो आधार और UPI जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान पेश करेंगे।
2: शुरू से ही बहुत जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में निलेकणी ने IIT में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर आईआईटी में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर नीलेकणी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में आईआईटी क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे आईआईटी क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
0: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन नीलेकणी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव नीलेकणी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन नीलेकणी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। आईआईटी क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर आईआईटी मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन नीलेकणी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
3: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइंड एनी आईआईटी एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन आईआईटी चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन आईआईटी बॉम्बे। सो दैट्स हाउ एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर आईआईटी बॉम्बे।
0: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन नीलेकणी ने किस मन स्थिति में की ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलेकणी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन नीलेकणी को कर्नाटक के ही धारवाड़ में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन नीलेकणी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन नीलेकणी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
3: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12, and then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties, and he had to keep finding new jobs time on, and therefore he said for the stability of my education. He put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC. And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
0: धारवाड़ में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन नीलेकणी ने आईआईटी में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड़ जैसे छोटे शहर में ना तो आईआईटी की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
3: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
0: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन नीलेकणी आईआईटी में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे, और जब चाह प्रबल होती है तो राह वहाँ फैलाकर स्वागत करती है। दरअसल तब आईआईटी बॉम्बे से नंदन नीलेकणी के कुछ कजन्स बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन की आईआईटी में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
3: फॉर्चुनेटली फॉर मी, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT, and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they sent me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends, and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
0: IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद नंदन इलेकणी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पुणे स्थित पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन इलेकणी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहाँ उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन इलेकणी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन इलेकणी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इन्फोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन इलेकणी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इन्फोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन नीलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैस्डेक पर लिस्ट होने वाली इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैस्डेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन नीलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन नीलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं हैं, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्लेज के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस IIT बॉम्बे के नंदन नीलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन नीलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन नीलेकणी सिर्फ IT जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
2: आज आपने नंदन नीलेकणी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना और समझा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
10: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स,
11: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा, बॉक्सिंग में एक दिन में 7 गोल्ड, पैरा एथलेटिक्स शॉर्ट पुट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड, 39 मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर भारत। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से झूमा देश, पदक वीरों के घरों में जश्न, एसआर से लेकर कोटा तक खुशियां ही खुशियां। सौ हफ्ते का देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, स्कूल कॉलेज कई संस्थाओं के युवा और प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। फिट इंडिया मुहिम के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, नशा मुक्त भारत बनाने और फिट रहने का संदेश दिया गया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा उपासना करें तो सूर्य देव से विशेष वरदान आपको मिल सकते हैं। क्या तरीका है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों के दैनिक राशि फल के बारे में और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, वैसे तो सूर्य भगवान की उपासना रोज की जाती है, नियमित की जाती है, लेकिन रविवार को सूर्य देव की उपासना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है? देखिए, रविवार का संबंध सूर्य देव से माना जाता है और रविवार के दिन जब आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो वो उपासना विशेष फलदायी होती है। अगर आप सप्ताह में किसी भी दिन सूर्य देव की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार के दिन अगर आप सूर्य देव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। रविवार को सूर्य देव के विशेष उपाय करना लाभकारी होता है, विशेष फायदा होता है अगर रविवार को सूर्य देव की उपासना की जाए। देखिए, सूर्य का सबसे ज्यादा और सबसे गहरा संबंध होता है आपके आरोग्य से, आपके स्वास्थ्य से। रविवार को स्वास्थ्य का, आरोग्य का वरदान कैसे मिलेगा? रविवार को प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी सी रोली मिलाइए और इसके बाद सूर्य देव का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिएगा और लोटे के किनारे जो जरा सी रोली लगी रह गई है, इस रोली का स्वयं को तिलक लगाइएगा। अगर हर रविवार को प्रातः काल आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, आप आरोग्यवान होंगे। रविवार के अन्य उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि,
करियर की समस्याएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, काफी व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ हो, खराब हो, तो हृदय रोग की संभावना जीवन में बनती है। तो हृदय रोग से राहत कैसे मिले? रविवार को प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करें, जल में लाल पुष्प डालिए, लाल फूल डालिए। अगर जवा पुष्प हो, गुड़हल का फूल हो तो ज्यादा उत्तम होगा। और इसके बाद सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाइए, लाल चंदन की माला अर्पित करिए। इसके बाद उसी माला से ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। पूजा के बाद उस माला को गले में धारण करिए और उस माला को हमेशा गले में पहने रखिए। हर रविवार को माला गले से निकाल कर उस पर मंत्र का जप करके दोबारा उस माला को गले में पहन लीजिएगा। हृदय से संबंधित समस्याओं में सुधार होगा। अगर आपके जीवन में शत्रु ज्यादा हैं, विरोधी ज्यादा हैं, जीवन में बाधाएं ज्यादा पैदा करते हैं, तो शत्रुओं और विरोधियों पर विजय कैसे मिलेगी? रविवार के दिन का उपवास रखिएगा और नमक मत खाइएगा। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और विजय प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे, जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। रविवार के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, कारोबार में सुधार होगा, नए काम का अवसर मिलेगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें,
भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर सूर्य देव की कृपा आपको चाहिए तो रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन कौन कौन से काम करना कल्याणकारी होगा, संभव हो तो रविवार को भगवान सूर्य को जवा पुष्प यानी गुड़हल का फूल या आक के फूल अर्पित करें। वैसे भी अर्पित कर सकते हैं और जल में डाल कर भी अर्पित कर सकते हैं। रविवार को जैसी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से गुड़ का, गेहूं का, गेहूं के आटे का और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार को उपवास रखें, नमक का सेवन ना करें या रविवार के दिन सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको माणिक्य धारण करने की सलाह दी गई है जो कि सूर्य का रत्न है तो तांबे या सोने की अंगूठी में रविवार को दोपहर के समय में माणिक्य धारण करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रिश्तों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बाधा आ सकती है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, संयम और शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, फिर आपको बता दूं कि अगर आप सूर्य देव की नियमित उपासना नहीं कर पाते तो रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का या सूर्याष्टकम का पाठ करें। अगर भोजन ग्रहण करते हैं रविवार को तो प्याज लहसुन का सेवन ना करें
और अगर उपवास रखते हैं तो नमक नहीं खाएंगे, सूर्यास्त के पहले कोई मीठी चीज खा सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं सूर्य देव को रोज जल चढ़ाना चाहती हूं, लेकिन मेरे घर से सूर्य के दर्शन नहीं होते, सामने बिल्डिंग है नहीं दिखाई देते। तो अगर आपको सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते और आप सूर्य देव की प्रातः काल पूजा करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सूर्य देव के 21 नाम शास्त्रों में दिए गए हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो भी आपको सूर्य देव के 21 नाम मिलेंगे। तो रोज सुबह स्नान करके पूर्व की तरफ चेहरा करके अगर आप सूर्य देव के 21 नाम पढ़ेंगे तो आपके सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर जीवन के किसी क्षेत्र में विजय चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। बड़ी से बड़ी परीक्षा, मुकदमों, झंझट में आपको विजय मिलेगी। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right fields, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है। बताओ, विभीषण राक्षस वंश में जन्म लेता है, वो भी राम जी का प्यारा बन जाता है। हम ये कहना चाह रहे, बुरा न मानना, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बुरा न मानना, समझदार हो, और मान भी जाओ बुरा तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आए। सुनो भैया, जब लंका में रहने वाले विभीषण जो राक्षस कुल में जन्म लेता उसको राम जी मिल सकते हैं, तो हम लोग भी यदि भगवान का भजन करें, भारत में रहते हैं तो हम लोगों को तो भारत के राम जल्दी ही मिल जाएंगे, हैं? हम लोगों को तो मिल ही जाएंगे, वो तो भारत में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन हमने कल, शायद कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, वो लोग क्योंकि ये समझते यही तो है, अभी चले जाएंगे और तब तक ट्रेन निकल ही जाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और इसी पे बोले, कह दो बोलो, अभाव में जितना भजन हो सकता प्रभाव में उतना भजन नहीं होता है। हाँ, अभाव में बहुत भजन होता है, इसलिए तुम देखना गरीब आदमी ज्यादा भक्त होता अमीरों के मुकाबले। अमीर की भक्ति फोटू वाली होती है, गरीब की भक्ति हृदय वाली होती है। दोनों की भक्ति में अंतर है, ऐसे समझे। यदि आज के मॉडर्न जमाने से समझाएं तो अमीर की भक्ति रील वाली होती है, गरीब की भक्ति रियल वाली होती है। हाँ, लेकिन सब नहीं, कुछ अमीर भी ठीक ठाक होते हैं, वो भी भक्त होते हैं। जरूरी नहीं कहें अब भाई अमीर हो गए तो कोई पाप थोड़ी है, तो वो भी कुछ भक्त होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी विभीषण को कहते, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें विभीषण से कह रहे, हम राम जी से मिलवाएंगे। अब हनुमान जी ने पूछा, जानकी माता कहाँ है? इतना सुनते ही विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात, क्यों रो रहे हो? विभीषण ने कहा, अशोक बाटका में माता जानकी जी बैठी। अच्छा बताओ, बाटका का नाम अशोक और माता जी शोक में, क्योंकि ये लंका है जहां नाम कुछ और हो काम कुछ और हो, समझ जाना लंका है। बोलो सीताराम, नाम तो अशोक बाटका है, माता सीता शोक में। अब विभीषण ने हालत बताई जरा हनुमान जी को,

0: हम माता जानकी जी को देखना चाहते, हमारे मन में दुख हो रहा, एक बार दर्शन करा दो फिर हम चले जाएंगे, राम जी को बताएंगे। विभीषण जी ने कहा कि डायरेक्ट जाना मुश्किल है पर उपाय है। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, युक्ति बताई, आप ऐसे जाओ पागलो। हनुमान जी को यदि विभीषण ना मिलते तो माता जानकी ना मिलती, और विभीषण को यदि हनुमान जी ना मिलते तो कभी उसे राम नहीं मिलते, उन्हें भी राम नहीं मिलते। सीधी सी बात महाराज जी, संगत का बड़ा प्रभाव है। एक संगति ने हनुमान जी की खोज पूरी कर दी कि लंका में भी माता जानकी यानी भक्ति मिल गई, और एक संगति ने विभीषण की जिंदगी बदल दी कि राम जी भी मिल गए और राजा भी बन गए। ये संगत का प्रभाव है।
1: बहुत से लोग हमें मिलते हैं अब हम ही को फंसते हैं, क्या बताएं। एक आदमी और हमें मिला, बोला पंडित जी, हमने कहा हाँ जी, बोले अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम हनुमान जी को जो है 5 किलो लड्डू घी के चढ़ाएंगे। तो हमने कहा देखो पहली बात तो ये कि हनुमान जी तुम्हारे घी के लड्डुओं के भूखे नहीं है, और दूसरी बात अपना काम बताओ। बोले काम ये है कि हमारी जमीन बिक जाए पर महंगी बिक जाए। हमका हनुमान जी को अगर जमीन ही बिकवानी होगी और महंगी बिकवानी होगी तुम्हारी क्यों बिकवाएंगे, हमारी नहीं बिकवाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती कि आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम ऐसा कर दो भगवान तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम दंड भरते आएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती, हनुमान जी की कृपा तो संबंध से होती है। इसको तो अनुबंध कहते हैं। ये तो बिजनेसमैनों में होता है, व्यापारियों में, कि तुम हमारा बिजनेस का सामान ले लो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, ये कर दो तो हम वो करेंगे। ये बिजनेसमैनों में होता, भक्त और भगवान में नहीं होता है। भक्त और भगवान तो स्वतंत्र होते हैं भैया। भक्त तो भगवान पर सर्वस्व लुटा देता है, और भगवान भी ऐसे हैं कि वो अपनों भक्त को जी भर करके दे देते हैं। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। और जो भक्त भगवान के भरोसे होता, ऐसे समझो मेला में एक 5 साल का बच्चा गया, एक 15 साल का, एक माताजी के दोनों बेटे, एक 15 साल 20 साल का था, एक 5 साल का। मेला बहुत भरा हुआ था पर माता जी की नजर बार बार 5 वर्ष वाले बच्चे पर जा रही थी, जो 5 वर्ष का बालक था उसी पर नजर जा रही थी। ये गुम ना जाए, गायब ना हो जाए, भग ना जाए, चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, बार बार हाथ पकड़कर 5 वर्ष के बच्चे को माता जी कभी गोद ले लें, कभी उंगली पकड़ लें, कभी सिर पर हाथ रख ले मैं। क्यों? क्योंकि 15-20 वर्ष का बच्चा तो सब अपने मन से करेगा, पर 5 वर्ष का बच्चा तो अपने मन से नहीं कर पाएगा, उसकी चिंता माँ को होती है। उसी प्रकार भैया तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम्हें स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा, और तुम ध्यानी बनोगे तो तुम्हारी परवाह भगवान को करनी पड़ेगी। कल हम लोग कमरे में बैठे बैठे परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की चर्चा कर रहे थे, श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, आहा कितने अद्भुत महात्मा में। उनकी चर्चा जब आप लोग कर रहे थे तो हमें उनकी कुछ को, भारत में अभी भी कुछ संत दर्शनीय है, बाकी तो भैया प्रदर्शनीय है। बुरा ना मानना सांचौर वाले लोगों, तुम हमारी आत्मा हो, हम सच बात बोल रहे हैं। साधु हो जाना कठिन नहीं है, साधु बन जाना बहुत कठिन है। कपड़ा पहन लेना बहुत सरल है, बाल रखा लेना सरल है, माला पहन लेना सरल है, लेकिन भजन जीवन में उतारना और संत का आचरण जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभी भी अपने भारत में परम पूज्य जैसे पथमेड़ा वाले श्री गौरशी मनीषी परम पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज क्या अद्भुत विभूति है। कभी फोटो टीवी पर नहीं आती, कभी फोटो नहीं खिंचवाते, कभी स्पर्श नहीं करवाते। क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं। भारत में कुछ ही महात्मा हैं जो दर्शन करने योग्य हैं। आज ही आते समय हमारी बात बरसाने वाले परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी से हो रही थी। आहा, क्या विभूति है। श्री राधा रानी जी की कितनी अद्भुत भक्ति है। बात करते करते ही उनके नेत्र सजल हो जाते। 18-18 घंटे श्री राधा रानी जी का भजन करते, एक ही झोपड़ी में पड़े रहते, ब्रज छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते। भैया ऐसे संतों का भारत में अब होना बड़ा कठिन है। चाहे वो पथमेड़ा वाले महाराज जी हो, चाहे वो बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी हो, चाहे वह जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट वाले पूज्य गुरुदेव भगवान हो, चाहे वह मलूक पीठ वाले पूज्य महाराज जी जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजनदास जी महाराज जी हो, ऐसे संतों के दर्शन वर्तमान के समय में सतयुग स्वर्ण काल युग है। इस कलिकाल में ऐसे संतों के दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना है। बोलो जय सियाराम। तो हम आपको बता रहे थे कि भगवान को चिंता होती है, तो मामा जी का एक बाकिया है। जिन संत के बारे में हम बता रहे उनका शरीर तो नहीं है पर वो आज भी है, बिहार प्रांत के बक्सर जिले में पांडे पट्टी नामक गांव में आपका जन्म हुआ था। श्रीमन नारायण चतुर्वेदी जी के यहां, आहा, बड़े अद्भुत महात्मा। गुरुजी ने इनका नाम श्री नारायण दास भक्तमाली जी रखा। होमगार्ड की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ दी और गीतों को संगीतों को गा गा कर मंदिरों में जाकर जाकर के भगवान के भजन सुनाने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, भक्तमाल जी की कथा पढ़ने के लिए वृंदावन आना था, तो यह पटना रेलवे स्टेशन पर गए। तो टिकट के लिए रुपया तो थे नहीं, पर इन्होंने सोचा अब जो होगा श्री किशोरी जी कृपा करेंगी, अब वहीं देखा जाएगा। और पटना रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गए। अब टिकट है नहीं, कैसे जाएं? महात्मा आदमी कहीं टीसी पकड़ ले, बेइज्जती कर ले, जेल में डाल दे, अच्छा नहीं लगेगा। वहीं एक कोने में रेलवे स्टेशन पर बैठकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। श्री किशोरी जी को प्रणाम करने लगे और आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। भैया आपने अपने मुंह से खुद इस घटना को कई बार कहा। भक्तमाली जी कहते हैं कि हमारे सामने बैठे हुए एक सरदार जी उठे और झट से अपनी टिकट निकाल कर बोले, क्यों बाबा दिल्ली जाना है क्या? तो मामा जी बोले कि हमको दिल्ली नहीं जाना, हमको तो वृंदावन जाना है, पर आप क्यों पूछ रहे? तो सरदार जी बोले, महाराज हमें कोई जरूरी काम आ गया और हमारी टिकट दिल्ली तक की है, हमें जरूरी काम से वापस जाना है, हमारा फोन आ गया, अगर तुम्हें दिल्ली जाना हो तो ये टिकट हमारी ले लो, हमारी टिकट स्लीपर में है, बढ़िया रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में बैठ करके चले जाओ। मामा जी कहते हमारी आंखों से आंसू आ गए, धन्य है किशोरी जी की कृपा, कि अचानक सब व्यवस्था कर दी और उन्होंने टिकट ली और श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। भैया इस घटना से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो तुम्हें अपनी चिंता स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, भगवान को तुम्हें तुम्हारी सारी चिंता करनी पड़ेगी। आपकी चिंता भगवान की हो जाएगी, आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाएगी। और सांचौर के पागलों, मेरी आत्माओं, हम हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कहना चाह रहे हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, हमारे वीर बजरंग बली की हो जाएगी। हमारे हनुमान जी की हो जाएगी, व्यवस्था करने का काम हनुमान जी का हो, और हनुमान

करोगे? अगर तुम हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारी चिंता नहीं बचेगी, समस्त चिंताएं हमारे श्री वीर बजरंग बली की हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज सर्व प्रकार समर्थ हैं, सभी प्रकार से बलवान हैं, सभी प्रकार से निपुण हैं, बुद्धिमतां वरिष्ठम भी हैं, बुद्धि बल भी तेज है, लेकिन भैया हम हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं पर अपने स्वार्थ के लिए हनुमान जी की भक्ति करते अपितु हम लोगों को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। एक बात और देखो, झंझटों जितनी ज्यादा हो उतनी आफत। कई लोगों को लगता है हमारे पास पैसा नहीं है बड़ी आफत है, गरीबी बहुत है। बात ठीक है तुम्हारी, पर जितने झंझट आ जाएंगे तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो फिर टेंशन होगी। आज तुम्हें टेंशन है पैसा नहीं है और कल तुम्हें फिर नई टेंशन हो जाएगी कि पैसा है तो रखे कहां। एक नई टेंशन, इनकम टैक्स की टेंशन, ईडी की टेंशन, जीएसटी की टेंशन, कहां खर्च करें दुनिया को पता ना लग जाए, फिर और नई आफत खड़ी हो जाएगी। आज भी तुम झंझट में पड़े के है नहीं, कल फिर नए झंझट में पड़ोगे कि क्यों है इतना। बोलो सीताराम, ये झंझट है बहुत खतरनाक झंझट होते हैं, इसीलिए जो झंझट नहीं है भगवान को धन्यवाद दो। बोलो जय सियाराम। एक आचार्य जी कथा सुनाते थे, बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। एक महात्मा मरने लगे तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी कोई ज्ञान दो ज्ञान, तो गुरुजी बोले एक ही ज्ञान है बिल्ली मत पालना। एक ही ज्ञान है क्या नहीं पालना, बोलो बोलो, बिल्ली मत पालना। अब महात्मा मर गए, अब शिष्य बड़ा हैरान कि गुरुजी कह गए बिल्ली मत पालना, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। दूसरे महात्मा ने बताया, बोले हम तुम्हारे गुरुजी को जानते हैं, हमें पता है हकीकत। बोले क्या, बोले क्या है, जब तुम्हारे गुरुजी नए नए बाबा बने तो जिस कुटिया में रहते थे वहां चूहे बहुत रहते थे,

का राशि परिवर्तन देश दुनिया में उथल पुथल मचाएगा? क्या मंगल का राशि परिवर्तन कुछ राशि वालों की दुर्घटना का कारण बनेगा? क्या मंगल का राशि परिवर्तन किसी राशि के रुके हुए काम पूरे करवाएगा? मंगल के राशि परिवर्तन का क्या होगा प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: डाई हार्ड म्यूजिक फैन, क्वेलो कॉन्सर्ट्स ब्रिंग्स यू थाउजेंड्स ऑफ फुल लेंथ कॉन्सर्ट फिल्म्स एंड बिहाइंड द सीन्स म्यूजिक डॉक्यूमेंट्रीज। फ्रॉम टुडेज आइकॉन्स टू यस्टरडेज लेजेंड्स, वी हैव इट ऑल। क्वेलो कॉन्सर्ट्स बाय स्टिंगरे, नाउ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन प्लूटो टीवी। स्ट्रीम नाउ, पे नेवर।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
23: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
23: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
23: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
10: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
11: Sage University, transforming your passion into profession.
25: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा, बॉक्सिंग में एक दिन में 7 गोल्ड, पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड, 39 मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर भारत। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से झूमा और देश, पदक वीरों के घरों में जश्न, एहसास से लेकर कोटा तक खुशियां ही खुशियां। सौ हफ्ते का देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, स्कूल कॉलेज कई संस्थाओं के युवा और प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। फिट इंडिया मुहिम के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, नशा मुक्त भारत बनाने और फिट रहने का संदेश दिया गया। केरला के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, सावधानी की अपील। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में 3 से 12 अगस्त तक स्कूल रहेंगे बंद, शिव भक्तों में दिखा उत्साह, शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु।
23: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल्थ टेक्निक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं? वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: J-20 चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शिगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है, हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है, यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा, रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रडार काम करते हैं। एक रडार एल बैंड पर काम करता है, एक रडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहां विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता, जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है, जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही 5th जनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है, J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं, तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं, तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आमतौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है, वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
0: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: क्या मंगल का राशि परिवर्तन देश दुनिया में उथल पुथल मचाएगा? क्या मंगल का राशि परिवर्तन कुछ राशि वालों की दुर्घटना का कारण बनेगा? क्या मंगल का राशि परिवर्तन किसी राशि के रुके हुए काम पूरे करवाएगा? मंगल के राशि परिवर्तन का क्या होगा प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए TV सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Die-hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
1: जाती। 3, 2, 1, now।
2: 23 जुलाई को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर अटैक करने वाली स्वदेशी मिसाइल कुशा का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ये परीक्षण भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिजाइन और विकसित करने में सक्षम है। स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा, जिसमें इतनी ताकत है कि दुश्मन की क्रूज मिसाइल, दुश्मन की मिसाइल, उसके ड्रोन और फाइटर जेट्स को पकड़कर उन्हें नाकाम कर सकती है। और इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि एक लंबे दायरे में काम करती है, और ऐसे में चीन और पाकिस्तान से सटी सरहद पर यह काफी कारगर साबित हो सकती है। डीआरडीओ के इस परीक्षण से भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर प्रोग्राम है। अमेरिका, रूस, इजराइल और फ्रांस जैसे देश पहले से ही इस क्षमता को हासिल कर चुके हैं। अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। कुशा मिसाइल सिस्टम कैसे भारत के एयर डिफेंस को मजबूत बनाएगा, आइए आपको वो भी बताते हैं। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 लेयर्स में काम करती है, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। LRSAM सिस्टम में लगी M1 इंटरसेप्टर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी तक मध्यम खतरों को रोकेगी। M2 इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 250 किलोमीटर की रेंज में आने वाले लड़ाकू विमानों को निशाना बनाएगी। M3 इंटरसेप्टर मिसाइल 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के फाइटर प्लेन से लेकर मिसाइल तक को आसानी से तबाह कर देगी। कुशा मिसाइल की रफ्तार Mach 5.5 यानी करीब 6,700 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जो हाइपरसोनिक और स्टेल्थ खतरों को भी नाकाम करने में सक्षम है।
1: भारत एक बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सुरक्षा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, जिसके तहत दुश्मन का कोई भी विमान भारत के आसमान में घुस नहीं पाएगा। इस एयर डिफेंस एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा भारत में ही डेवलप की जा रही मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम दिया गया है कुशा। कुशा जो है वो एक ऐसा एडवांस सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें चार चार तरह की मिसाइलें होंगी। एक मिसाइल ऐसी होगी जो दुश्मन के हवाई जहाज को 350-400 किलोमीटर की दूरी पर शूट कर सकेगी। उसके बाद भी अगर दुश्मन का विमान और पास आ जाता है तो कुशा का जो सेकेंड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो दुश्मन के जहाज को 250 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर पाएगी। और इसी तरह से कुशा में इंटरसेप्टर मिसाइल 150 किलोमीटर और फिर 80 किलोमीटर वाला भी डेवलप किया जा रहा है। यानी कुशा एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली होगी।
2: LRSAM में एयरक्राफ्ट और एयरबोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो मिड एयर में वॉर करने वाली मिसाइलों को 350 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक देंगे और खतरनाक से खतरनाक मिसाइल भी भारत पर हमला नहीं कर सकेगी। कुशा मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी टारगेट और नेटवर्क सेंट्रिक आर्किटेक्चर को पूरी तरह से फॉलो करता है। इसमें स्वदेशी रडार लगाए गए हैं जो कि मल्टीपल टारगेट्स को फॉलो करते हैं और उन्हें डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इसे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ सीधे तौर पर जोड़ा गया है ताकि ये दुश्मन को पहचानने के साथ ही उस पर तुरंत हमला कर सके और इसमें किसी भी तरह की कोई देरी न हो। रूस के S-400 की तरह कुशा भी पूरी तरह से मोबाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य है। इसे ट्रकों पर लोड करके चीन या फिर पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर जरूरत के हिसाब से तुरंत तैनात किया जा सकता है। दरअसल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊंचे संकड़े पहाड़ी रास्तों पर भारी भरकम मिलिट्री ट्रक नहीं चल सकते। इसके लिए कुशा मिसाइल के रडार, कमांड पोस्ट और लॉन्चर्स को विशेष मल्टी एक्सल ऑल टेरेन ट्रकों पर माउंट किया गया है। ये भारी भरकम और घुमावदार पहाड़ी रास्तों और बेहद कम तापमान में भी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। पहाड़ों के पीछे छिपकर आ रहे विमान या ड्रोन को पकड़ने के लिए कुशा में 3D ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पारंपरिक पुराने रडार सिर्फ ये बता सकते थे कि दुश्मन किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, लेकिन कुशा का 3D रडार एक साथ 3 चीजें बताता है। पहला दूरी यानी लक्ष्य कितनी दूर है, दूसरा दिशा यानी लक्ष्य किस तरफ से आ रहा है, और तीसरा ऊंचाई यानी टारगेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। इससे मिसाइल को दुश्मन की सटीक लोकेशन मिलती है और वो सीधे निशाने पर जाकर लगती है। पुराने रडार की डिश एंटीना चारों तरफ घूमकर सिग्नल भेजती थी। अगर एंटीना घूमकर दूसरी तरफ चला गया तो पहली तरफ का दुश्मन रडार की नजर से कुछ सेकंड में ही ओझल हो जाता था। वहीं ऐसा रडार में एक बड़ा एंटीना नहीं होता, बल्कि इसमें हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स लगे होते हैं। 3D ISR रडार 360 डिग्री

0: आमतौर पे जितने रेडार होते हैं उसका एंटेना दाएं बाएं हिलता है या ऊपर नीचे हिलता है दुश्मन को ढूंढने के लिए, लेकिन आईसीआर रेडार में कुशा का जो रेडार होगा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रेडार जो होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एलईडी टाइप डिवाइस लगे होते हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। तो जो रेडार का एंटीना है वो स्थिर रहता है एक फ्लैट प्लेट जैसा, लेकिन उसमें जो ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं सैकड़ों हजारों, वो एलईडी बल्ब की तरह से ट्रांसमिट करते हैं बुझ जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं बुझ जाते हैं। तो इससे दुश्मन की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो कुशा के रिसीवर सिस्टम में आसानी से घुस नहीं सकती है।
1: मौजूदा समय में भारत लंबी दूरी की सुरक्षा के लिए रूस के S-400 और मध्यम दूरी के लिए इसराइल के बराक 8 सिस्टम पर निर्भर है। कुशा के आने से भारत विदेश पर निर्भरता से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा और खुद तकनीक का मालिक बनेगा। भारत ने चीन और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए एक अभेद मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड तैयार किया है। हवाई सुरक्षा का पहला लेयर और सबसे बाहरी परत की सुरक्षा का जिम्मा S-400 के पास है। इसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर है। भारत ने चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर S-400 मिसाइल स्क्वाडन तैनात किए हैं। इसके रडार और मिसाइलें 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें तबाह कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय S-400 ने 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पाकिस्तानी एवॉक्स विमान को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर अपनी ताकत साबित की। सीमा की सुरक्षा के लिए दूसरी लेयर पर तैनात है बराक 8 LRSAM। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के पास है। ये चीनी क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को मध्यम दूरी पर ही रोक देती है। तीसरी लेयर पर है आकाश और आकाश प्राइम मिसाइल, जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। आकाश सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी और मोबाइल सिस्टम है, जिसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी दुर्गम ऊंचाइयों पर चीनी सीमा पर भारी मात्रा में तैनात किया गया है। ये कम ऊंचाई पर पहाड़ों के पीछे छिपकर आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों को सटीकता से मार गिराता है। मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड के चौथे लेयर पर है समर और कम दूरी का सिस्टम, जिसकी रेंज है 10 से 12 किलोमीटर। भारतीय वायुसेना ने पुराने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे कि R-73 को मॉडिफाई करके SAMAR यानी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन सिस्टम बनाया है। ये सीमावर्ती एयरबेस और संवेदनशील ठिकानों को अचानक होने वाले हमलों से बचाता है। पांचवी परत पर है VS हॉर्ड्स और एंटी ड्रोन तकनीक की तैनाती, जो 6 किलोमीटर तक के खतरे को तबाह कर सकती है। VS हॉर्ड्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मान पोर्टेबल मिसाइल है, जिन्हें सैनिक चीन पाकिस्तान सीमा की ऊंची चोटियों पर तैनात रखते हैं ताकि अचानक आने वाले हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को तुरंत मार गिराया जा सके। वहीं स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले छोटे क्वाडकॉप्टर और ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए सीमा पर लेजर आधारित जैमिंग और सॉफ्ट और हार्ड किल सिस्टम सक्रिय है। भारत ने तीनों सेनाओं को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा रणक्षेत्र में होने वाला है। दरअसल ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और इसका फायदा ये भी होगा कि अगर दुश्मन की तरफ से मल्टीपल अटैक्स होते हैं तो पलक झपकते ही ये तय हो पाएगा कि

0: किस टारगेट को S-400 से ध्वस्त करना है, किस पर कुशा मिसाइल और किस पर आकाश गोदान।
1: 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स में नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस की घोषणा की गई। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने का सीधा मतलब ये है कि ये सिस्टम अब युद्ध या पर किसी भी सैन्य संकट के दौरान पूर्ण पैमाने पर मोर्चे पर तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रमाणित हो चुका है। DRDO द्वारा विकसित नेत्र सिस्टम को एयरब्रेन विमान पर फिट किया गया है। युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है, जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भाप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है, जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो एरिया देखता है, इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू, जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। और ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
1: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है, जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
0: एवॉक्स प्लेटफॉर्म शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाकर काम करता है। दरअसल एवॉक्स में इतनी ताकत है कि ये दुश्मन की हर जानकारी जुटा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, यहां तक कि जमीन पर भी ये तमाम जानकारियां इकट्ठा कर सकता है।
1: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है, जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कम्बाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आपकी डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है। वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसका जो क्लटर है उसको डीक्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
1: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है।
0: अगर लड़ाकू विमान भारतीय सेना की तलवार है तो नेत्र उसकी दिमाग और ताकत है। बिना नेत्र के लड़ाकू विमान सही तरीके से काम ही नहीं कर सकते, और खास तौर पर जब भारत जैसे मुल्क जो कि पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सरहद साझा करते हैं, जहां से हमेशा तनाव की स्थिति रहती है, ऐसे में नेत्र सबसे बड़ा हथियार साबित होता है।
1: चीन का इंटीग्रेट एयर डिफेंस सिस्टम काफी बड़ा है, हालांकि एक बड़ी दिक्कत चीन के लिए तिब्बत की ऊंची पहाड़ियां हैं। इस ऊंचाई पर G20 के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना संभव नहीं है। इसके अलावा तिब्बत के एयरबेस को भारतीय ब्रह्मोस आसानी से तबाह कर सकता है। ब्रह्मोस को रोकने की क्षमता चीन में नहीं है। तो कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं है कि कागजों पर चीन का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन भारत के पास पर्वतीय युद्ध और उच्च ऊंचाई वाले अभियानों को लेकर काफी ज्यादा अनुभव है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि चीनी G20 भारी पड़ेगा।
0: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
3: Good news today is really good. In this case, there are no news and no news. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और इसी बीच एक शानदार खबर सामने आ रही है। आपको बता दें भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने इतिहास रच दिया है। तन्वी शर्मा ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता है। ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी का कमाल देखने को मिला है। आपको बता दें तन्वी ने वियतनाम की थुई लिन गुयेन को सीधे मैच में हराया है। फाइनल मैच में उन्होंने हराया है गुयेन को और 21-16 से हराया है। ये बड़ी शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने 17 साल की है, वो उन्होंने इस उम्र में अपना पहला खिताब जीत लिया है। उनकी कामयाबी पर देश भर में खुशी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
9: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: क्या मंगल का राशि परिवर्तन देश दुनिया में उथल पुथल मचाएगा? क्या मंगल का राशि परिवर्तन कुछ राशि वालों की दुर्घटना का कारण बनेगा? क्या मंगल का राशि परिवर्तन किसी राशि के रुके हुए काम पूरे करवाएगा? मंगल के राशि परिवर्तन का क्या होगा प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
5: No ticket, no line, just showtime. Quello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Quello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
15: Sage University, transforming your passion into profession.
8: साल की भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास, जीता अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब, वियतनाम की थुई लिन गुएन को 21-16 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा, बॉक्सिंग में एक दिन में 7 गोल्ड, पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड, 39 मेडल के साथ चौथे नंबर पर भारत। देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का पीएम ने किया शुभारंभ, 28,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। फिट इंडिया मुहिम के तहत कई शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन, दिल्ली में साइक्लोथॉन तो कर्नाटका में मैराथन का आयोजन, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन का भी आयोजन किया गया। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है मानवीय सहायता, राहत शिविर कैंप्स में पहुंचाया जा रहा है मुफ्त खाना और जरूरी सामान। केरला के इदुकी में भारी बारिश के बाद खोले गए मलंकारा डैम के 5 गेट, राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
10: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन के ऊपर गहरा असर डालेगा। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है और मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। मंगल का तांत्रिक मंत्र है ये। अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए बेहतर नहीं है, तो इस मंत्र को रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की माला से पढ़िएगा। मंगल के राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर कुंडली में मंगल दोष है या मंगल की बुरी दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र को रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की माला से पढ़िए, मंगल की अशुभता आपको प्रभावित नहीं करेगी। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल का राशि परिवर्तन कैसा हो रहा है, इस परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मंगल अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान थे, 2 नंबर की राशि में मंगल मौजूद थे, अब मंगल 2 अगस्त को रात के समय में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि के मंगल को बहुत निगेटिव या बहुत पॉजिटिव नहीं मानते हैं। मंगल की ये स्थिति मध्यम मानी जाती है और मंगल की ये स्थिति थोड़ी बहुत कमजोरी की तरफ ही है और मंगल की ये कमजोर स्थिति 18 सितंबर तक बनी रहेगी। मिथुन का जो मंगल है, बुध की राशि का जो मंगल है, वो धीरे धीरे कमजोरी की तरफ बढ़ता है। इसीलिए इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। मंगल का मिथुन राशि में जाना कुल मिला जुला के बहुत अच्छा या बहुत बेहतर नहीं रहेगा। इसके परिणाम दुनिया भर में उथल पुथल मचा सकते हैं, ये संभावना बन सकती है। देखिए, मंगल निरंकुशता का स्वामी है। लोकतंत्र के अपोजिट जो काम हो, जो काम उपद्रव से हो, जो काम झगड़े लड़ाई और विवादों से हो, उसके पीछे ज्यादातर मंगल होता है। तो अब ये जानते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, मंगल के राशि परिवर्तन के समय मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं। मीन में वक्री शनि और मिथुन में मंगल, ये स्थिति बेहतर नहीं है। शनि मंगल का परस्पर केंद्र में होना निगेटिव है। ये समय दुनिया भर में अशांति फैला सकता है। अगला 1.5 महीना दुनिया भर में अशांति दे सकता है। भयंकर दुर्घटनाएं, वायुयान की दुर्घटनाएं और विस्फोट, एक्सप्लोजन, इस तरह की स्थिति बन सकती है। स्वतंत्र भारत की अपनी कुंडली में भी मिथुन का ही मंगल है, इसीलिए भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुए हैं, वो प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र और भी ज्यादा निगेटिव हो सकते हैं। राजनैतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है और बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, जो राजनीति में बड़े पद पर बैठे हैं, उनका पद जा सकता है, पद छूट सकता है। जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, जैसे मुंबई है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, कोलकाता है, इन जगहों पर उपद्रव ज्यादा हो सकता है और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इन जगहों पर समस्या हो सकती है। तो मिथुन राशि में मंगल का जाना बेवजह राजनीति गर्मा सकता है, लोगों का प्रदर्शन बढ़ सकता है, झगड़े लड़ाइयां बढ़ने की नौबत आ सकती है और सरकार को इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। लोगों को पद छोड़ना पड़ सकता है, ये नौबत आ सकती है। देखिए, लगभग ये मान करके चलिए कि अगले 1-1.5 महीने तक मंगल का ये प्रभाव देश दुनिया पर बना रहेगा। और मंगल का प्रभाव जरा तेज होता है, 2 अगस्त को मंगल बदलेगा, 2 अगस्त से ही आपको अपने जीवन में और देश दुनिया में परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। अब अलग अलग राशियों का हाल जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा दिखाई दे रहा है। इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बेहतर होगी, पैसे रुपए इनके पास आएंगे, करियर में इनके नई शुरुआत हो सकती है, करियर में नई उन्नति की संभावनाएं दिख रही हैं। बहुत दिनों से जिस काम का आप प्रयास कर रहे थे, काम आपके रुके हुए थे, वो रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके काम की बाधाएं इस समय समाप्त होंगी, काम आपका रास्ते पर आना शुरू हो जाएगा। ये जो 1.25 महीने का समय है, मेष राशि वालों को बता दूं कि अगर वो मेहनत करेंगे, अगर वो प्रयास करेंगे, तो इस समय करियर में और जीवन में उनको बड़ी सफलता मिल सकती है, जीवन में उन्नति कर सकते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। वृषभ राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर परिणाम नहीं दिखा रहा है। धन के लिए आपकी समस्या बढ़ सकती है,

0: पर हो सकता है, धन और पैसों की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। वृषभ राशि वाले इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, आंखों में, शरीर दर्द में, मसल्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दर्द की तकलीफ, शरीर में पेन की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। जो वृषभ राशि के लोग हैं इस समय उनको दुर्घटना से बचना चाहिए, घर में आराम से काम करें, सीढ़ी आराम से उतरें, गाड़ी आराम से चलाएं, वरना ऐसी चोट चपेट लग सकती है कि आपकी सर्जरी हो सकती है, आपकी शल्य चिकित्सा हो सकती है। और वृषभ राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको ज्यादा सावधानी रखनी है, इस समय कंप्लीटली आराम करिए, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में काम मत करिए। वृषभ राशि के लोग इस समय अपने बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, क्योंकि इस समय आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, आपके निर्णयों में गड़बड़ी हो सकती है। मिथुन राशि, मंगल का राशि प्रवेश मिथुन राशि में होने जा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव मिथुन राशि पर पड़ेगा। मिथुन वाले लोग अपनी आंखों का बहुत ध्यान दें, हड्डियों में चोट ना लगे, हड्डियों में बहुत दर्द ना हो, इस बात का ध्यान दें और आंखों और हड्डियों की समस्या से बचें। इस समय धन के खर्चे आपके एकदम से बढ़ सकते हैं और धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, पैसे रुपए के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इस समय परिवार में शांति बनाए रखना आपके लिए ठीक रहेगा, जीवन साथी के साथ विवादों से बचें। इस समय मुकदमेबाजी की और विवाद की नौबत आ सकती है, अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई मुकदमे और विवाद का मामला है, तो उसमें आप इस समय लापरवाही मत करिएगा। मिथुन वाले शांत रहें, पारिवारिक विवादों से, झगड़े लड़ाइयों से, मुकदमेबाजी से पूरी तरह बचने का प्रयास करें। कर्क राशि, मंगल के राशि परिवर्तन की वजह से आपके जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है, आपके जीवन साथी को चोट चपेट लग सकती है और उनको पेट से संबंधित दिक्कत इस समय परेशान कर सकती है। आपको खुद दुर्घटनाओं से बचना है, कोई छोटी मोटी सर्जरी ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे, कोई ऑपरेशन ना हो, इससे आपको बचाव करना है। आप अपने ऑफिस में शांति रखिएगा, उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, बेवजह का झगड़ा हो सकता है, आप क्रोध में आकर अपने लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, शांति बनाए रखें। इस समय बिना वजह वाद विवाद में मत पड़िएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी के शिकार होंगे। कर्ज के लेन देन में सावधानी रखिएगा और कोई भी मामला अगर क्रोध का आता है, विवाद का आता है, कर्ज का आता है, तो शांति से उसको हल करने का प्रयास करिएगा। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा मुश्किल समय चल रहा था, लेकिन सिंह वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन थोड़ी राहत लेकर के आया है। करियर का जो प्रेशर, जो तनाव, जो दबाव आपके ऊपर था, करियर का प्रेशर, तनाव और दबाव कम होगा। आपके करियर में कोई बड़ा लाभकारी बदलाव इस समय हो सकता है। करियर की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो इस समय मनचाहा स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बन रही है। जो आपकी पुरानी समस्याएं चली आ रही थी, आपके प्रयास करने पर इस समय पुरानी समस्याएं परिवार की, ऑफिस की, पैसे की आपकी हल होंगी और आपको इस समय आकस्मिक धन का लाभ भी मिलेगा। ये संभावना आपके लिए बन रही है। सिंह वाले शनि की ढैया से परेशान हैं और मंगल का ऐसे समय में मिथुन राशि में जाना उनको राहत देगा, उनकी मुश्किलों को कम करेगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन कुल मिला के बेहतर संकेत दे रहा है। आपको करियर में सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। अगर किसी नौकरी का प्रयास किया है, कोई इंटरव्यू दिया है, तो इस समय आपको परिणाम अपने लिए मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय प्रयास करके देखिए, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो इस समय कन्या वालों को संपत्ति का फायदा हो सकता है। जोश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। समय आपका ठीक है, लेकिन पारिवारिक मामलों में, रिश्तों में क्रोध करके स्थिति मत बिगाड़िएगा। शांति से रहिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तुला राशि, मंगल का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य में दिक्कतें दे सकता है। स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहिए। चोट चपेट का ध्यान दीजिए, पैरों में चोट आपको लग सकती है। करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। करियर में कोई बड़ा जोखिम, कोई बड़ा रिस्क इस समय मत लीजिएगा। आपकी प्रॉपर्टी के मामलों में, धन के मामलों में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसका ध्यान आपको बनाए रखना है। वैवाहिक जीवन में ईमानदार रहिए। ऐसा कोई काम मत करिए कि इस समय में वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ जाए। मुख्यतः तुला वाले करियर के मामले में बिल्कुल शांत रहें और निर्णय लेने में बहुत सावधानी रखें। करियर में कोई जोखिम लेंगे बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, इस समय मानसिक तनाव आपका बहुत बढ़ सकता है, मानसिक स्थितियां एकदम बिगड़ सकती हैं परिवार वालों की वजह से, प्रेम संबंध की वजह से, रिश्तों की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। इस समय दुर्घटनाओं से सावधान रहें, गाड़ी आराम से चलाएं और लंबी यात्राओं में सतर्क रहें। करियर में किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा, क्योंकि अगर करियर में कुछ नया शुरू करेंगे या करियर में कोई रिस्क लेंगे तो एकदम से आपका पैसा डूब सकता है या करियर में बड़ा नुकसान हो सकता है। अष्टम में मंगल गोचर करेगा, इसलिए शारीरिक परिश्रम बहुत ज्यादा मत करिएगा। बहुत स्ट्रेस वाले एक्सरसाइज करना, बहुत भारी वजन उठाना, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना, बहुत दौड़ना, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा मत करिएगा, केवल टहलिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, करियर में आपके प्रॉब्लम हो सकती है मंगल के राशि बदलने से, दूसरों के चक्कर में आप मुश्किल में आ सकते हैं, इसीलिए ऑफिस में ज्यादा मित्रता मत करिए, बेवजह के झंझटों से बचिए वरना मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। करियर में अपना काम ठीक से करिए, लापरवाही मत करिए। पारिवारिक जीवन में जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ और जो परिवार के युवक बच्चे हैं उनके साथ विवाद हो सकता है। अगर आपके बेटा बेटी थोड़ी बड़ी उम्र के हैं तो उनके साथ विवादों से बचिएगा। पैरों में चोट न लगे इसका थोड़ा ध्यान धनु वालों को बनाए रखना है। और अगर कर्जा लिया है तो कर्ज समय पर चुकाइए, कर्ज को टालिए नहीं, और जब तक बहुत जरूरी ना हो इस समय कर्ज में उतरने से आपको बचना चाहिए। तो परिवार के जो बच्चे हैं उनके साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध का ध्यान रखिए। ऑफिस में दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सर पर मत लीजिए वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। मकर राशि, आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पैसे अब आपको मिलेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपकी नई शुरुआत हो सकती है, करियर में नए मौके मिल सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू दिया है तो नई नौकरी मिल जाएगी या करियर में कोई परिवर्तन करेंगे जो लाभकारी होगी। ऑफिस में, घर पर, काम में जो रुकावट, जो बाधा चली आ रही थी, काम की बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। और इस समय अगर आप अपने करियर के लिए मेहनत करें, प्रयास करें तो आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी। मकर वाले अगले एक महीने में अपने करियर के लिए पूरी कोशिश करें और जो बड़े बड़े काम हैं, जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनको निपटाने का प्रयास करें तो इनको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, चोट ना लगे और पेट में आपको दिक्कत ना हो, अपने खान पान और अपने डाइजेशन का ध्यान रखिएगा। जो आपके बड़े महत्वपूर्ण काम हैं, जिसके लिए आप बहुत समय से लगे हुए थे, अभी आपके महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अपने वैवाहिक जीवन का, अपने प्रेम संबंधों का, अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। बेवजह के वाद विवाद इस समय हो सकते हैं। अपने क्रोध और अपनी वाणी पर इस समय काबू रखिएगा। झगड़ा करने से बचें। पेट में कोई दिक्कत होती है तो लापरवाही मत करें और अभी हिम्मत मत हारिए। कुछ समय बाद आपका समय अच्छा हो जाएगा तो आपके महत्वपूर्ण काम बनेंगे। अभी कुछ समय के लिए धैर्य बनाए रखें। मीन राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपके पारिवारिक मामलों को बिगाड़ सकता है। पति पत्नी के साथ या उनके परिवार के साथ समस्या हो सकती है। उनके परिवार की तरफ से दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए पारिवारिक मामलों में शांति और सावधानी बनाए रखें। इस समय परिवार के लोगों की वजह से आपका तनाव बढ़ सकता है, मेंटल टेंशन हो सकता है और आपको चोट चपेट लग सकती है। इसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। देखिए, आप चाहें या न चाहें, इस समय आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं और करियर में अचानक बदलाव हो सकता है। इसके लिए इस समय तैयार रहिए। जो आकस्मिक परिवर्तन हो रहा है उसको शांति से स्वीकार कर लें। पैसे के मामलों में, धन के मामलों में सतर्कता रखें। पैसे रुपए का लेन देन सावधानी से करें, क्योंकि अगर इस समय कर्ज लेंगे तो चुकाना कठिन होगा और कर्ज अगर देंगे, किसी को पैसा देंगे तो वापस पाना मुश्किल होगा। देखिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो मुख्यतः वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि के लिए ज्यादा नकारात्मक है। वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि के लिए मंगल का राशि परिवर्तन ज्यादा नकारात्मक दिख रहा है। और अगर हम सकारात्मक की बात करें तो मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। तो कुल मिलाकर 8 राशि के लोगों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो अगर आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है तो आप क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और शाम दोनों समय ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें। या अगर ये मंत्र कठिन लगता है तो सुबह और शाम दोनों समय ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करें। और जितने दिन भी संभव हो इस एक महीने में गाय को गुड़ खिलाएं या मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें। और अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं है तो लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग के पर्स, इनसे परहेज करिएगा। मंगल का राशि परिवर्तन अगर आपके लिए बहुत ही नकारात्मक है, जैसे मिथुन के लिए, वृषभ के लिए और वृश्चिक के लिए मंगल का राशि परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है, तो रोज सुबह घर से निकलने के पहले एक बार भगवान कार्तिकेय का, जो शिव जी के पुत्र हैं, उनका स्मरण करके अगर घर से निकलेंगे तो किसी बड़ी समस्या से, किसी बड़ी दुर्घटना से बचे रहेंगे। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। एक बजकर 28 मिनट से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
3: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात करते हैं संगम नगरी प्रयागराज की। यहाँ पर भोले भंडारी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए ऋण भी माफ कर देते हैं। इस मंदिर का नाम है मन कामेश्वर मंदिर। अकबर के किले के समीप यमुना तट पर स्थित प्राचीन मन कामेश्वर महादेव मंदिर सावन मास में शिव भक्तों की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और मान्यता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन और जलाभिषेक करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए
2: सावन का महीना चल रहा है और ये महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। ऐसे में शिव भक्त भोले भंडारी का जल अभिषेक करना चाहते हैं क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी महीने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था जिसके चलते उनके शरीर की गर्मी बढ़ गई थी। उसी गर्मी को ठंडा करने के लिए देवताओं ने उनका जल अभिषेक किया था। इसी परंपरा का निर्वाह करने और मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं। प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर की कुछ अलग ही मान्यता है। कहते हैं यहाँ पर जो भी भक्त अपनी इच्छा के साथ पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करता है भोले भंडारी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और शायद इसीलिए यहाँ के मंदिर का नाम मन कामेश्वर है।
3: यहाँ पे इसका नाम ही लाइक मन कामेश्वर मंदिर है और मतलब यहाँ की मान्यता ये है कि जब राम जी सीता जी मतलब यहाँ पे आए थे तो अक्षर वट पे जब वो रुके थे तो उन्होंने यहाँ पे अपनी मनोकामना मांगी थी और पूरी हुई थी अभी। तो ये बहुत अच्छा टेम्पल है और सावन के महीने पे यहाँ पे जल चढ़ाने आ रहे हैं, दर्शन करने पे यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है।
4: ये मन कामेश्वर मंदिर है जो शिव जी की पूजा करते हैं, वो उनकी इच्छा हमेशा पूरी करते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई थी इसलिए हम लोग मन्नत थी तो पूरी हुई, हम दर्शन करने आए हैं। और शिव तो अखड़दानी है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
5: ये मन कामेश्वर मंदिर है, यहाँ हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है और यहाँ पे ये सावन में भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है, भक्त बहुत आते हैं यहाँ पे और सारी इच्छाएं पूरी होती है भोले बाबा के दरबार पे।
2: मान्यताओं के अनुसार मन कामेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद स्वयं विराजमान होकर स्थान को दिव्यता प्रदान की थी। मान्यता यह भी है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण प्रयाग पहुंचे थे। अक्षयवट के समीप विश्राम करने के बाद उन्होंने मन कामेश्वर महादेव का पूजन और जलाभिषेक कर अपने आगे के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की थी। मन कामेश्वर मंदिर परिसर केवल महादेव तक ही सीमित नहीं है।

0: लाखों श्रद्धालु गंगा जल और यमुना जल से भगवान मन कामेश्वर का जल अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार, महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन यहां दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं अयोध्या की श्री राम मंदिर की। अब राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेगा, उन्हें आकर्षित करेगा। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चुरल लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहरी दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरास में रिकॉर्ड कर रहे हैं।

0: सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रिकालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर के दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है। हर नकाशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये ऐसी पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने दो दिन में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, जबकि शनिवार के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। देखिए रिपोर्ट।
2: स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। सिर्फ दो दिनों में ही सुपर हीरो फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म ने गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की थी और शुक्रवार को भी इसका शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारत में 30 जुलाई को रिलीज हुई ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड रिलीज बन गई है, जबकि शनिवार के आंकड़े अभी आने बाकी है।

0: उम्मीद के मुताबिक रविवार को भी फिल्म जबरदस्त कारोबार करेगी। अमेरिका सहित दूसरे देशों में स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की यह चौथी फिल्म 31 जुलाई को रिलीज हुई और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में भी रिकॉर्ड तोड़ 1650 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 131 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। भारत में स्पाइडरमैन की इस नई फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज अलग लेवल पर देखा जा रहा है। गुरुवार को पहले दिन जहां हिंदी वर्जन के लिए 95% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, वहीं शुक्रवार को दूसरे दिन भी औसतन 90% रही, यानी सुबह से रात तक हर शो में 100 में से 90 सीटों पर दर्शक नजर आए, जबकि अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ मिलाकर सभी 16,902 शोज में औसतन ऑक्यूपेंसी 64.8% दर्ज की गई। सैकनिक के मुताबिक गुरुवार को ओपनिंग डे पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने भारत में सभी 6 भाषाओं को मिलाकर 60.60 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया था। यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है, जबकि शुक्रवार को भी इसने शानदार 49.35 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। बिना किसी हॉलीडे रिलीज के इस फिल्म ने 2 दिनों में भारत में कुल 131.46 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन और 109.95 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। 2 दिनों में हुई 109.95 करोड़ की नेट कमाई में से 60.25 करोड़ रुपए अंग्रेजी वर्जन से और 39 करोड़ रुपए हिंदी वर्जन से आए हैं, जबकि तमिल से 5.25 करोड़ रुपए, तेलुगु से 5.25 करोड़ रुपए, मलयालम से 14 लाख और कन्नड़ से 6 लाख रुपए की कमाई हुई है। उम्मीद की जा रही है कि भारत में बॉक्स ऑफिस पर मौजूद ट्रेंड्स के आधार पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने 4 दिन के पहले ओपनिंग वीकेंड में 275 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई आसानी से कर लेगी। यदि ऐसा होता है तो ये देश में किसी नॉन इंडियन फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड होगी और ये एक नया रिकॉर्ड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
0: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.

0: बहू और बेटियां में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league. From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: में पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
11: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स,
12: Sage University, transforming your passion into profession.
13: 17 साल की भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास, जीता अपना पहला BWF सुपर 300 का खिताब, वियतनाम की थुई लिन गोयेन को 21-16 से हराया। देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का पीएम ने किया शुभारंभ। 28,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। भदोही में नेशनल हाईवे 19 की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित, 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर पुलिस ने पुष्प वर्षा की। दिल्ली एनसीआर में जमकर बरसे बादल, लोगों ने लिया बारिश का आनंद। तापमान में आई कमी, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है मानवीय सहायता। राहत शिविर कैंप्स में पहुंचाया जा रहा है मुफ्त खाना और जरूरी सामान। केरला के इदुकी में भारी बारिश के बाद खोले गए मलंकारा डैम के 5 गेट। राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
13: कॉमनवेल्थ गेम्स का आज आखिरी दिन, हाइड्रो में होने वाले आधिकारिक समारोह से होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को 9 पदकों की उम्मीद, ओलंपियन अवतार सिंह जूडो में दिला सकते हैं पदक। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया 62 गोल्ड के साथ टॉप पर है, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे नंबर पर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला, शनिवार को 8 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में चौथे नंबर पर पहुंचे। पुरुष मुक्केबाजी के 60 किलो वर्ग में भारत ने झटका गोल्ड, बॉक्सर सचिन सिवाच ने शानदार प्रदर्शन से जीता गोल्ड मेडल। भारतीय शटलर तन्वी शर्मा के नाम एक और उपलब्धि, ताइपे सुपर 300 का खिताब किया अपने नाम। 17 साल की तन्वी ने पहला वर्ल्ड टूर खिताब किया अपने नाम, सीधे मुकाबले में वियतनाम की गुएन को मात दी। सबसे कम उम्र में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बनी तन्वी, कोरिया के महान डबल्स खिलाड़ी ली योंग डे का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत और मलेशिया की अंडर 21 पुरुष हॉकी टीमों के बीच बेंगलुरु में होगा मैच, 7 से 13 अगस्त तक खेली जाएगी सीरीज। भारत और मलेशिया की टीमों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले मिलेगा अभ्यास का मौका, दोनों के बीच होंगे 5 मुकाबले। श्री अमरनाथ यात्रा का आज 31वां दिन, श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से भेजा जा रहा है धाम। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के कर चुके हैं दर्शन, यात्रियों में पूरा उत्साह। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 3,886 श्रद्धालुओं का नया जत्था हुआ रवाना। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात आंशिक रूप से बहाल हुआ। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकोट से गुजरा, सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं की यात्रा सुचारू रूप से जारी। प्रशासन यात्रा मार्ग पर मौसम और ट्रैक की स्थिति की लगातार कर रहा है निगरानी, यात्रियों को भी सतर्क रहने की एडवाइजरी। तिरुमला में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन, सुप्रभातम सेवा में भी लिया हिस्सा। तिरुमला में हार्दिक पांड्या ने मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान से सुख शांति और सफलता की कामना की। सावन के पहले रविवार पर महाकाल किया गया भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म आरती में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने हिस्सा लिया, बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। सावन के चलते कालकाजी मंदिर में बढ़ी भक्तों की संख्या, पहले सोमवार को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। पीएम मोदी ने की नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत, 100 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। देश भर में 28,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अनुमान। पीएम मोदी ने युवाओं को बताया भारत की असली ताकत, नशे से दूर रहने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने नशे को बताया राष्ट्र की शक्ति कमजोर करने वाला, अगले 100 रविवार तक चलेगा नशा मुक्ति अभियान। पीएम मोदी ने नशा कारोबारियों पर सख्ती बरतने की कही बात, 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन भी नशा मुक्ति में करेंगे सहयोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पीबीजी सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जनरल वी के सिंह भी रहे मौजूद। सैनिकों के सम्मान में किया गया सोल्जर थॉन का आयोजन, फिटनेस और देशभक्ति को दिया गया बढ़ावा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का हुआ आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का 84वां संस्करण का आयोजन, नशा मुक्त भारत थीम के साथ लोगों ने साइकिल चलाकर फैलाई जागरूकता। कर्नाटक के बल्लारी में स्टील सिटी रन 2026 मैराथन का हुआ आयोजन, तो वहीं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में बारिश के बीच सुहावना हुआ मौसम, हल्की फुहारों के बीच लोग उठा रहे हैं पर्यटन का लुत्फ। श्रीनगर की डल झील में भी दिख रहा है खूबसूरत नजारा, लेक किनारे के वुड हाउस में लोग ले रहे हैं मौसम का आनंद। बारिश से पूरी तरह भीगी श्रीनगर की सड़कें, नहाए हुए से नजर आए पेड़ पौधे। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खेतों और गांवों में भरा पानी, गंगा किनारे बसे हुए करीब आधा दर्जन गांवों में कटान का खतरा भी बढ़ा। असम के बाढ़ प्रभावित जिले शिवसागर पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा, पीड़ितों और राहत के काम में लगे वॉलंटियर्स से बात की, मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, तो वहीं सफापोरा इलाके में कई घरों में घुसा पानी। गांधरबल में प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया, नुकसान का आकलन कर रही है अधिकारियों की टीम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से की नदी नालों से दूर रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद रास्ते को किया जा रहा है साफ, बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी है। लद्दाख के करगिल में भारी बारिश से चिकतान और समराह इलाके में अचानक आई बाढ़, कई निचले इलाकों में भरा पानी। केरलम के कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर शुरू, तो वहीं कन्नूर में वालपट्टनम नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई। कन्नूर में भारी बारिश के बाद वायाथोर पुल पूरी तरह से डूबा, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हुई। कन्नूर में राहत बचाव दल पूरी तरह से सक्रिय है, कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरलम के इडुकी में भारी बारिश के बाद खोले गए मलनकारा बांध के 5 गेट, प्रशासन जलस्तर पर नजर रखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। कन्नूर के श्रीकंडापुरम नगर पालिका इलाके में भी जोरदार बारिश, सड़कें बनी तालाब। केरलम के पठान मथिट्टा में जलभराव के बाद सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोग, अरनमुला इलाके में खोले गए राहत शिविर। कर्नाटक के कबिनी बांध से तमिलनाडु के लिए छोड़ा गया 12,000 क्यूसेक पानी, भारी बारिश के बाद अचानक से बढ़ा पानी का स्तर। कबिनी बांध में अचानक से करीब 40,000 क्यूसेक पहुंचा पानी, बांध की सुरक्षा के लिए जलस्तर को किया जा रहा है नियंत्रित। कावेरी नदी के आसपास जलस्तर के बढ़ने की जताई जा रही है संभावना, बांध और नदी की स्थिति पर प्रशासन लगातार रख रहा है नजर। असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चलाया जा रहा है अभियान, सीआरपीएफ की मदद से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है भोजन।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।

0: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: सत्रह साल की भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास, जीता अपना पहला BWF सुपर 300 का खिताब, वियतनाम की थुई लिन गोयेन को 21-16, 21-16 से हराया। देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का पीएम ने किया शुभारंभ, 28,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। भदोही में नेशनल हाईवे 19 की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित की गई, 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर पुलिस ने की पुष्प वर्षा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
7: दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं बल्कि दिल से जुड़ा होता है, और हमारे टेलीविजन शोज की कहानियों में भी हमने कई ऐसी दोस्ती के रिश्ते देखे हैं जहां पर मुश्किल वक्त में एक सच्चा दोस्त ही ताकत बन जाता है। तो आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर हम देखेंगे कौन बना है किसका सबसे अच्छा दोस्त, किसने निभाया है रिश्ता, किस रिश्ते में घुली है मिठास या कौन से रिश्ते में आ गई है कड़वाहट। चलिए फिर नजर डालते हैं आपकी फेवरेट कहानियों की और शुरू करते हैं हमारा ये शो सास बहू और बेटियां। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे इस फ्रेंडशिप डे की हेडलाइंस के साथ।
8: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, मान्यता होगी बेकाबू, खतरे में होगी विक्रांत की जान।

मोनिका और ईशान की शादी देख खतरे में पड़ेगी टिन्नी की जान। फिर एक बार जब धात्री को निशाना बनाएगी जानवी। एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आएंगे राध्या और प्रथम।

0: सच्ची खूबसूरती चेहरे पर नहीं, दिल के रिश्तों में होती है। और कुछ ऐसा ही कहती है हमसे ये कहानी, मन अति सुंदर, क्योंकि जब मन होगा सुंदर तो सब कुछ होगा जीवन में अच्छा। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको राध्या और प्रथम के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज। क्या फिर से आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट या फिर कोई नया ड्रामा? लेकर चलते हैं आपको इन दोनों के पास।
1: राध्या और प्रथम की आशिकी

सरयू का षड्यंत्र। घर वालों की टेंशन। दंगल टीवी के सीरियल मनती सुंदर में भाई आज प्रथम नाराज हो रहा है। भाई घर की प्रॉपर्टी वो फिर एक बार अपनी दादी के नाम करवाना चाहता है। ऐसे में देखिए कैसे राधिया बन गई है उसकी ढाल और उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखिए कैसे दोनों की नजदीकियां भी देखने को मिल रही है। भाई इतने टेंशन भरे माहौल को राध्या लाइट करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब होती हुई भी नजर आई।

0: मैं दुखी था बहुत ज़्यादा, और राधे बिंग राधा मुझे उससे समझाया कि दुखी होने से कुछ नहीं होगा, हार मानने से कुछ नहीं होगा, एंड राधे की बातों से मुझे उम्मीद मिलती है हमेशा, और वही हुआ। वापस उसने मुझे अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी दिखाई, तो बस वही एक प्यारा मोमेंट था।
1: तो ही दूसरी ओर देखिए कैसे दोनों भाई एक्टिंग कर रहे हैं मोंटू को अपने षड्यंत्र में फंसाने के लिए। भाई उनकी ये प्लानिंग प्लॉटिंग कहीं ना कहीं उन्हें घर के पेपर्स तक लेकर जरूर जाएगी।
2: प्रथम से बातचीत ये हुई, हम तो खैर घर का काम ही कर रहे थे, तो प्रथम ने देखा पीछे मोंटू आ रहा है, तो उसने हिंट दिया कि लेट्स डू समथिंग कि हम इस चीज़ से निकल सके। तो उसने ट्रिक किया कि ऐसे ऐसे बुआ ने हमें बताया है कि पेपर्स कहाँ हैं, क्योंकि हमने कल रात को मोंटू जी को नशे में डाल दिया था। तो वही बस हमने आगे गेम प्ले किया कि यस, कि इसने मोंटू ने नशे की हालत में सब कुछ बता दिया है और आज रात को हम पेपर्स निकाल लेंगे। तो बस एक ट्रिक है, लेट्स सी वो क्लिक होगी या नहीं।
1: ऐसे में दादी और सभी घर वाले बेहद टेंशन में हैं, क्योंकि कल का दिन इन सभी के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है। लेकिन यहाँ पर राधे उन्हें गुड न्यूज देती है कि एक पेपर का टुकड़ा जो कि घर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसी के पास था, जो उसने मामी को दे दिया। लेकिन भाई यहाँ भी गड़बड़ हो गई। ऐसे में देखना होगा कि क्या राध्या प्रथम इस मुश्किल का कोई हल निकाल पाएंगे या फिर घर से बेघर हो जाएंगे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अच्छा दोस्त भी बन जाता है, और बिल्कुल ऐसी हैं हमारी डॉक्टर आलम भी, लेकिन उनकी जिंदगी में फिलहाल तो है एक बहुत बड़ा तूफान। देखिए इन्हें भी कहां मिलती है चैन की सांस, क्योंकि डॉक्टर अवंतिका और डॉक्टर विश्वास कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं कि इनकी जिंदगी में लगातार आते हैं ट्विस्ट। तो क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में, आज लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरंभी के सेट पर।
4: दहेज मांगने के लिए आप लोग को जेल हुई, ऐसे तैसे कैसे करके आप लोग जेल से निकल गए, ये सब तो हमारी बहू आरंभी ने किया है।
1: ध्रुव के ताने।
4: डॉक्टर विश्वास टंडन नियो पर्ल्स हॉस्पिटल के को ओनर अपनी बीवी डॉक्टर आरंभी को डिवोर्स दे।
1: विश्वास का गुस्सा।
4: जरूरत क्या थी उस बेचारे बच्चे से इस बारे में बात करने की।
1: अवंतिका की चिड़चिड़ाहट। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में भाई आज डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ है, और जरा देखिए तो कैसे ध्रुव को देखकर विश्वास गुस्सा कर रहा है, क्योंकि विश्वास को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ध्रुव आरंभी के साथ है। इसी बीच छिड़ गई है डाइनिंग टेबल पर दोनों के बीच बहसबाजी।
4: कमाल हो यार आप लोग,
5: आप सब ने अपनी बहू को डिवोर्स का नोटिस भेज दिया। आप लोग जानते हैं उसके बाद बवाल भी होगा। गिफ्टेड थोड़ा छोटा शब्द नहीं है उसके लिए?
6: जैसे ये सब
5: तुम्हें नहीं पता?
6: नहीं पता है।
5: बस तुम्हें पता है तो मुझे भी पता है। तुम भी यहाँ पे गेस्ट हो ना? मैं भी यहाँ पे गेस्ट हूँ। तो अगर एक गेस्ट को पता है तो दूसरे को भी पता हो सकता है, राइट? इसमें इतना शॉकिंग क्या है? मेरा मेरे वाइफ के बीच क्या हो रहा है इससे किसको क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। बट क्या है ना डॉक्टर विश्वास, आप ये फ्रेंड गेस्ट जो भी कहो डॉक्टर अवंतिका, ये अभी थोड़ी देर पहले स्टाफ की पगा काटने की बात कर रही थी, वही स्टाफ जिसको आरंभी ने हायर किया था। तो फर्क तो इनको बहुत पड़ता है, और अगर इन्हें फर्क पड़ता है तो ये आपकी और आपकी बीवी का पर्सनल मैटर तो हो नहीं सकता, राइट?
7: हमें भी कल ही पता चला, हम खुद बता देते पर लगा कि डिस्टर्ब ना।
5: क्यों बताना है डैड? ये कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं है, जुडिशियल को बताया जाए। डॉक्टर विश्वास शायद आप भूल रहे हैं, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पर आप लोग जो करते हैं आपके घर में जो होता है आपकी पर्सनल लाइफ में जो होता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस को पड़ता है। पिछले हफ्ते का मुख्य समाचार आप लोग भूल गए? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। राज की शादी फिक्स हुई, राज की शादी टूट गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने दहेज मांगा, दहेज मांगने के लिए आप लोगों को जेल हुई, ऐसे तैसे कैसे करके आप लोग जेल से निकल गए। फिर आप लोगों को सडन रियलाइजेशन हुई कि ओ ये सब तो हमारी बहू आरंभी ने किया है।

0: गाड़ी
1: आनंदी ने कुछ नहीं बताया मुझे तुम्हारे डिवोर्स के बारे में तुम्हारे बेटे से पता चला सुन लिया था उसने आप लोगों को बात करते हुए एक बच्चे को डिवोर्स का मतलब तक नहीं पता उसको लगता है डिवोर्स एक सॉरी गिफ्ट है जो उसके पापा उसकी मम्मा को देने वाले और उसकी मम्मा उसके बाद घर आ जाएंगी बाजे बट डोंट वरी मिसेस टंडन आई एम बेटर बताया नहीं मैंने उसे कि डिवोर्स का मतलब क्या होता है
0: जरूरत क्या थी उस बेचारे बच्चे से इस बारे में बात करने की नीतीश दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस प्लीज डोंट इंटरफेयर
1: बयान
2: ऐसे में अब देखना होगा कि नए डायवोर्स का ये बॉम्ब किस तरीके से आरंभी के परिवार पर फटेगा मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट
3: मुश्किल वक्त में जो साथ निभाए वही सच्चा दोस्त कहलाता है तो कौन निभा रहा है आज ये दोस्ती चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री और शिवाय के पास उनके शो के सेट पर और देखते हैं क्या है इस कहानी का फ्रेश अपडेट क्या यहाँ पर आया है कोई नया ट्विस्ट या फिर कोई नया ड्रामा या फिर से आई है इन दोनों के सामने कोई नई सिचुएशन लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के सेट पर
2: जगदात्री पर फूटा जानवी का गुस्सा
4: मैंने मना किया ना मुझे कुछ नहीं खाना तेरा डोसा
2: तपस्या और जगधात्री की बहसबाजी जी टीवी के सीरियल जगधात्री में भाई जगधात्री ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है लेकिन फिर एक बार जानवी उस पर नाराज होती हुई नजर आई और देखिए कैसे उसे चार छह बातें सुनाकर उसी के सामने उसकी रिपोर्ट को फाड़ दिया देखिए कैसे जब शिवाय आता है तो उसके साथ काफी अच्छा सलूक करती है वह इतना ही नहीं प्यार भरी बातें कर उसे इम्पोर्टेंस भी देती है और जगधात्री को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करती है तो वही दूसरी ओर साक्षी तपस्या पर भड़कती हुई नजर आई देखिए कैसे वो उसे डांट लगा रही है और बीती शाम हुई पार्टी में हंगामे के बारे में भी बता रही है
5: वैसे घर पार्टी में भी थोड़ा ज्यादा हो गया था
6: इसकी बात कर रही मेरी ये फोटो पब्लिश करवाई है तुम्हारी माया दी और हेडलाइन है बुरी नजर वाले तेरा मुंह केक और
5: लोग सिर्फ देखने के लिए पेपर लेते पढ़ेंगे ना कि अंदर की क्या लिखा हुआ आर्टिकल में और ये नीचे की सब हेडिंग नहीं पढ़ रही हो तुम आगाज जंग दिख नहीं रहा तुम्हें
7: अब जंग में बाहर भी सबसे पहले हमने ही किया था राइट अब माया थी कुछ जो करना है करे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे हमारा कोलैबोरेशन देशमुख फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
2: भाई ऐसे में घर पर शिवाय को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है लेकिन जगधात्री उसे संभाल लेती है
8: वो मैं बच्चों को जो है कोर्स का दूर कदम आगे का पढ़ाना चाहता हूँ रोज चौक टेस्टर फिर वही पढ़ाना होता है काका का दूर का अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जगधात्री आ गई
9: वैसे आर्टिकल टीचर की जॉब भले ही भागदौड़ वाली ना हो पर हाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है जितना अच्छे से काम उस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे उतना ही बेहतर वो समझेंगे
2: लेकिन भाई अपनी ही बहन के साथ अनबन में पड़ जाती है क्योंकि

0: जगधात्री चाहती है कि तपस्या ब्रेकफास्ट करके जाए, लेकिन भाई तपस्या तो नाराज है और उसे खरी खोटी सुना रही है।
1: सारा खाना डाइट वाला है, प्रॉब्लम क्या है? बाहर का खाना खाएगी, इससे बेहतर है ना घर का खाना खा।
2: शॉट मेरी माँ बनने की ना कोशिश मत कर, समझी?
3: और अगर बनना है ना तो अच्छी माँ बन, कुछ अच्छा सा पैक करना जैसे वो लेना देने वाला डोसा।
4: मैंने डोसा अभी तो बोला था। हाँ मैंने डोसा पैक कर दे, बहुत टेस्टी बना है, तब से तू खा ले।
3: वैसे तो बस ये अपनी बेटी के घर कब तक रहने वाली है, ये सोचा ही नहीं कि कब तक।
0: नई कहानी में हंगामे तो चलते रहेंगे, लेकिन क्या शिवाय और जगधात्री के बीच चीजें ठीक होंगी या बिगड़ेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: कभी दोस्ती में मस्ती तो कभी दोस्ती में शरारत, लेकिन कभी कभी दोस्ती में कुछ ऐसा भी हो जाता है जो हमें हैरान कर देता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। भाई रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी शो अलायंस की, जहां से खबरें आ रही हैं कि अली गोनी बन सकते हैं इस शो के विनर। तो वहीं मिनी माथुर बनेंगी फर्स्ट रनर अप, यानी कि शो में होंगे ढेर सारे हंगामे।
6: एक बात का ध्यान रखिएगा, आज जो भी हमारा एस बनेगा वो अलायंस का पहला फाइनलिस्ट भी होगा। एस आपको किसी एक एलाय को अभी के अभी सिस्टम से डिलीट करना होगा।
7: Guys, this is your favorite fool wali ladki and I'm officially out of the race.
0: इसी के साथ बात करते हैं दूसरे रियलिटी शो लॉकअप की, जिससे इविक्ट हो गई है आकांक्षा चौधरी, और इसी के साथ उन्होंने अपने फैंस के लिए एक स्पेशल इमोशनल थैंक यू नोट शेयर किया है। साथ ही देख लीजिए उनका ये वायरल रील।
8: हाँ आप उठो बिस्तर से।
9: तो आपके बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से।
8: लो लो।
0: भाई वैसे लॉकअप का फिनाले वीक चल रहा है, ऐसे में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि प्रोड्यूसर राजन शाही ने अपना सपोर्ट शिवांगी के लिए एक्सटेंड किया है। भाई शिवांगी और राजन शाही का रिश्ता काफी पुराना और काफी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे में वो उसके लिए सपोर्ट बनकर सामने आए।
10: आपके हाथ में हम ट्रॉफी देखना चाहते हैं, लॉकअप की ट्रॉफी। यू शुड बी द विनर ऑफ लॉकअप, ये हमारी दिल्ली तमन्ना है। सो लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड विशिंग यू अ ग्रेट ग्रेट यू नो द फिनाले डे एंड यू ऑलवेज डन अस प्राउड। शिवानी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू। थू थू थू टू शेयर मी।
0: देख लीजिए मिस मैच के ये बिहाइंड द सीन नजारे, जिन्हें प्राजक्ता कोहली ने शेयर किया है।

बीती शाम हुई रक्तांचल सीजन 3 की सक्सेस पार्टी, जहां नजर आए पारितोष त्रिपाठी, क्रांति प्रकाश झा और निकेतन धीर के अलावा राजेश कुमार और रजत बेदी भी। शुरू हो चुके हैं फिल्म मिर्जापुर के प्रमोशन, ऐसे में साथ साथ नजर आए अली फसल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु शर्मा।

ढिल्लों ने शेयर किए हैं अपने भाई करण ढिल्लों के रोका की ये तस्वीरें, जहां उन्होंने अपने भाई के रोका सेरेमनी में खूब एंजॉय किया।

0: चटनी बन गई थी खाने को, घुमाने को नहीं गई। अरे क्या पकड़
1: नजर डालते हैं भारती सिंह और हर्ष लिम्बाजिया के आने वाले नए रियलिटी शो इंडियन गेम शो के इस प्रोमो पर, जहां हो रही है ढेर सारी मस्ती।
2: ये कैसा शो है?
3: इंडियन गेम शो
4: विद भारती एंड हर्ष,
3: जहां दोस्तों को फंसाएंगे
4: और आपको हंसाएंगे।

इंटू द जंगल की सक्सेस के बाद अहमद खान ने कन्फर्म किया है कि वो फिर एक बार अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म लेकर आएंगे। ऐसे में अब वो फिल्म एक्शन होगी, कॉमेडी होगी या रोमांटिक एक्शन ड्रामा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

0: सिस्टम चूमा है ना ग्रैंड फिनाले
1: द लेजेंड, जिनके स्टेप देख के जमीन ठुमक जाती है, जिनकी स्माइल देख कर पूरा हिंदुस्तान मुस्कुरा देता है, हीरो नंबर वन गोविंदा जी।
2: बहुत जल्द होने वाला है माँ है ना का ग्रैंड फिनाले। आइए डालते हैं इस पर एक नजर।
3: शो नहीं है ये, शो का बाप है।
0: ये आपका टेबल है,
4: अब यहाँ तक आऊँ और मक्खन भी ना लगाऊँ।
3: क्या बनाया यार माँ की आँख।
0: आई एम वेरी इम्प्रेस्ड।
3: यही 15-20 साल पहले हो गई थी ना।
5: याद है क्या दिन वो जब थे।
6: दोस्ती के कई रंग होते हैं।
7: माफ कर दो हमको, ये लो मुंह मीठा कर लो।
6: दोस्ती जो लाइफ टाइम की वैलिडिटी लेके आती है।
8: अगर भगवान भी आकर बोले कि ठकुराइन जी की नियत में खोट थी तो हम उनकी पूजा करना छोड़ देंगे।
2: फ्रेंडशिप डे के मौके पर जी टीवी ने शेयर किए हैं फ्रेंड्स के एक खास पल। आइए देख लीजिए इसकी एक खास झलक।
6: पर असली बात तो यही है, दोस्ती कैसी भी हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, दिल से होनी चाहिए, जैसे कि आपकी और हमारी। तो इस फ्रेंडशिप डे आपकी और हमारी इसी दोस्ती को सलाम।

नेपाल के फेमस मंदिर पशुपतिनाथ पहुंच गई हैं शिल्पा शेट्टी, जहां से उन्होंने अपने दर्शन की इन तस्वीरों को शेयर किया है।

विक्की जैन ने अनाउंस किया है अपना नया प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम है विजय फेम्स और इनकी पहली डेब्यू फिल्म होगी टाइगर श्रॉफ, एल्विश यादव और अभिषेक बैनर्जी के साथ, जिसे डायरेक्ट करेंगे रेमो डिसूजा और बतौर हीरोइन इसमें नजर आ सकती है नुसरत और पश्मीना रोशन। वैसे अब तक इस फिल्म का नाम डिसाइड नहीं हुआ है।

में इन दिनों आसाम में फ्लड्स हैं, जिसके लिए एक खास रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम अनाउंस किया गया, जिसमें पार्टिसिपेट किया है रणदीप हुड्डा ने।

0: मनीष सावालिया भाई ये फिल्म प्रोड्यूसर है जिनका बीती शाम बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, जहां खास मेहमान बनकर पहुंची तेजस्वी प्रकाश, सना मकबूल, ताहा शाह और कई और कलाकार।
1: देखिए ये जो पक्की वाली दोस्ती होती है ना, ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। और आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्ती के इस खूबसूरत रिश्ते को, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम फ्रेंडशिप डे को। तो चलिए कर चलते हैं अब आपको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर, जहां पर है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप के रंग। कैसे? ऐसे।

0: दूसरी तरफ जीत और सौम्या का याराना।
1: यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो।
0: एक तरफ रिश्ते में घुला डांस का रंग,
1: बोलो ये जिंदगी है,
0: तो दूसरी तरफ रिश्ते में पंजे का हुड़दंग।
1: जिसको तुझसे हो प्यार,
0: कैमरे के सामने जिनके रिश्तों में रोज छिड़ती है तकरार, कैमरे के पीछे वही बन जाते हैं एक दूसरे के सबसे बड़े यार। और इसी यारी को खास मौके पर सेलिब्रेट करना तो बनता है। ऐसे में आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर मदिराक्षी किशोरी और ईशान देव चंद्रिमा की जोड़ी सास बहू और बेटिया संग अलग अंदाज में अपने रिश्तों में प्यार और मस्ती के रंग बिखेर रही है। दोस्ती नंबर वन, सास बहू की रील मस्ती। कैमरे के सामने नयनिका और इंद्राणी के रिश्ते में है आग, लेकिन कैमरे के पीछे मदिराक्षी और किशोरी गाती है प्यार और यारी का राग। कभी रील्स पर साथ थिरकती हैं, तो कभी एक दूसरे के साथ हंसी के ठहाके लगाती हैं और हर दिन इसी तरह फ्रेंडशिप डे मनाती हैं।
2: सास बहू की ऐसी जोड़ी जो कहीं नहीं रुकती जा रही है, अब सेट हो, मेकअप रूम हो, हर जगह रील्स बनाती पाई जाती है।
3: मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ, मैं मम्मी से ट्रेनिंग ले रही हूँ।
4: नहीं, मैं पार्टनर ढूंढती रहती हूँ। शी इज माय पार्टनर इन द स्टाफ।
3: शी इज माय फेवरेट ऑन सेट।
4: तो कैसी लग रही है उसमें? गुरु को शिष्या। ओ, शी इज टू माय फेवरेट ऑन सेट।
3: शी इज माय फेवरेटेस्ट ऑन सेट।
4: अरे
3: मतलब ये कोई शब्द नहीं हो सकता। शी इज टू गुड,
4: सो स्वीट। थैंक यू। शी इज सो क्यूट।
2: मिशन रील है आपका, वो मिशन रील मतलब क्या कुछ देखा जाता है, कैसे चुनती है आप बैकड्रॉप?
4: ओ माय गॉड, जो गाना है उसी का बैकड्रॉप है ये, जंगल
3: आधी रात।
4: और हमें डर लग रहा है वैसे।
2: तो ऐसे कितना टाइम मिल पाता है? जैसे मदिराक्षी के लिए तो हम हाँ। देखते ही है रहते हैं और यस तो आज जो है इतनी चेहरे पे हंसी है उनके।
3: अभी थोड़ा सा आज ब्रेक मिला है क्योंकि दिन्नी गई हुई है वहाँ पर, मुझे सिर्फ रोना है ज्यादातर। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला है। तो मैं आज मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की कि आपके साथ मुझे 2-3 रील्स बनानी है।
2: कैमरामैन भी रेडी है?
5: कैमरामैन शांतनु मोंगा रिपोर्टिंग।
3: शांतनु मेक्स वेरी गुड वीडियोस, वो मिनी ब्लॉग्स बहुत अच्छी बनाता है।
5: आई ट्राई।
2: दो ब्यूटीज को कैमरे में कैद करना,
5: ये आपने बोला ना रानी ऑफ रील्स, उनके नाम में इंद्राणी है और ये इंस्टाग्राम की मल्लिका है, तो बस मैं थोड़ा वर्क कर लेता हूँ।

भाई सीरियल की कहानी में कैमरे के सामने किचकिच करने वाली ये सास बहु ऑफ कैमरा सहेलियां बनकर ढेर सारे डांस वाले वीडियोस बनाती हैं और आज भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। और देखिए कैसे पहले वो प्रैक्टिस कर रही हैं और फिर जैसे ही मोबाइल का कैमरा ऑन होता है दोनों थिरकने लगती हैं।

0: एक दो रीटेक में ही इनका वीडियो बनकर तैयार है और दोनों अपना वीडियो देखकर बहुत खुश हैं। वैसे बता दें कि ऑन कैमरा इंद्रायणी को नयनिका बिल्कुल भी रास नहीं आती, लेकिन ऑफ कैमरा ये उतनी ही पक्की सहेली है और एक दूसरे से वाकई बहुत प्यार करती है। एक दूसरे से सीखती भी है और एक दूसरे को सिखाती भी है। भाई इनकी दोस्ती देखकर तो यही लग रहा है कि इस रिश्ते में उम्र की कोई सीमा नहीं होती।
1: अरे मेरी स्टूडेंट का ये तो मुझे सिखाएगी।
2: नहीं नहीं, अरे माँ आपसे मैं सीख रही हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि टेक्स इज नॉट अ टे, इट्स अ मस्ती।
1: या
2: कि हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा जा रहा है, वी फैमिलियर आल्सो विद ईच अदर, तो वो मजा आता है करने।
1: नहीं, और ये क्वालिटी टाइम हो जाता है, पता है, इन बिटवीन शॉट्स ना थोड़ा हम यूटिलाइज करते हैं टाइम, तो मजा आता है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है
2: हट करके। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है मम्मी के साथ, तो ऑलवेज फन। मैं इनको मैसेज भी करके फोन भी करती हूँ, आप भूलना मत कि मैं आप सबसे बड़ी फैन हूँ आपकी।
1: सो स्वीट चीज है, सो स्वीट मदर। इसी शॉट में फर्स्ट टाइम, इसी आई मीन सीरियल में फर्स्ट टाइम ये मिली है, बट इतना इमीडिएट इंस्टेंट बॉन्ड हो गया ना इसके साथ, आई एम रियली सरप्राइज्ड।
2: इट्स ऑलवेज यू नो एक्शन इज म्यूचुअल। नहीं नहीं, बट सामने से जब बहुत प्यार आता है ना, तो अपने आप इनके तो सब दीवाने हैं।
1: अरे
2: मतलब पूरा सेट दीवाना है। किशोरी जी कहाँ है? किशोरी जी कहाँ है? कहाँ है वो खूबसूरत चेहरा?
1: I'm flattered.
2: वो आप हो ही खूबसूरत।
1: अरे
2: I'm just saying, your husband is very lucky. आंखें खुलते ही बराबर एकदम चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, अंदाजे इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने उसे बनाया।
0: भाई वाकई ये तो टू स्टेट्स वाली दोस्ती है, एक कोलकाता से है तो दूसरी है महाराष्ट्र से। ऐसे में दोनों की संस्कृतियाँ अलग हैं, लेकिन एक दूसरे की संस्कृति सीखने में इन्हें कोई परहेज नहीं। तभी तो किशोरी मदिराक्षी को मराठी गाना और ठुमके सिखा रही है, तो कभी मदिराक्षी उन्हें कोलकाता वाले ठुमके दिखा रही है।
1: ये गाने के बोल है, चला जीजू री लजाऊ,
2: चला जीजू री लजाऊ,
1: चला जीजू री लजाऊ,
2: चला जीजू री लजाऊ।
1: Not bad. This is one of the hittest numbers of mine in Marathi movie. Yeah, और ये मतलब बच्चों से लेके बड़े तक सब डांस करते हैं इसके ऊपर।
2: I'll try, मम्मी ने वो वैसे भी मेरे गुरु ही हैं।
1: अरे अरे। So it is just Jezuri lazau, sala Jezuri lazau, sala Jezuri lazau, sala Jezuri lazau. Yeah, got it.
2: इसपे भी रील बना सकते हैं।
1: हाँ।
2: मैं तो भूली गई। मस्ती अपार्ट, आई हैव टू टेल यू गाइज कि जब भी किशोरी जी के साथ मेरे सीन्स होते हैं, आई लुक फॉरवर्ड, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन जो आता है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, पता चलता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट के साथ में काम कर रहे हो। बहुत अच्छे सीन्स आते हैं, और जब ये हाय गोपाल बोलती तो मुझे बहुत मजा आता है, मैं वहां से दूसरी तरफ वाओ।
1: मैं मदिराक्षी की तारीफ करना चाहूंगी। ओ माई गॉड, शी इज सच अ वंडरफुल एक्टर। मतलब पहले दिन तो नहीं पता चलता है ना, हम पहचान बना रहे होते हैं एक दूसरे की, बट इंस्टेंट वो जो एक्टिंग करती है उसको मैं रिएक्ट करती हूँ, मेरे एक्शंस को ये रिएक्ट करती है, और सीन इतना खूबसूरती से बन जाता है ना। सो आई थिंक दैट सास बहू के और ऐसे बैंटर के सीन्स आने चाहिए।
2: लुक फॉरवर्ड टू इट। जब मैं मुंबई में थी कोलकाता के पहले, तो मैं हमारे जो डायरेक्टर सर है योगी जी, उनको मैं बोल रही थी, मैं कहा सर मैं घर कब जाऊंगी, मुझे ना घर वाले, आई एम मिसिंग माय होम, व्हेन एम आई गोइंग होम। मम्मी के साथ जो तकरारें चलती है ना, बड़ी अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास इतने सुंदर फैंस हैं जो हमें इंस्टाग्राम पर लिखते रहते हैं, और हमारे पास में मेल्स आते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई फ्यू ऑफ देम, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव।
1: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे शो के साथ बने हैं। सहराब विल ऑलवेज कीप रॉकिंग एंड एंटरटेनिंग यू गाइज, क्योंकि एक अलग स्टोरी चल रही है, और मदिराक्षी जैसी खूबसूरत लीड है हमारी, तो सो ये बहुत खूबसूरती से परफॉर्मेंस भी करती है, और एक्चुअली आई लुक फॉर टू योर सीन्स। यू नो मैं जब सीरियल देखती हूँ तो मैं तुम्हारी आंखों में खो जाती हूँ, पता है।
0: दोस्ती नंबर टू, जीत सौम्या और दोस्ती का पंजा। ईशान और देव चंद्रिमा की जोड़ी जमी है स्टार प्लस पर आने वाले नए सीरियल फितूर के लिए। उसमें दोनों जीत और सौम्या का किरदार निभा रहे हैं। फिलहाल तो कहानी अभी आने को है, लेकिन शूटिंग पहले से ही शुरू हो गई है और इनकी दोस्ती का रंग भी गहराने लगा है। और यही बात दोनों सास बहू और पीनिया संग शेयर भी कर रहे हैं।
3: देखिए, मेरे ना दोस्त बहुत ही कम रहे हैं और जो लोग हैं वो फैमिली जैसा है, लाइक मतलब मुझे खुशी मिलती है तो उनको भी मिलती है। तो दोस्ती का मतलब यही है कि मुझे अगर खुशी मिल रही है उनको भी मिलना चाहिए, मुझे दुख हो रहा है तो उनको भी ये फील होना चाहिए। बस कहने के लिए नहीं बोल रहा है कि वो मेरा दोस्त है, 4-5 ही है और वो सच में दोस्ती है मेरे।
4: मतलब जो कैलकुलेट ना किया जा सके रिश्ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको अपनी लिमिटेशंस के बाहर जाना पड़ता है, और वो जब चीज़ें एफर्टलेसली लगे वो दोस्त होता है, वो दोस्ती होती है आई फील। मतलब जब तक हम सोचते हैं कि अरे उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए नहीं करना पड़ेगा, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ वैसा होना चाहिए, भले उसका जन्मदिन हो क्या हो, कुछ चीज़ें एफर्टलेसली होती हैं, आप बस कर देते हो। तो आई फील वो जब ऐसा फील होना शुरू हो जाए तो वो रियल में दोस्ती है। हाँ, दोस्ती हुई है। मैं
3: क्या बोल रहा
4: हूँ? नहीं नहीं, मैं बोलने वाला था, मैं क्या, बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। बट आई फील कि जितना वक्त हुआ है उसके हिसाब से तो अच्छी हुई,
3: अच्छी अच्छी अच्छी है। हाँ। मैं बहुत बातें करती हूँ, ये नहीं करता है, मैं कोशिश करती हूँ कि दोस्ती हो जाए, पर धीरे धीरे हो जाएगी।
4: अब यही होता, देखो कितना एफर्टलेसली कर ली थी इन्होंने, दोस्ती कर भी ली, मुझे पता भी नहीं चला, यही दोस्ती होती है।
0: रिश्ते भले ही रियल के हो लेकिन धीरे धीरे रियल में इनमें दोस्ती का रंग जरूर चढ़ता है, और जीत सौम्या भी धीरे धीरे दोस्त बन ही जाएंगे। और इसकी शुरुआत तो आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर हो रही है, वो भी सास बहू और बेटियां संग।
4: बट आई गेस पता सौम्या और जीत की हो गई है, वही कम्फर्ट की बात जो मैं कर रहा था वो आ गया सौम्य को कम्फर्ट। नहीं तो फिर कोई भी लड़की इतना भी जितनी मर्जी भूली क्यों ना, जब उसको भागना है वो भाग लेती है, बट ये जानबूझ के खड़ी रहती है उस सिचुएशन पे कि वो जीत के लिए। तो भले इस बेचारी को नहीं पता कि वो जीत से इसको एक अटैचमेंट हो गया, बट हो गया अभी धीरे धीरे, मुझे भी लग रहा है। मुझे भी स्टोरी नहीं पता इतनी, मतलब स्क्रिप्ट्स वो तो होगा पता चलेगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि वो एक अफेक्शन इसके अंदर क्रिएट होना शुरू हो गया। एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, सरफेस पे नहीं दिखा रही लेकिन इंटरनलाइजेशन में ये सेफ फील करती है उसके उसकी मौजूदगी में।
0: अब दोस्ती अनोखी है तो इसका सेलिब्रेशन भी अनोखे अंदाज में होना चाहिए। भाई फ्रेंडशिप बैंड्स तो सभी बांधते हैं लेकिन दोस्ती का पंजा बहुत कम लोग लड़ाते हैं, और आज सौम्या और जीत यानी कि देव चंद्रिमा और ईशान ऑफ कैमरा पंजा लड़ाकर अपनी दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं।

0: खाना नहीं खाते
1: पूरा दिन। चलो आ जाओ यार, मेरी ऐसा मत करो।

0: डूड डूड डूड चलो करो, अरे थोड़ा सा तो जोर लगाओ,
1: लगा
0: रही हूं सारी मछली निकालो यहां पे।
2: दीवानी है दीवानी,
1: मैं जीत गई गाइस, मैं जीत गई,
0: भूल गई
1: भूल गई, मैं जीत गई।
3: अब दोस्तों के लिए तो हार भी जीत होती है और आज ईशान ने अपनी दोस्ती दिखा ही दी। खैर सास बहू और बेटे संग फ्रेंडशिप डे मनाना तो बनता है, इसलिए देखिए कैसे सौम्या ने ईशान को फ्रेंडशिप बैंड बांधा, तो वहीं जीत ने भी सौम्या के कलाई में फ्रेंडशिप बैंड पहना दिया और गुनगुनाकर बता दिया कि इनका रिश्ता कितना खास है।

0: यही चलता है,
1: झगड़ती है ओहो, दीवाना है दीवानी है, बेस्ट फ्रेंड यार एक तू ही यार मेरा, मुझे क्या दुनिया।
0: वाह वाह वाह, लड़की को वापस सारे गा रहे हैं यार, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत खुश रहें, ऐसी अपनी दोस्ती को संभाल कर रखें, संजो कर रखें, अपने को अपने पास रखें। बाकी
1: इतनी कठिन हिंदी मुझसे बोली नहीं जाएगी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ये आसान है मेरे लिए।
2: दिल की तख्ती पर हूँ लिखती इश्क़ा।
3: एक तरफ सास बहू की ऑफ स्क्रीन यारी ने दिल जीत लिया, तो वहीं दूसरी तरफ जीत और सौम्या की दोस्ती ने बढ़ा दी है उनके आने वाले सीरियल में रोमांस की एक्साइटमेंट। अब देखना होगा कि कैमरे के पीछे की ये मस्ती पर्दे पर कितना जादू चलाएगी।
4: और इसी के साथ फ्रेंडशिप डे के मौके पर हमारे साथ आज है बरखा और गुलफाम खान। भाई देखिए तो जरा इनका सहेलियाना, जहां एक तरफ ब्लैक कलर के इस ड्रेस में बरखा लग रही है बेहद ही हॉट, तो वहीं दूसरी ओर पिंक कलर का आउटफिट अपने लिए चुनकर गुलफाम खान लग रही है बेहद ही खूबसूरत। पर इनकी दोस्ती काफी पुरानी है और इन दोनों ने एक साथ कई सीरियल्स में काम भी किया है, तो आइए देखते हैं कि वे इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर आखिर ये क्या कुछ कहना चाहती हैं।
5: हम वैसे बहुत स्मार्ट हैं,
6: हम बहुत, मैं बोलने एग्जैक्टली दैट्स व्हाई वी आर फ्रेंड्स, हम बहुत स्मार्ट हैं, मतलब हम एक दूसरे के वो डार्क सीक्रेट्स बताते बताते भी वो डार्क सीक्रेट सुनने के बाद ऑडियंस को लगेगा ये डार्क कहाँ से हुआ, ये तो अच्छा है। तो ऐसा है, हम बहुत स्मार्ट है वैसे रियल लाइफ में, जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। स्क्रीन पे भले हम सीरियस एक्टर्स लगते हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन हम जितने भी कैजुअल हैं, फनी हैं।
5: म्यूजिकल या रोमांटिक कॉमेडी में हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड होती है ना, जो है इस वजह से हीरोइन और हॉट लग रही है। फैंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर लाइव्स, क्योंकि हमें रिकॉग्निशन आप ही देते हैं और प्यार आप ही देते हैं, और जनरली आई थिंक वी जस्ट वांट द वर्ल्ड टू बी मोर पीसफुल, वी बोथ आर टायर्ड ऑफ इट।
6: या जस्ट सेम थिंग, जस्ट हैव फन, यू नो, कीप वॉचिंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, एंड ऑल्सो नो कि आप जो भी सैड चीज़ें देखते हैं टी वी पे या फिल्म में, इट्स जस्ट अ फिल्म, इट्स जस्ट अ टी वी शो। आई नो बहुत से लोग जुड़ जाते हैं कैरेक्टर्स के साथ, जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनको बहुत गालियाँ मिलती हैं, बट इट्स वे जस्ट एक्टर्स, वे डूइंग आर जॉब, सो जस्ट लव, कीप लविंग अस। या
3: मुंबई से रूपुर माउची और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्ती के इस खूबसूरत रिश्ते को, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम फ्रेंडशिप डे, और हमारे साथ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज को सेलिब्रेट करने आ गई हैं भूत बंगला फेम भावना पानी। तो चलिए करते हैं उनसे ये खास मुलाकात, करते हैं इनसे ढेर सारी बातें, लेकर चलते हैं आपको इनके पास।

2000 के दशक में दिल धपाक गाने से हिट हुई भावना एक बार फिर से लौटी है अपनी इनिंग के साथ, और अपनी फिल्म और वेब सीरीज की सक्सेस के मौके पर उन्होंने कराया एक फोटोशूट जहां पर उनके चार चार ग्लैमरस अंदाज देखने को मिले। ब्लू कलर में उन्होंने इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस का फोटोशूट कराया जहां पर उनका अंदाज खास है, स्टाइलिंग खास है, ज्वेलरी खास है, सबसे खास है उनकी सादगी जो इस फोटोशूट में देखने को मिली। तो आइए आपको दिखाते हैं भावना पानी का ये खास फोटोशूट जहां पर उनके अलग अलग ग्लैमरस अंदाज दिख रहे हैं।

0: जो ट्रेडिशनल साड़ी की तरह नहीं बल्कि एक इंडो वेस्टर्न साड़ी के रूप में है, जो नई ब्राइड से लेकर कोई भी पहन सकता है। भावना पानी ने कराया इन सभी ड्रेसेस में अपना एक फोटोशूट और साथ साथ अपनी नई इनिंग्स के बारे में भी बात की।
1: मेरी पहली इनिंग्स हुई थी अर्लियर इन द ईयर इन द सेंचुरी एंड अब मेरा सेकंड इनिंग्स है एंड आई एम रियली एक्साइटेड नॉट ओनली एज एन एक्ट्रेस बट आल्सो एज अ डायरेक्टर एज यू नो कोरियोग्राफर एज अ क्लासिकल डांसर एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर। सो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज ऑल्दो ये जो लुक्स हैं ये इंडियन है बट इट्स नॉट वेरी ट्रेडिशनल, इट हैज़ अ कंटेम्प्रेरी लुक टू इट। सो हमारी जो आजकल की ब्राइड्स हैं, आजकल हमारे जो वेडिंग में गेस्ट्स होते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, उनको जो भी कपड़े होते हैं, नॉट नेसेसरी दैट दे हैव टू बी ट्रेडिशनली ड्रेस्ड, दे कैन बी ट्रेडिशनल विद अ ट्विस्ट।
0: भावना की एक्सेसरीज काफी खास थी, फिर चाहे वो उनकी मैचिंग सिंपल इवनिंग गाउन्स के साथ ज्वेलरी हो या फिर उनकी साड़ी के साथ ज्वेलरी, वैसे इन सब के बीच में उनका साड़ी वाला लुक काफी एलिगेंट था और उससे मैचिंग ज्वेलरी भी।
1: ये इयररिंग्स भी एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड उषा का ब्रांड है एंड इट्स कॉल्ड ड्रामा क्वीन, वेरी वेरी गॉथिक चंकी ज्वेलरी, अगेन इंडो वेस्टर्न, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स है।
2: इतना बड़ा महल छोड़ के जाओ, पागल नहीं हूँ मैं, लौट जाओ और मेरे कपड़े लेके आओ और उसके बाद
0: भावना पानी के लिए 2026 उनके कमबैक का साल था, क्योंकि जहां वो फिल्मी पर्दे पर अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला में दिखी, वहीं पर ओटीटी के मंच पर राजकुमार हिरानी की वेब सीरीज प्रीतम और पेड्रो में भी उनका ये खास रोल था। तो आइए जानते हैं उनकी इस नई इनिंग के बारे में, जहां फिल्म और ओटीटी दोनों में एक साथ दिखी भावना पानी, और जहां फिल्म उनकी सुपरहिट रही वहीं वेब सीरीज को भी क्रिटिकल एक्लेम मिला।
1: मैं हर चीज़ में अडेप्ट कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अभी रिसेंटली मैंने थिएटर म्यूजिकल्स डायरेक्ट करना शुरू किया है, तो उसमें भी मैं बस, मुझे भी पता नहीं था कैसे मैं शिफ्ट हो गई, बट हो गई। तो आई थिंक मेरी पर्सनालिटी ही है वैसी कि जहाँ भी आप मुझे डाल देंगे मैं वहाँ अपना बेस्ट दूँगी और आई विल मेक श्योर दैट आई रियली वर्क हार्ड एंड do a good job and leave a lasting impression. बहुत अलग भी है और बहुत similar भी है. Similar इसलिए है क्योंकि दोनों ही बहुत ही amazing storytellers हैं and उनके काम करने का तरीका, because वो अपने craft में इतने masters हैं कि set पे एकदम शांति होती है, मज़े का माहौल होता है और कोई टेंशन नहीं, सारा काम इवन अगर लेट भी हो रहा है या फिर समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, कोई स्ट्रेस नहीं, दे ऑलवेज फाइंड अ वे आउट। एंड दोनों से मैंने एक चीज़ सीखी कि स्क्रिप्ट इज़ द हीरो, बाकी आपके पास जितने भी बड़े हीरो हो जाए, आपकी फिल्म या आपका जो स्टोरी है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आपकी स्टोरी टेलिंग, आपका स्क्रीन प्ले, आपके डायलॉग्स और आपकी राइटिंग अच्छी नहीं। वेरी पंक्चुअल, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम बिफोर एवरीबडी एल्स, मतलब कोई भी थोड़ा डामाडोल हो सकता है बट नॉट हिम। सो या लॉट्स ऑफ ग्रेट क्वालिटीज एंड सो फिटनेस कॉन्शियस, एंड कोई उनको देख के बोलेगा नहीं कि वो उस एज के हैं। सो या इट वॉज ग्रेट। परेश सर ऑल्सो, राजपाल जी ऑल्सो, दे आर सो यूथफुल, यू नो इट्स अमेजिंग टू वॉच। एक्चुअली ना हम लोग प्रदर्शन सर ऐसे काम करते हैं कि वो एक तो स्क्रिप्ट जो लिखा जाता है लेकिन एक्टर्स के साथ वो ऐसे इम्प्रोवाइज करते हैं, एंड अक्षय सर की खुद की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। सो यू नो राजपाल जी, परेश जी, अक्षय जी, मैं, प्रियंक सर, हम सब लोग मिल के सीन बनाते थे और एंड इट वुड वर्क, और हमको पता लगता था दैट यस इट्स वर्क, बिकॉज सेट पे जब कट होता था भै भै करके सब हंस पड़ते थे, तो यस वी न्यू दैट इट्स अ गुड थिंग। यस तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा हो गया. मुझे लगा इट्स नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट रोल. हाँ फिल्म बहुत बड़ी है तो मैंने हाँ कर दिया. लेकिन जब फिल्म बन के रेडी हुई और मैंने देखा, मैंने कहा अरे वाह इसमें तो अच्छा रोल है मेरा. और अकॉर्डिंगली लोगों का प्यार भी बहुत मिला एंड बहुत प्यार दे रहे हैं. बहुत टचवुड गॉड इज़ ग्रेट. बहुत काम भी मिल रहा है बहुत. तो आप आई एम श्योर आने वाले साल में भी बहुत सारा मेरा काम देखेंगे.
0: भावना पानी ना सिर्फ एक अभिनेत्री बल्कि एक डायरेक्टर कोरियोग्राफर भी है और इस साल उनके ढेर सारे और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिसकी एक झलक उन्होंने अपने इस फोटोशूट में दिखलाई. तो उम्मीद है कि भावना पानी की नई इनिंग्स जो एक हिट फिल्म और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज की है वो आगे भी कामयाब रहे.
1: एक्चुअली अगली जो मेरी फिल्म आ रही है वो बहुत ही अलग है कॉमिक जॉनर से. इट्स अ थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर. सो यस. बट ऑफकोर्स मेरी प्रीतम एंड पेट्रो भी आई विच इज़ कॉमेडी. अगेन कॉमेडी बट विथ लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल सोलफुल ड्रामा. तो वो भी बहुत लोगों को पसंद आया. देर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क. मेहनत सिर्फ यहाँ से नहीं होता, मेहनत यहाँ से भी होता है. अपने स्क्रिप्ट पे काम करिए, अपने कैरेक्टर को सोचिए और बेफिजूल मतलब रिसर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा उसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट अपनी लाइनें याद रखिए, अपनी लाइट्स, अपना ब्लॉकिंग, लोगों की अवेयरनेस और वो सब तैयारी के साथ आइए सेट पे.
0: तो ये थी भावना पानी जिनका एक खास फोटोशूट ग्लैमरस अंदाज आज हमने दिखाया सास बहू और पेटिया में. तो उम्मीद है कि जल्दी भावना पानी के और प्रोजेक्ट्स आएं और वो इसी तरह चमकती रहे. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
3: जब कोई बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा होना वही सच्चा दोस्त कहलाता है. कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी मन्नत. वैसे मन्नत और विक्रांत आप दोनों की दोस्ती भी तो कुछ ऐसी है एकदम पक्की. हाँ वो अलग बात है कि आप दोनों के रिश्तों में आ जाती है कभी कभी कड़वाहट, कभी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स. लेकिन जहां होता है प्यार वहां तो होता है फॉरएवर एक साथ रहने वाला प्रॉमिस भी. तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन्नत के सेट पर.
4: खतरे में विक्रांत की जान. बढ़ी मन्नत की परेशानी. बेकाबू हुई मान्यता. कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में हॉस्पिटल से किडनैप हुआ विक्रांत और देखिए कैसे उसके लिए बेचैन हो रही है मन्नत. भाई वो उसे ढूंढते ढूंढते टेरिस तक पहुंच गई है लेकिन विक्रांत का कोई पता ही नहीं चल रहा है जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान है. ऐसे में उसने विक्रांत को सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं ना कहीं उसे दिल ही दिल में ये एहसास हो रहा था कि विक्रांत आसपास ही है. तभी तो देखिए कैसे जब वो इस पानी की टंकी के पास आई तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उसे एहसास हुआ कि विक्रांत यही है. और जैसे ही उसने इस पानी की टंकी में देखा भाई उसका शक यकीन में बदल गया क्योंकि विक्रांत पानी की टंकी में ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि वो बेहोश है. उसे तो पता ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया है.
5: विक्रांत! देखा था मैंने देखा था. नहीं नहीं, इसको बटन दबाने को. विक्रांत!

0: धैर्य जी ने वो किया है किडनैप, विक्रांत को दोबारा मारने की कोशिश, और उसमें डाल दिया है और टैंकी में, और मन्नत ढूंढ रही है एंड समहाउ मन्नत हैज फिगर्ड कि टेरेस पे होंगे वो, तो शी इज हाय, कितने स्मार्ट लग रहे हैं यार आप.
1: नहीं नहीं, बिकॉज या मैं सर को कह रहा था कि आई एम लाइक यार इतना प्रेशर क्यों आ रहा है. I'm in a pool, I swim, I go underwater and stuff like that. But surprisingly, it's something very interesting I learned. There was, even if I'm going 6 inches below and underwater, pressure bahut ho ja raha tha, pata nahin kyun.
0: Kyunki closed area hai, pool bada hota hai, toh.
1: Not because of that, because of the, sir says it the best, because I'm, nervousness, my breath is different and then I'm trying to do something. The whole point was me trying to move, toh kaafi interesting tha yaar. I get very excited. एक्शन सीन से पहले मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ.

0: वहीं दूसरी तरफ बेकाबू हो चुकी है मान्यता, क्योंकि उसका अभिमन्यु उससे दूर जो चला गया है और देखिए कैसे उसे कोई भी काबू में नहीं कर पा रहा है। भाई वो तो अपने ही जान की दुश्मन बन चुकी है।
1: भाभी अब छेती घर आ जाओ, मान्यता को संभालना मेरे बस की बात नहीं है, वो किसी के काबू में नहीं आ रही। ये देखिए, हाँ भाभी दवाई दी थी, दवा लेने के बाद थोड़ी देर के लिए गहरी नींद में सो गई, लेकिन जैसे ही दवाई का असर कम हुआ उठ के फूट फूट के रोने लगी, खुद को मारने के लिए चाकू ले लिया। भाभी मुझे डर लग रहा है इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाए अब छेती आ जाओ। छोड़ो, मैं बोल रही हूँ छोड़ो मुझे, मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती।
2: और सडनली मान्यता बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है कि नहीं मुझे अभिमन्यु चाहिए कैसे भी करके। तो हम सर्च कर रहे हैं हॉस्पिटल में कि कहाँ हो सकता है वो, और यहाँ पर हमें फ़ोन आता है कि मान्यता अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे उसे बचाने के लिए। तब तक आपने देखा ही है कि इंस्पेक्टर हमारे घर आ गए हैं, तो अब ये सर्च करेंगे कि कहीं हमने तो अभिमन्यु को नहीं छुपाया है।
0: इसी के साथ साथ सम्राज्ञी के घर पहुंच गई है पुलिस, वो भी धैर्य के साथ, क्योंकि धैर्य ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मान्यता और सम्राज्ञी ने विक्रांत को गायब किया है, जिसके चलते हो गई है सम्राज्ञी की गिरफ्तारी।
3: लेके तो तब जाओगे जब वो यहाँ होगा, तुम लोग खुद अभिमन्यु को उठाकर मंडप से ले गए तो हमारे पास कैसे हो सकता है। मैं तुमको झंडा बोलूँ तब तुम यहाँ से हटो। और सुनो, विक्रांत अभिमन्यु मुझे भेजे थे ना हॉस्पिटल में, उसको मैं तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा।
4: रोकेगा कौन? तुम रोकोगे तो साथ में लेके जाएंगे। चलोगे
3: क्या?
4: चलोगे?
5: सब ठीक है? जान के ऊपर झंडे का अटैक हॉस्पिटल। किसने की? सम्राज्ञी की छोटी बहन माने पर।
6: क्या बकवास कर रहे हो?
5: सच बोलना बकवास है तो बकवास कर रहा हूँ पाटिल
6: जी।
5: मान्यता ने अभी बोला है कि अगर विक्रांत उसका नहीं हो सकता तो वो मन्नत का भी नहीं होने देगी। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये अटैक उसने करवाया। मान्यता को बोला है अरेस्ट करो अभी।
6: वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो घर पर ही थी, वो कहाँ गई? वो तो हम लोग के साथ हॉस्पिटल भी नहीं गई।
5: फिर आप हॉस्पिटल गई थी पाटिल? तुमको मालूम है क्या
7: जी?
3: एक मिनट, हम लोग हॉस्पिटल जरूर गए थे लेकिन हमने किया कुछ नहीं।
7: आपने क्या किया ये मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले आपने विक्रांत की पहचान छुपाई, फिर उनके परिवार वाले को उनसे मिलने के लिए रोका, मन्नत जी पे हमला कराया, इतना करने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं। पर ये सब आपके भेजे हुए गुंडों ने ही बताया मुझे। उन्होंने ही बताया कि ये सब करने के लिए सम्राज्ञी जी ने कहा विक्रांत पे हमला हुआ है। हो सकता है आपकी बहन ने ना किया हो, आप भी तो कर सकती हैं। इसलिए आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको अमरसर पुलिस स्टेशन करना होगा।
0: ऐसे में अब देखना होगा कि क्या मन्नत के सामने धैर्य का असली रूप आ पाएगा और क्या विक्रांत की याददाश्त लौट आएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: में ना तो कोई शर्त होती है ना उम्मीद, बस साथ निभाने का वादा होता है। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंडशिप डे को और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को। तो चलिए अब लेकर चलते हैं हम आपको हमारी इस अगली खबर की ओर, जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा, सब कुछ एक साथ। मैं जानती हूँ आपसे नहीं हो रहा है इंतजार, गेट सेट गो।
0: खतरे में टिन्नी की जान,
9: बेटी वापस मिलेगी तब तुम कुछ करोगी ना।
0: नोएनिका पर लगे इल्जाम,
9: हमारा साया अपनी बेटी में पढ़ने नहीं, तुम बस एक बात याद रखना, तुम
10: आज के बाद अभी शान के साथ कोई रिश्ता नहीं है, शान से कोई कॉन्टैक्ट नहीं।
0: माँ ने किया बेटी से वादा,
10: उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं।
0: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में भाई जब से ही टिन्नी और सभी घर वालों को नोएनिका और ईशान की वेडिंग की वायरल तस्वीरें मिली है, यानी कि सिंदूर लगाने वाली फोटो, भाई देखिए कैसे घर में तमाशा शुरू हो गया। भाई इतना ही नहीं, बिगड़ गई टिन्नी की तबीयत और इतना कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसे में यहाँ पर पहुँच गया है नोएनिका का एक्स हस्बैंड, जो देखिए कैसे नोएनिका को अपनी ही बेटी से दूर कर रहा है।
9: जाओगी
6: ये मेरी बेटी की जिंदगी का दरार है, नहीं तुम मुझे मना नहीं कर सकते।
9: मैं तुम्हारी बेटी वापस मिलेगी तब तुम कुछ करोगी ना। मैं नहीं चाहता, लेकिन तुम भी वहाँ काम करती हो, माँ नहीं लेके जाऊंगा, तुम्हारा साया अपनी बेटी में पढ़ने नहीं, तुम बस एक बात याद रखना। तुम
11: ये सच बदल नहीं जाता कि बचपन से हमें इतना प्यार दिया है इन्होंने, इतना ध्यान लगाया हम सबका।
12: और टिन्नी प्लीज पूरी बात जाने बगैर मम्मा का आरोप तो मत लगाइए, एटलीस्ट इन्हें एक मौका तो दीजिए निभा सकने का।
6: और एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से हम ये सब नहीं भूल सकते, और हम क्या, कोई भी इस दुनिया में कभी मम्मा को जज नहीं कर सकता। मम्मा प्लीज चलिए,
11: चलो चलो चलो।
0: ऐसे में देखे कैसे अस्पताल ले जाने के बाद टिन्नी होश में आई और जैसे ही उसने अपने बाबा को देखा भाई वो गुस्सा करने लगी, लेकिन यहाँ पर टिन्नी के बाबा उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तक बता रहे हैं कि वो उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन टिन्नी को उनकी मौजूदगी से भी नफरत है।
13: आज ऐसे हालात पैदा हो गए कि तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा कि तुम्हारी जान को मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मेरी एक ही विश थी कि हम बस मेरी टिन्नी को बचा दे, बस मेरी टिन्नी बच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।

0: ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें बोल के अभी के अभी मेरे सामने से चले जाए, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखती। प्लीज बोल इन्हें कि यहाँ से चले जाए।
1: नहीं नहीं बेटा, ओके ओके मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ओके, इफ दैट्स व्हाट यू वांट। शिशो, देखो तुम भी मुझे अच्छे दोस्त हो।
2: ऐसे में नयनिका भी अस्पताल पहुंची और देखिए, पहुंचते ही उसने अपनी बेटी को ये बता दिया कि उसने ईशान को ब्लॉक कर दिया है और उसके लिए उससे इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है।
0: मुझे प्रॉमिस कीजिए, आज के बाद अब ईशान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं ईशान के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अगर मैं मर जाती आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने मुझे उसकी बात समझ में आई, बस ये आपको शादी करने का बहुत मन था, इसलिए उसे आप रोक नहीं पाए। अपनी सारी इच्छा, सारी खुशियां, सब पाने मिला। अब मुझे पूरी जिंदगी में कोई इच्छा नहीं होगी। मैं तुझे छूकर बोल रही।
2: इतना ही नहीं, देखिए कैसे अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसने कसम भी खाई है कि वो आज के बाद ईशान से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी।
0: आपके पास वापस आ जाते हैं।

0: नॉइनी का आ गई है कोलकाता और बहुत कश्मकश में, बिकॉज जब वो एंटर होती है तभी वो एकदम शॉक हो जाती है कि क्या हो रहा है, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है घर पे, कितना मातम सा माहौल बना हुआ है और आस पड़ोस के लोग आ गए हैं घर में, तो वो ऑलरेडी बहुत बेचैन है। और जैसे वो घर आती है तो देखती है कि तिन्नी बेहोश पड़ी हुई है और एक्स हस्बैंड उसको गोद में लेकर के जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो वो पीछे पीछे भी भागती है कि प्लीज़ मुझे, मैं जाऊँगी तिन्नी के साथ, मैं माँ हूँ उसकी, लेकिन तिन्नी नहीं बात करना चाहती बिकॉज तिन्नी की कंडीशन आ चुकी है कि या तो वो ईशान को ब्लॉक कर दे और फिर मुझे अपनाए या तो फिर मुझे पूरी तरह से भूल जाए। तो ये जो इतनी बड़ी कंडीशन तिन्नी ने रखी है, तो आज नॉइनिका के लिए दरवाजे दो हैं, या तो तिन्नी को चूज़ करे या तो ईशान को चूज़ करे, तो वो तिन्नी चूज़ करती है बिकॉज़ अपनी बेटी है, वो अपनी बेटी के लिए ही जी रही है और उसके लिए तिन्नी से ऊपर कुछ भी नहीं है। और वो बार बार बोल भी रही है, जो तू बोलेगी वही मैं करूँगी ऐसे। तो अभी हम हॉस्पिटल आए हुए हैं तिन्नी को देखने के लिए और तिन्नी को मैंने बोल दिया है कि हाँ चल, मैंने ईशान को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन तू मेरे लाइफ में तू मत जाना कहीं।
1: ऐसे में देखना होगा कि अब क्या मोड़ लेगी ईशान और नॉइनिका की प्रेम कहानी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्ती के इस खूबसूरत रिश्ते को, सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंडशिप डे। तो कौन सेलिब्रेट कर रहा है इस दिन को, किस तरह, कहां पर बिखरे हैं दोस्ती के रंग, पक्की वाली दोस्ती और सच्ची वाली दोस्ती। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर।
1: सौ सालों के सेलिब्रेशन में नजर आए सितारे, एक शाम सितारों के नाम, टेलीविजन कलाकारों का दिखा जगमगाता अंदाज। जी कुटुंब का पूरा परिवार आज एक साथ आ गया है, क्योंकि भाई जी की पेरेंटहुड कम

कंपनी एसएल ने पूरे कर लिए हैं 100 साल। ऐसे में ये कलाकार इस सेलिब्रेशन को और भी खास बनाने के लिए इस रेड कारपेट पर नजर आए। मैं आपको बता दे कि जी ग्रुप एक ऐसा चैनल है जो 2004 में पहली बार सैटेलाइट पर सभी के लिए आया था और दर्शकों ने इनके सभी शोज को बेहद एंजॉय किया था। ऐसे में आज नए पुराने सभी कलाकार इस रेड कारपेट पर चमचमाते हुए नजर आए और सभी अपनी पुरानी यादों को ताजा भी किया। मैं आपको बता दे कि आज यहाँ पर सभी कलाकार सज धज कर पहुँच गए हैं और इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे जी टीवी की खूबसूरत हसीनाओं की। भाई सबसे पहले याद करते हैं सलोनी यानी कि राजश्री ठाकुर को, जिनके सीरियल्स ने सभी का दिल जीत लिया और इनकी अदाकारी ने इस सीरियल में 4 चांद लगा दिए। इसके अलावा अपने किरदार से बेहद हटकर निहारिका चौकसी यानी कि अनु इस रेड कारपेट पर नजर आ रही हैं, जिन्होंने आज अपने लिए चुना है वेस्टर्न आउटफिट। भाई वैसे तो ये सीरियल में इंडियन अंदाज में नजर आती हैं, लेकिन आज ये यहाँ पर बेहद ही अलग लग रही हैं। इसके अलावा मैं आज वेस्टर्न अंदाज सभी ने अपनाया है, जैसे कि आप सबकी प्यारी सरू यानी कि मोहक मटकर ने, रचना मिस्त्री यानी कि जागृति ने, सोनाक्षी बत्रा यानी कि जगधात्री जो इस ब्लैक कलर के आउटफिट में बेहद ही कमाल लग रही है। तो उसी के अलावा यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुँच गई है आप सबकी प्यारी वसुधा यानी कि प्रिया ठाकुर, जो आज भी यहाँ पर इंडियन अंदाज में ही नजर आ रही है। भाई वैसे तो सीरियल में उन्हें साड़ी वाला लुक दिया गया है, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पर पहना है सूट जो उन पर बेहद अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कई सारे चेहरे यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं, जैसे कि नितांशी गोयल, आरती सिंह, रागिनी, जयती भाटिया, आप सबकी प्यारी चंद्रिका यानी कि परिणीता बोर ठाकुर, पूनम ढिल्लों, चिंकी मिंकी।

आप सबकी प्यारी भाभी जी यानी कि शुभांगी आत्रे और विदिशा जो अंगूरी और अनीता भाभी का किरदार निभाती है। इसके अलावा हुनर हाली जैसे कई और कलाकार यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुँचे

वही वैसे यहाँ पर कलाकार जोड़ियों में भी आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रवि और सरगुन की 12/24 करोल बाग, जिसमें ये दोनों साथ नजर आए और उसी के बाद शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी।

इसके अलावा यहाँ पर नजर आए गौरी टोंक, यश, गुरमीत तेबिना, करण पूजा, मिश्कत वर्मा, मानसी सालवे, अक्षता राघव।

की बात करें तो यहाँ पहुँच गए हैं अर्जुन बिजलानी, शरद अभिषेक शर्मा, शगुन पांडे, जय भानुशाली, फरमान हैदर, करणवीर ग्रोवर, धीरज धूपर, अनुरंजन।

पर इसके अलावा कई और पुराने चेहरे भी नजर आए, जैसे कि भूषण आर कर्णी और राकेश बेदी। इसके अलावा कई और कलाकार बने इस शाम के खास मेहमान, जिसने इन 100 सालों की पार्टी में शामिल होकर इस पार्टी को और भी यादगार बना दिया।

0: उम्मीद करेंगे कि ये कलाकार यूं ही आपका मनोरंजन करते रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: दोस्ती सिर्फ एक दिन मनाने का रिश्ता नहीं है, ये तो जिंदगी भर का एहसास है। और आज फ्रेंडशिप डे पर हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके अपने दोस्त आपके चेहरे की मुस्कान के हमेशा वजह बने। तो इसी बात पर आपको फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मनाइए ये दिन अपने दोस्तों के साथ। अब लेते हैं आपसे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्कार, बाय बाय।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
9: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स,
10: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: CWG में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत, पहनाई गई फूल मालाएं। सत्रह साल की भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास, जीता अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब, वियतनाम की थुई को 21-16 से हराया। देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ, 28,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। भदोही में NH-19 की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित, 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर पुलिस ने की पुष्प वर्षा। असम में बाढ़ प्रभावितों को फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग भी राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं खाना और जरूरी सामान। केरल के इदुकी में भारी बारिश के बाद खोले गए मलंकारा डैम के 5 गेट, राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: कॉमनवेल्थ खेलों का आज आखिरी दिन, हाइड्रो में होने वाले आधिकारिक समारोह में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को 9 पदकों की उम्मीद, ओलंपिकियन अवतार सिंह जूडो में दिला सकते हैं पदक। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम, शनिवार को 8 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में चौथे पायदान पर पहुंचा भारत। पुरुष मुक्केबाजी के 60 किलो वर्ग में भारत ने झटका गोल्ड, बॉक्सर सचिन सिजपाच ने शानदार प्रदर्शन करके जीता स्वर्ण। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स से एथलीट्स की वापसी हो गई शुरू, कई पदक विजेता भारतीय वेटलिफ्टर एथलीट्स दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। स्वर्ण पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू और लवप्रीत सिंह सहित कई खिलाड़ी स्वदेश लौटे। लगाड़ों के साथ खिलाड़ियों के स्वागत में लोगों ने जमकर डांस किया, खिलाड़ियों ने भी लोगों को धन्यवाद दिया। खिलाड़ियों ने CWG में प्रदर्शन पर जाहिर की खुशी, बोले अब एशियाई और ओलंपिक खेलों में देश का परचम लहराना है। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल को लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली पहुंचे बॉक्स जादूमणि सिंह का जोरदार स्वागत हुआ, लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। भारतीय शटलर तन्वी शर्मा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ताइपे सुपर 300 का खिताब हमने नाम किया। 17 साल की तन्वी ने पहला वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम कर लिया, सीधे मुकाबले में वियतनाम के गोयन को मात दी। सबसे कम उम्र में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बन गई तन्वी, कोरिया के महान डबल्स खिलाड़ी ली यूंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत और मलेशिया की अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम के बीच बेंगलुरु में होगा मुकाबला, 7 से 13 अगस्त तक खेली जाएगी सीरीज। भारत और मलेशिया की टीमों का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले मिलेगा अभ्यास करने का मौका। श्री अमरनाथ यात्रा का 31वां दिन आज, श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से भेजा जा रहा था। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फान के दर्शन कर चुके हैं, यात्रियों में पूरा उत्साह। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 3,886 श्रद्धालुओं का नया जत्था हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकूट से गुजरा, सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं की यात्रा सुचारू रूप से जारी। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर मौसम और ट्रैक की स्थिति की लगातार निगरानी जारी, यात्रियों को भी सतर्क रहने की एडवाइजरी। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय महीने सावन का आज पहला रविवार, देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा पाठ के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा के चलते 3 से 12 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद, जिला प्रशासन का आदेश। मेरठ में भारी संख्या में कांवड़ियों की हो रही आवाजाही, कांवड़ मार्गों पर यातायात डायवर्जन योजना लागू की गई। कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को बरखा, रेस्क्यू मॉक ड्रिल का आयोजन किया। कम उम्र पर भारी नजर आई आस्था, झारखंड के धर्माद बुजुर्ग पुरुष और महिला भी कांवड़ यात्रा में हो रहे हैं शामिल। हरिद्वार पुलिस प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रियों का स्वागत हुआ, फूलमाला पहनाने के साथ नाश्ते का भी इंतजाम। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर मुजफ्फरनगर पहुंचने लगी कांवड़ियों की भारी भीड़, 24 घंटे सड़क पर अलर्ट मोड में अधिकारी तैनात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर सावन को लेकर खास इंतजाम, फूड प्लाजा में लगाया गया सात्विक भोजन का स्टॉल। उत्तर प्रदेश के भदोही में कांवड़ यात्रियों को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम, रास्ते पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। भदोही में कांवड़ यात्रियों के लिए नेशनल हाईवे की एक लेन की गई आरक्षित, इस लेन से केवल कांवड़िए और उनके जत्थे ही गुजरेंगे। दुमाला में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन पूजा। तिरुमाला में हार्दिक पांड्या ने मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान से सुख शांति और सफलता का आशीर्वाद। सावन के पहली रविवार पर महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने हिस्सा लिया, बाबा महाकाल के दर्शन करके पूजा पाठ। सावन के चलते कालकाजी मंदिर में बढ़ी भक्तों की संख्या, कल पहले सोमवार को लेकर विशेष इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी ने की नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत, 100 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। देशभर में 28,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बताया भारत की असली ताकत, नशे से दूर रहने का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने नशे को बताया राष्ट्रीय की शक्ति कमजोर करने वाला, अगले 100 रविवार तक चलेगा नशा मुक्ति अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने नशा कारोबारियों पर सख्ती बरतने की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में PBG सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैनिकों के सम्मान में किया जा रहा है सोल्जर थॉन का आयोजन, फिटनेस और देशभक्ति का संदेश। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का 84वां संस्करण का आयोजन किया गया, नशा मुक्त भारत थीम के साथ लोगों ने साइकिल चलाकर फैलाई जागरूकता। कर्नाटक के बल्लारी में स्टील सिटी रन 2026 मैराथन का आयोजन किया गया, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। श्रीनगर में बारिश के बीच सुहाना हुआ मौसम, हल्की फुहारों के बीच लोग उठा रहे हैं पर्यटन का लुत्फ। श्रीनगर की डल झील में दिख रहा खूबसूरत नजारा, लेक किनारे के वुड हाउस में लोग ले रहे हैं मौसम का मजा। बारिश से पूरी तरीके से भीगी हुई है श्रीनगर की सड़कें, नहाए हुए से नजर आ रहे हैं पेड़ पौधे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खेतों और गांवों में भरा पानी। असम के बाढ़ प्रभावित जिले शिवसागर पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा, पीड़ितों और राहत के काम में लगे वॉलंटियर्स से बातचीत की। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, सफारपुरा इलाके में कई घर पानी पानी। गांधरबल में प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान किया जारी, नुकसान का आकलन कर रही अधिकारियों की टीम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद रास्ते को किया जा रहा है साफ, BRU की टीम मलबा हटाने के कार्य में जुटी। लद्दाख के करगिल में भारी बारिश से चिक्तान और समरा इलाके में अचानक बाढ़ आई।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: Tune in how to A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: CWG में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत, पहनाई गई फूलमालाएं। 17 साल की भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास, जीता अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब, वियतनाम की थुई को 21-16 से हराया। देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ, 28,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। भदोही में NH-19 की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित, 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर पुलिस ने की पुष्प वर्षा। असम में बाढ़ प्रभावितों को फिल्म अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा ने बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग भी राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं खाना और जरूरी सामान। केरल के इदुक्की में भारी बारिश के बाद खोले गए मलंकारा डैम के 5 गेट, राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। दावा ये किया जाता है कि एक ऐसा शिवलिंग है जो हर साल थोड़ा सा बढ़ जाता है और कहते हैं कि स्थापित है एक मणि के ऊपर। इस मंदिर से जुड़ी वो कहानी भी आपको बताएंगे कि कैसे शिव की मणि राजा युधिष्ठिर से होते हुए मतंग मुनि के पास पहुंच गई। साथ ही जानिए यूनेस्को की धरोहर कहे जाने वाले खजुराहो में मंदिरों की श्रृंखला के बीच बना मतंगेश्वर महादेव के अद्भुत मंदिर के बारे में, जो कई मायनों में खास है। आज हम आपको मतंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन पर लेकर चलेंगे।
1: क्या वाकई ये शिवलिंग बढ़ता जा रहा है? आखिर इस मंदिर में मरकत मणि होने का दावा क्यों किया जाता है? आखिर किस डर से वो मणि शिवलिंग के नीचे दबा दी गई? क्यों इस मंदिर में माता पार्वती के पैर दबाकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो में बने मतंगेश्वर महादेव मंदिर की। दावा किया जाता है कि ये मंदिर अपने आप में कई चमत्कारों को समेटे हुए है। मतंगेश्वर महादेव के इस मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि ये धरती के ऊपर भी 9 फीट है और धरती के नीचे भी 9 फीट। कहते हैं कि इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि इस शिवलिंग का आकार बढ़ता है।
2: जैसे नाम से ही इसका पता लगता है, मतंगेश्वर महादेव भगवान शिव का ऐसा अद्भुत स्थान है मध्य प्रदेश में स्थापित, जो कि हर पूर्णमासी के दिन एक तिल के समान बढ़ जाता है। और कई बार लोगों ने प्रत्यक्ष इसको नाप कर भी इस बात का अनुभव किया, और ऐसा माना जाता है कि जितना ये ऊपर है उतना ही धरती के नीचे भी उतना ही है। बड़ा दिव्य स्थान है, मतंग ऋषि की तपस्थली है और उन्हीं की कृपा से इसका नाम मतंगेश्वर महादेव कहलाता है।
1: खजुराहो का नाम आते ही मंदिर की विस्तृत श्रृंखला का चित्र हमारे जहन में उभरता है। चंदेल राजाओं का धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के प्रति विश्वास की झलक दिखाई देती है। जहाँ आस्था है, भक्ति है, देवाधिदेव महादेव के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव है। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी के चंदेल राजा शिव भक्त थे, जिसका जीवंत प्रमाण हमें आज भी मिलता है। आस्था कहती है कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले किसी भी भक्त की अर्जी खाली नहीं जाती। यहाँ दर्शन करने से सभी कष्ट मिट जाते हैं और कामना पूर्ति का वरदान मिलता है। कहते हैं कि महादेव का ऐसा दिव्य स्वरूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। भोले भंडारी का यह मंदिर खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। खजुराहो खुद में इतिहास को समेटे है। यहाँ भोलेनाथ के प्रति भक्तों की अपार आस्था है और महादेव का ये प्राचीन भव्य शिवलिंग उसी इतिहास का साक्षात उदाहरण है। अब जानकारों की माने तो मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 920 ईस्वी के लगभग चंदेल राजा चंद्रदेव ने करवाया था। हालांकि इतिहासकारों में मंदिर के निर्माण को लेकर मतभेद हैं। कई जानकारों का कहना है कि मंदिर का निर्माण हर्षवर्मन ने कराया था। इस काल में ये मंदिर शक्ति पूजा का बड़ा केंद्र माने जाते थे। मतंगेश्वर महादेव में आज भी पूजा पाठ होती है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक मणि है। मणि के ऊपर महादेव का 18 फीट ऊंचा शिवलिंग है। ये शिवलिंग 9 फुट जमीन के अंदर और करीब 9 फीट जमीन के ऊपर है। मतंगेश्वर महादेव के दर्शन से सारी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं।
2: मंदिर के विषय में प्रचलन है कि भगवान शिव की दी हुई एक विशेष मणि, मरकत मणि जिसे कहते हैं, मतंगेश्वर महादेव के नीचे भूमि में डाली गई है। उसी के ऊपर यह शिवलिंग स्थापित है। उस मणि का विशेष प्रभाव है कि वो मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। तो भगवान ने चंदेल वंश के सम्राटों को ये दे दी थी ताकि केवल मेरे पास ही ना रहे, इस शिवलिंग के दर्शन करके जो जल चढ़ाए उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस कारण से जो व्यक्ति इस मंदिर में जाकर पूजन करे उसका मन इच्छा वरदान प्राप्त हो जाता है।
1: इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थान दिया जाता है। इतिहास में यहाँ 85 मंदिरों के होने की बात कही जाती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आज यहाँ सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। ये मंदिर अपने अद्भुत शिल्प के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। 9वीं सदी की कलाकृतियां आज भी इस मंदिर में दिखाई देती हैं। अब जब हम मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें भोलेनाथ के दर्शन के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद आपको सबसे पहले दर्शन होंगे भगवान शिव के पुत्र गणपति के। गणेश जी के दर्शन के बाद पिता से मिलने के लिए पुत्र की अनुमति ली जाती है और फिर उसके बाद भगवान शिव के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह की बात करें तो यहाँ जाने का रास्ता काफी संकरा है, लेकिन कहते हैं कि भक्तों की महादेव से मिलने की ललक के आगे ये रास्ता दुर्गम नहीं लगता, वो आसानी से भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। सावन में तो इस महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। दूर दूर से भक्त यहाँ शिव उपासना के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ति का महावरदान भोलेनाथ से लेकर जाते हैं।
2: भगवान शिव ऐसे हैं जो क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल उनको प्रसन्न करने के लिए आपके मन की भावना शुद्ध होनी चाहिए। लोगों के कल्याणार्थ शिव का अर्थ ही कल्याण है। जो व्यक्ति इस मंदिर में जाए और या भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाए, भगवान को एक लोटा जल और जो किसी को भी अप्रिय है, भस्म आदि, बेलपत्र आदि, धतूरा आदि, भांग आदि, भगवान शिव को चढ़ाए तो भगवान सांगो पांग उसको आशीर्वाद देते हैं और उसके मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। सामान्य उपाय यह है कि भगवान को शुद्ध घी और गंगा जल, कच्चा दूध, जौ और तिल मिश्रित करके जो व्यक्ति शिव पे चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामना सिद्ध हो जाती है।
1: मतंगेश्वर महादेव के प्रति भक्तों की ये श्रद्धा ही तो है। सुबह करीब 5 बजे से यहाँ भक्तों की भीड़ लग जाती है। कोई जल से शिव का अभिषेक करता है तो कोई दूध से अभिषेक करता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुरूप वो महादेव को वस्तुएं अर्पित करता है, लेकिन विशेष कृपा के लिए भक्त बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग भी करते हैं। महादेव का ये दिव्य मंदिर और भी कई मायनों में खास है। कहा जाता है कि भगवान मतंगेश्वर का ये शिवलिंग एक मणि पर बना है, लेकिन वो कौन सी दिव्य मणि है और क्या है मणि से जुड़ी कथा, बताएंगे हम आपको। बस लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
0: खजुराहो में भगवान मतंगेश्वर की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि यहाँ हर कार्य का आरंभ ही मतंगेश्वर महादेव की उपासना

0: नागेश्वर महादेव शिवलिंग के नीचे स्थापित है ऐसा माना जाता है।
1: राजा महाराजाओं के किस्सों में जब भी हमारे सामने किसी चमत्कारी मणि की बातें आती हैं, तो शिव के आभूषण नागों के द्वारा उस मणि की रक्षा की बातें भी की जाती हैं। किसी खजाने की रक्षा भी नागों के द्वारा करने की कथाएं हमने सुन रखी है। मंतगेश्वर महादेव के इस मंदिर के नीचे भी एक मरकत मणि होने की कथा कही जाती है। कथा कहती है कि भगवान शंकर के पास मरकत मणि थी। कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर ने तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया, जिससे शिव ने वरदान स्वरूप युधिष्ठिर को मरकत मणि दे दी। कहते हैं कि एक बार पांडव युधिष्ठिर की भेंट मतंग ऋषि से होती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के प्रताप से प्रभावित होकर युधिष्ठिर वो मणि मतंग ऋषि को दे देते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मतंग ऋषि को दिव्य ज्ञान था। वो जानते थे कि इस मणि के तेज को संभालना आसान नहीं है और उन्होंने अपनी शक्ति से वो मणि एक बड़े से शिवलिंग के नीचे दबा दी। कथा कहती है कि मतंग ऋषि की मणि की वजह से ही इनका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा, जहाँ जाकर भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं। कथा कहती है कि गलत हाथों में पड़ने के डर से ये मणि 18 फीट के शिवलिंग के बीच मणि गाड़ दी गई है और दावा किया जाता है कि तब से वो मणि शिवलिंग के नीचे ही कहीं पर है। कहते हैं कि जो भी खजुराहो आता है वो मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करना नहीं भूलता। चलिए आपको इस मंदिर में शिव का विशेष श्रृंगार कैसे किया जाता है उसकी जानकारी देते हैं।
0: देखिए, किसी भी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा दबी हो, चाहे वो अपने जीवन के सुंदर लक्षणों की हो, स्त्री की हो, पुत्र की हो, मतंगेश्वर महादेव में पूजन करने के पश्चात शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग वस्तुएं चढ़ाएं। जैसे अगर धन की कामना हो, लक्ष्मी की कामना हो, तो काले तिल और बेलपत्र चढ़ाएं। इस प्रकार से उनके मन में धन और लक्ष्मी की कामना पूर्ण हो जाएगी। पर श्रावण मास में पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं।
1: मतंगेश्वर महादेव मंदिर का पहला अभिषेक सुबह 5 बजे किया जाता है। मंदिर में सुबह 5 बजे पहले शिवलिंग को नहलाया जाता है। उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक शुरू किया जाता है। शिवलिंग पर ओम लिखा जाता है। बेलपत्र पर राम राम लिखकर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के अलावा शमी पत्र, धतूरा और फूल भी मतंगेश्वर महादेव को चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर चंदन लगाने की भी यहाँ पर अनूठी परंपरा है। चंदन को पहले पत्थर की सील पर घिसा जाता है। पत्थर से जो चंदन निकलता है उसे भगवान मतंगेश्वर को लगाया जाता है। खजुराहो में भगवान मतंगेश्वर को आराग मानकर पूजने की परंपरा है। यहाँ घरों में मतंगेश्वर महादेव की पूजा करने के बाद ही घर के संस्कारों को शुरू करने की परंपरा चली आ रही है। इस मंदिर की एक अद्भुत परंपरा और भी है। जब बात आती है भगवान भोले को भोग लगाने की, तो उनके पुत्र कार्तिकेय भोलेनाथ से भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले भोग कार्तिकेय जी को लगाया जाता है, उसके बाद बाली भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाने की आती है। मान्यता है कि भगवान भोले को मानने के लिए माता पार्वती के चरण स्पर्श करना भी बेहद जरूरी होता है। इसी वजह से यहाँ पर दर्शन करने वाली महिलाएं भगवान भोले और माता पार्वती के चरण दबाकर उनका स्पर्श करती हैं, ताकि उनके जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण हो सके।
2: चलिए आपको एक और महादेव के अद्भुत धाम में लेकर चलते हैं, जिसकी कहानी लंका के राजा रावण से जुड़ी है। महादेव के इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां दशानन रावण ने अपना पहला सर भगवान शिव को अर्पित किया था। आइए आपको सुनाते हैं दुधेश्वर धाम की युगों पुरानी कहानी।

माना जाता है कि ये वो शिवालय है जो रावण के पिता की तपोस्थली बना। कहते हैं यही लंकापति रावण ने भी महादेव को प्रसन्न करके पहली बार अपना शीश अर्पित किया था। माना जाता है ये वो पावन स्थान है जिसकी स्थापना रावण के पिता विश्वेश्वरा ने की थी। जहां रावण और उसके पिता ने महादेव की तपस्या की, कहा तो ये भी जाता है कि लंकापति रावण

0: ने अपना पहला सिर भी यहीं पर भोलेनाथ को अर्पित किया था। आस्था के इस पौराणिक मंदिर से जुड़ी कई कथाएं और चमत्कारों की कहानियां जुड़ी हैं, जिनके बारे में जितना जानेंगे उतना ही हैरत में पड़ जाएंगे। माना जाता है कि जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित है दुधेश्वर महादेव, जिनकी एक झलक पाकर भक्त निहाल हो जाते हैं। कोई दूध से तो कोई फूलों से दुधेश्वर महादेव का अभिषेक करता है, या यूं कहें कि ये भक्तों की अटूट आस्था का अभिषेक है। जहां भी भगवान शिव की पूजा होती है, वहां नंदी यानी भगवान भोले के द्वारपाल सदैव विराजित होते हैं। बगैर नंदी महादेव की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि हर शिव मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति जरूर रहती है। नंदी भगवान शिव के प्रधान सेनापति भी हैं। तभी तो बच्चा हो या बड़ा, हर कोई नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहना नहीं भूलता। गाजियाबाद का प्रख्यात दुधेश्वर मंदिर अपने आप में इतिहास के कई पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए है। हर नंदी यानी ब्रह्मा जी की पुत्री, जिसे अब आप हिंडन के नाम से जानते हैं, उसी नदी के किनारे रावण के पिता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शिव के इस मंदिर से जुड़े चमत्कार कई हैं। सैकड़ों वर्षों से मंदिर में महंत परंपरा बनी हुई है। इन सभी की समाधियां मंदिर प्रांगण में हैं। इसीलिए स्थान को पवित्र शमशान भी कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि शिव यहाँ सदा निवास करते हैं। मंदिर के निर्माण को लेकर भी जानकारों का अलग अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर का मुख्य द्वार एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इसके बीच में विराजमान हैं भगवान गणेश, ये भी इसी पत्थर में तराश कर बनाए गए हैं। महादेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर हम भी अपने मार्ग में आगे बढ़ते गए और हमें दर्शन हुए जलती हुई धुनी के, जो सालों से ऐसे ही जल रही है।
1: प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।
2: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: बात करेंगे फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक ऐसी पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने 2 दिन में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली, जबकि शनिवार के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। रिपोर्ट देखिए।
9: स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। सिर्फ 2 दिनों में ही सुपर हीरो फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म ने गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की थी और शुक्रवार को भी इसका शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारत में 30 जुलाई को रिलीज हुई ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड रिलीज बन गई है, जबकि शनिवार के आंकड़े अभी आने बाकी है। उम्मीद के मुताबिक रविवार को भी फिल्म जबरदस्त कारोबार करेगी। अमेरिका सहित दूसरे देशों में स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की यह चौथी फिल्म 31 जुलाई को रिलीज हुई और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में भी रिकॉर्ड तोड़ 1650 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 131 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। भारत में स्पाइडरमैन की इस नई फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज अलग लेवल पर देखा जा रहा है। गुरुवार को पहले दिन जहां हिंदी वर्जन के लिए 95% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, वहीं शुक्रवार को दूसरे दिन भी औसतन 90% रही, यानी सुबह से रात तक हर शो में 100 में से 90 सीटों पर दर्शक नजर आए, जबकि अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ मिलाकर सभी 16,902 शोज में औसतन ऑक्यूपेंसी 64.8% दर्ज की गई। सैकनिक के मुताबिक गुरुवार को ओपनिंग डे पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने भारत में सभी 6 भाषाओं को मिलाकर 60.60 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया था। यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है, जबकि शुक्रवार को भी इसने शानदार 49.35 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। बिना किसी हॉलीडे रिलीज के इस फिल्म ने 2 दिनों में भारत में कुल 131.46 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन और 109.95 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। 2 दिनों में हुई 109.95 करोड़ की नेट कमाई में से 60.25 करोड़ रुपए अंग्रेजी वर्जन से और 39 करोड़ रुपए हिंदी वर्जन से आए हैं, जबकि तमिल से 5.25 करोड़ रुपए, तेलुगु से 5.25 करोड़ रुपए, मलयालम से 14 लाख और कन्नड़ से 6 लाख रुपए की कमाई हुई है। उम्मीद की जा रही है कि भारत में बॉक्स ऑफिस पर मौजूद ट्रेंड्स के आधार पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने 4 दिन के पहले ओपनिंग वीकेंड में 275 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई आसानी से कर लेगी। यदि ऐसा होता है तो ये देश में किसी नॉन इंडियन फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड होगी और ये एक नया रिकॉर्ड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: वैसे तो उत्तराखंड की धरती अपनी नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल और अनोखी परंपराओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ देश विदेश से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय देवी मंदिर पर ले चलेंगे जिसके दर्शन करने के लिए आस्थावान आते रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मंदिर अपनी अनोखी मैग्नेटिक पावर के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये है कसार देवी मंदिर।
10: क्या आपको बताऊं, आप जब यहाँ पर आएंगे स्वयं जो है फील करेंगे, मतलब एक भू चुंबकीय शक्ति है। यहाँ पे मन आपका उथल पुथल हो रहा है, मतलब आपको टेंशन है, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो इससे बढ़िया जगह संसार में मैंने आज तक नहीं देखी।
11: आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहा हूँ जो न केवल आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया जहान में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, बल्कि अपने रहस्यों को लेकर भी खूब फेमस है। अल्मोड़ा जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन की वैसे तो बात निराली ही रही है। यहाँ दूर तक फैली हरियाली तो कहीं घना कोहरा, बस मौसम की इसी लुका छिपी के साए में कसार देवी का ये अद्भुत नजारा आपको अंदर से तरोताजा कर देगा। बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काफी पास कसार देवी मंदिर। इलाका लगभग हर प्रजाति के पक्षियों से भरा पड़ा है और यहीं ये देवी मंदिर अपने अनोखे चुंबकीय चमत्कार से आस्थावानों और वैज्ञानिकों के बीच क्यूरियोसिटी पैदा करता आया है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहां देवी मां साक्षात अवतार में आई थी और इसी मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि देश में ये इकलौती जगह है जहां मैग्नेटिक पावर महसूस की जाती है। दरअसल साइंटिस्ट बताते हैं कि मंदिर के इर्द गिर्द वैन एलन बेल्ट है, यानी इस धरती के चारों तरफ मौजूद वो एरिया जहां स्पेस से आने वाली हाई मैग्नेटिक चेंज्ड पार्टिकल्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड में फंसे रहते हैं। इसीलिए इस मंदिर से जुड़ी कई शक्तियों का पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिक भी आए, लेकिन सारी कोशिशें फेल रही। फिलहाल तो बरसों से कसार देवी मंदिर का रहस्यमय क्षेत्र लोगों के लिए मेंटल पीस देने वाली खास जगह बना हुआ है, क्योंकि कुछ अलग सा ही सुकून मुझे भी यहाँ महसूस हुआ।
10: आज थोड़ा सा हम लोग लेट हुए, करीब शाम के 5 बज गए हैं और आज आप लोग देखो कितने हाइट पे ये मंदिर है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऐसी ऐसी यहाँ पे गुफाएं हैं, इसके अंदर जाके लोग जाके ध्यान करते हैं।
11: स्पिरिचुअली कसार देवी मंदिर के महत्व को समझते हुए कभी स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ ध्यान किया तो तभी से ये जगह और मंदिर हर तरह के देसी विदेशी पर्यटकों के बीच और फेमस हो गई। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहाड़ मतलब सफर में ढेर सारी परेशानी, तो यकीन मानिए इस प्यारी सी जगह पर पहुंचना बेहद ही आसान है।
10: पे आने के लिए जो है डायरेक्ट कोई बस तो है नहीं, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको अल्मोड़ा आना पड़ेगा। अल्मोड़ा से जो छोटी गाड़ियाँ होती है, प्राइवेट जो कमर्शियल टैक्सियाँ होती है, यानी जैसे मैक्स वगैरह वगैरह बोलेरो चलती है, वो सवारी के हिसाब से और बुकिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको पहुँचा देगी।
11: वैसे तो उत्तराखंड की धरती अपनी बेपनाह खूबसूरती, अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ कई मंदिर हैं जो अपनी आध्यात्मिकता की वजह से मेरे जैसे ही कई और श्रद्धालुओं की भी पसंद रहे हैं। तो अगर आप भी भाग दौड़ और उथल पुथल की जिंदगी से आजीज आए हैं तो लाइफ में एक बार इस रहस्यमय जगह को एक्सप्लोर करना तो बनता है।
7: तो देखिए, जीएनटी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों पर आप प्रमोट करेंगे, हमारे देश का टूरिज्म बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प में भागीदार बन सकते हैं। बस आपको इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज़ टुडे पर दिखाएंगे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
12: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
13: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
8: Good news today is really good. It's in this, it's not about the news and the news. At least, people get to hear the news easily. More! इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे,
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
17: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स,
18: Sage University, transforming your passion into profession.
7: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाए फूलमालाएं। सत्रह साल की भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास, जीता अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब, वियतनाम की थुई को 21-16 से हराया। देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ, 28,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। भदोही में NH-19 की एक देन, कांवड़ियों के लिए आरक्षित, 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर पुलिस की पुष्प वर्षा। असम में बाढ़ प्रभावितों को फिल्म अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा ने बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग भी राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं खाना और जरूरी सामान। केरल के दुक्की में भारी बारिश के बाद खुल गए बलंगकारा डैम के 5 गेट, राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव, GNT अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, बुलेटिन में सबसे पहले बात एक ऐसे लेदर की जिसको तैयार करने में ना तो किसी जानवर को नुकसान पहुंचा है और ना ही पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले किसी केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, रामजस कॉलेज के कुछ छात्रों ने केले के छिलके से बिल्कुल रियल लेदर की तरह दिखने वाला मटेरियल तैयार किया है, वो भी एकदम मजबूत और बिल्कुल असली लेदर जैसा टिकाऊ। यानी केले के छिलके जिन्हें अब तक कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता था, वो ही अब पर्यावरण संरक्षण के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार खास तरह के इस चमड़े को छात्रों ने सहर नाम दिया है।

0: चमड़े जैसे दिखने वाला ये उत्पाद केले के छिलके से बना है। चौंक गए ना? ये कमाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के छात्रों ने किया है। केला खाने के बाद जो छिलका आप बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, उससे इन होनहार छात्रों ने असली लेदर जैसा टिकाऊ मटेरियल बना दिया है।
1: लेदर से बनी चीजों का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, कभी लेदर से बने बैग का इस्तेमाल करते हैं, कभी बेल्ट, कभी जूते, तो कभी जैकेट। आप जानते हैं कि लेदर कैसे बनता है? उसके लिए हमें किसी पशु की स्किन चाहिए होती है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लेदर जैसा ही कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो किसी पशु के स्किन से नहीं बल्कि फ्रूट के फलों के छिलकों से बनाया गया है, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? ये वही चीज़ है जो कि बिल्कुल लेदर का ही काम करेगा, लेकिन इसे पूरी तरह से फल के छिलकों से तैयार किया गया है, और ये एक्सपेरिमेंट कर दिखाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के बच्चों ने।
0: एक साल पहले इन छात्रों ने वीगन यानी पशु उत्पाद खासकर असली लेदर का विकल्प खोजना शुरू किया था, ताकि उससे बुकमार्क्स, वॉलेट यानी बटुआ और कीरिंग जैसे उत्पादों को तैयार किया जा सके।
1: शहर इसका नाम है और शहर का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। रामजस कॉलेज में हूँ मैं और वो तमाम बच्चे मेरे साथ में हैं जिन्होंने मिलकर इसको तैयार किया है।
2: जब हमने हमारा टेन्योर स्टार्ट किया था 2025 के अगस्त में, तब हमने सोचा कि एनिमल क्रुएल्टी एक बहुत बड़ा इशू है जो उठ रहा है, उसके कारण बहुत सारे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, उसका एनवायरनमेंट में बहुत बुरा प्रभाव है। उसको कम करने के लिए हमने रिसर्च करी, और अगस्त से हमने जो रिसर्च स्टार्ट करी उससे आते आते हमें बाद में पता चला कि फ्रूट पील्स के थ्रू हम एक ये वीगन लेदर बनाया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फिर आज हमारे पास ये एक है, और हमने बहुत सारे फ्रूट्स में ट्राई किया, कभी पाइनएप्पल में किया, कभी मैंगोज में किया, और भी बहुत सारे फ्रूट्स में यूज़ किया, तब जाके अभी हमने बनाना पील्स फाइनली से हमारा ये वीगन लेदर बनाया।
0: हालांकि हर इनोवेशन की तरह यह भी इतना आसान नहीं था। केले से पहले इन छात्रों ने बारी बारी से चार अलग अलग फलों के छिलके से लेदर जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी।
3: जब हमने शुरुआत करी तो लगभग हमने 5 फ्रूट्स का पूरी तरीके से हमने इस पे एक्सपेरिमेंट करा। शुरुआत हमने मैंगो से करी, मैंगो के बाद फिर हम जो कोकोनट होता है उस पर हम पहुंचे, फिर पाइनएप्पल और ऑरेंज। जितने भी हमने फ्रूट्स इस्तेमाल करे उसमें हर एक में कोई ना कोई खामी थी, और उस खामियों पे आगे बढ़ते हुए फिर हमने बनाना पील्स पे जो है अपना प्रोडक्ट जो है फाइनलाइज करा। जब हमने शुरुआत करी थी तब हमको ये समझ आया कि मैंगो जो है वो पूरा मैंगो डलता है, तो उसमें वेस्ट का कोई उसमें कनेक्शन नहीं था। उसके बाद फिर कोकोनट पे जब हम गए, कोकोनट जैसे कि हमें पता है कि बहुत रॉ होता है, उसमें फिर हमें ये दिक्कत आई कि जो हमारा जो प्रोडक्ट था वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं था जिससे हम वॉलेट्स हों या बेल्ट्स हों वो हम बना पाए।
0: नारियल, पाइनएप्पल यानी अनानास और संतरे की तुलना में आम से भी कुछ ऐसा ही मटेरियल बनने की संभावना जागी थी, लेकिन मकसद वेस्ट मटेरियल यानी फलों के छिलके से लेदर जैसा उत्पाद बनाना था। आम के मामले में पूरे फल का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिससे इनोवेशन का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। इसके अलावा दूसरे फलों के छिलके से बना मटेरियल केले के छिलके से बने मटेरियल की तरह मजबूत भी नहीं था।
1: मैंगो पूरा वो डाल रहे थे तो उसको यूज करने लायक बन सकता था, लेकिन इन्हें वेस्ट से उसको तैयार करना था। शुरुआत में जो चीजें बनी, देखिए आप, ये जो अभी बनकर तैयार हुआ है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, और लेदर में भी थिकनेस होती है, इसीलिए हम एनिमल की स्किन को यूज़ करते हैं। इसकी थिकनेस को मैच करना था, इसीलिए प्रोसेस इतना लंबा रहा। शुरुआत में जो प्रोडक्ट्स बने दूसरे छिलकों से, उनकी आप थिकनेस देखिए, वो इतनी अच्छी नहीं थी, कई बार वो फट रहे थे, टूट रहे थे, इसलिए लगातार ये लोग एक्सपेरिमेंट फ्रूट्स के साथ करते गए, और फाइनली जाकर फिर वो इस जगह तक पहुँचे हैं।
0: केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक फाइबर यानी रेशे और प्राकृतिक रसायन सेल्यूलोज होता है, जिसकी वजह से खास तरह के ट्रीटमेंट से तैयार हुए उत्पाद में काफी मजबूती और खिंचाव सहने की क्षमता बढ़ जाती है। उसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पर्स, बेल्ट या दूसरे प्रोडक्ट को डिजाइन करना आसान हो जाएगा।
4: एक प्रोटोटाइप तैयार करने में हमें लगभग 2 दिन लग जाते थे, क्योंकि जो ये हमारा पेस्ट बनता था उसको सूखने में बहुत टाइम लगता था, प्लस हमने अलग अलग फ्रूट्स के साथ ट्राई किया था, तो हर फ्रूट को अगेन ड्राई होने में, जैसे हम इसे सन ड्राई करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। एंड जैसे हर प्रोटोटाइप में कुछ ना कुछ इशू आ रहा था, जैसे इसमें ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था, तो अगेन ये एक इशू था, या फिर कभी पहले ही फट जाता था, कभी कभार बहुत ज्यादा ही एकदम टाइट बन जाता था, तो ये वाले इश्यूज हमने फेस किए थे प्रोटोटाइपिंग के टाइम।
1: अगर टाइट बन जाएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बहुत थिन रहेगा तो फिर उसको जितना लंबा लेदर चलता है उतना लंबा वो चल नहीं पाएगा।
0: हालांकि किसी भी तरह के इनोवेशन की राह में बार बार मिलने वाली असफलता से मनोबल गिरना एक आम बात है, पर इन छात्रों का जुनून कम नहीं हुआ। शिक्षकों की सलाह और सहयोग ने इनको अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंत तक प्रेरित किया।
3: जैसे हमने अलग अलग फ्रूट्स ट्राई किए तो हमारा जैसे नहीं बना प्रोडक्ट, तो हमें जैसे तब लगता था कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम रुके नहीं। सबसे बड़ी बात, हम फिर ट्राई करते गए, हमने प्रोटोटाइपिंग सेशंस करे और फ्रूट्स एक्सप्लोर करे, रिसर्च करी, हमने बहुत ऑनलाइन ढूंढा, ऑफलाइन ढूंढा। एक लाइक मेरी प्रोफेसर से बात हुई, हमने उनको बताया कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको ऐसे सोल्यूशन ला सकते हो। तो उसके बाद ही जो आज हमारा फाइनल प्रोटोटाइप है जो हमने आपको दिखाया है वो बन गया है।
0: फिलहाल लेदर जैसे दिखने वाले इस मटेरियल से बुकमार्क्स, वॉलेट यानी बटुआ और कीरिंग बनाने पर ही जोर है।
3: पहले तो हम इनिशियली छोटे प्रोडक्ट से शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज हम अपने मींस के उस पर ऑपरेट करना चाहते हैं। हम एक स्टूडेंट रन सोसाइटी हैं एंड वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग बुकमार्क्स, वॉलेट्स आउट ऑफ दिस। एंड अभी ये फाइनल प्रोटोटाइप नहीं है, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, मेक इट बेटर, बिकॉज अभी तक हमने जितनी रिसर्च करी है उसके हिसाब से वी हैव फाउंड द मोस्ट फीजिबल प्रोडक्ट, बट हम उस पर और रिसर्च करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक इट और अच्छा। And we are going to focus on bookmarks and wallets mainly.
1: Bookmarks, wallet और जो छोटे keyrings होते हैं उन तक आप जा रहे हो, पर अभी जो challenge है, मैंने भी कहीं पढ़ी थी एक report कि जो seats होती हैं हमारी गाड़ियों की उनका कुछ alternative तैयार हो रहा है, क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है?
2: जी, ये बिल्कुल एक वो ऑप्शन हो सकता है। अभी जैसा कि हमने बताया कि अभी हम एक शुरुआती स्टेज पे हैं, अभी हम एक फाइनल प्रोडक्ट पहुंचने तक हमें एक साल लग गए, पर अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें पूरी प्रोसेस पता है, हमें पता है कि अब हमें आगे क्या करना है। हमने वॉलेट्स बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, बुकमार्क्स बनाने की स्टार्ट कर दी है। सीट कवर्स में सर बस यही होता है कि एक थिकनेस की और जो ड्यूरेबिलिटी होती है, एक वो जो शीट कवर होता है जो वाटर रेजिस्टेंस, हमें उस पर ध्यान देना है। तो अब बस हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हमें बस इसमें वाटर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी ऐड करनी है, तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा।
0: इस इको फ्रेंडली उत्पाद को बनाने में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 100% बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे बने उत्पादों को इस्तेमाल के बाद फेंक भी दिया जाए तो वे खुद ब खुद मिट्टी में गल जाएंगे। अब इन छात्रों की कोशिश है कि एनजीओ के जरिए उन कारीगरों तक पहुंचा जाए जो इससे चमड़े से बनने वाले उत्पादों की तरह प्रोडक्ट तैयार कर पाए, ताकि सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही इनको डिस्प्ले पर रखा जा सके और सैकड़ों हजारों छात्रों की बदौलत कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता व्यवहार समझने में मदद मिल सके। इसके बाद बाजार में केले के छिलके से बने प्रोडक्ट्स की कामयाबी की पटकथा लिखी जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब बात एक ऐसी स्वदेशी वॉच कंपनी की जो अपनी घड़ियों पर भारत की समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को उकेरती है। देखिए, जयपुर का ये ब्रांड खास तौर पर प्राचीन भारतीय सिक्कों, डाक टिकटों और पारंपरिक कलाकृतियों को घड़ियों में डायल में शामिल करता है, ताकि घड़ियों के जरिए भारतीय इतिहास, भारतीय कला और विरासत को एक साथ पिरोया जा सके। जयपुर वॉच कंपनी की नायाब घड़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि स्वदेशी घड़ियों के अच्छे दिन आ गए हैं।

0: ये नायाब घड़ियां बेशकीमती हैं और जाहिर है पहनने वालों का अच्छा वक्त बताती हैं। आमतौर पर बाजारों में मिलने वाली घड़ियों से थोड़ी अलग दिखने वाली ऐसी मास्टरपीस घड़ियों को जयपुर की एक कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम जयपुर वॉच कंपनी है।
1: कहा जाता है आपका कोई भी लुक कंप्लीट करना हो तो उसके साथ एक्सेसरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में अगर आपके हाथ में एक रिस्ट वॉच हो तो वो लुक कंप्लीट माना जाता है और बहुत ही खूबसूरत वो एक लुक जो है वो निखर के आता है। ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि वो वॉच ही आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए तो आप सोचेंगे कि उस वॉच का अट्रैक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जयपुर वॉच कंपनी में मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ पर एक से एक बहुत ही यूनिक वॉच यहाँ पर है, जहाँ हर एक वॉच अपनी एक कहानी बयां करती है, अलग कंसेप्ट के साथ बनाई गई है और ऐसी सोच इन वॉचेस में डाली गई है जो आपको भी सोच में डाल देगी कि ये बनाना कैसे पॉसिबल है।
0: भारतीय इतिहास, कला और विरासत को एक साथ संजोने वाली इन घड़ियों की कीमत लाखों रुपए तक है। 2013 में अस्तित्व में आई कंपनी का मकसद अपनी हर घड़ी की डायल पर परंपरा को उकेरना है। हालांकि भारत की प्राचीन सभ्यता और वास्तुकला से जुड़ी समृद्ध विरासत को डायल पर ढालना इतना आसान काम नहीं है। अनूठी कारीगरी की बदौलत ही ये संभव हो पाता है। पुराने भारतीय सिक्कों, डाक टिकटों, मोर पंख, राजस्थानी मिनिएचर आर्ट, मीनाकारी और कुंदन पोलकी जैसी पारंपरिक कलाओं को भी घड़ियों का हिस्सा बनाया जाता है।
2: बहुत चैलेंजिंग होता है। अब जैसे गेट्स जैसा कंसेप्ट है, क्योंकि गेट्स बहुत लार्ज होते हैं, मैमथ होते हैं, उनको मिनिएचराइज करना और उसी डिटेलिंग को एक वॉच जैसी छोटी ऑब्जेक्ट के डायल पे लेके आना, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है। और सेम विद एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, चाहे कॉइन्स हो, चाहे स्टैम्प्स हो, 70 साल पुराने, 60 साल पुराने कॉइन्स है, स्टैम्प्स है, उनको इंटैक्ट रखना, उनकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखते हुए उनको वॉचेस के अंदर डालना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। बट अब 13 साल हो गए तो अब हमारी थोड़ी मास्टरी है इस चीज में।
0: हाल ही में जयपुर वॉच कंपनी ने गेट्स ऑफ इंडिया नाम का नया कलेक्शन लॉन्च किया है। गेट्स ऑफ इंडिया भारत की ऐतिहासिक वास्तुकला को समर्पित है। इस कलेक्शन की विशेषता 360 डिग्री फ्लिप मैकेनिज्म है। घड़ी को पलटते ही दोनों तरफ अलग अलग डायल दिखाई देते हैं। एक तरफ जयपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत तो दूसरी तरफ देश की ऐतिहासिक स्मारक और पर्यटन स्थल है।
2: ये सबसे लेटेस्ट वॉच है जो हमने लॉन्च करी है, इसको कहते हैं गेट्स ऑफ इंडिया कलेक्शन। इसके अंदर हमने दो गेट्स का उपयोग किया है। वॉच इज अ ड्यूअल साइडेड वॉच, आप देखेंगे तो इसमें दो साइड है। तो एक साइड पे तो हमने जयपुर के जो प्रीतम चौक है सिटी पैलेस में, वहां से दो गेट्स लिए, लोटस गेट और लहरिया गेट, और एक साइड पे हमने मोनोक्रोम के अंदर आइकॉनिक गेट्स ऑफ इंडिया बनाए हैं, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया, चार मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, एक साइड पे वो है और एक साइड पे जयपुर के दो आइकॉनिक गेट्स है।
0: कंपनी ने 1947 से जुड़े एक दुर्लभ और ऐतिहासिक 1 रुपए के सिक्के को घड़ी के डायल के तौर ढाल दिया। इस तरह की घड़ी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं।
2: ये वो घड़ी है जिसके अंदर हमने 1 रुपया 1947 का ओरिजिनल कॉइन का इस्तेमाल किया है, और इस कॉइन पे आप देखेंगे एक चलता हुआ शेर है, इसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है और इसके ऊपर 3 languages के अंदर 1 रुपी लिखा हुआ है। बहुत ही स्पेशल वॉच है, 2022 से ही हमारी बेस्ट सेलर वॉच है, और इस वॉच को नई पहचान भी तब मिली थी जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस घड़ी का उपयोग किया था और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को उन्होंने बढ़ावा दिया था।
0: यहाँ डाक टिकट थीम वाली घड़ियां भी मौजूद हैं। दुनिया के इतिहास का पहले डाक टिकट पेनी ब्लैक को भी घड़ी की शक्ल में ढाला गया है, जिसे यूनाइटेड किंगडम ने 1 मई 1840 को जारी किया था और इसका आधिकारिक इस्तेमाल 6 मई 1840 से शुरू हुआ था। तब इस काले रंग के टिकट पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का चित्र बना था और इसका मूल्य 1 पैनी था।
2: हम लोग ना 2013 से लेके करीब करीब 2020 तक कॉइन्स और हैंड पेंटेड वॉचेस और इनका इस्तेमाल करके वॉचेस बना रहे थे। फिर मैंने रियलाइज किया कि क्यों ना डाक टिकट का इस्तेमाल किया जाए। डाक टिकट एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है और एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपना चार्म लूज कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आज की जनरेशन न पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज करती है न पोस्ट ऑफिस में जाती है. तो मैंने कहा क्यों ना इसको सिग्निफाई करने के लिए कुछ वॉचेस बनाए जाए पुराने डाक टिकट्स को लेके, और हमने कुछ ऐतिहासिक डाक टिकट्स को लेके वॉचेस बनाई है. इनफैक्ट हमने जो दुनिया के इतिहास का पहला डाक टिकट है पेनी ब्लैक, उसको लेके भी वॉच बनाई गई है.
0: कुछ दिन पहले ही कंपनी ने प्रीमियम बाघ कलेक्शन लॉन्च किया है. घड़ी के डायल पर सुनहरे बाघ की आकृति है, इसमें खादी का फैब्रिक का भी इस्तेमाल किया गया है.
2: एक वॉच आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमने अभी 3 दिन पहले लॉन्च करी है, इसका नाम है प्रीमियम बाघ. ये बाघ कलेक्शन से इंस्पायर्ड है. इस पे आप देखेंगे वही चलता हुआ शेर है जो हमने बनाया है, पर इस बार ये एक टर्कोइज की स्टोन की वॉल है उसके अगेंस्ट में वॉक कर रहा है. जो सेंटर पीस है जिसके ऊपर समय देखते हैं वो खादी फैब्रिक का बना हुआ है, और साथ के साथ में इसकी साइड में हमने एक सफायर का स्टोन लगाया है और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी भी करी हुई है इसकी साइड में. ये बहुत ही स्पेशल वॉच है, बहुत प्रीमियम मटेरियल से बनी हुई है. इसके अंदर स्टील भी जो इस्तेमाल किया है हमने वो 904L ग्रेड स्टील है, जो इंडिया में आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है वॉचेस के अंदर. सो बहुत ही यूनिक वॉच है ये.
0: मेक इन इंडिया की सोच के साथ तैयार की जा रही इन घड़ियों में हाई क्वालिटी मटेरियल यानी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल होता है, ताकि मजबूत और टिकाऊ घड़ियां लंबे समय तक अपने मालिकों का साथ दें, अच्छा वक्त की पहचान बने.
2: हमारी जो मिनिमम वॉच है ना वो 316L स्टेनलेस स्टील ग्रेड में बनती है, जिसको सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जिससे सर्जिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स बनते हैं. तो इनसे स्किन एलर्जी होने का तो सवाल ही नहीं है. और 904L जो है वो उससे भी हायर ग्रेड ऑफ स्टेनलेस स्टील है. सो हम बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं वॉचेस के ऊपर. क्रिस्टल भी जो होता है वो सफायर क्रिस्टल होता है, जिससे वॉचेस के ऊपर स्क्रैचेस तक नहीं आते हैं.
0: 2013 से लेकर अब तक कंपनी के 15 स्टोर खुल चुके हैं, और अब विदेश में भी फुटप्रिंट्स जमाने की तैयारी है. जल्द ही भारत के बाहर 2 नए स्टोर देखने को मिलेंगे.
1: यहाँ पे बहुत अलग तरीके की वॉचेस देखने को मिल रही है, चाहे वो स्टैम्प हो, कॉइन हो, गेट्स हो या फिर बाग कलेक्शन हो. उसके अलावा भी इनके जो 150 कलेक्शन है वो बिल्कुल देखने लायक है. पीछे मैं इस कलेक्शन की कुछ घड़ियाँ देख रही हूँ, यहाँ पे हैंड पेंटेड वॉचेस भी मुझे नज़र आ रही हैं. यहाँ पे ज्वेलरी जैसे डायमंड है, पोल की है, मीनाकारी के काम वाली जो वॉचेस हैं वो नज़र आ रही हैं. साथ ही साथ में मोर पंख से बनी घड़ी, और उसके अलावा भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत यूनिक घड़ियां जो बनी हुई हैं वो नजर आ रही है, जिसके पीछे की जो डिजाइनिंग है, जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लगाया गया है और बहुत ज़्यादा काम किया गया है एक एक घड़ी के पीछे. तो सोच जो है वो बहुत यूनिक है, और वो नज़र आएगी इस समय पे जयपुर में. और ख़ास करके इनका जो नया कलेक्शन है जो अभी लॉन्च हुआ है वो सिर्फ जयपुर नहीं, वो दिखाएगा पूरी दुनिया की झलक. कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर.
3: भारत की शान, देश की आन और भारतीय वेटलिफ्टिंग की पहचान मीराबाई चानू ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है. देखिए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्डन हैट्रिक पूरी कर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद मीराबाई चानू ने अपनी खुशी, संघर्ष और आगे के अपने लक्ष्य पर हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव से खास बातचीत की है. आइए आपको सुनाते हैं इस यादगार जीत और गोल्डन हैट्रिक पर मीराबाई चानू ने क्या कुछ कहा है.
4: अगर दिल में मकसद हो और दिमाग में सपना तो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, और इसका प्राइम एग्जांपल आई थिंक मीराबाई चानू हैं. ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, लेकिन जहां भी जाती हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो पोडियम फिनिश ही करें, और इस बार वो थी ग्लासगो में. कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और मीरा ने वो करके दिखाया जो शायद हर एक एथलीट का सपना है. लगातार 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल, मीरा ये कितनी बड़ी चीज है, और जो आप इसको कैसे समराइज करेंगी एक एथलीट के नाते और एक इंडियन के नाते, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे महिलाएं, लड़कियां वो अपना वेट लिफ्टिंग करना चाहती हैं.
5: थैंक यू. इसी के लिए तो इनकी हम प्लेयर्स इसी को ही चाहते हैं कि मुझे देख के युवा लोग को आगे बढ़ने का, ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली होगा. बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हाँ जो मैंने सोचा और मेरा सर का जो सपना था कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे गोल्ड मेडल जीतना है और लगातार ये मेडल देना एक प्लेयर्स के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है ये अचीव। तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा इतना मतलब फ्रेंड्स है कि पूरा भारतवर्ष ने इतना प्यार दिया है आज तक की जर्नी में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उनकी सपोर्ट से ही मैं आज तक हर जगह पे जब भी जाऊँ तो सब इंडियन लोग के आते हैं इधर देखने के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इसी मेडल से और मैंने इंडिया के लिए भी पहला ही गोल्ड मेडल दिया है तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ।
4: बिल्कुल, और होना भी चाहिए, खुश हम सब भी खुश हैं। लेकिन मीरा एक चीज और, देखिए क्या होता है ना कि वेट मैनेज करना पड़ता है। आप नो एथलीट्स वेट चेंज करते हैं, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। हम सुनते हैं कि वो 3 दिन से नहीं खा रहे, 4 दिन से नहीं खा रहे, लेकिन क्या होता है ना, बॉडी डिमांड करती है। दिल कहता है कि मुझे कुछ खाने की जरूरत है, लेकिन दिमाग कहता है मुझे मेडल चाहिए। तो दिल और दिमाग को फिर आप कैसे वेट तो मैनेज हो जाता है, लेकिन दिल और दिमाग को कैसे मैनेज करते हो आप?
5: बहुत ही हमने सेक्रीफाइस मतलब रुका है इसको कि चाहते तो बहुत सारे कुछ होते हैं कि सबको चाहते होते हैं कुछ कुछ खाना है ना लाइफ में बहुत चीजों में आते हैं मन करते हैं सब कहीं पर भी जाके कुछ टेस्ट करने का।
4: ओके, लास्टली, चूंकि क्या है ना मीरा, आप अब पूरे भारत में या विश्व में एक आइकन बन चुकी हैं, आपको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं एज एन एथलीट। चूंकि ये जो स्पोर्ट है, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि ये मेंस स्पोर्ट है, लेकिन आप देखिए, आप यहाँ पर फीमेल होकर बहुत अच्छा कर रही हैं। आपने ओलंपिक में हमें मेडल दिलाया, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, हर जगह पर आपने हमें मेडल दिलाए। सो एज एन फीमेल एथलीट, बाहर जो सारी बच्चियां हैं, जो यंग टैलेंट है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और क्या आपको ये बताना जरूरी है कि सोसाइटी थोड़ा सा अपना नजरिया भी चेंज करे?
5: बिल्कुल बिल्कुल कि कोई स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं कि फीमेल जा सकते हैं सिर्फ मेल का ही स्पोर्ट्स है ऐसा कोई नहीं है। जो अंदर से लाना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ मैं क्या करना चाहते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। तो ऐसा कोई वो नहीं कि अलग अलग स्पोर्ट्स ऐसा डिवाइड करना बिल्कुल भी गलत बात है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनका बच्चों क्या करना चाहते हैं कौन से स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं जो उसको पसंद है तो उसी के साथ उनको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। बुरा हो अच्छा हो उसी टाइम है तो ऐसे ही करेंगे तो जरूर आने वाली यंग जनरेशन को बिल्कुल आगे ही जाएगा। और मैं खुद फीमेल होने के नाते बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मानती हूँ कि हम फीमेल हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते होते हैं हमारे जब सर्कल आते हैं कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि होना भी जरूरी नहीं है कि ये हमारे ऊपर है। हम वो तो हर टाइम आते हैं हमारे साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमारे साथ होते रहते हैं तो उसको फाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसी से ही फाइट करके हम आगे जा सकते हैं। तो यंग जनरेशन को और खास लड़की लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले हमारे कोच जो सामने रहते हैं उसी से हम बातचीत बहुत अच्छे से करना है उसके बाद क्या सोल्यूशन है वो सब निकालना जरूरी है। पर हर स्पोर्ट्स में ये लड़के का है लड़की का है कभी ऐसे डिवाइड नहीं करना है जो मन करते हैं वो करना है जरूर। तो ऐसे ही करेंगे तो जरूर मेडल मिलेगा।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया, देश का नाम रोशन किया, वैसे ही आगे आने वाले हर टूर्नामेंट में आप इसी तरह से परफॉर्म करें और देश
5: थैंक
4: को
5: यू
4: इसी
5: थैंक
4: तरीके से मेडल दिलाएं। थैंक यू
5: यू
4: सो
5: सो
4: मच।
5: मच थैंक यू सो मच।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
6: आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम। श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है? क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई फूल माला। साल की भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास, जीता अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब, वियतनाम की थुई को 21-16 से हराया। देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ, 28,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। भदोही में NH-19 की एक लेन, कावड़ियों के लिए आरक्षित, 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों पर पुलिस ने की पुष्प वर्षा। असम में बाढ़ प्रभावितों को फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग भी राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं खाना और जरूरी सामान। केरल के इदुक्की में भारी बारिश के बाद खोले गए मलंकारा डैम के 5 गेट, राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स का आज अंतिम दिन है। कल खेलों के इस महामेले का औपचारिक समापन हो जाएगा, लेकिन खेलों के इवेंट आज खत्म हो जाएंगे। इसमें देखिए, आज भी कई इवेंट हैं जिसमें भारतीय एथलीट मेडल की दावेदारी पेश लगातार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कल यानी 1 अगस्त शनिवार को ग्लासगो में भारत ने इतिहास रच दिया। 1 अगस्त को जो दिन है कॉमनवेल्थ गेम्स में, भारत के लिए गोल्डन डे के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन भारत के मुक्केबाजों ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, जिसकी बदौलत भारत मेडल टैली में ऊंची छलांग लगाकर 10वें से सीधे 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। और खास बात इसमें यह रही कि शनिवार को भारत की झोली में इन मुक्केबाजों की बदौलत सोना बरसा। रिपोर्ट देखिए।

0: ग्लासगो में हुई गोल्ड की बरसात, सोना ही सोना बरसा। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारतीय एथलीट्स ने गजब का कमाल कर दिखाया। खास तौर से गेम्स के समापन से पहले शनिवार का दिन ग्लासगो में भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ, क्योंकि एक के बाद एक एथलीट्स ने अपने इवेंट्स में गोल्ड के साथ पदकों की झड़ी लगा दी और देशवासियों को गर्व से भर दिया। शनिवार को एक ही दिन में भारत की झोली में कुल 16 मेडल्स आए। इनमें 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। खास बात यह है कि भारतीय एथलीट्स ने एक ही दिन में 8 गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। एक गोल्ड पुरुषों के F57 शॉटपुट इवेंट में हासिल हुआ, जबकि केवल मुक्केबाजी में 7 गोल्ड मेडल मिले। ये पहली बार है जब एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 7 बॉक्सिंग गोल्ड अपने नाम किए हैं, और वो भी एक ही दिन में।
1: So I can't say that what is my feelings, because it's a proud moment for our country and it's a proud moment for every Indians. And every boxer goes and getting the gold medal and Janaganamana comes, it's a, you cannot say in a one word. It is an exciting, it's a proud moment for us.
0: इस बार इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स ने नया इतिहास रच दिया। ये भारतीय बॉक्सर्स का अब तक का सबसे सुनहरा प्रदर्शन है।
2: देखिए, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर, इतिहास में कभी भी किसी टीम के भी कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने मेडल नहीं आए, तो ऐतिहासिक एक परफॉर्मेंस भारतीय टीम की रही है। इससे पहले 1986 में कनाडा के 6 गोल्ड आए थे, तो पहली बार किसी टीम के 7 गोल्ड और 3 सिल्वर आए हैं। और हमें बहुत ही खुशी है इस बात की कि इस कंट्रीब्यूशन की वजह से जो हमारे देश की रैंक है वो भी उठ के 4 नंबर पे हम आ गए।
0: शनिवार को भारतीय बॉक्सर्स सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघस और अरुंधति चौधरी ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। साक्षी चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स में 51 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर गोल्डन गर्ल बनी हैं। वहीं रोहतक की प्रीति पवार ने 54 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। इसी तरह जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड पर कब्जा किया, तो प्रिया घनघस ने 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने 70 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। भारतीय बॉक्सर्स के दमदार प्रदर्शन के कारण न केवल मेडल टैली में भारत की स्थिति और भी मजबूत हुई, बल्कि पहली बार भारतीय बॉक्सिंग टीम ने एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान भी कायम कर दिया।
3: मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने आज तक जितनी मेहनत की थी उसका एक मुझे फल मिला है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा पूरा टारगेट था फाइनल बाउट से पहले कि अभी मेडल सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर में काम नहीं चलेगा, मुझे गोल्ड ही जीतना है इंडिया के लिए। और सब चीयर कर रहे थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था कि ये सब हमें चीयर कर रहे हैं, हमारे लिए आए हैं इतनी दूर से, तो हमें गोल्ड ही जीतना है।
4: बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। फर्स्ट राउंड 3-2 में जाने के बाद बस कोचिज ने कहा कि शांति से दूर दूर से खेलना है, ज्यादा अड़बड़ाना नहीं है। और जो आवाज जा रही थी भारत माता की जय, उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, आज उसकी वजह से ही आज हमने गोल्ड मेडल जीता।
5: मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, इवन लाइक पूरा इंडिया आई थिंक बहुत खुश है, सब प्राउड फील कर रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद बोलना चाहूंगी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, BFI का एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। मैं मेडल पूरे इंडिया को डेडिकेट करूंगी, क्योंकि ये सबका सपोर्ट रहा है, सबकी प्रेयर्स रही है। सो थैंक यू एवरीवन।
6: काफी अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ पे हम आए थे कि हम इंडिया को जितना अपनी परफॉर्मेंस से प्राउड फील करवा सके उतना करवाई, तो मोमेंट आज क्रिएट हुआ है। जैसे हम वार्म अप कर रहे थे तो तभी कोचिज ने बोला था कि बस अपना गेम खेलना है और हम फाइनल्स में हैं, और इंडिया के लिए वो जो राष्ट्रगान जो सुनना होता है और पोडियम पे खड़े होना होता है, वो मोमेंट हर एथलीट की लाइफ में बहुत अहम होता है। तो बस उनका यही था कि हम वो पूरा कर पाए, इंडिया को गोल्ड दिला पाए, तो उसी के लिए बस जाना है।
0: आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारत की महिला बॉक्सर्स का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। भारत की बेटियों ने देश का नाम रोशन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम फाइनल में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को हराया, जबकि प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वेट कैटेगरी फाइनल में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो को हराया। वहीं जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से हराया। प्रिया घंगस ने 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कनाडा की मैरी बाथूल अल अहमदी को 4-1 से हराया, जबकि अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में इंग्लैंड की ओलंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता चैंटल रीड को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं पुरुषों के बॉक्सिंग इवेंट में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने भी दमखम दिखाते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को मात दी और गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया।
7: अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था, तो और ये था कि बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे करके, और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है। सभी को यही कहना चाहूंगा कि सभी प्रैक्टिस कर रहे थे और काफी लंबे समय से, थैंक यू कहना चाहूंगा।
0: इसके अलावा पैरा स्पोर्ट्स में भी शनिवार को भारतीय एथलीट्स ने नया सुनहरा चैप्टर जोड़ दिया। बिहार के गया जी के रहने वाले सोमन राणा ने पुरुषों की F57 पैरा शॉटपुट इवेंट में 13.40 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक

0: बहुत खुश लग रहे हैं।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले इन एथलीट्स की निगाहें अब अगले एशियाई खेलों और ओलंपिक गेम्स पर हैं। भरपूर जोश, जुनून और उत्साह के साथ ये खिलाड़ी अब अपने अगले लक्ष्य की तैयारी में जुटने जा रहे हैं, ताकि दुनिया में खेलों के मंच पर तिरंगे की शान बढ़ा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज डे।
2: देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में अनूठी कामयाबी के बाद देश में जश्न का माहौल है। खासतौर से अगर हम देखें तो हरियाणा की भिवानी की बेटियों ने मुक्केबाजी में जोरदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीते, तो उनके घर परिवार में दिवाली मनाई जा रही है। वहीं पर दूसरे कामयाब खिलाड़ियों के भी परिजन कॉमनवेल्थ गेम्स में सफलता के बाद खुश हैं। रिपोर्ट देखिए।
3: गेम में बॉक्सिंग के मुकाबले का नतीजा जैसे ही आया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बॉक्सिंग की गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में किया कमाल, तो कोटा में उनके परिजन शानदार कामयाबी से फूले नहीं समा रहे हैं।
4: जी, सफर बहुत ज्यादा मतलब नर्वसनेस के साथ हमारा निकला है, क्या ही बताऊं मैं। एंड अभी तक बहुत एंजाइटी हो रही थी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आज मुझे अपनी बहन पे बहुत गर्व है। 102 डिग्री बुखार में उसने कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीता है। चैलेंज था, बिल्कुल चैलेंज था, लेकिन उसने कर दिखाया।
3: अरुंधति की सफलता के बाद कोटा में उनके परिजनों ने देवी देवताओं की आरती की और उनका शुक्रिया अदा किया। परिजन अब ग्लासगो से अरुंधति की वापसी के बाद उनके जोरदार स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं।
5: सर, इससे कॉन्फिडेंस बेटी का और अच्छा बढ़ेगा, आगे फ्यूचर में और कर पाएगी वो, और ओलंपिक के लिए अब नेक्स्ट उसका टारगेट ओलंपिक में गोल्ड लेना है। सब ईश्वर की कृपा है, जो सब क्या ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का प्रसाद समझ के हम लोग प्राप्त कर रहे हैं इसको। बिल्कुल ग्रैंड वेलकम होगा, पूरे शहरवासी है, पूरे हड़ौती वासी है, वो बच्ची का स्वागत करेंगे।
3: शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए बड़ा अहम दिन था और जो एथलीट अपने इवेंट्स में भाग ले रहे थे, उनके घर लोग टीवी पर टकटकी लगाए गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे। भिवानी में बॉक्सिंग की गोल्डन गर्ल साक्षी चौधरी के घर भी सबके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी और जैसे ही नतीजा सामने आया तो लोग खुशी से उछल पड़े। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर साक्षी की सफलता का जश्न मनाया।
6: बहुत बड़ी खुशी है जी, आज मेरे लिए इस तब बड़ी खुशी का दिन और क्या होगा जी। बेटी गोल्ड मेडल ले आई जी देश खातर जी, इसे दिन खातर बाट देखने लग रही थे जी। एक बेटी एक दिन देश का नाम रोशन करे जी, झंडा फहरावे जी, अपना बेस्ट देश का झंडा सब तक ऊंचा हो जी, वो मैंने गर्व की बात है जी।
7: और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बेटी ने, एक तरफा मैच जीता है 5-0 से, और मेरे को उम्मीद है आगे कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में भी और ओलंपिक में भी बेटी गोल्ड मेडल ले जाएगी और देश का नाम रोशन करेगी।
8: ये 14 साल की जर्नी है, हम सिर्फ एक दिन देख रहे हैं कि आज उसने गोल्ड मेडल जीता, बट उसके पीछे की जो 14 साल की जर्नी है वो उसके खून पसीने हार्डवर्क की है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने गोल्ड मेडल जीत के अपनी उस हार्डवर्क को और उस मेहनत को येलो कलर दिया है आज, तो बहुत खुश है।
3: भिवानी के ही बॉक्सर सचिन सिवाच ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्डन मेडल जीतकर अपने परिवार का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ग्लासगो में जब मुकाबला चल रहा था तब सचिन का पूरा परिवार बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जो उनकी दिली तमन्ना पूरी करने वाला था। नतीजा आते ही सचिन के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी खुशी से झूम उठे और मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया।
9: बहुत अच्छा लगा, बहुत खूब बात है, मेहनत है और ऐसे ही खेलता है ये, जी लगा के, जान लगा के, शुरू से ही लेके आखिर तक। बहुत खुश हैं, बहुत, सभी परिवार भी, गांव भी, देश भी, सबके लिए अच्छा है।
10: बहुत अच्छा लगा जी, बहुत खुश हम, पूरा परिवार भी, पूरा गांव भी बहुत खुश है। इसका खूब प्लान है जी, पूरा गांव खुशी तो उसका स्वागत करेगा, सब भी उसने घर की चीज है जो वही पसंद है वही खिलाएंगे।
11: शुरू का मेरा पोता बहुत तेज, बहुत अच्छा, बहुत शुद्धा, सबके लिए सब ने प्यारा लगा और पोते ने जमा चे बना दिया सारी।

0: इंडिया, सारी इंडिया बना दी, सारा गांव बना दिया, सारा गुआंड बना दिया। बुआ है भाई, मामे हैं, मामी हैं, सबका ऊंचा नाम कर दिया। बुलाओ, जय हिंद।
1: बहुत अच्छा लग रहा है और उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि भाई उसने देश के लिए मेडल जीता है। पूरी दुनिया में इंडिया का नाम हुआ है और उसने बहुत मेहनत की थी, उसने बहुत संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। सबको बहुत खुशी हो रही है।
2: भिवानी की प्रिया घंगस ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2026 में गोल्ड मेडल जीता तो परिजनों ने गांव में पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। घर की महिलाओं ने इस मौके पर लोगों का मुंह मीठा किया और बेटी की सफलता पर जश्न मनाती दिखी।
3: बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बेटी गोल्ड लेके आए, तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी थी भारत के लिए।
4: कितनी खुशी हुई, कैसे खुशी?
3: बहुत ज्यादा खुशी है, सारे गाँव के परिवार वालों को, सबकी बेटी है वो।
4: तो कैसे देखा मैं उसको?
3: बस दिल बड़ा भावुक हो रहा था।
4: कितनी खुशी है, जैसे जमीन पर डंडा
3: लगा। बहुत ज्यादा खुशी है, इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, इतनी खुशी है।
2: वहीं रोहतक के महम में बॉक्सर प्रीति पवार के घर वालों को भी इस नतीजे का इंतजार था, जो उनके लिए बेशुमार खुशियां लेकर आया। प्रीति ने 54 किलोग्राम वर्ग में गोल्डन मेडल जीता तो परिजनों के चेहरे खिल उठे।
5: बहुत खुशी हो रही है, बेटी ने देश के लिए मेडल जीता है और उसी मेहनत थी जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसने 2017 से जो अब तक लगी रही है उसकी मेहनत का फल मिला है उसको, देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, इसमें बहुत ज्यादा खुशी हो।
2: परिजनों का कहना है कि प्रीति ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, अब सबको ग्लासगो से उनकी वापसी का इंतजार है।
6: ये तो कुछ प्लान नहीं किया है जी, वो फिर मिलने के बाद भी सोचेंगे, अभी डिस्कस नहीं किया है जी उसको किस तरह वो करांगे। खुशी बहुत हो रही, सुबह उसका 3-3.5 घंटे का भी ट्रेनिंग सेशन होता था, फिर शाम में भी होता था। अभी तो वो लोग नेशनल कैंप में हैं, बट जब नेशनल कैंप में नहीं थे तो उसके जो पर्सनल कोच हैं हमारे चाचा, वो उसकी अलग से भी ट्रेनिंग कराते थे। थर्ड सेशन भी उसका दिन का हो जाता था, कभी कभी 4 सेशन करा देते थे। तो कोविड के दौरान तो उसको मिडनाइट तक भी सेशंस लिए हैं, वही जो मेहनत थी उस समय की वो आज रंग ला रही। खुशी बहुत हो रही है, सब बहुत खुश हैं और उत्साह भी फील हो रहा है सब।
2: वहीं भिवानी में बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के घर वालों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल राउंड में उनकी एंट्री पर जो खुशी मनाई थी, वो शनिवार को गोल्ड जीतने के साथ कई गुना बढ़ गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के बॉक्सरों से मेडल की काफी उम्मीद थी और वो अपनी कामयाबी से उम्मीदों पर खरे भी उतरे। खासतौर से कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय बॉक्सर बेटियों की कड़ी मेहनत एक बार फिर रंग लाई है। सुनहरी कामयाबी के साथ वो दुनिया में देश का परचम लहराने में सबसे आगे नजर आ रही हैं। भिवानी से जगबीर सिंह और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुछ न्यूज टुडे।
7: देखिए, ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स समापन की ओर है, वहां से एथलीट्स की वापसी भी शुरू हो चुकी है। आज कई पदक विजेता भारतीय वेट लिफ्टर एथलीट्स दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन में हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू और लवप्रीत सिंह सहित कई खिलाड़ी स्वदेश वापस लौट चुके हैं। खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से बाहर आने पर फूल मालाओं से लाद दिया गया और ढोल लगाड़ों के साथ उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। तस्वीरें देखिए, खिलाड़ियों ने CWG में प्रदर्शन करके खुशी जाहिर की और ये भी कह दिया कि देखिए अब जो है उनका लक्ष्य एशिया और ओलंपिक खेलों में देश का परचम लहराना है।
8: मणिपुर से मैं बिलोंग करती हूँ तो मैं ये बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैंने इंडिया के लिए कुछ करके दिखाया।
9: थैंक यू। ऐसे लग रहा है आने वाले भी और बेटर करने के लिए हम मोटिवेट बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। आने वाला कंपटीशन में ज्यादा खेलूंगा मैं और टके करूंगा,
10: मेडल के लिए टारगेट करेंगे,
9: टके करेगा।
11: मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सारे अपने नेवी टीम का, सारी अपने सारों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।
10: आगे अब आपका क्या लक्ष्य है, अपने देश का मान बढ़ाया, अब आगे क्या टारगेट बना रहे हैं?
11: सारों गाड़ी एशियन गेम्स की तैयारी बढ़िया करेंगे।
10: एशियन गेम्स में आपका क्या लक्ष्य रहेगा देश के लिए?
11: बढ़िया सर, मेन तो बढ़िया मेडल प्राप्त करेंगे।
10: थैंक यू
12: सर, अच्छा फील कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये मेरा अच्छा परफॉर्मेंस है कॉमनल गेम्स में, अच्छा फील हो रहा है मुझे।
10: थोड़ा सा गोल्ड मिस करने का थोड़ा सा एक दुख है।
12: हाँ दुख तो है सर, एक किलो से गोल्ड मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे अच्छा ट्राई करूंगा।
13: बहुत अच्छा लग रहा है ये 26 कॉमनल गेम्स में सिल्वर रहने के बाद। गोल्ड लेना था लेकिन मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो गोल्ड नहीं लिया, तो थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर भी पहले बार मेरा मेडल आया तो अच्छा लग रहा है।
14: बहुत अच्छा लग रहा है कि लास्ट टाइम मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, इस बार सिल्वर मेडल जीत के मुझे बहुत अच्छा हो रहा है कि मैंने अपना बेस्ट दे के सिल्वर मेडल जीता है।
1: बहुत खुशी हो रही है और मेडल लेके वापस अपने देश आने में खुशी अलग ही होती है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये श्रेय मैं अपने मम्मी पापा, अपने कोचेस और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को देना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँची।
15: भी बहुत खुश है मतलब क्योंकि ये इधर भी आके ऐसे हमको ऐसे वेलकम किया, बहुत खुश है।
16: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया के लिए प्राउड फील हो रहा है। बस
17: इसका शेयर किसको देना चाहेंगे?
16: मैं गवर्नमेंट को देना चाहूंगी, मेरी फेडरेशन को बहुत सपोर्ट किया, कोचिस ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तभी यहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो नहीं मुमकिन था यहाँ तक पहुँचना, तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
7: गेम्स दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक है जिसमें केवल कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हिस्सा लेते हैं, यानी वही देश जो कभी न कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहे थे और आज इस साझा संगठन का हिस्सा हैं। कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से हुई थी और ये खेल प्रतियोगिता हर 4 साल में आयोजित होती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है। देखिए, भारत ने कनाडा 1930 में हुए पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लिया था। भारत ने 1934 के दूसरे खेलों में भाग लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत ने 1934 से लेकर अब तक कुल 603 पदक जीते हैं जिसमें से 216 स्वर्ण, 207 रजत और 180 कांस्य पदक शुमार है। 1934 में पहलवान राशिद अनवर ने कुश्ती 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता था। कार्डिफ ने 1958 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का महान धावक मिल्खा सिंह ने पुरुषों की 444 यार्ड दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया। कार्डिफ में हुए खेलों में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। 1990 में ऑकलैंड में हुए खेलों में पहली बार भारत ने 13 स्वर्ण सहित 32 पदक अपने नाम किए। 2010 की अगर हम बात करें तो इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत ने की। 2010 में नई दिल्ली में हुए खेलों में भारत ने कुल 101 पदक जीते जिसमें से 39 स्वर्ण, 26 रजत, 36 कांस्य पदक शुमार थे। 2010 में भारत ने पदक तालिका में दूसरा पायदान हासिल किया। अब तक सिर्फ 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स से 100 पदकों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड दिग्गज निशानबाज जसपाल राणा के नाम पर है जिन्होंने कुल 15 पदक यानी 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य देश की झोली में डाले थे।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will leave.
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ballgame.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे

0: आधार का आर्किटेक्ट यूपीआई की सफलता का सूत्रधार। डगमगाते एग्जाम सिस्टम की नैया करेगा पार। संकट के समय मोदी को याद आए नीले कणी। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ट्रबल शूटर। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान, और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
10: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स,
11: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई फूल मालाएं। हरिद्वार के प्रसिद्ध कांवड़ मेले में बम बम भोले के जयकार, शिव भक्तों की सुरक्षा और सेवा में मुस्तैद प्रशासन। डीएम एसएसपी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, फलाहार किया भेंट। देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। 28,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन हुआ, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। असम में बाढ़ प्रभावितों को फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग भी राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं खाना और जरूरी सामान। केरल के उदुपी में भारी बारिश के बाद खोले गए मलंकारा डैम के 5 गेट, राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की।
7: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं जब उनके सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलेकणी, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का जायंट माना जाता है, आईटी को लेकर देश के सामने जब कोई बड़ी चुनौती होती है या कोई लक्ष्य होता है तो सबको याद यही शख्स आते हैं। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन में जब एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का विचार आया तो उन्हें शिद्दत से ये याद आए, यानी कि नंदन नीलेकणी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि नीलेकणी ही वो शख्स हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं।

0: जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे इंसान को सही राह दिखाना होती है। नीट पेपर लीक की समस्या जब विकराल हुई और केंद्र सरकार को सीमलेस, स्नैगलेस और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की दरकार हुई तो याद आया वो शख्स जिसे हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट ऑफ आधार के नाम से जाना जाता है, नंदन निलेकणी। जी हाँ, वही नंदन निलेकणी जिन्हें 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हीं नंदन निलेकणी को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए दोष रहित, त्रुटि रहित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1: हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदन निलेकणी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर बनी हाई पावर टास्क फोर्स की सदारत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें मनमोहन सिंह ने साल 2009 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का चेयरमैन बना दिया था, ताकि आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन निलेकणी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन निलेकणी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज 100% सच साबित हो रही है।
2: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address. And it has online authentication capabilities so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs their ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
0: काबिल-ए-गौर है कि नंदन निलेकणी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी, वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
3: आधार KYC was sufficient to open a bank account or to get a mobile connection. And in 2014, soon after Prime Minister Modi came to power, on August 28, 2014, he launched the Jan Dhan Yojana program, which is the world's largest financial inclusion program. And more than 400 million bank accounts were opened for people. And they were able to do that very quickly because in Aadhaar eKYC, you could do an online opening of a customer account.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस DPI की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन नीलेकणी हैं। UPI ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। UPI कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन नीलेकणी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन नीलेकणी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए UPI के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन होता है। UPI के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो UPI के जरिए 314 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ।
3: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 16 had all these momentous events that all led to this massive transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next generation payment system on April 11, 2016. And as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened. And today, this is the world's largest payment system.
0: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में GST लागू करने के लिए जरूरी IT सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में नीलेकणी की अहम भूमिका रही है। नीलेकणी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैगअप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन नीलेकणी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन नीलेकणी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी PM मोदी और नंदन नीलेकणी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन नीलेकणी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
2: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman of the Unique Identification Authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses. I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology and how it can be used. And we had a very good 90-minute session. We talked about various kinds of things, including technology. And he was very, very appreciative of what is possible. And he showed that in his state. He showed that in every aspect of using technology.
0: पहली मुलाकात में ही नरेंद्र मोदी ने नंदन निलेकड़ी की अतुल्य तकनीकी दक्षता को परख लिया था। उधर नंदन निलेकड़ी को भी पहली मुलाकात में ही इल्हाम हो गया कि इस नेता में तकनीक आधारित विकास का व्यापक विजन है। यही वजह है कि पहली मुलाकात के दौरान ही टेक्नोलॉजिकल विजन और टेक्निकल स्किल के बीच का अटूट रिश्ता कायम हो गया, जो 15 साल बाद उम्मीदों और संभावनाओं के चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज देश के विजनरी युवाओं को एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की सख्त दरकार है। नंदन निलेकड़ी से पीएम मोदी के साथ ही देश के लाखों युवाओं को भी उम्मीदें हैं कि वो आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान पेश करेंगे।
4: शुरू से ही बहुत जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में निलेकनी ने आईआईटी में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर आईआईटी में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर निलेकनी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में आईआईटी क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे आईआईटी क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
0: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन निलेकड़ी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव निलेकड़ी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन निलेकड़ी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। आईआईटी क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर आईआईटी मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन निलेकड़ी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
2: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइंड एनी आईआईटी एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन आईआईटी चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन आईआईटी बॉम्बे। सो दैट्स हाउ एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर आईआईटी बॉम्बे।
0: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन निलेकड़ी ने किस मन स्थिति में की, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन निलेकड़ी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन निलेकड़ी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन निलेकड़ी को कर्नाटक के ही धारवाड़ में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन निलेकड़ी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन निलेकड़ी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
2: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12, and then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties, and he had to keep finding new jobs time on, and therefore he said for the stability of my education. He put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC.
3: And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
0: धारवाड़ में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन नीलेकणी ने आईआईटी में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड़ जैसे छोटे शहर में ना तो आईआईटी की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
3: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
0: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन नीलेकणी आईआईटी में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे, और जब चाह प्रबल होती है तो राह बांह फैलाकर स्वागत करती है। दरअसल तब आईआईटी बॉम्बे से नंदन नीलेकणी के कुछ कजन्स बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन के आईआईटी में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
3: फॉर्चुनेटली फॉर मी आई हैड कजिन्स इन मुंबई हु हैड गॉन टू आईआईटी एंड दे हैड द टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम दीज वेरियस क्लासेस दे हैड टेकन सो दे सेंड मी दोस टेक्स्ट बुक्स सो आई वुड सिट इन धारवाड़ विद माय फ्रेंड्स एंड वी वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन दोस टेक्स्ट बुक्स And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
0: IIT Bombay से electrical engineering में B.Tech करने के बाद नंदन नीलेकणी ने अपने professional career की शुरुआत पुणे स्थित पटनी computer systems से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन नीलेकणी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहाँ उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन नीलेकणी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इन्फोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन नीलेकणी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इंफोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन नीलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैसडेक पर लिस्ट होने वाली इंफोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैसडेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन नीलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन नीलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं है, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्लेज के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस आईआईटी बॉम्बे के नंदन नीलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन नीलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन नीलेकणी सिर्फ आईटी जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
4: तो बंदे में है दम में आज आज आपने नंदन निलेकनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना और समझा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें Good News Today बनाता है।
8: Good News Today.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है? क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
2: continue to face political pressure to reach a peace deal,
1: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज पत्र राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई फूलमालाएं। हरिद्वार के प्रसिद्ध कांवड़ मेले में बम बम भोले की जयकार, शिव भक्तों की सुरक्षा और सेवा में मुस्तैद प्रशासन। डीएम एसएसपी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, फलाहार किया भेंट। देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। 28,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। असम में बाढ़ प्रभावितों को फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग भी राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं खाना और जरूरी सामान। केरल के इदुक्की में भारी बारिश के बाद खोले गए मलंकारा डैम के 5 गेट, राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, मॉनसूनी सीजन में लगातार बढ़ रही है तादाद, खूबसूरत फूलों के बीच उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
11: सावन के पहले सोमवार को लेकर देश भर में तैयारियां पूरी। झांसी के श्री सिद्धेश्वर महापीठ में लगा आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान सिद्धेश्वर का जलाभिषेक। महादेव से कर रहे हैं सुख समृद्धि की कामना। 20 साल में बनकर तैयार हुआ सिद्धेश्वर महापीठ। हर महीने सिर्फ पुष्य नक्षत्र में हुआ निर्माण। श्रीयंत्र की आकृति पर बना है सिद्धेश्वर महापीठ। वास्तुकला का अद्भुत नजारा। सावन के शुभ दिनों में दूर दूर से सिद्धेश्वर महापीठ के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। मंदिर आस्था, आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र। देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में प्रशासन की ओर से किया गया शिव भक्तों का स्वागत। कांवड़ियों की सेवा में जुटा प्रशासन। हरिद्वार में डीएम और एसएसपी की ओर से कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। हर की पौड़ी मनसा देवी पर प्रशासन की विशेष नजर। ट्रैफिक डायवर्जन लागू। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा हाईटेक। 10 ड्रोन और 500 से ज्यादा सीसीटीवी से निगरानी। हर की पौड़ी से अब तक 50 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हुए कांवड़ शिविरों में। पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम। श्री अमरनाथ यात्रा का 31वां दिन आज। श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से भेजा जा रहा है धाम। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के कर चुके हैं दर्शन। यात्रियों में पूरा उत्साह। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से आज 3886 श्रद्धालुओं का नया जत्था हुआ रवाना। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात आश्रित रूप से बहाल। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकूट से गुजरा। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर मौसम और ट्रैक की स्थिति पर लगातार बनाई हुई है नजर। तिरुमला में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की किए दर्शन पूजन। तिरुमला में हार्दिक पांड्या ने मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान से सुख शांति और सफलता का आशीर्वाद मांगा। सावन की पहली रविवार पर महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने लिया हिस्सा। बाबा महाकाल के दर्शन करके पूजा अर्चना। सावन के चलते कालकाजी मंदिर में बढ़ी भक्तों की संख्या। कल पहले सोमवार को विशेष इंतजाम। सीकर के खाटू श्याम दरबार में पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। ऋषिकेश में तैयार हुआ बजरंग सेतु। जल पर्यटकों के लिए शुभारंभ होगा। बजरंग सेतु पर एंट्री फीस तय। बच्चों के लिए 50 और बड़ों के लिए 100 रुपए निर्धारित। चमोली में फूलों की घाटी में टूटा रिकॉर्ड। 2 महीने में पहुंचे 16,000 से ज्यादा पर्यटक। चमोली में सैलानी कर रहे हैं रंग बिरंगे फूलों से सजी घाटी का दीदार। आने वाले दिनों में पर्यटकों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद। कॉमनवेल्थ खेलों का आज आखिरी दिन। हाइड्रो में होने वाले आधिकारिक समारोह से होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को 9 पदकों की उम्मीद। ओलंपियन अवतार सिंह जूडो में दिला सकते हैं पदक। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों को जलवा कायम। शनिवार को 8 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में चौथे पायदान पर पहुंचा भारत। पुरुष मुक्केबाजी के 60 किलो वर्ग में भारत ने झटका गोल्ड। बॉक्सर सचिन सिवाच ने शानदार प्रदर्शन किया। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स से एथलीट्स की वापसी हो गई शुरू। कई पदक विजेता भारतीय वेटलिफ्टर एथलीट्स दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहुंचे। स्वर्ण पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू और लवप्रीत सिंह सहित कई खिलाड़ियों का स्वदेश लौटे, भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ियों के स्वागत में लोगों ने जमकर डांस किया, खिलाड़ियों ने भी लोगों को धन्यवाद दिया। खिलाड़ियों ने सीडब्ल्यूजी में प्रदर्शन पर जाहिर की खुशी, बोले अब एशिया और ओलंपिक खेलों में देश का परचम लहराना लक्ष्य। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल को लेकर दिल्ली पहुंचे बॉक्सर जादूमणि सिंह का जबरदस्त स्वागत हुआ। भारतीय शटलर तन्वी शर्मा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ताइपेई सुपर 300 का खिताब अपने नाम किया। 17 साल की तन्वी ने पहला वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम किया। सबसे कम उम्र में ताइपेई ओपन सुपर 300 का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। भारत और मलेशिया के अंडर 21 पुरुष हॉकी टीमों के बीच बेंगलुरु में होगा मुकाबला, 7 से 13 अगस्त तक खेली जाएगी सीरीज। भारत और मलेशिया की टीमों की अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले मिलेगा अभ्यास करने का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी, 100 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। देश भर में 28,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बताया भारत की असली ताकत, नशे से दूर रहने का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने नशे को बताया राष्ट्र की शक्ति कमजोर करने वाला। प्रधानमंत्री मोदी के नशे कारोबारियों पर सख्ती बरतने की उन्होंने बात कही, 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन भी नशा मुक्ति में कर रहे हैं सहयोग। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। मयूर विहार समेत कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को राहत। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बरस रहे बदरा, गर्मी से लोगों को मिली राहत। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, प्रशासन के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गुजरात के सूरत में जल जमाव से ट्रैफिक थमा, हाईवे पर भी सैलाब। श्रीनगर में बारिश के बीच सुहाना हुआ मौसम, हल्की फुहारों के बीच लोग उठा रहे हैं पर्यटन का लुत्फ। श्रीनगर की डल झील में भी दिख रहा है खूबसूरत नजारा, लेक किनारे वुक्ड हाउस में लोग ले रहे हैं आनंद। बारिश से पूरी तरीके से भीगी नजर आ रही है श्रीनगर की सड़कें। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खेतों और गांवों में भर गया पानी, गंगा किनारे बसे करीब आधा दर्जन गांवों में कटान का खतरा। असम के बाढ़ प्रभावित जिले शिवसागर पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा, लोगों की मदद की। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, सफारोपोरा इलाके में कई घरों में पानी। गांधरबल में प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया, नुकसान का आकलन कर रही है टीम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश के कारण बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद रास्ते का काम

आप में डूब रहे बच्चे की जान बचाई। झांसी के ईमानदार सिपाही कमलेश श्रीवास्तव ने शानदार उनको विदाई दी गई। नियम तोड़ने पर अधिकारियों की गाड़ी पर भी कार्रवाई करने के लिए शहर में मशहूर। वुडन सिटी सहारनपुर में लकड़ी से जुड़े कारीगरों और कारोबारियों के आए अच्छे दिन। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। सहारनपुर की काष्ठ कला को नई तकनीक, आर्थिक मदद और ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में तड़के 4:14 पर महसूस किए गए भूकंप झटके रियल रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.9 मापी गई। राजस्थान में भारतीय वायुसेना का हफ्ते भर चलने वाला एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड संपन्न हुआ। लेखक और शायर डॉक्टर राही मासूम रजा की याद में माटी संस्था द्वारा मनाया जा रहा है शताब्दी सेलिब्रेशन।

दिल्ली की तरह देश के 100 शहरों में आयोजित होगी शताब्दी सेलिब्रेशन। पंजाब के कई शहरों में चल रही है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म। कैबिनेट मंत्री हरजोत पैंस के साथ मीटिंग के बाद बनी सहमति। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जगह जगह लगे कूड़े के ढेर से मिलेगी निजात, मंत्री ने जताया भरोसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पीबीजी सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैनिकों के सम्मान में किया जा रहा है सोल्जर थॉन का आयोजन, फिटनेस और देशभक्ति की मिसाल। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का हुआ आयोजन। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का 84वां संस्करण का हुआ आयोजन। कर्नाटक के बल्लारी में स्टील सिटी रन 2026 मैराथन का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। चीन की स्काई स्कूल बस बनी बच्चों का सहारा, 3 घंटे का सफर अब 30 मिनट में। चीन के यूनान प्रांत में छात्रों के लिए शुरू की गई है स्काई स्कूल बस। 3 गुना बड़ी यात्रियों की क्षमता, हर घंटे 1200 लोग कर सकते हैं सफर। चीन के जियांगशी प्रांत में शानदार लाइट शो। जीवन हुआ नानचांग विद्रोह का इतिहास। चीन के वुलिंगुआन में 1500 ड्रोन ने बांधा सवा शानदार नजारा। शो में पेश की गई चीन की आइकॉनिक पहाड़ी चोटियों की झलक, महत्वपूर्ण इमारतों की भी बनाई तस्वीर। चीन में कल तक चलेगा यह अनोखा ड्रोन शो, हजारों लोगों को मिल रहा है इसका आनंद लेने का मौका। चीन के शेंजेन में शानदार रोशनी से जगमग हुई इमारतें, मनाई गई चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ। शेंजेन की इमारतों पर देखा लाइटिंग का अनोखा नजारा। पश्चिमी तुर्की में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। तटीय प्रांत इज़मीर के जंगलों में भड़की है आग। पिछले 3 दिनों में 80 से ज्यादा जंगली इलाकों में उठी हैं लपटें। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी आयदिन प्रांत में भी जंगलों की आग

0: पर काबू पाने की कोशिश है। जंगलों की आग पर नियंत्रण करने के लिए जमीन से आसमान तक किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है जंगलों की आग का मुख्य कारण, हर साल इन इलाकों में बढ़ रहा है आग का संकट। ग्रीस में एथेंस के पश्चिमी इलाके में भी जंगलों में भड़की आग, हेलीकॉप्टर्स के सहारे काबू पा रहे हैं। एथेंस प्रशासन ने अब बाशिंदों को इलाका खाली करने की सलाह दी। फ्रांस में भी दक्षिण इलाके कोरेंस के पास जंगलों में लगी आग। सूखे से जूझ रहे ब्रिटेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में किसानों से समय से पहले शुरू किया गया खेती का काम। इंग्लैंड के कई इलाकों में इस बार कम हुई वर्षा, खेती के लिए मौसम की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में जुटे किसान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: आइए बात करते हैं अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चर लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर जो है स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहरी दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं।

0: सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रि कालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर के दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है। हर नकाशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्प कला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
2: है। सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Without paying more. Get Spectrum Business Internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
1: Good news today is really good. This is the वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
4: अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders. Sage University, transforming your passion into profession.
3: पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटा मंदिर प्रशासन। हरिद्वार के प्रसिद्ध कांवड़ मेले में बम बम भोले के जयकारे, शिव भक्तों की सुरक्षा और सेवा में मुस्तैद प्रशासन, डीएम एसएसपी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, फलाहार किया भेंट। असम में बाढ़ प्रभावितों को फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग भी राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं खाना, जरूरी सामान। केरलम के इदुक्की में भारी बारिश के बाद खोले गए मलंकारा डैम के 5 गेट, राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, मानसूनी सीजन में लगातार बढ़ रही है तादाद, खूबसूरत फूलों के बीच उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर ढोल लगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई फूल मालाएं।

0: क्या आप अटैक करेंगे?
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कानून कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, कानून किसी के खेलने की भी चीज नहीं है। और वो भी तो कहते हैं ना कि कानून से खिलवाड़ या कानून से खेलना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसी कानून को खिलौना बनाकर क्या खूबसूरत और अच्छी पहल की है। पहल दिल्ली के बचपन को महफूज करके दिल्ली के जवानी को सुरक्षित रखने की। नहीं समझे तो चलिए इन्हीं बच्चों के साथ मिलकर समझते हैं।

0: किस तरह आप अटैक करेंगे?
1: ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ दिल्ली के सभी टॉप बॉस बैठते हैं। और इसी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है मानो दिल्ली के सारे स्कूल यहीं उठकर चले आए हैं। जी हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर में ये लोग जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, ये दिल्ली के अलग अलग स्कूल के उस्ताद यानी टीचर हैं। जानते हैं ये यहाँ क्यों इकट्ठा है? वो उसे समझने के लिए आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाती है।
0: राइट हैंड से ही पंच मारना था। अटेंशन, सेकंड, दोनों हाथों से गर्दन ग्रिप करना है। सेकंड नेकलेस बोथ हैंड, डिफेंडर, दोनों हाथों के बीच में दोनों हाथ डालेंगे पंच बना के, अपनी एल्बो जॉइंट सामने वाले की एल्बो जॉइंट के पास लाएगी।
1: ये जो आप देख रहे हैं, जानते हैं ये क्या है? ये इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? ये दिल्ली के बच्चों के दुश्मनों को एक चेतावनी है। यहाँ इस वक्त दिल्ली का एक मजबूत और ताकतवर भविष्य तैयार किया जा रहा है। छोटा बच्चा जान के कोई इनके साथ खिलवाड़ ना कर सके, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इन बच्चों को मजबूत और ताकतवर बनाने की, अपनी सुरक्षा खुद करने की जो ट्रेनिंग दे रही है, ये दिल्ली पुलिस की एक हेड कांस्टेबल है, सुनीता। दिल्ली पुलिस की ऐसी न जाने कितनी ही सुनीता बीते पूरे महीने दिल्ली के सैकड़ों स्कूलों में लाखों बच्चों को इसी तरह तैयार कर रही थी। तैयार इस बात के लिए कि अगर इनकी मासूमियत और बचपन से कोई खिलवाड़ करे, इन पर बुरी नजर डाले, बैड टच करे, तो ये अपने माँ बाप या पुलिस का इंतजार ना करे, बल्कि उसी वक्त उन गुनहगारों को डिफेंस की अपनी इसी कला से धूल चटा दे।
2: मुझे तो अभी 5 दिन के अंदर ही ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आई थिंक ये 5th डे है, तो वो कॉन्फिडेंस अपना आप वो शो हो रहा है कि डिफेंस, आफ्टर सेल्फ डिफेंस क्लास की हमने ये दिया है।
3: तो जब हमको अपने से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बड़े पुरुष को टैकल करना होता है, उसके लिए सेल्फ डिफेंस हमें कहीं ना कहीं चाहिए होता है, और हर एक लड़की को लगता है कि उसे ये चीज़ आनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें ये चीज़ सिखाई जा रही है।
4: जब हम सेल्फ डिफेंस करते हैं ना, तो सबसे पहले एक थिंक आती है सेल्फ और डिफेंस, जो हम खुद की रक्षा करते हैं। जब हमें कोई टच नहीं कर सकता, हम उसको छू सकते हैं, इवन दो वो हमें मारे, उससे पहले हम उसको हिट करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेल्फ डिफेंस में मैंने ये सीखा, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक तो सेल्फ कैसे हम खुद से बच सकते हैं किसी दूसरे से जब वो हमें हिट करे।
5: अब ये है कि अगर हम कहीं से भी मतलब कहीं फंस रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम निकल सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं
6: खुद ही उस परिस्थिति में। लाइक हम डिफेंस अपने आप को कर सकते हैं, कि अगर ये नहीं कि हमें किसी और की ज़रूरत पड़े, किसी और की सपोर्ट चाहिए कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, या फिर हम किसी का मतलब किसी हाँ इंतज़ार करें।
1: दिल्ली में कुल 5,633 रजिस्टर्ड स्कूल हैं, जिनमें करीब 45 लाख बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली देश के उन बड़े शहरों में से एक है जहां बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध काफी ज्यादा हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के सबसे ताजा डाटा के मुताबिक दिल्ली में हर साल लगभग 8,000 केस वो दर्ज होते हैं जो बच्चों से जुड़े अपराध के होते हैं। इनमें से 1500 से थोड़ा ऊपर अकेले पॉक्सो के मामले होते हैं। ये तो रजिस्टर्ड केस की बात है, उन केसों की तो गिनती ही नहीं जो किसी थाने में दर्ज नहीं होती, क्योंकि खुद बच्चों को पता नहीं होता कि गुड और बैड टच के बीच कब वो बाल यौन शोषण के शिकार हो गए। इसीलिए इस ट्रेनिंग के जरिए न सिर्फ इन बच्चों को सेल्फ डिफेंस का तरीका सिखाया जा रहा है, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि गुड और बैड टच होता क्या है। दरअसल दिल्ली सरकार की पहल पर दिल्ली पुलिस ने जुलाई के पूरे महीने में यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ का आयोजन किया था। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की थी। चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस का प्लान तो बन गया, पर दिक्कत ये थी कि बच्चों को ये ट्रेनिंग कौन दे। इसी के बाद इस अभियान में दिल्ली पुलिस को शामिल करने का फैसला लिया गया। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले स्कूल टीचर्स को हेडक्वार्टर बुलाया, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी, फिर उन टीचर्स से कहा गया कि वो अपने अपने स्कूलों में जाकर बाकी टीचर्स को यही ट्रेनिंग दे। जब सारे स्कूल के टीचर इस ट्रेनिंग का हिस्सा हो चुके, तब असली ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग स्कूलों में पहुंची।
7: ये एलजी सर के इनिशिएटिव से हमने जुलाई को चाइल्ड सेफ्टी मंथ डिक्लेयर किया था। इसकी ओपनिंग हुई थी 1 जुलाई को, जब हमने अराउंड 2 दिन की मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग दी थी स्कूल टीचर्स को, जिसमें हमने 1700 टीचर्स को मास्टर ट्रेनर्स बनाया था।
1: ये तस्वीर ऐसी ही एक ट्रेनिंग की है। इनमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे दुश्मनों से निपटना है, कैसे उन्हें काबू करना है, कैसे उन्हें बेबस करना है और कैसे उन्हें पटखनी देना है। ये सारे ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस और अटैक दोनों की है।
8: एक होता है लड़ना और दूसरा होता है टेक्निक के साथ। तो हमारे जो दिल्ली पुलिस के टीचर्स हैं, इन्होंने ना केवल हमें लड़ना सिखाया बल्कि एक टेक्निक दी है कि हम किस तरह से अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं और साथ ही दूसरे पर अटैक भी कर सकते हैं।
9: हम लोगों ने जैसे नेक लॉक सीखा है, जैसे हम यहाँ पे कर सकते, इसको यहाँ पे नेक किसी की लॉक कर सकते हैं। देन हमने ये सीखा है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे हम कितनी भी मतलब यू नो कितने भी वीक हों या फिर कितने भी पतले दुबले हों, बट जैसे नकल्स वाला पार्ट है, एल्बो वाला पार्ट है, वो बहुत जोर से लगता है। ऐसे ही सामने वाले में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं, जैसे कि नोज वाला पार्ट है और यहाँ पे टेम्पल वाला पार्ट है। तो हमने ऐसे बहुत सारे अटैक सीखे हैं जिससे हम वहाँ पे इन चीज़ों से यहाँ पे टारगेट करेंगे तो उनको ज़्यादा चोट पहुँचती है।
10: आप कैसे खींच रहे हैं, टेक्निक क्या है, तो उसके लिए यूज़ किया। अलग अलग हैंड इफेक्ट्स बताए कि कौन कौन सा डिफेंस होता है, और ये भी बताया कि हर एक लड़की के मोबाइल में क्योंकि आजकल मोबाइल की जनरेशन है, तो हमें हर एक मोबाइल में 112 करके एक ऐप है, वो दिल्ली पुलिस का ऐप है, हमें उसे लॉग इन करना ही चाहिए।
11: मैम ने हमें सिखाया कि इवन हम थप्पड़ के अलावा भी बहुत कुछ हिट कर सकते हैं, अपने एल्बो को अटैक कर सकते हैं, अपने पाम से अटैक कर सकते हैं, अपने लेग से अटैक कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमें कमज़ोर समझे, हम भी सामने वाले को कमज़ोर फील करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी वो यही है।
12: मुझे ये लगता है कि अगर कोई मुझसे स्ट्रॉन्गर मैन मुझे अटैक करेगा तो मैं अपने आप को डिफेंस करती हूँ, क्योंकि कर सकती हूँ, बिकॉज ताकत से ही नहीं होता। अगर स्ट्रॉन्ग कोई अटैक कर रहा है तो टेक्निक्स भी चाहिए होती है उसके लिए। अगर हमें पावर है तो हम कर सकते हैं किसी पर अटैक, बट साथ में हमें टेक्निक्स भी आनी चाहिए डिफेंस करने के लिए।
13: जिस तरीके से हमें दिल्ली पुलिस सिखा रही है टेक्निक्स, लाइक कि हम अपने फिंगर टिप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अटैक के लिए, पाम, एल्बो, एवरीथिंग, मैं उस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ।
14: उन्होंने हमें सिर्फ ऐसे नहीं बोल दिया कि ये होता है, इन सिचुएशन में करो, बस हो गया, ये उन्होंने नहीं किया। उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, प्रैक्टिकली करवाया, और उन्होंने बताया कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही करना है, और वो बहुत इंथुजियास्टिकली करते हैं।
1: चाइल्ड अवेयरनेस की सबसे खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ बच्चों को सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया जा रहा था, बल्कि उन्हें साइबर सेफ्टी, पॉक्सो कानून और बच्चों से जुड़े कानूनों के बारे में आसान जुबान में भी उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। दरअसल जिस तरह से साइबर क्राइम तेजी से फैल रहा है और जिस तरह आजकल ज्यादातर बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है, इससे वो बड़ी आसानी से साइबर क्रिमिनल या साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें इससे बचने के लिए तरीके भी बताए जा रहे थे। स्कूलों में आमतौर पर बच्चों को सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। इस ट्रेनिंग के बहाने बच्चों को सिलेबस के बाहर असली जिंदगी में पेश आने वाली चुनौतियों से भी वाकिफ कराया गया। दिल्ली का एक मजबूत भविष्य तैयार करने की कोशिश में जुटी दिल्ली पुलिस का मानना है कि ऐसी चीजों से उन्हें क्राइम कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। खुद बच्चों का कहना है कि ऐसी ट्रेनिंग से सिर्फ महीने भर के अंदर उनमें एक गजब का कॉन्फिडेंस आया है।
15: जब से मैंने ये क्लासेस ज्वाइन करी हैं और जितना मैंने अभी तक सीखा है, उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया है, और आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पे और भी लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफ़ी आया है। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियाँ इंडिपेंडेंट होती हैं और प्राउड, मेरे को बहुत प्राउड फील होता
9: है। मैम वी आर रियली थैंकफुल, हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, हमको सिखाया जा रहा है ताकि हम जब बाहर निकले तो हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हम सेफ हैं।
16: दिल्ली पुलिस के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं, वो हमें सिर्फ ये नहीं सिखा रहे हैं कि हम किसी को सिर्फ अपने हाथ पैर चला के मार दें, वो हमें ये भी सिखा रहे हैं कि हम अपनी वॉइस कैसे रेज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे तो सामने वाला जो क्रिमिनल है वो सोचेगा कि हम बहुत ईजी टू अटैक हैं, और जब हम कॉन्फिडेंट होकर अपीयर होंगे उनके सामने तो वो हम पे अटैक करने से पहले या हमारे टूवर्ड्स कोई स्टेप लेने से पहले 10 बार कम से कम सोचेगा।
17: यहाँ पे ये नहीं है कि हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन हमसे या फिर देखता है कि टारगेट समझता है कि ये कोई टारगेट हो सकता है तो हमारा कॉन्फिडेंस ही ऐसा हो, हम उन वहाँ पे रिप्रेजेंट ही अपने आप को ऐसा करें कि वो समझे ही ना कि ये इजी टारगेट है उनके लिए।
15: यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे से सिखाते हैं, कोई भी डाउट होता है बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, एंड यहाँ का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है बहुत अच्छा भी रहा है।
17: तो ये बहुत अच्छा लाइक डिसीजन और वो है लाइक कि हम लड़कियों के लिए कि वो हमें सिखा रहे हैं कि ना कि हमें सिर्फ डायल करना है कि दिल्ली पुलिस नंबर को डायल करो कि हम कोई मुसीबत में हैं, बट हम खुद ही उस परिस्थिति में लाइक हम डिफेंस अपने आप को कर सकते हैं।
1: इस पूरे महीने भर की ट्रेनिंग की एक खास बात ये भी थी कि बच्चों के साथ साथ इसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी शामिल किया गया पेरेंट्स टीचर मीटिंग के जरिए। असल में मकसद ये था कि माँ बाप भी बच्चों से खुलकर दोस्तों की तरह बात करें, स्कूल या स्कूल के बाहर उनके साथ क्या होता है रोजाना उसकी जानकारी ले, क्योंकि जानकारी बहुत सारी घटनाओं को रोक सकती है।
7: जो हमारी 2 दिन की मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग चली थी टीचर्स के लिए, उसमें यही हमने बताया है कि अगर स्कूल में बच्चा कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है भले वो कंप्लेंट ना हो तो भी उस पर कैसे रिएक्ट करना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बनी हुई है, सोशल काउंसलर्स होते हैं, दे विल काउंसिल द किड, रिपोर्ट जनरेट होगी एंड दे हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस, देयर इज नो डिस्क्रिशन अवेलेबल फॉर द टीचर्स इन दैट। सेकेंडली, अगर पेरेंट्स को लगता है कि दे हैव टू रीच आउट टू पुलिस, तो इसमें बहुत अच्छा प्रोविजन है कि एक लेडी SI हमारी CVs में घर जाके भी बच्चे की कंप्लेंट ले सकते हैं।
1: दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जिन 16,600 स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी उनमें लगभग 7,00,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। कुल 16,600 संस्थानों में से 5,633 स्कूल, 10,897 आंगनवाड़ी सेंटर और 88 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस शामिल थे। अमूमन ऐसी सरकारी या पुलिसिया ट्रेनिंग बच्चों को बोरिंग लगती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। सेल्फ डिफेंस और दुश्मन को धूल चटाने की ट्रेनिंग पाकर ज्यादातर बच्चे इतने खुश थे कि अब वो चाहते हैं कि बीच बीच में ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्हें और मजबूत बनने या बनाने के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग कम है। बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी ये मानना है कि ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी ट्रेनिंग वक्त वक्त पर होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों का आत्मविश्वास और मजबूत हो।
18: दिल्ली पुलिस का ये वाला इनिशिएटिव है, इट इज़ वेरी गुड। इवन आई एम प्लानिंग कि मैं अपने स्कूल के लिए भी, इनको मैंने इनसे लिए हैं सारे नंबर्स वगैरह, तो आई एम प्लानिंग कि मैं भी अपने स्कूल में 10 डेज का ऐसा कैंप चलाऊं कि मेरे 6th क्लास के बच्चे शुरू तो करें सीखना, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करें, कुछ तो सीखेंगे, बेसिस तो हम डालें।
19: मुझे लगता है दिल्ली में तो जितना कुछ हो चुका है उसके बाद 1 महीना भी कम ही है, इतनी सारी महिलाएं हैं उन सबको ट्रेन करने के लिए। तो स्कूल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है हमें आउटस्कर्ट्स में जाके, हमें झुग्गी झोंपड़ियों में जाके, ऐसा नहीं है क्राइम वहाँ नहीं होते, जस्ट दैट वहाँ से रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो मुझे तो लगता है 1 महीना नहीं थोड़ा और बढ़ा दें ताकि दिल्ली की सारी महिलाएं ही अपने आप को इस तरीके से मतलब यू नो ये सीख सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें।
9: हम लोग को इसको ज़्यादा रेगुलर करना चाहिए, ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना चाहिए ताकि हर एक लड़की जब वो घर से बाहर निकले उसको डर ना रहे, उसको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि अगर आगे कुछ भी होता है तो मैं इतनी केपेबल हूँ कि अगर कोई ना भी हो तो मैं अपनी खुद की हेल्प कर पाऊँ।
20: घर से बाहर निकलते हमें हमेशा एक डाउट होता है कि या कि मतलब जा रही हूँ कोई देख ना ले, कोई कुछ कर ना ले, हम अपने पापा या मम्मी पे डिपेंड होते हैं, बट हमेशा तो नहीं हो सकते, इन सम पॉइंट ऑफ लाइफ वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिल्ली पुलिस टू टीच गर्ल्स हाउ टू डिफेंड देमसेल्फ, एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव उन्होंने मतलब अभी शुरू किया है वो ऐसा कंटिन्यू करे ताकि लड़कियां अपने आप को डिफेंड करना सीख पाए।
21: आई वुड से कि दिल्ली पुलिस को ये सब चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए, आगे भी और भी वुमेंस को ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, टेक्निक्स अपने आप को सेफ رکھنے کے لیے.
20: بہت تھینکفل ہوں میم, اور میں چاہوں گی کہ وہ یہ سب کنٹینیو رکھے تاکہ ہمارے بعد اور بھی بچے سیکھیں, سر یہ ضروری ہے.
1: اس ایک مہینے کی ٹریننگ کی ایک اور خوبصورت تصویر دیکھنے کو ملی. جس دلی پولیس نے ان بچوں کو مضبوط بنانے کا کام کیا, اس مضبوطی کا مہینے بھر میں ہی احساس ہوتے ہی یہی بچے دلی پولیس کو تھینک یو بول رہے ہیں.
9: ریلی تھینک فل, ہم بہت زیادہ تھینک فل ہیں کہ یہ چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں, ہم کو سکھایا جا رہا ہے تاکہ ہم جب باہر نکلے تو ہمیں کانفیڈینس رہے.
0: بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جو دلی پولیس نے لیا ہے.
2: پولیس نے پہلے ہمیں سکھایا کہ اگر ہم اپنی رکشا کر پائے گے تبھی ہم تو دیش کی رکشا کر پائے گے, تو اس لیے میں دلی پولیس کا بہت تھینک یو کرتی ہوں کہ وہ اتنا انیشیٹو لے رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں.
22: چیزیں جو دلی پولیس کر رہی ہے میں اس کے لیے کافی شکر گزار ہوں.
21: جس طریقے سے ہمیں دلی پولیس سکھا رہی ہے ٹیکنیکس, لائک کہ ہم اپنے فنگر ٹپس کیسے یوز کر سکتے ہیں اٹیک کے لیے, پام ایلبو ایوری تھنگ, میں اس چیز کے لیے بہت تھینک فل ہوں.
1: ظاہر ہے دلی کے اسکول کے بہت سارے بچے کسی نہ کسی وجہ سے یا پڑھائی کے چلتے اس ٹریننگ کا حصہ نہیں بن پائے, لیکن جذبہ دیکھیے, جن بچوں نے اس ٹریننگ کا فائدہ اٹھایا ان کا کہنا ہے کہ واپس اسکول کالج لوٹ کر وہ اپنے ایسے ساتھیوں کو یہی چیز سکھائیں گے. اتنا ہی نہیں, اسکول کالج کے باہر اپنے شہر میں بھی جب جب کسی پر انہیں ظلم ہوتا دکھائی دے گا تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے.
2: اگر انہوں نے ہمیں سکھایا تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے اپنے گھر پہ سکھائے, اور یہ چیز ہم آگے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہمیں سکھا رہے تو ہمارے اوپر ہے, کیونکہ اگر کرائم دیکھ رہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ وہ ہے, تو وہ سب کو ایکول دے کے چل رہا ہے. آج سے چھوٹا مطلب 5 سال کی بچی سے لے کر 50 سال کی ایک عورت کے ساتھ سب کے ساتھ کرائم ہو رہا ہے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ دلی پولیس ہمیں اتنا کچھ سکھا رہی ہے اور آگے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آگے سکھائے.
23: میرا یہاں پہ ایکسپیرئنس بہت اچھا رہا, میں اس لیے ڈیفینس سیکھنا چاہتی ہوں کہ پہلے تو میں خود اچھے سے پراپر سیکھوں, اور اپنے گاؤں میں مطلب بہت غیر ہنسا دیکھنے کو ملا ہے. میں چاہتی ہوں کہ سب یا اپنے گاؤں ہو یا کہیں پر بھی جہاں رہی ہوں, میں جیسے سیکھی ہوں میں ان کو سکھاؤں کہ وہ کہیں اور جا رہے ہیں تو وہ چیز نہ.
24: تھینک یو, ہم ان کے لیے بہت وہ ہیں کہ ریسپیکٹ فل ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا ہمیں ٹرین کیا, اور یہ بھی کہ ہم آگے یہ کریں گے کہ ہم باقی بچوں کو بھی ٹرین کریں گے جو ہمارے نون میں ہیں, اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ دہلی پولیس نے ہمیں اتنا اچھا ٹرین کیا یہ سب کرنے کے لیے.
1: دلی میں ایسے بچوں کی بھی بڑی تعداد ہیں جو یہاں ہاسٹل یا پی جی میں رہتے ہیں. دور ان کے ماں باپ ان کی سرکشا کو لے کر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. اس ٹریننگ کے بعد ایسے بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اس ٹریننگ کے فائدے کی جانکاری اپنے پیرنٹس کو دی تو وہ بھی بہت خوش ہو گئے. اب انہیں بھی لگنے لگا ہے کہ اس ہنر کے ذریعے ان کے بچے بہتر طریقے سے خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں.
2: ہم دلی کے نہیں ہیں, ہم باہر سے آئے ہوئے, ہمارے پیرنٹس الگ رہ رہے ہیں اور ہم ادھر الگ رہ رہے ہیں, تو ہمارے لیے سیلف ڈیفینس بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس کو ہماری یہی فکر رہتی ہے کہ وہ بچے کس طرح سے رہ رہے ہیں, کیسا کر رہے ہیں. ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ رات کو کیب نہیں بک کر سکتے, آٹو میں نہیں جا سکتے, کہیں پہ بھی جانا ہو کہ گروپ میں جانا ہو, ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا, ہم کیا کرتے ہیں پیپر اسپرے رکھ دیں گے, جا تو تھپڑ سے اٹیک کر لیں گے, تھپڑ بھی کام نہیں کرتا, اگر اگلا والا ہمیں پکڑ لے گا ہم کیا کریں گے. تو جس طرح سے دلی پولیس نے ہمیں ٹریننگ دی ہے وہ بہت اچھی ہے.
22: آپ جو کر رہے ہو اسے پلیز کنٹینیو رکھیں تاکہ ہم جیسی انیک لڑکیاں جو یا تو الگ راج سے آتی ہیں یا ایسی جگہ سے آتی ہیں جہاں پر یہ سب چیزیں ان تک نہیں پہنچ پاتی ہیں, تو ان تک بھی یہ چیز پہنچ پائے اور وہ بھی اپنے آپ کو سیف فیل کر سکے اس بھارت کے اندر.
1: کہتے ہیں کوئی بھی چیز تبھی ڈھنگ سے سیکھی یا سکھائی جا سکتی ہے جب سیکھنے اور سکھانے والے کے بیچ آپسی تال میل اور ایک دوسرے کے لیے عزت ہو. بھوشیہ کو بہتر بنانے کی اس ٹریننگ کے دوران یہی بانڈنگ بچوں اور انہیں سکھانے والے گرو کے بیچ دیکھنے کو ملی.
17: ان لوگوں سے بانڈ, دے آر لائک وہ بہت سویٹ, اینڈ وہ ہمیں ایسے سکھاتے ہیں لائک ہم انہیں کے لائک بچے ٹائپ ہیں.
24: میم فرسٹ آف آل میں دونوں میم کو بہت زیادہ تھینک فل ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ہمیں ایکسپیرینس دیا, انہوں نے ہمیں سکھایا کہ وومن امپاورمنٹ کیا ہے اور ڈیفینس کیا ہے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ڈیفینس کیسے کر سکتے ہیں.
19: بہت اچھے ٹرینرس ہیں ہمارے, دونوں ہی مہیلائیں ہیں, تو سب سے بڑا بیریئر تو یہی کراس ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو مہیلائیں ہیں وہ بچوں کو سکھانے کے لیے آ رہی ہیں, تو ایک بہت بڑا سوچی سمجھی ان کی شاید یہ وہ ہوگی कार्यशैली होगी कि महिलाओं को भेजे ताकि जो हमारी बच्चियां हैं उनका एक बैरियर क्रॉस हो जाए और वो आराम से इनसे सीख सके।
3: मैं दिल्ली पुलिस की जितने भी हमारी जो टीचर्स हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, इतनी कड़कती धूप में वो हमें सिखाने आते हैं और हम उनसे सीखते हैं। आज बहुत सी गर्ल्स ने बहुत कुछ सीखा,
4: मुझे लगता है बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं लाइक कि कैसे करना है, क्या सही पोस्चर है, बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली, और जहाँ गलती होती है वहाँ बताते हैं, लाइक बहुत अच्छा है।
1: पूरे एक महीने चलने वाली इस ट्रेनिंग का क्लाइमेक्स भी अलग अलग स्कूलों में अलग अलग अंदाज में हुआ। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूलों और अनाथालय से आए करीब 200 बच्चों को पुराना फिरोज शाह कोटला यानी आज के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली प्रीमियर लीग का लाइव मैच दिखाया गया। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर बुनियाद अच्छी हो तो इमारत मजबूत होती है। ये बच्चे हमारे समाज की बुनियाद हैं। जितना खूबसूरत इनका बचपन होगा उतना सुनहरा हम सबका भविष्य। जरा सोचिए, आज अगर ये हर जुर्म से खुद लड़ेंगे तो आने वाले वक्त में जुर्म की तस्वीर कितनी धुंधली हो सकती है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज़ स्टूडियो। और चलिए इसी के साथ आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ स्टूडियो।

0: 定करेगी।
1: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
9: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।

0: क्या सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है? क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत Connection.
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: विश्वास में विश्वास बसता है. जो हमें अच्छाई जगाता है. हमें Good News Today बनाता है.
3: Good News Today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटा मंदिर प्रशासन। हरिद्वार के प्रसिद्ध कांवड़ मेले में बम बम भोले की जयकार, शिव भक्तों की सुरक्षा और सेवा में मुस्तैद प्रशासन, DM SSP ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, फलाहार किया भेंट। असम में बाढ़ प्रभावितों को फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग भी राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं खाना और जरूरी सामान। केरलम के इदुक्की में भारी बारिश के बाद खोले गए मलंकारा डैम के 5 गेट, राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, मॉनसूनी सीजन में लगातार बढ़ रही है तादाद, खूबसूरत फूलों की पीछ उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर ढोल लगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई फूल की माला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: एक बार फिर से श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ केदारनाथ धाम, सावन के पावन महीने में बढ़ते कुंभ मेली भक्तों की भारी भीड़। मानसून की चुनौतियों पर आस्था दिखी भारी, लंबे समय बाद मंदिर परिसर में बढ़ी है चहल पहल। बरसों गुलजार दिखी रुद्रप्रयाग की पहाड़ी, केदारनाथ धाम में बढ़ी कांवड़ यात्रियों की आवाजाही। केदारनगरी की प्राकृतिक सुंदरता बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, भक्त बढ़े उत्साह से कर रहे हैं दर्शन पूजन। मंदिर में तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुगम दर्शन करने के लिए खास इंतजाम, भक्त लगा रहे हैं महादेव के जयकारे। सावन के पहले सोमवार को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, झांसी के श्री सिद्धेश्वर महापीठ में लगा रहे हैं आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान सिद्धेश्वर का जलाभिषेक, महादेव से कर रहे हैं सुख समृद्धि की कामना। इस साल में बनकर तैयार हुआ सिद्धेश्वर महापीठ, हर महीने सिर्फ पुष्य नक्षत्र में हुआ निर्माण। श्री यंत्र की आकृति पर बना सिद्धेश्वर महापीठ, वास्तुकला का अद्भुत नजारा। सावन के शुभ दिनों में दूर दूर से सिद्धेश्वर महापीठ आते हैं श्रद्धालु, मंदिर आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र। देश भर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में प्रशासन की ओर से किया गया शिव भक्तों का स्वागत। कांवड़ियों की सेवा में जुटा प्रशासन, हरिद्वार में DM और SSP की ओर से कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। अर्कीपौड़ी मनसा देवी पर प्रशासन की विशेष नजर, ट्रैफिक डायवर्जन लागू। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा हाईटेक, 10 ड्रोन, 500 से ज्यादा CCTV की से निगरानी। अर्की पौड़ी से अब तक 50 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर हुए रवाना, कांवड़ शिविरों में पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम। श्री अमरनाथ यात्रा का 31वां दिन आज, श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से भेजा जा रहा है धाम। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फन के कर चुके हैं दर्शन। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से आज 3886 श्रद्धालुओं का नया जत्था हुआ रवाना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात आंशिक रूप से बहाल। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकूट से गुजरा, सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं की यात्रा सुचारू रूप से जारी। प्रशासन यात्रा मार्ग पर मौसम और ट्रैक की स्थिति की लगातार कर रहा है निगरानी, यात्रियों को भी सतर्क रहने की एडवाइजरी है। सीकर के खाटू श्याम के दरबार में पहुंची दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ऋषिकेश में तैयार हुआ बजरंग सेतु, जल्द पर्यटकों के लिए होगा शुभारंभ। बजरंग सेतु पर एंट्री फीस तय, बच्चों के लिए 50 और बड़ों के लिए 100 रुपए। चमोली में फूलों की घाटी में टूटा रिकॉर्ड, 2 महीने में पहुंचे 16,000 से ज्यादा पर्यटक। चमोली में सैलानी कर रहे हैं रंग बिरंगे फूलों से सजी घाटी का दीदार, आने वाले दिनों में पर्यटकों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। कॉमनवेल्थ खेलों का आज आखिरी दिन, हाइड्रो में होने वाले आधिकारिक समारोह से होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को 9 पदकों की उम्मीद, ओलंपियन अवतार सिंह जूडो में दिला सकते हैं पदक। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम, शनिवार को 8 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में चौथा पायदान। पुरुष मुक्केबाजी के 60 किलो वर्ग में भारत ने झटका गोल्ड, बॉक्सर सचिन सिवाच ने शानदार प्रदर्शन से जीता स्वर्ण पदक। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स एथलीट्स की वापसी हुई शुरू, कई पदक विजेता भारतीय वेटलिफ्टर एथलीट्स दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहुंचे। स्वर्ण पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू और लवप्रीत सिंह सहित कई खिलाड़ी स्वदेश लौटे, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। ढोल लगाड़ों के साथ खिलाड़ियों के स्वागत में लोगों ने जमकर किया डांस, खिलाड़ियों ने भी लोगों को धन्यवाद दिया। खिलाड़ियों ने सीडब्ल्यूजी में प्रदर्शन पर जाहिर की खुशी, बोले अब एशिया और ओलंपिक खेलों में देश का परचम लहराना लक्ष्य। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल लेकर दिल्ली पहुंचे बॉक्सर जादूमणि सिंह का जबरदस्त स्वागत हुआ। भारतीय शटलर तन्वी शर्मा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ताइपे सुपर 300 का खिताब अपने नाम किया। 17 साल की तन्वी ने पहला वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम किया है। सबसे कम उम्र में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बन गई तन्वी। कोरिया के महान डबल्स खिलाड़ी ली युंग डे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत और मलेशिया की अंडर 21 पुरुष हॉकी टीमों के बीच बेंगलुरु में हो जाएगा मुकाबला, 7 से 13 अगस्त तक खेली जाएगी सीरीज। भारत और मलेशिया की टीमों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले मिलेगा अभ्यास करने का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नशा मुक्त युवा विकास भारत संकल्प अभियान की शुरुआत हुई, 100 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। देश भर में 28,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अरमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बताया भारत का असली ताकत नशे से दूर रहने के संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने नशे को बताया राष्ट्र की शक्ति कमजोर करने वाला, अगले 100 रविवार तक चलेगा नशा मुक्ति अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने नशा कारोबारियों पर सख्ती बरतने की कही बात, 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन भी नशा मुक्ति में करेंगे सहयोग। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली के मयूर विहार समेत कई इलाकों में हुई तेज बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली उमस से राहत। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बरसे बदरा, गर्मी से लोगों को मिली राहत। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गुजरात के सूरत में जलजमाव से ट्रैफिक थमा, हाईवे पर भी सैलाब। श्रीनगर में बारिश के बीच सुहाना हुआ मौसम, हल्की फुहारों के बीच लोग उठा रहे हैं लुत्फ। श्रीनगर की डल झील में दिख रहा है खूबसूरत नजारा, लेक किनारे के वुड हाउस में लोग ले रहे हैं मौसम का आनंद। बारिश से पूरी तरीके से भीगी श्रीनगर की सड़कें, नहाए हुए से नजर आए पेड़ पौधे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खेतों और गांवों में भरा पानी। असम के बाढ़ प्रभावित जिले शिवसागर पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा, पीड़ितों की मदद की। जम्मू कश्मीर के गांधरबल, बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, साफा पूरा इलाके में कई घर जलमग्न। गांधरबल में प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया,

अलंकारा बांध के 5 गेट। कन्नूर के श्री कंडापुरम नगरपालिका इलाके में जबरदस्त बारिश, सड़कें बनी तरिया। इंडिया के एक शख्स ने पेश की बहादुर की मिसाल, तालाब में डूब रहे बच्चे की जान बचाई। झांसी के ईमानदार सिपाही कमलेश श्रीवास्तव को दी गई शानदार विदाई, या नियम तोड़ने पर अधिकारियों कभी कर देते थे चाला। वुडन सिटी सहारनपुर में लकड़ी से जुड़े कारीगरों और कारोबारियों के अच्छे दिन शुरू, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रफ्तार पकड़ी। सहारनपुर की काष्ठ कला को नई तकनीक, आर्थिक मदद और ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में तड़के 4:14 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता। राजस्थान में भारतीय वायुसेना का हफ्ते भर चला एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड संपन्न हुआ। लेखक और शायर डॉक्टर राही मासूम रजा की याद में माटी संस्था द्वारा बनाया जा रहा है शताब्दी सेलिब्रेशन।

पंजाब के कई शहरों में चल रही है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, हुई खत्म। कैबिनेट मंत्री हरजोत मैंस के साथ था, मीटिंग के बाद बनी सहमति। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जगह जगह लगे कूड़े के ढेर से मिलेगी निजात। इधर मंगोलिया में विदेशी पर्यटकों की बढ़ी संख्या, रेगिस्तान में मिल रहा है अनोखा अनुभव। चीन को उत्तरी इनर मंगोलिया क्षेत्र में मिल रहा है रोमांच का अनोखा अनुभव। इनर मंगोलिया के विदेशी पर्यटन में 176% उछाल, जुलाई से अब तक पहुंचे 16,000 विदेशी पर्यटक। स्नो स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी, अनोखा रोलर कोस्टर भी बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। एरन वार्ड में विदेशी पर्यटक स्थानीय संस्कृति का ले रहे हैं लुत्फ। बोस्निया के गांव में बसा प्राचीन रोम, रोमन फेस्टिवल में दिखी इतिहास की झलक। उस ग्राम की मेहनत से तैयार हुआ ऐतिहासिक रोमन महोत्सव, 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने 72 अलग अलग जोन। रोमन फेस्टिवल में दिखी प्राचीन कला संस्कृति युद्ध कौशल की शानदार झलक। परफॉर्मेंस, रोमन सैनिकों की परेड, घुड़सवारी और प्राचीन शिल्पकला ने फेस्टिवल को बनाया खास। बोस्निया में विरासत को पर्यटन से जोड़ने की कोशिश, उत्सव में ग्लैंडिएटर मुकाबलों का भी मंचन। चीन के स्काई स्कूल बस से बना बच्चों का सहारा, 3 घंटे का सफर महज आधे घंटे में। चीन के यूनान प्रांत में छात्रों के लिए शुरू की गई स्काई स्कूल बस 288 मीटर ऊंचा एलिवेटर है। 3 गुना बड़ी यात्रियों की क्षमता, अब हर घंटे 1200 लोग कर सकेंगे सफर। चीन के जियांगशी प्रांत में शानदार लाइट शो, अद्भुत नजारा। अड़तालीस ब्रीम प्रोजेक्टर्स से जीवंत हुआ नानचांग विद्रोह का इतिहास। पश्चिमी तुर्की में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों का लिया जा रहा है सहारा। पिछले 3 दिनों में 80 से ज्यादा जंगली इलाकों में उठी

0: लपटें तेज हवा के कारण फैली आग। तुर्की के दक्षिणी पश्चिमी आए दिन प्रांत में भी जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिशें तमाम। जंगलों की आग पर नियंत्रण करने के लिए जमीन से आसमान तक तमाम उपाय किए जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है जंगलों की आग की मुख्य वजह। ग्रीस में एथेंस के पश्चिमी इलाके में भी जंगलों ने पकड़ी भारी आग की रफ्तार। हेलीकॉप्टर्स के सहारे काबू पाया जा रहा है। एथेंस प्रशासन ने वाशिंदों को इलाका खाली करने की दी सलाह। आग से होने वाले नुकसान के बीच बचने के उठाए जा रहे हैं तमाम कदम। फ्रांस में भी दक्षिणी इलाके कॉरेंस के पास जंगलों में आग। सुरक्षित जगहों पर भेजे गए 2,000 से ज्यादा लोग। सूखे से जूझ रहे ब्रिटेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में किसानों के समय से पहले शुरू किया खेती का काम। जोर शोर से चल रही है जुताई। इंग्लैंड के कई इलाकों में इस बार कम हुई है वर्षा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
0: आइए बात करते हैं अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अब राम मंदिर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपनी भव्यता से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट ने स्थायी आर्किटेक्चर लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके बाद सूर्यास्त के साथ ही पूरा मंदिर जो है स्वर्णिम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस मनोहरी दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं।

0: सूरज की रोशनी में अयोध्या में श्री राम मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता का हर कोई कायल हो जाता है। ऊपर भगवान श्री राम का दर्शन कर हर भक्त निहाल हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नया स्वरूप देखिए और इस एहसास आत्मसात कर भक्ति नई धारा में अपने को समा लीजिए। ये ऐसा स्वरूप है जिसे देखने के बाद शायद पहली बार ऐसा एहसास होता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, इतिहास को भी नया आकार देती है। अब सूर्यास्त के बाद भी राम मंदिर यही भव्यता, दिव्यता अलग रंग में देखने को मिल रहा है। स्वर्णिम आभा में जगमगाता मंदिर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर जब राम मंदिर की रात्रि की तस्वीर पोस्ट की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब मंदिर में स्थायी तौर पर रात्रि कालीन आर्किटेक्चरल लाइटिंग व्यवस्था का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं को रात के समय भी मंदिर के दिव्य और भव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा है। इस खास व्यवस्था की वजह से मंदिर का अंतुश शिखर, परकोटा, स्तंभ, नक्काशी और विशाल परिसर स्वर्णिम रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की स्थापत्य कला पहले से कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। ये दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर रहा है। इन तस्वीरों में राम मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि रोशनी से गढ़े गए किसी दिव्य शिल्प की तरह दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का हर स्तंभ एक कहानी कहता है, हर नकाशी में भारतीय शिल्प परंपरा की सदियों पुरानी मेहनत दिखाई देती है। दिन में इन्हें देखना एक अनुभव है लेकिन रात में जब इन्हीं आकृतियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद बोलने लगे हों। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार की गई स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मंदिर की भव्यता, शिल्प कला और वास्तु सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए, जबकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता भी पहले की तरह बनी रहे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्या सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है? क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Amex has spent 25 years earning your trust as America's leading precious metal exchange. Over the years, we've built relationships with major mints and suppliers all around the world, allowing us to keep our vast inventory of items constantly growing, in stock and ready to ship. Investing in precious metals has never been easier. Find your trusted partner in precious metals investments today at APMEX.com. That's APMEX.com.
4: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
11: Sage University, transforming your passion into profession.
12: पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटा मंदिर प्रशासन। हरिद्वार के प्रसिद्ध कांवड़ मेले में बम बम भोले के जयकारे, शिव भक्तों की सुरक्षा और सेवा में मुस्तैद प्रशासन, डीएम एसएसपी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, फलाहार किया भेंट। असम में बाढ़ प्रभावितों को फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग भी राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं खाना, जरूरी सामान। केरलम के इदुक्की में भारी बारिश के बाद खोले गए मलंकारा डैम के 5 गेट, राज्य के 12 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली के विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, मानसूनी सीजन में लगातार बढ़ रही है तादाद, खूबसूरत फूलों के बीच उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर ढोल लगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई फूलमाला।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर

0: जब यंगस्टान से आई बोला क्या हुक्म मेरे आका। वैसे चर्चा आज हम एआई को लेकर करेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने बचपन में कहानी जरूर सुनी थी कि एक जिन निकलता है और जिन पूछता है क्या हुक्म मेरे आका, और आका के हुक्म का पालन वो करता है। ठीक वैसे ही एआई आजकल ये सब काम कर रहा है। दुनिया भर में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और एआई तकनीक का इस्तेमाल करने के मामले में देखा जाए तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वैसे एक स्टडी ही इस बात की तस्दीक कर रही है। चाहे अपनी प्लेलिस्ट चलवानी हो, प्रेजेंटेशन तैयार करवानी हो, बचे खुचे सब्जी से कोई जायकेदार रेसिपी बनवानी हो, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी कठिन सवाल हो, मैथ्स की पाइथागोरस थ्योरी से जुड़ा कोई पेचीदा सवाल हो, या फिर सोने से 15 मिनट पहले शरारती बच्चे का होमवर्क पूरा करवाना हो, देखा जाए तो एआई वाला ये जो जिन है ना, यानी एआई वाला जादूगर, ये सबकी कमांड सुनता है और उस हिसाब से ही काम करता है। तो आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि जब यंगस्टान से एआई ने पूछा क्या हुक्म मेरे आका, तो हुनरमंद भारत ने एआई को क्या क्या और कैसे कैसे टास्क दिए हैं। आज हम आपको एक एक करके इन तमाम दिलचस्प फैक्ट्स को आपके सामने रखेंगे। भारत में किस तरीके के सवाल एआई से पूछे जाते हैं और कैसे टास्क करवाए जाते हैं, कितने परसेंट लोग एआई से अपने बच्चों का होमवर्क करवा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूल की पढ़ाई पर एआई का ज्ञान भारी पड़ रहा है, नए इनोवेशंस, नए प्रोजेक्ट्स में युवाओं का साथ एआई कैसे निभा रहा है, वैसे एआई ओवर यूज के साइड इफेक्ट क्या है, ये भी एक बड़ा मामला है जिसको लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। और इन तमाम पहलुओं पर देश के जाने माने टेक एक्सपर्ट्स पर के साथ चर्चा होगी। हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे इस शो में। तो एआई को लेकर दरअसल एक रिपोर्ट चर्चा में है। रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुननी चाहिए। दरअसल दुनिया में एआई के इस्तेमाल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें कही गई हैं और उसके जवाब भी मिले हैं। अब वो क्या क्या है आपको बताते हैं। इसमें ये पता चला है कि भारतीय लोग एआई से सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, यानी कि एआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों में भारतीय सबसे ज्यादा हैं। दुनिया के मुकाबले भारतीय एआई से ज्यादा सवाल करते हैं। एआई के इस्तेमाल में भारतीयों की कितनी हिस्सेदारी है, अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक की ये ताजा रिपोर्ट आई है और ग्लोबल क्लाउड एआई के इस्तेमाल पर यह रिपोर्ट है। इसमें यह पता चला है कि भारत में सबसे ज्यादा होमवर्क को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, यानी बच्चों का होमवर्क शायद सबसे पेचीदा सवाल यही है और ये एआई से पूछा जाता है। एआई से 7.9% यानी 7.9% सवाल होमवर्क रिलेटेड ही पूछे गए हैं। बिजनेस शुरू करने को लेकर भी एआई से सवाल किए जाते हैं और इसमें भी भारतीय ही आगे हैं, वो सवाल करते हैं बिजनेस से जुड़े। इसके अलावा भारत से मैथ्स को लेकर भी बहुत सारे सवाल एआई से पूछे जाते हैं। एआई ऐप बनाने को लेकर भी ज्यादातर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है जो कि एआई से पूछे जाते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि साल 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति हुई थी। सबसे पहले ओपन एआई कंपनी ने एआई लॉन्च किया था और ओपन एआई ने चैट जीपीटी पेश किया था। एंथ्रोपिक कंपनी का एआई चैटबॉट क्लॉड भी मशहूर है और एंथ्रोपिक कंपनी की ही यह ताजा रिपोर्ट है एआई को लेकर जो उसने जारी की है, जिसमें यूजर्स के रोचक सवालों की एक लंबी फहरिस्त सामने आई है और इसमें भारतीयों के भी रोचक सवाल हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि उनके मन की बात क्या है, वो क्या जानना चाहते हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में दिया गया है। तो अमेरिकियों के एआई से टॉप 10 सवाल क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम अगर भारतीयों की बात करते हैं कि एआई से सवाल पूछने में भारतीय नंबर वन है, लेकिन आप गेस कीजिए कि अमेरिकियों ने क्या पूछा होगा। चलिए, भारतीयों ने तो बच्चों के होमवर्क के बारे में बातचीत की, लेकिन अमेरिकी क्या पूछते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अमेरिकी सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं, यानी अमेरिकी लोग अगर एआई से कुछ सवाल करेंगे तो सबसे पहला सवाल बिजनेस ऑप्शंस को लेकर होगा, जहां पर भारतीयों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर होमवर्क से रिलेटेड है। हालांकि अमेरिकी सेकंड नंबर पर आते हैं इस मामले में, यानी कि दूसरे नंबर पर बिजनेस की ऑप्शंस के साथ साथ सेकंड नंबर पर वो होमवर्क रिलेटेड क्वेश्चंस एआई से पूछते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल राइटिंग को लेकर भी अमेरिकियों ने सवाल किए हैं, बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, कुछ आइडियाज इसको लेकर भी एआई से सवाल किए गए। इसके बाद सेल्फ प्रेजेंटेशन, राइटिंग, इमोशनल वेलबींग एंड सपोर्ट, ये सवाल भी एआई से किया गया है। वर्क प्लेस राइटिंग, खरीद और निवेश, मेडिकल से जुड़े सवाल और वेब फ्रंट से जुड़े तमाम सवाल अमेरिकियों ने किए हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मोहित यादव हमारे साथ फाउंडर हैं क्रॉस साइबर सिक्योरिटी से, जितिन जैन हैं साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ, डॉक्टर अरविंद सिंघानिया हैं हमारे साथ फाउंडर हैं लीगल कार्ड एआई बेस्ड लीगल ऐप है, और डॉक्टर कपिल कक्कड़ साइकोलॉजिस्ट। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मोहित मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, ये पहले तो इस रिपोर्ट को लेकर मैं चाहूंगी कि एक रिएक्शन आप बताइए। देखिए जब ये रिपोर्ट देखी गई तो पहले तो एआई से सवाल पूछने वालों में दूसरे नंबर पर भारतीय हैं, और उसमें भी जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है वो बच्चों के होमवर्क का है।
1: बिल्कुल, मतलब एक्चुअली में ये आप ये समझ लीजिए कि एआई को ऑलमोस्ट सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, बिकॉज बच्चों को हर छोटी से छोटी जो क्यूरियोसिटी होती है वो क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू उनका होमवर्क, उनके उनको कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करना है, उनको कुछ कंटेंट राइट करना है, तो डेफिनेटली ये सारा का सारा कंटेंट, ये सब प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प लेते हैं। पहले कंप्यूटर्स पे सर्च इंजन पर जाते थे, गूगल पर जाते थे, सर्चिंग करते थे, 10 जगह पे सर्चिंग होती थी, उसमें से फिर निकाल निकाल कर कुछ कुछ चीजों को एक साथ कोलैब करते थे। लेकिन अब एआई जो बन गया है वो एक तरह से एक कंबाइंड वर्जन बन गया है, उसमें सारी चीजों को संक्षिप्त में एकदम प्रिसाइज निकाल के ब्रीफ दे देता है कि ये 10 चीजें, और उसमें ऐसा भी नहीं होता कि कोई चीजें गलत इन्फॉर्मेशन, एज इन जब बच्चे जब आते हैं और जो सर्चिंग करते हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा नहीं होता। तो यस, एक तरह का मेन सोर्स है, अभी सब यूज करते हैं एआई, और आजकल हमारी लाइफ को इजी बना रहा है, हर छोटी से छोटी टास्क को एआई से पूछकर, चाहे कंटेंट लिखवाना हो, चाहे फ्रंट एंड में वेबसाइट बनाना हो, आजकल इतना इजी हो गया है वेबसाइट बनाना ये सब। तो ये एक जेन्युइन तरीके से, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप एक्चुअली में बहुत यूजफुल हो गया है बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स भी आजकल बहुत चीजें स्टूडेंट्स को, बच्चों को सिखा देते कि ऐसे एआई को यूज करना है, ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हो, तो बच्चे भी थोड़ा थोड़ा स्मार्ट बन गए, खुद ब खुद सर्च कर पा रहे हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर अरविंद मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए हमने जब ये जो रिपोर्ट आई है मैं इसी के हवाले से आपको जरा बता देती हूँ, क्योंकि 7.9% इंडियंस ऐसे हैं जो कि होमवर्क रिलेटेड सवाल करते हैं। अब यहीं से बात को शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा होमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी बच्चों की एजुकेशन से जुड़े सवाल। यहाँ पर यह भी है कि क्या एआई एजुकेशन में मदद कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक, इस पर आप अपनी राय रखिएगा, is it good or is it bad for education system?
2: देखिए जहां तक AI के इस्तेमाल का सवाल है और एजुकेशन में इस्तेमाल का सवाल है, इससे डेफिनेटली बच्चों की जो ग्रेस्पिंग है और बच्चों की जो इनक्विजिटिवनेस है उसको बहुत अच्छे से हवा मिली है। मतलब पहले बच्चों के मन में बहुत सवाल होते थे, वो बहुत तरीके से अलग अलग चीजों को जानना चाहते थे, पूछना चाह रहे थे। एआई ने उसको बहुत आसान कर दिया दो तरीकों से। पहला तरीका तो ये है कि एआई में आपको टाइप भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा अपने मुंह से बोलेंगे एक सवाल और उसका जवाब आपको मिल जाता है, जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है। मेरा बेटा 7 साल का है, वो पूछ के सवाल और अपने स्कूल का होमवर्क कर लेता है, या उसमें कैमरा भी लगा है, वो सिर्फ अपना नोटबुक का फोटो डालता है और उसमें जो क्वेश्चन लिखा था उसका जवाब उसको मिल जाता है। तो उससे उसका जो उसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत बढ़ गई है। वो आज, पहले वो एक या दो सवाल के बाद में थक जाता था, पेरेंट्स थक जाते हैं, हम लोग के पास में और बहुत काम होते हैं। एआई जो है वो एफर्टलेसली काम कर रहा है, एआई जो है वो कंटिन्यूसली काम कर सकता है, और उससे उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो मल्टी फोल्ड हो गई है। यानी कि पहले अगर वो एक सब्जेक्ट का होमवर्क एक दिन करता था, आज वो चारों सब्जेक्ट का होमवर्क एक दिन में कर पा रहा है, ज्यादा कर पा रहा है, और होमवर्क से ज्यादा आगे एक स्टेप और ले पा रहा है कि वो उसकी और डेप्थ में जा पा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो अगर प्लेनेट के बारे में कुछ पढ़ रहा है, उसने सिर्फ उसने पढ़ा कि प्लूटो एक प्लेनेट नहीं है, नाउ आई एम सरप्राइज्ड कि उसने सवाल आगे चल के ये पूछा कि प्लूटो प्लेनेट क्यों नहीं है। उसने ये भी सवाल पूछा कि अच्छा फिर अर्थ क्यों प्लेनेट है, और फिर उसने ये भी जाना कि मार्स जो है वो सबसे ज्यादा अर्थ के जैसा है, ये भी उसे एआई से पता चला, क्योंकि एआई में उस पर एक कॉन्टेक्स्ट आया था कि जो मार्स है वो अर्थ के जैसा ही है। तो उसने अगला सवाल ये पूछा कि अर्थ के जैसा क्यों है, क्या वहां पे भी पानी है। तो आप ये समझिए कि अब बच्चा जो चीज एक दिन में सीख रहा था पहले बिफोर
0: हमें
2: बैठने की भी जरूरत,
0: कुछ ही घंटों में सीख रहा है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ही घंटों में सीख रहा है डॉक्टर अरविंद, लेकिन इसी के साथ साथ कपिल कक्कड़ जी इसका मानसिक बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है उस पर कितना असर पड़ेगा, ये सवाल मैं आपसे आगे पूछूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है। देखिए एक सीखने की उम्र होती है, हम तुरंत से सेंटेंसेस बनाना नहीं सीख लेते हैं, शुरुआत 3 लेटर से 4 लेटर 5 लेटर फिर उसके बाद सेंटेंसेस हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एआई का अब जैसे बता ही रहे हैं डॉक्टर साहब कि एक तरीके से फायदा हुआ है कि तमाम चीजें एक साथ और पेरेंट्स को बैठने की जरूरत नहीं पड़ रही, तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और बच्चा एक साथ सीख ले रहा है, तो ये बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या ये आपको सही लगता है या फिर नहीं?
3: देखिए जैसे अभी इन्होंने बोल ठीक कहा डॉक्टर ने, ये बहुत अच्छी चीज है, इट इज अ बूम, वी कांट से के ये साइड इसकी कोई है। अब एक टाइम पे कैलकुलेटर भी था, अब कई बार लोग कहते थे भी ये तो कैलकुलेटर, इससे आदमी का टेबल्स वगैरह जो 31, 13, 13, 26, 13 ये सब भूल जाएगा, दिमाग उसे कम काम आएगा, वो कैलकुलेटर का सहारा रहेगा कि मैथ वीक हो जाएगी। पर आप देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, वही कैलकुलेटर से उसकी कैलकुलेशन फास्ट, जहां कैलकुलेशन फास्ट वहां पे उसका जो ब्रेन का जो प्रोसेसर है वो और तेज हुआ, वहां पे उससे चीजें और कम टाइम में ग्रास्प करी, समझी और उसको कहीं कहीं वो एक नतीजे तक लेके गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज सेविंग द टाइम, इट इज इंक्रीजिंग द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड, और वो वाला जो चाइल्ड की जो क्यूरियोसिटी और जो टाइम सेव हो रहा है तो बच्चा और भी चीजें एआई से इंटरेक्ट कर पाता है। तो ये कई बार आदमी को या पेरेंट्स को खास फोबिया हो जाता है कि अगर हमारा बच्चा कंप्यूटर पे है, क्लॉट के साथ है या पॉप्लेक्सिटी के साथ है, इसका मतलब है कि वो खुद नहीं सोच रहा। बट यही एआई उसको ज्यादा सोचने में मजबूर रहे, वो कैसे इंगेज करके, अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या, आप कहाँ रहे, तो एक जो कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन प्रोबिंग होती है वो ज्यादा जल्दी ब्रेन डेवलप करता है। जो आपके ब्रेन के अंदर सेल्स, जो के सेल्स हम जो कहते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी और उनकी जो फैब्रिक है उसमें ज्यादा तेजी से काम होगा। क्योंकि पहले अगर जैसे अपने टाइम की बात करूं, हम लोग कोई रिसर्च वर्क करना होता है, हमको पहले वो आपकी जो डेली ऑफ लाइब्रेरी में जाना था या कहीं लाइब्रेरी में जाना था, वहां से किताब भी पढ़ती थी, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता जो कि शायद 2-3 में होता था, आज डेट में वही प्रोसेस आपके पास आधे घंटे आ रहा है। तो अब वो मैं 2-3 दिन में एक चीज को समझ आता है, आप सोचिए मेरा ब्रेन उसको आधे घंटे में समझ पा रहा है। तो आपकी जो ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स की आपस में इग्रेशन है, कम्युनिकेशन है, ग्रैपिंग पावर है, हिप्पोकैम्पस एक मैसेज है, मतलब इट इज वेरी साउंड फॉर ऑल डेवलपमेंट हैपनिंग फॉर अ चाइल्ड। और बच्चा जो एआई से एज करता है, आप ही ने कहा कि मैथ रिलेट या प्रोग्रामिंग से रिलेट होते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी ही दिखाता है।
0: बिल्कुल,
3: इट अ ग्रेट ब्लेस टू हैव।
0: ठीक है अमित जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखा जाए तो हर फील्ड में अब एआई का इस्तेमाल हो रहा है, खासकर अगर हम इनोवेशन की बात करें या फिर नए नए प्रोडक्ट्स की बात करें, और इसमें भी बताया गया कि देखिए अलग अलग फील्ड में, भारत में जहां होमवर्क से रिलेटेड ज्यादा सवाल एआई से पूछे गए, वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस से जुड़े तमाम सवाल की क्या होना चाहिए, तो क्या फायदा वाकई इससे हो रहा है?
4: मैम देखिए एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया में भी अगर हम देखें तो हमारी 90% से ज्यादा जनता इसको यूज कर रही है। आजकल हर स्मार्टफोन में हर इधर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एआई को बाइंड करके भेजा जा रहा है। हम अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं उसके ऊपर सीधा टॉप पे गूगल क्रोम ब्राउजर के टॉप पे भी जेमिनी आता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट आता है, और हमारे एंड्रॉयड के अंदर भी आता है, एप्पल के अंदर भी आता है, हर जगह हमें एआई का सपोर्ट मिल रहा है। तो जितने लोग हैं आजकल गूगल पे नॉर्मल सर्च इंजन पे सर्चिंग ना करके एआई पे सर्च हो रहा है, ठीक है। अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो इंडिया में अगर 7% के ना आसपास की अगर देखते हैं रेशो जो है हमारी होमवर्क के ऊपर सर्च होती है, तो 26% जो सर्चिंग है वो हमारी इसके ऊपर है वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मेजर जो सर्च होता है वो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स को लेके सर्च किया जाता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि मैथ्स और कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमें उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो कंप्यूटर का एक छोटे से छोटा, अगर पाइथन पे हम कोई प्रोग्राम भी बनाते हैं उसके छोटे से छोटा चीज भी हमें ए आई पे मिल जाती है ब्रीफ एकदम एक्सप्लेन में। और अगर वहीं पर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स भी ऐसी है। तो ऐसी काफी सारी फील्ड्स हैं जिसमें ए आई हमारा यूज हो रहा है, जैसे अगर कंटेंट राइटिंग होता है, कॉपी राइटिंग होता है, या कंटेंट क्रिएशन होता है, तो इनमें भी ए आई को काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हर फील्ड में, वेब डेवलपमेंट, पहले हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए, एक वेबसाइट का सर्वर बनाने के लिए काफी दो दो तीन तीन दिन बैठ के कोडिंग लिखनी पड़ती थी। लिखने के बाद हमारा एक सर्वर प्रॉपर वे में चालू होता था और हम उसके ऊपर काम करते थे। आज उसी चीज को ए आई ने सिर्फ एक घंटे का काम भी नहीं छोड़ा, ठीक है। ए आई के ऊपर पूरा सोर्स कोड बनता है, सोर्स कोड को डाला जाता है, उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करके हम लोग अपनी वेबसाइट हो गया, चाहे सर्वर हो गया, चाहे डेवलपमेंट हो गया, कि किसी भी चीज की कर सकते हैं। अगर ग्राफिक्स में बात करते हैं तो ग्राफिक्स भी बहुत ऊपर ले गए, जहां हम घंटों घंटों बैठ के फोटोशॉप में या किसी और कोरल ड्रॉ में अपना डिजाइनिंग पार्ट दे देते थे, यही उसको 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी चीज बना के देता है, जो कि एक नॉर्मल आदमी को बैठ के बनाने में बहुत टाइम लगता है।
0: हमने मुझे शुरुआत होमवर्क वाले कंसेप्ट से की थी, हालांकि देखिए यहाँ पर आपने भी बताया कि जैसे ग्राफिक्स का जिक्र किया आपने, और भी चीजों का, जैसे वेब फ्रंट एंड में 5.1% लोगों ने सर्च किया है, सेल्फ प्रेजेंटेशन राइटिंग की यहाँ पर बात आई, प्रॉम्प्ट राइटिंग की, स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेस ऑपरेशन, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, मैथ्स से जुड़े तमाम सवाल हैं, AI ऐप बिल्डिंग है। एक इसी से जुड़ा एक सवाल, इसमें अगर हम ये तमाम 10 तरह की चीजें हैं जिसका जिक्र यहां किया गया है, क्या वाकई हर क्षेत्र में AI की जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक है?
4: देखिए मैम, AI की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक है। AI जो है एक डेटाबेस है, एक मॉडल है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पहले से डाली गई है और वो लोगों से AI इन्फॉर्मेशन फेच भी करता है, हम AI को सिखा भी सकते हैं, ठीक है। हम जो आजकल एआई को सिखा भी रहे हैं साथ में, कैसे सिखा रहे हैं, मैंने एआई से सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एआई से कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि मेरी एक फोटो बनाओ, उसमें बैकग्राउंड ये हो और एक ब्लू कलर की कार मेरे साथ स्टैंड हो, ठीक है। अब जो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी, एआई अपनी नॉलेज से जो बैकग्राउंड लेगा, जो गाड़ी लेगा, सब कुछ देगा, लेकिन मेरे को वैसा चीज नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और चाहिए, तो मैं उसको फिर से प्रॉम्प्ट दूंगा। अब जब मैंने उसको फिर से प्रॉम्प्ट दिया तो उससे मैं उसको सिखा रहा हूँ, वो उस नई चीज को अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा, उसके लिए एक नई चीज है सीखने के लिए। जितने लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको प्रॉम्प्ट देते हैं बार बार, जैसे हमने कोई भी चीज, सपोज दैट मैंने कहा एक इथिकल हैकर है, उसकी एक फोटो बनाओ, मेरी फोटो को लेकर एक इथिकल हैकर की फोटो बनाओ। अब AI ने एक इथिकल हैकर की फोटो मेरी फोटो को लेकर बना दी, लेकिन मैं अगर उसको फिर से प्रॉम्प्ट देता हूँ कि एक इथिकल हैकर ने व्हाइट हैट पहना, तो वो AI अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा कि इथिकल हैकर के ऊपर व्हाइट हैट होता है। तो ये एक नई उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसने अपने पास ग्रैब कर ली और उसने अपने पास स्टोर कर ली। तो ऐसे हम AI को नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजें दे दे के सिखा भी सकते हैं। तो AI भी दो तरह की ना होती है, सुपर AI तो खैर हमारे यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई और ना ही होगी, क्योंकि वो तो एकदम इमोशंस पे भी काम मिस करती है। बाकी हम लोग जो नॉर्मल AI चला रहे हैं उसके अंदर भी काफी कुछ है। तो AI तो अगर देखा जाए तो AI की एडवांटेजेस भी बहुत है, डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। अगर होमवर्क की बात ही करते हैं तो बच्चे अब बिल्कुल भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रह गए, AI के ऊपर टोटल डिपेंडेंट है उनका। थोड़ा अगर देखा जाए तो नॉलेज कम होती जा रही, क्यों कम हो रही, क्योंकि वो उसको सीख नहीं रहे।
0: मैंने यही सवाल, हाँ यही सवाल डॉक्टर कपिल से किया था मैं, क्योंकि देखिए एक मनस्थिति होती है बच्चों की जिसका जिक्र मैंने किया था। डॉक्टर कपिल आप इस पर अपनी बात रखिए, और अमित जी का भी वही सवाल है।
3: मैं इसमें तीन चीजें कहना चाहूंगा। पहली जो है, आपने इसे पूछी कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो उनको इसमें बहुत फायदा होता है एआई से। मैं स्पेशली बात करूंगा सेल्स की और एचआर की। अब एचआर में जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, आप लोग का भी होता होगा, वो होता था जनवरी फरवरी मार्च में, जहां पे जो बॉस होता था वो अपने हिसाब से रेटिंग करते थे। आज की डेट में थैंक्स टू एआई उनके पास लाइव फीडबैक जाता है और लोगों को यह भी पता चलता है कि उनके अगर सेल्स है या उनके बिहेवियर है, उनके एटीट्यूड है, उनमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, वो भी वो चीज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सेल्स का स्टाफ हो, चाहे एचआर के लिए हो, एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन आती है जो बहुत ऑथेंटिक होती है, जो पर्सनल लेवल पे आदमी को हेल्प करती है। एक और चीज जो आपने ऑथेंटिसिटी की बात करी थी, ये लीगल फील्ड में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि अभी एक ऐसा केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास जहां हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जहां पे जो केसेस की जो रेफरेंस थी वो सब केसेस एआई से जनरेटेड थे, और जब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा ये जितने भी केसेस का रेफरेंसेस जो दिया गया था ये सब फेक था, ये सब फॉल्स था। तो वहां पे थोड़ा जेन्युइन कंसर्न आ जाता है कुछ कुछ फील्ड्स के अंदर।
0: एक बार तो ये तो बहुत बिल्कुल मैं लौटती हूँ, एक सेकंड लौटती हूँ मोहित जी, मैं इस पर एक राय आपकी, कितना ऑथेंटिक है, कितना भरोसा किया जा सकता है, और मैं इन तमाम फील्ड्स की बात कर लेते हैं, कौन सी फील्ड में हम एआई पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं?
1: देखिए एआई पे जब हम बात करते हैं तो उसमें एक कोडिंग होती है, जब हम कोड करते हैं तो कोडिंग बेसिकली अलग अलग मॉडल्स होते हैं, एआई के अलग अलग डिफरेंट मॉडल हैं। मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें कोडिंग अच्छी होती है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे एआई के मॉडल्स हैं जिससे फ्रंट एंड का डिजाइन बहुत अच्छा बनता है, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें वीडियोस अच्छी बनती हैं। तो हर मॉडल हर चीज के लिए नहीं बना हुआ। आप अगर एक जेनरिक मॉडल से लीगल के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हो सकता है कि वो गलत आंसर्स दे, या डिजाइनिंग मॉडल से अगर आप ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो आपको गलत आंसर्स दे सकता है। मतलब ये श्योरिटी नहीं होती कि 100% अच्छे आंसर्स देगा, बट हाँ, मतलब आपको अगर कोई स्पेसिफिक काम करना है और आपको लग रहा है कि वो काम थोड़ा ज्यादा एक्सपर्टाइज नॉलेज मांगता है तो आपको एआई वैसे ही मॉडल्स को यूज करना, मतलब अगर आपको कोई डिजाइनिंग वाला मॉडल चाहिए तो एंटी ग्रेविटी, गूगल का एंटी ग्रेविटी हो गया, या इस तरह के मॉडल्स को आपको यूज करना होता है, या फिर आपको अगर ऑडियो से रिलेटेड कोई मॉडल के तो 11 लैब्स या इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं उनको यूज करना होता है। तो मतलब हर तरह के काम के लिए एआई के डिफरेंट मॉडल्स हैं, और उन मॉडल्स जब आप काम करोगे तो आपको एक्यूरेसी थोड़ी हाई मिलेगी एज कम्पेयर टू जेनेरिक मॉडल्स। यही बीच में अभी सर ने जो बताया कि एक्चुअली में हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में ने इस केस को क्रैश किया क्योंकि मल्टीपल ऐसे फेक रेफरेंसेज, एआई भी गलत रेफरेंसेज और ऐसा डेटा दे देता है जो कि यूजर को देख कर देता है। मतलब जिस तरह के यूजर्स आंसर्स पूछ रहा है वो यूजर्स की तरफ थोड़ा एक साइड होकर, यूजर की तरफ बायस होकर कई बार उसके रिलेटेड आंसर दे देता है, लेकिन ये कम होता है, मैं बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम सिचुएशन पे जब गलत मॉडल से आप गलत चीज करवाते हो तो।
0: डॉक्टर अरविंद आपके पास आना चाहूंगी, आप चाहें तो इस पर भी बात रख सकते हैं, लेकिन हुनरमंद और स्किल इंडिया और एआई की जुगलबंदी को कैसे देखते हैं आप?
2: तो पहले तो मैं वो जवाब देना चाहूंगा कि एआई का जो एआई में एक हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है जिसे एआई खुद इमेजिन कर लेती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, स्पेशली क्योंकि मैं लीगल फील्ड से हूँ और हम लोग लीगल एआई इस्तेमाल करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एआई का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और अगर वो कॉन्फिडेंटली कोई चीज लिख देती है तो सभी को लगता है जब इतना कॉन्फिडेंटली लिखा है तो सही होगा, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन का कैरी फॉरवर्ड होना वहां से शुरू हो जाता है। वो एक पॉइंट है जिसपे हमें, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की बहुत स्ट्रांग जरूरत रहती है। दैट मीन्स आप, जो सवाल आपका था कि क्या आप 100% रिलाई कर सकते हैं, नहीं, आप एआई पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसके अंदर रीचेक करना बहुत जरूरी है, आपका ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत जरूरी है और फैक्ट चेक बहुत जरूरी है, पहली चीज तो ये। दूसरा, जब हम आते हैं, जो आपका सवाल है कि भारत के स्किल डेवलपमेंट में और जो है हमारे युवाओं के लिए ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, तो मुझे लगता है एआई जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास में पहले एक्सेस टू एक्सपर्टीज नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग का एक्सपर्टीज हुआ, क्रिएटिव क्रिएट करने का यानी अच्छे डिजाइन बनाने का एक्सपर्टीज हुआ, एक अच्छी लैंग्वेज लिखने का एक्सपर्टीज हुआ। वो एक ऐसी चीज है जो कि एआई जो है आज डेमोक्रेटिक कर दिया है इसने सारा प्रोसेस। इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। टीयर 3 शहर में बैठा हुआ बच्चा भी आज बहुत अच्छे कार्ड्स और डिजाइन बना सकता है, बहुत अच्छी कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा है, बहुत अच्छा अपने आपको प्रेजेंट कर पा रहा है और नए डिजाइन को इनोवेट भी कर पा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एआई की अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, एआई की जो इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करती है कि आप उससे क्या सवाल पूछ रहे हैं और वो किस फील्ड के लिए बनी है. आपको अगर याद हो एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें महात्मा गांधी का हेलुसिनेशन होता है जो एक्टर होते हैं उनको, और डॉक्टर उनको ये बोलता है कि जितना इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है उसके बारे में ये कुछ भी बता सकते हैं. एग्जैक्टली अबाउट एआई, यानी अगर एआई के पास में किसी चीज का कंफर्म डेटा है तो वो सही जवाब देंगे, उसके बाद में उसका हेलुसिनेशन शुरू हो जाता है. सो ये हमको बहुत जो है संभाल के इसको इस्तेमाल करना है.
0: बिल्कुल. एक बार मोहित जी मैं आपके पास आना चाहूंगी. जब हम अलग अलग चीजों की सवाल करते हैं, ये बात बिल्कुल सही कि जितनी इन्फॉर्मेशन है एआई उस हिसाब से ही जवाब देगा, लेकिन वही सवाल एक बार आपसे भी मैं इसका जवाब जानना चाहूंगी कि हुनरमंद और स्किल इंडिया और एआई की जो जुगलबंदी है वो किस तरीके से आप देखते हैं.
1: ये जो एआई होता है ये डेटा के ऊपर काम करता है. बहुत सारा डेटा एआई मॉडल्स को दिया जाता है, उसके बेसिस पर ये ट्रेन होता है. और जितना जिस तरह के डेटा पे उसको ट्रेन किया जाता है उसी तरह से ये आगे भी आपको आंसर्स देता है, जैसे गलत भी हो सकता है. और हर एआई अपने आप में ये बोलता है कि एआई हमारे आंसर्स गलत हो सकते हैं, इसको एक बार फैक्ट चेक किया जाए. तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जब भी हम कुछ एआई से सर्च करते हैं तो वापस एक प्रॉम्प्ट दे के पूछे क्या ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल या केस अवेलेबल है किसी भी रेफरेंस के अंदर, तो एआई आपको उस को और इंटरनेट पर सर्च करने के बाद और ज्यादा डिटेल देता है. और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप जितना आप ये सर्चिंग करते हो, जितना आप कम्युनिकेट करते हो एआई से, उतना आप नॉलेज भी आपको मिलती है, आप और ज्यादा शार्प बनते हो, आपको और ज्यादा डिटेल्स अलग अलग मतलब बहुत ही बारीकी चीजें मिलती है, मतलब जो पहले नहीं मिलती थी हमें किसी भी सोशल मीडिया, मतलब किसी भी गूगल पे सर्चिंग जब हम करते थे तो एक जगह से हमको सब कुछ नहीं मिलता था. अब जो चैट जीपीटी के से अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हो या ग्रॉक से पूछते हो, या फिर आप मतलब अगर आप ग्रॉक से अगर पूछोगे तो हो सकता है आपको रियल वर्ल्ड में जो लाइफ में अभी जो चल चीजें चल रही हैं वैसी इंफॉर्मेशन मिलती है. चैट जीपीटी से पूछोगे तो आपको और ज्यादा ज्यादा डिटेल्ड आंसर्स मिलेंगे. सो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ग्रॉक की तरफ जाना चाहिए, आपको थोड़ा ज्यादा अगर डिटेल्ड आंसर चाहिए तो चैट जीपीटी की तरफ आपको जाना चाहिए. तो हाँ, ये इंफॉर्मेशन जितना हम सर्च करते हैं वो बढ़ता रहता है, कंटेंट बढ़ रहा है और एआई बहुत इंक्रीज हो रहा है और सबके लिए सब हर फील्ड में यूज हो रहा है. मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां एआई यूज नहीं हो रहा है. चाहे जेट के रॉकेट इंजन्स भी एआई से प्रिंट किए जा रहे हैं, उनसे बनाए जा रहे हैं. तो यस, आने वाले समय में तो इट्स अ जेम, मतलब आने और अभी थोड़े समय में ये और ज्यादा आइट्रेट करने वाला बहुत तेजी से. मतलब कुछ थोड़े समय पहले साइबर के भी कुछ ऐसे मॉडल्स आए थे जिन्होंने सिस्टम्स को बहुत तेजी से हैक कर लिया. तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है,
0: दोनों चीजें डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, और उसी को लेकर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद. तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे.
5: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Lebatard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
6: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
11: सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: आज के हमारे शो का टाइटल है जब यंगिस्तान से आए बोला क्या हुक्म मेरे आका, और यहीं से हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अमित मल्होत्रा जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि चर्चा के दौरान आपने इस बात का जिक्र किया था कि क्या हम ज्यादा एआई पे डिपेंड हो रहे हैं। जब हम इसके ड्रॉबैक, जब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो उसमें चाहे वो हमारी मानसिक सेहत की बात हो या फिर दूसरी तमाम चीजों की, क्या क्या ड्रॉबैक्स एआई के हैं?
4: देखिए मैम, ड्रॉबैक्स एआई के ये कि जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने देखा है, आजकल का बच्चा जो है बिल्कुल भी अपना दिमाग का प्रयोग कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर उसको छोटी सी कैलकुलेशन भी करनी होती है तो वो चैट जीपीटी खोल के उसके ऊपर करता है। अगर होमवर्क भी उसको चाहिए तो होमवर्क भी सारा वो चैट जीपीटी
0: खोल के। उस मामले में तो भारतीय वैसे ही नंबर वन पर है।
4: हाँ जी, तो उसमें क्या है कि आप एआई से अगर सीख रहे हो चीजों को तो बहुत अच्छा है, तो कॉमन सेंस नाम की ना चीज बिल्कुल ही खत्म हो गई है, बिल्कुल ही मतलब हमारे सामने नहीं है, ठीक है। और जॉब लॉस और इधर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी इससे, क्योंकि क्या एआई जब भी हमारे सामने आ रहा है तो लोगों की काफी सारी नौकरियां खा रहा है, ठीक है। और आप देखते हैं कि फेयरनेस और प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इसमें एआई से। तो कॉमन सेंस की अगर बात करते हैं तो आजकल का बच्चा जो है होमवर्क भी कर रहा है, उसको समझ नहीं रहा, बस देख के लिख के और कॉपी में लिख के बस स्कूल में दे दे रहा है, ताकि उसका काम जो है बिल्कुल टाइम से ना हो रहा है। लेकिन पहले क्या है कि बच्चे को वही चीजें सीखने के लिए खुद मेहनत करता था, लिखता था। आजकल अगर आप देखोगे बच्चों के पास नॉलेज बहुत है लेकिन कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ एआई पे डिपेंडेंट है। उनको कुछ भी अगर चाहिए वो चैट जीपीटी उसी टाइम खोल के उससे पूछ के आपको इंस्टेंट जवाब दे देंगे। अगर उनके हाथ में फोन ना हो, आप उनसे एक क्वेश्चन पूछिए, उनको किसी का भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की। तो ये बहुत बड़ा हमारा ड्रॉबैक है।
0: ठीक है, इसी पर एक बार डॉक्टर कपिल ककड़, आपका जवाब ले लेती हूँ। क्या बहुत ज्यादा हम डिपेंड हो गए हैं एआई पे?
3: नहीं, मैं इसका मैं ये सोच रहा था उस टाइम जब ये बोल रहे थे कि जैसे पहले भी वीकली टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट होते थे, ईयरली हाफ ईयरली टेस्ट होते थे, अगर इनकी बात अगर ठीक है तो ऐसा कोई डेटा निकलना चाहिए स्कूल से कि बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं, उनके पास जो टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं, सरप्राइज टेस्ट आ रहे हैं, उसमें बच्चे फेल हो रहे हैं। बट ऐसा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं आ रहा, उल्टा ये आ रहा है कि बच्चे आज की डेट में खुद 12-12 साल के बच्चे आउट ऑफ यू नो क्यूरियोसिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में उनको उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है। पहले हम क्या करते थे, हम हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चीजें पढ़ते थे और हमें सब चीजें पढ़ाई जाती थी। आज की डेट में बच्चा एक फोकस हो गया है कि दिस इज व्हाट माय लाइकिंग इज, दिस इज द सब्जेक्ट दैट आई लाइक एंड दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू स्टडी एंड नो मोर अबाउट। और सेकेंडली ऐसा भी नहीं है कि इसकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हो। पर दूसरी एक बात इसमें सच्चाई, आप ड्रॉबैक मेरे से पूछ रहे थे कि चाइना ने अभी ह्यूमन लाइक एआई को बैन किया है। ह्यूमन लाइक एआई कौन होते थे कि जहां पे आदमी जाता है उनसे कोई भी चीज कन्फाइड करता है, कोई भी इमोशंस बताता है, और वो जो ह्यूमन एआई है उसको मदरली टच भी देता है, फादरली टच भी देता है, फ्रेंडली टच भी देता है, और सबसे बड़ी बात है 24/7 अवेलेबल रहता है। तो जब एक ऐसा ह्यूमन लाइक एआई फॉर्म आदमी के सामने आ गया तो चाइना ने देखा कि लोगों के आपस से एक्सपेक्टेशंस और इंटरपर्सनल स्किल्स वीक होने शुरू हो गए, क्योंकि जब वो घर जाता है उनको ह्यूमन लाइक एआई मिलता है तो वो सबको ये सोचते हैं, जब वो ऑफिस भी जाएगा ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करेगा तो उसको सिमिलर ही जवाब और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो एआई की ये ब्रिलियंस तो है, तभी चाइना ने एआई ह्यूमन लाइक को बैन किया है, क्योंकि उसमें देखिए पावर कितनी है एआई में, वो आपके इमोशन को समझ सकता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने भी बनाया था और वो आपकी हर चीज को जवाब दे सकता है, पर सवाल ये है एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन अगर एआई खराब कर देगा तो वहां पे शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
0: इसी बात को लेकर अमित जी, हाँ एक बार इस पर डॉक्टर अरविंद, क्योंकि शुरुआत में मैंने आप ही से शुरुआत की थी, चर्चा की थी, और आप अपने बेटे का ही एग्जांपल दे रहे थे कि वो कितने स्मार्ट हो गए हैं, कैसे वो उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो सारे सवाल एआई से पूछ रहे हैं, फिर उन्हें उसका जवाब भी मिल रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं बच्चे एआई पर, या फिर बच्चे नहीं, हम ही लोगों की बात कर ले तो?
2: आई थिंक अभी हम एक ट्रांजिशन फेज में, एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। एआई बहुत ही यंग है, 4 साल हुए हैं अभी एआई को आए हुए, और डेफिनेटली क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपके सारे बेसिक सवालों का तुरंत जवाब मिल रहा है, तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए और उसको जितना ज्यादा अपने दैनिक कामों में लिया जा सकता है। लेकिन अब होना ये चाहिए कि जो नॉलेज ग्रेस्पिंग और जो नॉलेज शेयरिंग का तरीका था वो बहुत बदल रहा है। हमारा एआई से पहले बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड, बहुत ज्यादा यू कैन से इंफॉर्मेशन बेस्ड जो था वो नॉलेज था, नॉलेज शेयरिंग था इवेल्युएशन मेथड से। आई थिंक एआई के आने के बाद में अब बहुत ज्यादा आपका इनर ग्रोथ ज्यादा जरूरी हो जाएगी, बिकॉज अब आपका नॉलेज फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होगा, आपका नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं होगा, बल्कि आपका नॉलेज होगा कि एज ए ह्यूमन आप कितने डेप्थ में सोच सकते हैं, आप कितने वाइड सोच सकते हैं, आप कितने ज्यादा स्मार्ट सवाल एआई से पूछ के और नई चीजें निकाल सकते हैं। क्योंकि हम उस टिपिंग पॉइंट पे हैं आज हमारी सभ्यता के, जब हर तरह का नॉलेज, चाहे वो मेडिकल हो, टेक्निकल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, सारी तरह का नॉलेज आज अवेलेबल है। अब हमने वो मशीन बनाई है जो उस सारे नॉलेज को प्रोसेस कर सकती है, और अब ह्यूमन ब्रेन के इवॉल्व होने का टाइम आ गया है। आने वाली जनरेशन को इतना इवॉल्व होना पड़ेगा कि इट्स नॉट द इन्फॉर्मेशन विच मैटर्स, इट्स नॉट द नॉलेज कि आपको क्या चीज पता है कि कितने देश का क्या राजधानी, क्या कैपिटल, क्या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बल्कि कोई ये सवाल पूछे कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस इंफॉर्मेशन से एक नई चीज बना पाऊं। यानी इट्स नाउ टाइम टू इनोवेट। सो ऑफ कोर्स आपको ट्रांजिशन फेज में जरूर लगेगा कि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, बच्चे थोड़े से कुंद हो रहे हैं दिमाग से, लेकिन उसके बाद में यू विल सी ए ग्रोथ इन देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, इन ए मोर यू नो आई कैन से बहुत ज्यादा स्मार्ट ह्यूमन बींग्स के तौर पर आप उनका इवोल्यूशन देखेंगे।
0: ठीक है मोहित जी, एक बार आपके पास आती हूँ। एक करिकुलम स्कूल का होता है हर जगह का, अगर हम अलग अलग देशों की बात करें, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का करिकुलम होता है। भारत पर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल होमवर्क पूछने में किया जा रहा है, अमेरिका उसमें दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में ज्यादा बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, हर जगह का अलग अलग करिकुलम होता है। सवाल यहां पर यह है कि क्या एआई उससे मैच कर रहा है, क्या स्कूल करिकुलम पर हावी तो नहीं हो रहा है एआई?
1: देखिए स्कूल करिकुलम जो है वो स्टूडेंट को स्लोली एंड ग्रेजुअली मैच्योर बनाता है, और एआई एकदम से ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। मतलब अगर आपने बच्चों को एआई के साथ इंट्रोड्यूस कराया और आपने उसको मॉनिटर नहीं किया प्रॉपर तरीके से, तो बच्चा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बन जाएगा। मतलब आपको उसको सिखाना पड़ता है बच्चों को कि कैसे आप एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हो, किस तरीके से आपको उसको यूज करना है। और स्कूल का करिकुलम, हाँ डेफिनेटली जो स्कूल देता है वो बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि अपने होमवर्क को डायरेक्टली सर्च करके उसका आंसर निकाल, वो सबसे इजी तरीका है उनको निकाल के लिखकर आगे देना, अगर उनको सिर्फ कंप्लीट करना है तो। लेकिन एज अ पेरेंट अगर आप उनको बता रहे हो कि ऐसे ऐसे हो रहा है और ये चीजें हो रहा है, या आप उनको ये क्वेश्चन करना सिखा रहे हो कि एआई से आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये कैसे आंसर आया, ये क्यों आया, तो शायद बच्चा ज्यादा अच्छी तरीके से समझेगा कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है, किस तरह से इसके आंसर्स आ रहे हैं। मतलब बच्चा जो है फिर वो ये इस तरह से नहीं होगा, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं होगा, फिर वो बच्चा थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझ के उसको आंसर कर पाएगा।
0: यानी उस अभी का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल। अब जरा मेडिकल क्षेत्र की बात करते हैं, अगर हम अमेरिकियों की बात करें तो 9th नंबर का जो क्वेश्चन है अमेरिकियों ने मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा पूछा, हालांकि भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जरा से खांसी जुकाम को लेकर वो तुरंत एआई से सवाल करते हैं, लेकिन अमेरिका में भी बहुत सारे सवाल किए गए हैं इसको लेकर। अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो कितना ऑथेंटिक एआई है
1: मेडिकल फील्ड में? ना ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे अगर इंडिया में एक डिफरेंट सेट ऑफ डेटा है, डिफरेंट सेट ऑफ ज्योग्राफी है, डिफरेंट सेट ऑफ अलग अलग तरह के वायरसेस, अलग अलग तरह के इंटरेक्शन होते हैं, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करते हैं. और अलग अलग मतलब हो सकता है अफ्रीका में अलग एक वायरस है, अलग बैक्टीरिया है, यहाँ पे अलग है, वहां पे अलग तरह के मेडिसिन है. तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की चीजें होती हैं और मॉडल्स ट्रेन होते हैं. तो ये जो एआई है ना, ये ज्यादातर वेस्टर्न लाइक कंपनी जो है, जितनी यूएस में या यूके में, जो वहां की जो कंट्रीज है, वहां पे डेटा को कलेक्ट किया गया अलग अलग जगह से. तो जिस कंट्री का, जिस जगह का ज्यादा अच्छा डेटा है, उस पर ज्यादा अच्छी तरीके से वो आपको रिजल्ट्स देता. लेकिन फिर भी मेडिकल डोमेन्स के अंदर ये बोला जाता है कि एआई पर हमको बिलीव नहीं करना होता, बिकॉज वो आपने बोला कि बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो एआई आपको उसके बहुत जनरल आंसर्स दे सकता है, लेकिन वो बहुत सीरियस भी हो सकते हैं.
0: हाँ, मेडिकल क्षेत्र में अभी थोड़ा वक्त लगेगा. मेडिकल क्षेत्र में, यानी आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा, हम पूरी तरह से एआई पर डिपेंड नहीं हो सकते. डॉक्टर कपिल, कुछ कहना चाह रहे थे आप?
3: मैं ये कहना चाह रहा था, यूएस जैसी कंट्रीज में इशू क्या है, वहां पे जो मेडिकल है वो इमीडिएट एक्सेसिबल नहीं है. जैसे आप यहाँ पे क्लोजेस्ट हॉस्पिटल पे चले जाते हैं, कोई आपको डॉक्टर मिल जाएगा और आप इमीडिएटली अपना इलाज, या आपको खांसी जुकाम है, छोटी चीजें हैं, वो आप करवा सकते हैं. अमेरिका में यू विल हैव टू गेट डेट्स. तो वहां पे उसकी शायद एक वजह है कि अमेरिका में लोगों को पता है कि हमें 2 महीने या 1 महीने की डेट मिलेगी, अनलेस एंड अंटिल इट इज़न्ट एन इमरजेंसी, ये एक सिम्टम है. तो उस सिम्टम को कहीं ना कहीं एआई के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कहीं कैंसर तो नहीं है, या मुझे कहीं स्टोन तो नहीं है, या मुझे कोई ऐसी चीज तो नहीं है, तो उन चीजों को एलिमिनेट करने के लिए कंट्रीज लाइक अमेरिका में मेरे ख्याल से एआई मेडिकली ज्यादा यूज होता है विजिट इंडिया, क्योंकि यहाँ पे आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके या हॉस्पिटल में जाके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं.
0: डॉक्टर साहब, आप ही से एक और सवाल है, क्योंकि जब हम इसके साइड इफेक्ट की बात कर रहे थे तो एक बात, एक खबर ये भी आई है कि मेमोरी लॉस भी होता है अगर हम एक्सेस यूज ऑफ एआई से.
3: नहीं, ये ना एक्चुअली ये भी थोड़ा सा ना, अगर आप डीप साइकोलॉजी में जाएंगे, ये सब थोड़े फोबिया है जो एक जनरल पब्लिक के दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं. मेमोरी लॉस नहीं होता, कई बार आपका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है, जैसे आज की डेट में पहले बच्चों में ADHD माना जाता था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो जब आदमी 3-4-5 चीजें एक साथ सोच रहा है, समझ रहा है, तो बहुत नेचुरल है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाती है. पर उसको हम मेमोरी लॉस से बिल्कुल नहीं देख सकते, उसका कोई आपकी ब्रेन के, चाहे हाइपोथैलेमस है या हिप्पोकैम्पस एरियाज है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सब एक्टिवेटेड है. बट हाँ, क्योंकि वो एक साथ इतनी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते, तो आदमी को ऐसे भूल भुलैया में हो जाता है और आसपास डर पैदा हो जाता है कि हाँ, हम लोग शायद भूलना शुरू हो गए हैं.

0: हर चीज में एआई इधर आ गया है। कुछ भी हम लोग ब्रांड अगर देखते हैं तो एआई से बेस्ड होता है। कोई अगर एक इमेज है, मान लिया अगर हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी एक इमेज है, हम उसको एआई से इतना अच्छा बना के प्रेजेंट कर देते हैं कि एक्चुअल में वो ब्रांड क्या दे रहा है हमें नहीं मालूम होता, एआई उसको इतना क्लीन कर देती है, इतना अच्छा बना देती है। तो एआई पे हम लोग एआई के थ्रू यूज करके प्रमोशंस तो कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर भी धीरे धीरे इन चीजों को समझ रहा है और ब्रांड की रेपुटेशन जो है रिस्क में ना आ जाती कहीं पर। क्यों? क्योंकि ब्रांड ने तो अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए एआई से बहुत अच्छा बना के बेच दिया, ठीक है, लेकिन जब कस्टमर के पास वो चीज पहुंचती है तो वो चीज वैसी नहीं मिलती कहीं पर। तो एआई का ये डिसएडवांटेज बिजनेस प्रमोशंस में बहुत ज्यादा है। तो लोग आजकल काफी सारी साइट्स हैं उसके ऊपर चीजें बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं और एआई से प्रमोट कर रहे हैं उसको। एआई से प्रमोशन के साथ साथ मतलब कॉम्पिटिशन हाई हैं और एड कॉस्ट भी काफी हाई है, तो एआई से प्रमोशंस के लिए उनको यूज करके चीजों को बेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जब कस्टमर के पास चीजें डिलीवर होती हैं तब एग्जैक्टली उसकी क्वालिटी मालूम होती है। तो एआई का बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है भी और नहीं भी।
1: नहीं, दोनों चीजें हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों जगह। डॉक्टर अरविंद, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह भी है जो भारतीयों ने नहीं पूछा बल्कि अमेरिकियों ने पूछा, और वो था इमोशनल वेलबींग एंड सपोर्ट। ये वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे बड़ा इशू मेंटल हेल्थ का भी है, और ये सवाल अब कहीं ना कहीं एआई जो है उसी को अपना साथी बना रहे हैं लोग।
2: देखिए, उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हमारी हम लोग आज भी इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, हमारा इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और जॉइंट फैमिलीज ऑल दो कम है बट टीयर टू सिटीज में अभी बहुत सारे लोग बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज आज आपको यूएस या ऑस्ट्रेलिया या जापान जैसी कंट्रीज में देखने को मिलेगा, जहां पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस हैव गॉन रियली डाउन, स्पेशली जो इमोशनल कनेक्ट है, जो इंटरपर्सनल चाहे तो फ्रेंडशिप हो चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, उसमें इंसानी बातचीत जो है वो बहुत कम हो गई है। और एआई सडनली एक ऐसे ऑप्शन के रूप में निकल के आया कि जहां आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो जो सबसे पहला कॉल ऑफ जिसे बोलते हैं कि पोर्ट ऑफ कॉल था, वो ये था कि अरे यार, अगर मुझे सवाल के जवाब मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं वो भी सवाल पूछूं जो मैं अपने साथी से पूछना चाह रहा था, उनके क्या राय है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे जो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट वाली एआईज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ भी रही है, सक्सेसफुल भी हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, चाइना में तो बैन भी करना पड़ गया उसका, इतना ज्यादा
1: दोनों चीजें हैं, हर चीज बिल्कुल अलग अलग फील्ड के सवाल पूछे गए हैं एआई से, और चाहे वो भारत हो या अमेरिका, तमाम कंट्रीज को लेकर जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट आई है कि एआई से किसने किस तरह के सवाल पूछे हैं। इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे खास मेहमानों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।

0: विश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
5: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, Tune In has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: क्या सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है? क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
2: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स, Sage University, transforming your passion into profession.
7: पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटा मंदिर प्रशासन। हरिद्वार के प्रसिद्ध कांवड़ मेले में बम बम भोले के जयकारे, शिव भक्तों की सुरक्षा और सेवा में मुस्तैद प्रशासन, DM SSP ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, फलाहार भेंट किया। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज, हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, बम भोले के जयकारों के साथ देशभक्ति का संदेश। असम में बाढ़ प्रभावितों को फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग भी राहत कैंपों में पहुंचा रहे हैं खाना और जरूरी सामान। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, मॉनसून सीजन में लगातार बढ़ रही है तादाद, खूबसूरत फूलों के बीच उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई फूल माला।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उस
7: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे स्पेशल शो अच्छी खबर सच्ची खबर में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की। ग्लासगो में भारत ने इतिहास रच दिया। 1 अगस्त के दिन कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्डन डे के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस दिन भारत के मुक्केबाजों ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसकी बदौलत भारत मेडल टैली में ऊंची छलांग लगाकर 10वें से 4थे पायदान पर अब पहुंच चुका है। और खास बात इसमें यह रही कि शनिवार को भारत की झोली में इन मुक्केबाजों की बदौलत सोना बरसा। आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए सबसे पहले तस्वीरों में देखिए आपको दिखाने किस प्रकार से पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन और प्रिया भी है, उन्होंने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं पर सचिन सिवास और अरुंधति चौधरी भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ और आपको एक बार आंकड़े दिखाते हैं। अंकुश पांचाल इसमें गोल्ड मेडल हासिल करने में शामिल रहे। मीराबाई चानू और अस्मिता डे भी इसमें नजर आएंगे आपको। हर्ष सिंह, शर्मिला धनखड़ और दिलीप गाविक भी गोल्ड मेडल जीतने में हासिल कर सके, और साथ ही साथ सोमन भी, उन्होंने गोल्ड पर कब्जा जमाया। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स का आज आखिरी दिन है, कल इस खेल महोत्सव का औपचारिक समापन हो जाएगा, लेकिन खेलों के इस इवेंट का आज खत्म हो जाएगा। इसमें आज भी कुछ इवेंट ऐसे हैं जिसमें भारतीय एथलीट मेडल की दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले 1 अगस्त के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। देखिए
8: ग्लासगो में हुई गोल्ड की बरसात, सोना ही सोना बरसा। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारतीय एथलीट्स ने गजब का कमाल कर दिखाया। खास तौर से गेम्स के समापन से पहले शनिवार का दिन ग्लासगो में भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ, क्योंकि एक के बाद एक एथलीट्स ने अपने इवेंट्स में गोल्ड के साथ पदकों की झड़ी लगा दी और देशवासियों को गर्व से भर दिया। शनिवार को एक ही दिन में भारत की झोली में कुल 16 मेडल्स आए। इनमें 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। खास बात यह है कि भारतीय एथलीट्स ने एक ही दिन में 8 गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। एक गोल्ड पुरुषों के F57 शॉटपुट इवेंट में हासिल हुआ, जबकि केवल मुक्केबाजी में 7 गोल्ड मेडल मिले। ये पहली बार है जब एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 7 बॉक्सिंग गोल्ड अपने नाम किए हैं, और वो भी एक ही दिन में।
9: So I can't say that what is my feelings, because it's a proud moment for our country and it's a proud moment for every Indians. And every boxer goes and getting the gold medal and Janagana Mana comes, it's a, you cannot say in a one word. It is an exciting, it's a proud moment for us.
8: इस बार इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स ने नया इतिहास रच दिया। ये भारतीय बॉक्सर्स का अब तक का सबसे सुनहरा प्रदर्शन है।
10: देखिए 7 गोल्ड और 3 सिल्वर, इतिहास में कभी भी किसी टीम के भी कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने मेडल नहीं आए, तो ऐतिहासिक एक परफॉर्मेंस भारतीय टीम की रही है। इससे पहले 1986 में कनाडा के 6 गोल्ड आए थे, तो पहली बार किसी टीम के 7 गोल्ड और 3 सिल्वर आए हैं। और हमें बहुत ही खुशी है इस बात की कि इस कंट्रीब्यूशन की वजह से जो हमारे देश की रैंक है वो भी उठ के 4 नंबर पे हम आ गए हैं।
8: शनिवार को भारतीय बॉक्सर्स सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघस और अरुंधति चौधरी ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। साक्षी चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स में 51 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर गोल्डन गर्ल बनी हैं। वहीं रोहतक की प्रीति पवार ने 54 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। इसी तरह जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड पर कब्जा किया, तो प्रिया घनघस ने 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने 70 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। भारतीय बॉक्सर्स के दमदार प्रदर्शन के कारण न केवल मेडल टैली में भारत की स्थिति और भी मजबूत हुई, बल्कि पहली बार भारतीय बॉक्सिंग टीम ने एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान भी कायम कर दिया।
11: मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने आज तक जितनी मेहनत की थी उसका एक मुझे फल मिला है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा पूरा टारगेट था फाइनल बाउट से पहले कि अभी मेडल सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर में काम नहीं चलेगा, मुझे गोल्ड ही जीतना है इंडिया के लिए। और सब चीयर कर रहे थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था कि ये सब हमें चीयर कर रहे हैं, हमारे लिए आए हैं इतनी दूर से, तो हमें गोल्ड ही जीतना है।
12: बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। फर्स्ट राउंड 3-2 में जाने के बाद बस कोचिज ने कहा कि शांति से दूर दूर से खेलना है, ज्यादा अड़बड़ाना नहीं है। और जो आवाज जा रही थी भारत माता की जय, उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, आज उसकी वजह से आज हमने गोल्ड मेडल जीता।
13: मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, इवन लाइक पूरा इंडिया आई थिंक बहुत खुश है, सब प्राउड फील कर रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद बोलना चाहूंगी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, BFI का एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। मैं मेडल पूरे इंडिया को डेडिकेट करूंगी क्योंकि ये सबका सपोर्ट रहा है, सबकी प्रेयर्स रही है। सो थैंक यू एवरीवन।
14: काफी अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ पे हम आए थे कि हम इंडिया को जितना अपनी परफॉर्मेंस से प्राउड फील करवा सके उतना करवाए, तो मोमेंट आज क्रिएट हुआ है। जैसे हम वार्म अप कर रहे थे तो तभी कोचेज ने बोला था कि बस अपना गेम खेलना है और हम फाइनल्स में हैं, और इंडिया के लिए वो जो राष्ट्रगान जो सुनना होता है और पोडियम पे खड़े होना होता है, वो मोमेंट हर एथलीट की लाइफ में बहुत अहम होता है। तो बस उनका ये था कि हम वो पूरा कर पाए, इंडिया को गोल्ड दिला पाए, तो उसी के लिए बस जाना है।
8: आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारत की महिला बॉक्सर्स का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। भारत की बेटियों ने देश का नाम रोशन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम फाइनल में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को हराया, जबकि प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वेट कैटेगरी फाइनल में कैनेडा की स्कारलेट ज़वाना डेलगाडो को हराया। वहीं जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से हराया। प्रिया घंगस ने 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कनाडा की मैरी बाथूल अल अहमदी को 4-1 से हराया, जबकि अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में इंग्लैंड की ओलंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता चैंटल रीड को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं पुरुषों के बॉक्सिंग इवेंट में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने भी दमखम दिखाते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को मात दी और गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया।
15: अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था, तो और ये था कि बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे करके। और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है। सभी को यही कहना चाहूंगा कि सभी प्रैक्टिस कर रहे थे और काफी लंबे समय से, थैंक यू कहना चाहूंगा।
8: इसके अलावा पैरा स्पोर्ट्स में भी शनिवार को भारतीय एथलीट्स ने नया सुनहरा चैप्टर जोड़ दिया। बिहार के गया जी के रहने वाले सोमन राणा ने पुरुषों की F57 पैरा शॉटपुट इवेंट में 13.40 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में ये पहला मौका है जब भारत ने पुरुषों की शॉटपुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है।
16: बहुत अच्छा लगा है, इतना बड़े मंच पर इंडिया के उसमें प्रतिनिधित्व करना और गोल्ड मेडल लेना, और बहुत खुश लग रहा है।
8: कॉमनवेल्थ गेम्स में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले इन एथलीट्स की निगाहें अब अगले एशियाई खेलों और ओलंपिक गेम्स पर हैं। भरपूर जोश, जुनून और उत्साह के साथ ये खिलाड़ी अब अपने अगले लक्ष्य की तैयारी में जुटने जा रहे हैं, ताकि दुनिया में खेलों के मंच पर तिरंगे की शान बढ़ा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज डे।
7: हमारे साथ नितिन है, और नितिन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए कितने पदक और अब भारत की झोली में जा सकते हैं, कौन कौन से वो मुकाबले हैं जिनमें हम पदक जीत सकते हैं। नितिन,
17: ये देखिए आपने बात की पदकों की, इस साल अनफॉर्चुनेटली हमारे अगर कंप्लीट जो फाइनल मेडल टैली होगी ना, वो पिछले बार के बर्मिंघम के गेम से बहुत कम होगी। उसका सीधा और साफ जो आप कह सकते हैं कि रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है, जहाँ पर हमारा दबदबा हुआ करता था और हमें बहुत सारे मेडल्स मिलते थे। बट फिर भी अभी तक 39 मेडल आ गए हैं, जिसमें 13 आपके पास गोल्ड है। लेकिन अगर हम बाकी बचे हुए यू नो इवेंट की बात करें तो जूडो है, जहाँ पर हमें पदक की उम्मीद है। यहाँ से अगर आपको एक दो और गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं तो आपका टोटल टैली में 2-3 मेडल और ऐड हो जाएगा। बट फिर भी लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार आपको थोड़ी सी कम मेडल्स रहेंगी, निराशा रहेगी। बट फिर भी आपने ये देखा कि जिस तरीके से बॉक्सिंग ने हमारे मेडल्स को ऊपर किया है टैली में, जो आपने बोला कि 10 से हम 14 पे आ गए, उसका सबसे बड़ा रीजन हमारे बॉक्सर्स हैं, क्योंकि अगर वो मेडल्स हमें नहीं मिलते तो हो सकता है कि हम
7: मेडल में थोड़ा हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग में इस बार हमने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया है। फ्यूचर गेम्स की अगर हम बात करें,
17: देखिए फ्यूचर गेम्स ऐसा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ना, उनके ऑर्गेनाइजर्स को ये सोचना पड़ेगा और इवन इंडिया को भी स्ट्रांग यू नो शब्दों में कहना पड़ेगा, अगला जो कॉमनवेल्थ गेम है वो भारत में होना है। और इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो डिसिप्लिन फिलहाल हमें दो बार से देखने के लिए नहीं मिल रहे कॉमनवेल्थ गेम में, वो जब इंडिया होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स अगली बार 2030 में, तो वो डिसिप्लिन वहां पर हो, खासतौर पर रेसलिंग हो, शूटिंग हो, हॉकी हो, क्योंकि यहां पर हमारा डोमिनेंस होता था और यहां पर हम मेडल जीतते थे। होपफुली जब अगली बार हमारे खिलाड़ी जो मैदान में उतरेंगे उनका कॉन्टिजेंट भी बड़ा होगा और पदकों की संख्या भी बड़ी होगी।
7: बिल्कुल नितिन, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में अनूठी एक कामयाबी के बाद देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। खास तौर से अगर हम देखें, हरियाणा के भिवानी की बेटियों ने मुक्केबाजी में जोरदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, तो उनके घर परिवार में दिवाली मनाई जा रही है। वहीं पर दूसरे कामयाब खिलाड़ियों के भी परिजन जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में सफलता से बहुत खुश हैं। रिपोर्ट देखिए।
18: गेम में बॉक्सिंग के मुकाबले का नतीजा जैसे ही आया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बॉक्सिंग की गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में किया कमाल, तो कोटा में उनके परिजन शानदार कामयाबी से फूले नहीं समा रहे हैं।
19: जी सफर बहुत ज्यादा मतलब नर्वसनेस के साथ हमारा निकला है, क्या ही बताऊं मैं। एंड अभी तक बहुत एंजाइटी हो रही थी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आज मुझे अपनी बहन पे बहुत गर्व है, 102 डिग्री बुखार में उसने कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीता है। चैलेंज था, बिल्कुल चैलेंज था, लेकिन उसने कर दिखाया।
18: अरुंधति की सफलता के बाद कोटा में उनके परिजनों ने देवी देवताओं की आरती की और उनका शुक्रिया अदा किया। परिजन अब ग्लासगो से अरुंधति की वापसी के बाद उनके जोरदार स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं।
20: सर, इससे कॉन्फिडेंस बेटी का और अच्छा बढ़ेगा, आगे फ्यूचर में और कर पाएगी वो, और ओलंपिक के लिए अब नेक्स्ट उसका टारगेट ओलंपिक में गोल्ड लेना है। सब ईश्वर की कृपा है, जो सब क्या ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का प्रसाद समझ के हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसको। बिल्कुल ग्रैंड वेलकम होगा, पूरे शहरवासी है, पूरे हाडोती वासी है, वो बच्ची का स्वागत करेंगे।
18: शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए बड़ा अहम दिन था और जो एथलीट अपने इवेंट्स में भाग ले रहे थे उनके घर लोग टीवी पर टकटकी लगाए गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे। भिवानी में बॉक्सिंग की गोल्डन गर्ल साक्षी चौधरी के घर भी सबके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी और जैसे ही नतीजा सामने आया तो लोग खुशी से उछल पड़े। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर साक्षी की सफलता का जश्न मनाया।
21: बहुत बड़ी खुशी है जी, आज मेरे लिए इस तक बड़ी खुशी का दिन और क्यों होगा जी। बेटी गोल्ड मेडल लाई जी देश खातर जी, इसे दिन खातर बाट देखने लग रही थी जी, एक बेटी एक दिन देश का नाम रोशन करे जी, झंडा फहरावे जी, अपना राष्ट्रीय गान देश का झंडा सब तक ऊंचा होवे जी, वो मन गर्व की बात है जी।
22: और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बेटी ने, एक तरफा मैच जीता है 5-0 से, और मेरे को उम्मीद है आगे कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में भी और ओलंपिक में भी बेटी गोल्ड मेडल ले जाएगी और देश का नाम रोशन करेगी।
23: ये 14 साल की जर्नी है, हम सिर्फ एक दिन देख रहे हैं कि आज उसने गोल्ड मेडल जीता, बट उसके पीछे की जो 14 साल की जर्नी है वो उसके खून पसीने हार्डवर्क की है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने गोल्ड मेडल जीत के अपनी उस हार्डवर्क को और उस मेहनत को येलो कलर दिया है आज, तो बहुत खुश है।
18: भिवानी के ही बॉक्सर सचिन सिवाच ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्डन मेडल जीतकर अपने परिवार का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ग्लासगो में जब मुकाबला चल रहा था तब सचिन का पूरा परिवार बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जो उनकी दिली तमन्ना पूरी करने वाला था। नतीजा आते ही सचिन के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी खुशी से झूम उठे और मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया।
0: बहुत अच्छा लगा, बहुत खूब बात है, मेहनत है और ऐसे ही खेलता है ये, जी लगा के, जान लगा के, शुरू से ही लेके आखिर तक बहुत खुश है, बहुत सभी परिवार भी, गांव भी, देश भी, सबके लिए अच्छा है।
1: बहुत अच्छा लगा जी, बहुत खुश हम, पूरा परिवार भी, पूरा गांव भी बहुत खुश है। इसका खूब प्लान है जी, पूरा गांव खुशी तो उसका स्वागत करेगा, सब भी उसने घर की चीज है जो वही पसंद है वही खिलाएंगे।
2: शुरू का मेरा पोता बहुत तेज, बहुत अच्छा, बहुत शुद्धा, सबके लिए सबने प्यारा लगे। और पोते ने है न, पोते ने जब ऊंचे बना दिया सारी इंडिया बना दी, सारा गांव बना दिया, सारा गुआंड बना दिया। बुआ है, भाई मामे हैं, मामी हैं, सबका ऊंचा नाम कर दिया। बुलाओ, जय हिंद।
3: बहुत अच्छा लग रहा है और उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि भाई उसने देश के लिए मेडल जीता है, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम हुआ है और उसने बहुत मेहनत की थी, उसने बहुत संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। सबको बहुत खुशी हो रही है।
18: भिवानी की प्रिया घंगस ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2026 में गोल्ड मेडल जीता तो परिजनों ने गांव में पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। घर की महिलाओं ने इस मौके पर लोगों का मुंह मीठा किया और बेटी की सफलता पर जश्न मनाती दिखी।
24: बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बेटी गोल्ड लेके आए, उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी थी भारत के लिए।
25: कितनी खुशी हुई, कैसे खुशी?
24: बहुत ज्यादा खुशी है, सारे गाँव के परिवार वालों को, सबकी बेटी है वो।
25: तो कैसे देखा मैं?
24: बस दिल बड़ा भावुक हो रहा था। बहुत ज्यादा खुशी है, किसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, इतनी खुशी है।
18: वही रोहतक के महम में बॉक्सर प्रीति पवार के घर वालों को भी इस नतीजे का इंतजार था जो उनके लिए बेशुमार खुशियां लेकर आया। प्रीति ने 54 किलोग्राम वर्ग में गोल्डन मेडल जीता तो परिजनों के चेहरे खिल उठे।
26: बहुत खुशी हो रही है, बेटी ने देश के लिए मेडल जीता है और उसकी मेहनत थी जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसने 2017 से जो अब तक लगी रही है उसकी मेहनत का फल मिला है उसको, देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, इसमें बहुत ज्यादा खुशी हो।
18: परिजनों का कहना है कि प्रीति ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, अब सबको ग्लासगो से उनकी वापसी का इंतजार है।
27: तो कुछ प्लान नहीं किया है जी, वो फिर मिलने के बाद भी सोचेंगे, अभी डिस्कस नहीं किया है जी, उसको किस तरह वो करांगे। खुशी बहुत हो रही, सुबह उसका 3-3.5 घंटे का भी ट्रेनिंग सेशन होता था, फिर शाम में भी होता था। अभी तो वो लोग नेशनल कैंप में हैं, बट जब नेशनल कैंप में नहीं थे तो उसके जो पर्सनल कोच हैं हमारे चाचा, वो उसकी अलग से भी ट्रेनिंग कराते थे। थर्ड सेशन भी उसका दिन का हो जाता था, कभी कभी 4 सेशन करा देते थे। तो कोविड के दौरान तो उसको मिडनाइट तक भी सेशंस लिए हैं, वही जो मेहनत थी उस समय की वो आज रंग ला रही है। खुशी बहुत हो रही है, सब बहुत खुश हैं और उत्साह भी फील हो रहा है सबको।
18: वहीं भिवानी में बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के घर वालों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल राउंड में उनकी एंट्री पर जो खुशी मनाई थी वो शनिवार को गोल्ड जीतने के साथ कई गुना बढ़ गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के बॉक्सरों से मेडल की काफी उम्मीद थी और वो अपनी कामयाबी से उम्मीदों पर खरे भी उतरे। खासतौर से कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय बॉक्सर बेटियों की कड़ी मेहनत एक बार फिर रंग लाई है, सुनहरी कामयाबी के साथ वो दुनिया में देश का परचम लहराने में सबसे आगे नजर आ रही हैं। भिवानी से जगबीर सिंह और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: कल सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में भक्त शिवालय पहुंचेंगे और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। कांवड़िया भी इस सोमवार को शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे, इसलिए जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है, विशेष व्यवस्थाएं की गई। हरिद्वार में तो प्रशासन ने उनका सम्मान पुष्प वर्षा से किया और फूड पैकेट्स और पानी की बॉटल्स भी दिए।

0: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इसी महीने का हर सोमवार खास होता है, लेकिन पहला सोमवार सबसे अधिक शुभ माना जाता है। कल यानी 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने और उनका अभिषेक करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही सुख शांति और तरक्की का आशीर्वाद मिलता है। सावन के पहले सोमवार को देखते हुए शिवालयों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि कल हर शिवालय में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में अभी से खास रौनक दिखने लगी है। रविवार के होते हुए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। सावन का महीना है तो कांवड़ यात्रा भी पूरे धूमधाम से चल रही है। महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लगातार यहां पर कांवड़िए पहुंच रहे हैं। दरअसल सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिससे विष निकला था, जिसका पान भगवान शंकर ने किया था और वह नीलकंठ कहलाए थे। इस वजह से उनके शरीर का ताप बढ़ गया था, तब देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया था और तब से ही यही परंपरा चली आ रही है। और तभी से ही भक्त सावन के महीने में भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में सोमवार का खास महत्व माना जाता है।
1: भगवान शिव को जल से, दूध से और इच्छु रस से जैसी जिसकी कामना होती है उसके अनुरूप भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं। निश्चित रूप से जब श्रावण मास आता है तो शिव भक्त जो है भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं और आकर जो है महाकालेश्वर स्वयं का दर्शन करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं।
0: देश के कई इलाकों में कांवड़ यात्रा में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रयागराज के संगम से गंगा जल लेकर लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से गुजरते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने इस साल भी नेशनल हाईवे 19 यानी प्रयागराज से काशी तक के लिए एक लेन पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी है, जबकि दूसरी लेन से गाड़ियों की आवाजाही कराई जाएगी। ये व्यवस्था पूरे सावन माह तक प्रभावी रहेगी। भदोही जिले के अलग अलग इलाके से कांवड़िए जल लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए जगह जगह विशेष इंतजाम किए गए हैं, शिविर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, व्यवस्थित और सकुशल संपन्न हो।
2: ये जो हमारा नेशनल हाईवे 9 है, इसकी उत्तरी लेन को पूर्ण रूप में जो कांवड़ यात्री हैं उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है, और यहाँ से इस वाली लेन पर केवल और केवल कांवड़ यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे, उनके साथ में जो जत्था आ रहा है वो जा सकेंगे। दूसरी लेन पर हमारा जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है और हम लोगों ने अतिरिक्त तैनाती भी की है, जिससे किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए।
0: सावन के महीने में हर तरफ माहौल भक्तिमय दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में कांवड़िए दूर दूर से सफर करके जलाभिषेक के लिए महादेव की नगरी पहुंचते हैं। ऐसे में रेल में सफर करने वाले कांवड़िया हों या फिर आम यात्री, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या सात्विक भोजन की होती है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने शुद्ध और सात्विक भोजन की व्यवस्था लागू की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रेलवे फूड प्लाजा में सावन को ध्यान में रखते हुए शुद्ध और सात्विक भोजन का इंतजाम किया गया है। रेलवे की इस खास व्यवस्था से कांवड़ियों में खुशी है।
3: सात्विक और बढ़िया भोजन होता है, हम लोग पिछले बार भी खाया था, इस बार भी व्यवस्था देख रहे हैं कि बढ़िया है और हम लोग जा रहे हैं देवघर के लिए, सुल्तानगंज से जल लेकर जाएंगे पैदल।
4: रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है खान पान की?
3: हाँ, बढ़िया व्यवस्था की है इस बार।
5: सात्विक भोजन जो भी रेलवे दे रही है आज अच्छा भोजन दे रहे हैं, बिना लहसुन प्याज के दे रही है कांवड़ यात्रा वाले बम लोगों को। बहुत अच्छी व्यवस्था है जो कि पहले नहीं था ये चीज।
0: हरिद्वार के प्रसिद्ध कांवड़ मेला पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। अभी तक महज 4 दिनों में ही करीब 50 लाख से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िए यहाँ से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों और शिवालयों की ओर रवाना हो चुके हैं। पूरा हरिद्वार बम बम भोले और जय शिव शंभू के जयकारों से गुंजायमान है। प्रशासन भी शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा में मुस्तैदी से जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आज शंकराचार्य चौक पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने खुद सड़कों पर उतरकर गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का शानदार स्वागत किया। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और उन्हें अपने हाथों से खाद्य सामग्री, फल और जल वितरित किए गए।
6: कांवड़ मेले में लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और सभी संस्थाओं के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा लगातार उनकी सुविधाएं बनी रहे, उनको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए तैयारियां की गई हैं। आज इसी क्रम में कांवड़ सेवा शिविर का आयोजित किया गया था, जिसमें कांवड़ियों को उनका स्वागत किया गया, साथ ही उनको आवश्यक पेयजल, खाने की सुविधाएं दी गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कैंप्स भी आयोजित किए गए।
0: हरिद्वार में सुरक्षा के साथ साथ भीड़ प्रबंधन का खास ख्याल रखा जा रहा है। हर इलाके में पुलिस के जवान तैनात हैं और हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी कांवड़िए को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। दिल्ली से आशुतोष कुमार, भदोही से महेश कुमार जायसवाल, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और सावन के पूरे महीने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं सावन के सोमवार। तो आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की और सावन के पहले सोमवार के महिमा की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात के 10:54 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात के 10 बजे तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल तथा बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के सोमवार की। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, पूरा पूरा सावन का महीना श्रावण मास जप के लिए, तप के लिए और ध्यान के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा उत्तम है। लेकिन सावन के पूरे महीने में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। सावन का महीना शिव जी का महीना और सोमवार का दिन शिव जी का दिन, इसीलिए सावन के सोमवार पर पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाता है।
सोमवार और शिव जी का संबंध होने के कारण ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। आप पूरे सावन में पूजा ना भी करें, अगर केवल सावन के हर सोमवार पर आप पूजा करें तो भी आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। सावन के सोमवार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में समस्या हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, पारिवारिक उलझने सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो सावन का सोमवार पूरे सावन में सबसे पवित्र है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये जानते हैं कि सावन के सोमवार के पूजा का महत्व क्या है। भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए, शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए सावन के सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हो तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो तब भी सावन के सोमवार की पूजा करनी चाहिए। सावन के सोमवार को आप कुछ करें या ना करें, शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। हो सकता है व्यस्तता की वजह से या अन्य कारणों से
आप पूरे सावन में शिव जी की पूजा ना कर पाए। ऐसी स्थिति में केवल सावन के सोमवार पर अगर आप शिव जी की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा और पूरे सावन की तपस्या का फल आपको प्राप्त होगा। सावन के सोमवार पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो सुबह 12 बजे के पहले या प्रदोष काल में स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाइएगा। घर से नंगे पैर जाइएगा और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाइएगा। मंदिर का जल मंदिर में ना चढ़ाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और अगर संभव हो तो भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए। मंदिर में कहीं पर भी खड़े होकर या बैठकर शिव मंत्र का नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। दिन के समय में केवल जल और फल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान के मंत्रों का पुनः जाप करें और उनकी आरती करें। आरती के बाद आप एक वेला भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें और अगर सावन के सोमवार का व्रत रखा है तो दान के बाद व्रत को समाप्त करिएगा। सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ है और साथ में अगर आप सावन के सोमवार पर शाम के समय में शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें तो अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को आप पूरा कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचें, धन की हानि हो सकती है। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, दूसरों के मामले में ना पड़ें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो सावन के सोमवार पर एक विशेष प्रयोग कर सकती हैं। सावन के सोमवार पर अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है तो 32 बेलपत्र आप ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें
और इसके बाद एक एक

करके बेलपत्र सारे शिवलिंग पर समर्पित करें और हर बेलपत्र समर्पित करने के साथ नमः शिवाय कहें। ये प्रयोग आप सावन के किसी भी सोमवार को कर सकती हैं। अगर ये प्रयोग करने के बाद आप शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान पक्ष को अच्छा रखना चाहते हैं, संतान पक्ष की हमेशा उन्नति चाहते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा और सारे बेलपत्र अर्पित करने के बाद उसमें से एक बेलपत्र अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और आखिर में बात करेंगे मौसम की। दिल्ली NCR में मौसम सुहाना बना हुआ है और उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि इस हफ्ते ऐसी ही मौसम रहेगा। पूरे देश में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: रिमझिम बारिश, कभी बादलों के बीच से निकलती धूप, बादलों की आवाजाही के बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलती रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले पूरे हफ्ते मौसम सुहावना बना रहेगा। आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकांश दिनों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलते रहने की संभावना है। कुल मिलाकर दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए आने वाले सप्ताह का मौसम राहत भरा रहने वाला है। अलनीनो के बावजूद मॉनसून भारत में झूमकर बरस रहा है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार और ओडिशा में 5 अगस्त के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से मॉनसून लगातार मजबूत बना हुआ है, जिससे देश के करीब करीब हर इलाके में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने केरल और गुजरात के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अत्यधिक सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आईएमडी के अनुसार केरल के अल्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोटायम और पथानम थिट्टा जिलों में गरज चमक के साथ लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की दर से भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह गुजरात के अहमदाबाद, आनंद, अरावली, भरूच, भावनगर, बोटाद, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, महसाणा, मोरबी, पाटन, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और वडोदरा समेत कई जिलों में भी इसी प्रकार का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नंदुरबार और असम के कछार, जोरहाट और लखीमपुर जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां, काशी, उज्जैन, देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा है अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद नजर आया जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। बारिश, भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने असम में बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मानसूनी सीजन के 2 महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई फूल मालाएं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो समय जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहुंचने वालों की हर मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। देखिए, पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है, ऐसे में हम आपको भारत के आध्यात्मिक धरोहर जाने वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएंगे, जो केवल देखिए मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और अनगिनत पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक है। तो चलिए उन दिव्य धामों की यात्रा पर चलते हैं जहां स्वयं महादेव अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है।
1: जब धरती शिवमय हो जाती है, जब हवाओं में बम बम भोले का उद्घोष गूंजता है, जब हर भक्त का दिल महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, तब शिव शंकर माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। सावन का पावन महीना यानी महादेव की उपासना का अद्भुत और अलौकिक मौका। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयं भू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत भी हैं। शिव दर्शन की इसी पावन यात्रा में आज सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धाम जहां से ज्योतिर्लिंगों की गाथा शुरू होती है। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के श्लोक में जिसकी शुरुआत ही सोमनाथ से होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सृष्टि के आरंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी ईश्वर, यानी चंद्रमा के स्वामी। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज धीमा हो गया और वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। तब उन्होंने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। चंद्रमा के कष्ट को हरने वाले महादेव यहाँ सोमनाथ कहलाए और अनंत काल के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है, लेकिन सावन महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि की श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी किनारे श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सावन में इस धाम आकर शिव पार्वती का एक साथ पूजन कर ले, उसके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और उस पर महादेव के साथ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। हर दौर में इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। सावन में शिव दर्शन की इस पावन यात्रा में अब आपको लेकर चल रहे हैं अवंतिका नगरी, यानी राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पौराणिक काल में अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे। जब दूषण नाम के अत्याचारी राक्षस ने उज्जैनी की प्रजा और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब भक्तों की पुकार सुनकर ही महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर डाला। उज्जैन की प्रजा की प्रार्थना पर कालों के काल महादेव हमेशा के लिए यही महाकालेश्वर के रूप में विराजित हो गए, ताकि वो अपने भक्तों के काल और अकाल मृत्यु से रक्षा कर सकें। सावन महीने में महाकाल के दरबार की छटा ही निराली होती है। तड़के होने वाली अलौकिक भस्म आरती से लेकर महाकाल की शाही सवारी तक हर दृश्य में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र माना गया है और इसलिए यहाँ अवतरित शंभु महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहाँ कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी है, भस्म के माध्यम से वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं, इसलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती होती है।

सावन में शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा में अब आगे बढ़ते हैं उन धामों की ओर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। देखिये, मध्य प्रदेश के ओंकार स्वरूप महादेव से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान बाबा केदारनाथ तक और भीमा शंकर से लेकर मोक्षदायिनी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी महिमा है, जहां हर कदम पर महसूस होती है महादेव की अनंत शक्ति।

पावन धरा पर ही नर्मदा के खूबसूरत आंचल की ओर जब बढ़ते हैं, तब खंडवा जिले में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम जहाँ पूरी पहाड़ी ही ओम के आकार में ढली हुई है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर दो रूपों में स्थापित हुए, एक नर्मदा के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर और दूसरे तट पर स्थित अमलेश्वर। हालांकि यद्यपि ये दो अलग अलग मंदिर है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए इसी ओमकारेश्वर धाम में ही पधारते हैं। इसीलिए हर रात यहाँ महादेव और माता पार्वती के लिए चौपड़ सजाए जाते हैं और शयन आरती की जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पासों की स्थिति बदली हुई मिलती है। सावन के महीने में ओमकारेश्वर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर मांधाता पर्वत की लगभग 7 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। हिमालय के केदारखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हर शिव भक्त की सबसे बड़ी साधना और अंतिम इच्छा है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3,500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव केदारखंड आ गए और भैंसों का रूप धारण कर मवेशियों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर यहां त्रिकोणीय शिला के रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहां साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की घनी और हरी भरी वादियों के दरमियान घने जंगलों और कलकल बहते झरनों के बीच विराजमान है 6ठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर। ये पावन धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर के अत्याचार से जब सृष्टि कांप उठी, तब महादेव ने इस स्थान पर उसका संहार कर भक्तों को अभय दान दिया था। मान्यता है कि युद्ध के बाद जब महादेव के शरीर से पसीना निकला, उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें भीमाशंकर कहा गया।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसे सबसे प्राचीन शहर के साथ साथ मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, ऐसी अविनाशी काशी के हृदय में विराजमान है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। गंगा के पावन तट पर बसी काशी के बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है और इसका संरक्षण स्वयं महादेव करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया ताकि वे सदा अपने भक्तों के बीच रह सके। मान्यता तो यह भी है कि प्रलय के समय भी काशी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और मोक्ष की अनंत परंपरा का प्रतीक है। इसलिए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं।
1: 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिव्य धाम, लेकिन हर धाम में बसती है एक ही आस्था, महादेव पर अटूट विश्वास की। कहीं सोमनाथ में चंद्रमा के कष्ट हरने वाले शिव हैं, तो कहीं केदारनाथ में पांडवों को पापों से मुक्ति देने वाले भोलेनाथ, कहीं काशी में मोक्ष के दाता विश्वनाथ हैं, तो कहीं रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराध्य हैं शिव। सावन का ये पावन महीना इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासंगम में तब्दील कर देता है।
2: देव का वो स्वरूप जिसे आरोग्य के रूप में पूजा जाता है, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के नवे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव वैद्य है, यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण की कामना लेकर उनके धाम पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा का संबंध लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके सिरों को वापस जोड़ दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ बैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग भी दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस शिवलिंग को लंका ले जाते समय कहीं रखना नहीं, पर ऐसा हो नहीं सका। कुछ समय के लिए एक ग्वाले को उसे शिवलिंग सौंपना पड़ा। उसके बाद रावण दोबारा शिवलिंग उठा नहीं सका और यही शिवलिंग आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सावन के पावन महीने में तो बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है, जब लाखों कांवड़िए गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में इन दिनों बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है, क्योंकि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर महादेव की महिमा भी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। शिव के इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के 3 छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस धाम का नाम भी त्र्यंबकेश्वर यानी 3 स्वरूपों वाले ईश्वर पर पड़ा।
3: ये मंदिर त्र्यंबकेश्वर मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों मिलके यहाँ पे इस मंदिर में आपको शिवलिंग रूप में मिलेंगे। हर जगह शिवलिंग लिंग ऊपर होती है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ तीनों लिंग मिलते हैं और उसी के अंदर से पानी आते रहते हैं, गंगा जल।
2: जितना पावन महादेव का ये धाम है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा ने यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर दिया। तब भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। सावन के पावन महीने में त्र्यंबकेश्वर धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। अब दर्शन कीजिए भगवान शिव के ऐसे धाम का, जहां महादेव को नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अरब सागर के तट के पास मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के अधिपति नागेश्वर के रूप में विराजमान है। तो साल के 12 महीने नागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और उसकी पत्नी दारुका अपने वन में अत्याचार करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय नामक वैश्य को बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्त ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, दारुक का अहंकार खत्म किया और अपने भक्तों की रक्षा। तभी से ये धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और जीवन में साहस, संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये है महादेव का ऐसा धाम जो अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव ने भक्त की श्रद्धा को अमर कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। प्राचीन शिल्प कला और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र।
4: 10 जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो अभिषेक का जो जल जाता है, कोई भी आप शिवलिंग देखेंगे या आत्मलिंग देखेंगे तो उसका जो जल है वो नॉर्थ की ओर जाता है, लेकिन खाली दो ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, एक महाकाल और एक घृष्णेश्वर, जिसका जल पूरब की ओर जाता है।
2: घृष्णेश्वर धाम धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद अहम है। विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के करीब मौजूद ये मंदिर भारतीय संस्कृति, कला और सनातन आस्था का अनोखा संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह सुदेहा और उनकी छोटी बहन घुष्मा रहती थी। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। बहन की भक्ति से ईर्ष्या कर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को मारकर उसे उसी सरोवर में फेंक दिया। घुष्मा ने अपार दुख की इस घड़ी में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से भक्त घुष्मा के नाम पर ये स्थान घुष्मेश्वर या कृष्णेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि यह सच्चे मन से की गई पूजा से पारिवारिक सुख, संतान का आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम में बसा रामेश्वरम धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम वो पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन जब हनुमान जी को देर हुई तो माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की। तभी से ये स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन के महीने में रामेश्वरम धाम में विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से पापों का शमन होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग 12 धाम, लेकिन आस्था अनन्य, भगवान शिव में अटूट विश्वास, सावन का पावन महीना इन सभी तीर्थों को भक्ति की उमंग, श्रद्धा की तरंग और सनातन परंपरा के विराट उत्सव में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: मैं तो आराम से सुनने को मिल जाऊँ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: मंगल बदल रहे हैं अपनी चाल, किस राशि की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें और कौन सी राशि होने वाली है मालामाल, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: सेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां, काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट, भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा है अनोखा अंदाज, हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश, भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने असम में बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, मानसूनी सीजन के 2 महीने ही टूट गए पिछले साल के रिकॉर्ड, खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करके लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई गई फूल मालाएं।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसे सरकारें तब याद करती हैं जब उनके सामने कोई बड़ी समस्या आन खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दमदार शख्सियत को एक बार फिर याद किया है और उसके कंधों पर सौंपी है देश के भविष्य को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आधार के आर्किटेक्ट नंदन नीलेकणी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नीलेकणी, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का जायंट माना जाता है, आईटी को लेकर देश के सामने जब कोई बड़ी चुनौती होती है या कोई लक्ष्य होता है तो सबको याद यही शख्स आते हैं। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मन में जब एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का विचार आया तो उन्हें शिद्दत से ये याद आए, यानी कि नंदन नीलेकणी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि नीलेकणी ही वो शख्स हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकते हैं।

0: जीवन अगर संकटों के घनघोर अंधियारे से घिर जाए तो तसव्वुर एक खूबसूरत दिए का होता है, क्योंकि दिया ना किसी का हबीब होता है और न ही किसी का रकीब। दिए की फितरत तो अंधेरे को चीर कर मुसीबत में फंसे इंसान को सही राह दिखाना होती है। नीट पेपर लीक की समस्या जब विकराल हुई और केंद्र सरकार को सीमलेस, स्नैगलेस और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम की दरकार हुई तो याद आया वो शख्स जिसे हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट ऑफ आधार के नाम से जाना जाता है, नंदन निलेकणी। जी हाँ, वही नंदन निलेकणी जिन्हें 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम मनमोहन सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हीं नंदन निलेकणी को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए दोष रहित, त्रुटि रहित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1: हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: किरदार अगर फूलों सा हो तो लोग क्यों ना चाहें खुशबुओं की तरह। कमाल देखिए कि जिस नंदन निलेकणी को पीएम मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए अपने अपने क्षेत्र के 6 दिग्गजों को जोड़कर बनी हाई पावर टास्क फोर्स की सदारत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें मनमोहन सिंह ने साल 2009 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का चेयरमैन बना दिया था, ताकि आधार जैसे जटिल और विशाल डिजिटल प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आज जिस 12 अंकों के जरिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बैंक से लेकर होटल्स और एयरपोर्ट तक मान्य हो चुकी है, वो इसी नंदन निलेकणी का ब्रेन चाइल्ड है। नंदन निलेकणी किस लेवल के विजनरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले ही आधार की बहुमुखी उपयोगिता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज 100% सच साबित हो रही है।
2: Well, we think this is a very beneficial number for the people of India because it's a number which has been essentially assigned to them when they come to the state voluntarily for a number. This number is a proof of identity and proof of address, and it has online authentication capabilities so that wherever they go, if they have to access some public service and that public service needs the ID, they can just put the thumb or something on the device and will verify that online. So we think it has a huge part of inclusion, because there are lots of people out there who don't have any form of ID and they're being left out of the whole process. So it's a very inclusive idea.
0: काबिल-ए-गौर है कि नंदन निलेकणी ने साल 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जिस विजनरी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली थी वो आज करीब 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की पुख्ता डिजिटल पहचान बन चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। आधार की वजह से ही आज गरीब और वंचित तबके के लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए हैं। आधार से पहले भारत में साल 2011 तक सिर्फ 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था। 2014 में ये बढ़कर 53% हो गया। 2017 आते आते 80% वयस्कों के पास बैंक खाता हो गया, जबकि 2024 तक 89% भारतीय वयस्क बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ये लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। कमाल देखिए कि 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 52 करोड़ से ज्यादा राशि जरूरतमंदों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, DBT ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी की लीकेज बंद हुई और लीकेज बंद होने की वजह से सरकार को भी 3,48,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
3: आधार KYC was sufficient to open a bank account or to get a mobile connection. And in 2014, soon after Prime Minister Modi came to power, on August 28, 2014, he launched the Jan Dhan Yojana program, which is the world's largest financial inclusion program. And more than 400 million bank accounts were opened for people. And they were able to do that very quickly because with Aadhaar eKYC, you could do an online opening of a customer account.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि आज जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुश्वारियां दूर हुई हैं या कम हुई हैं, उस डीपीआई की अवधारणा के सूत्रधार यही नंदन नीलेकणी हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो चुकी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। यूपीआई कॉन्सेप्ट को कंसीव करने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक में नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया और नंदन नीलेकणी को इसके सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। चूंकि नंदन नीलेकणी की सोच समावेशी है, मानवीय है, इसीलिए उनके हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए भी जगह होती है। यही वजह है कि साल 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई के आज करीब 56 करोड़ यूजर्स बन चुके हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि आज हिंदुस्तान में रोजाना करीब 66 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। यूपीआई के जरिए आज हर रोज करीब 86,000 करोड़ रुपयों का लेन देन होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो यूपीआई के जरिए 314 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ।
3: So 1 billion Aadhaars were reached within 7 years of the launch. On April 11, 2016, the new payment system UPI was launched. On September 5, 2016, Jio was launched. Somewhere in 2016, the RBI took a decision to launch the account aggregator network. November 8, 2016, we had the withdrawal of currency notes, which gave a huge push to digital payments. So 2014 to 16 had all these momentous events that all led to this massive transformation. So just to give an idea, India did in 9 years what would have taken 47 years by traditional means. So the financial inclusion acceleration in 9 years because of all these various initiatives, and we went from among the most unbanked countries in the world to one of the most financially included countries in the world in 9 years using technology. Similarly, the same thing happened with UPI. As I said, UPI was launched as a next generation payment system on April 11, 2016. And as late as October of 2016, it was doing only 100,000 transactions a month. And then, of course, all the events happened. And today, this is the world's largest payment system.
0: कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की जबरदस्त सफलता के पीछे नंदन नीलेकणी का बहुत बड़ा हाथ है। आम लोग इन्हें आधार के आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई सेवाओं को साकार किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग में नीलेकणी की अहम भूमिका रही है। नीलेकणी टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स यानी टैगअप की सदारत कर चुके हैं, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। नंदन नीलेकणी आर्थिक बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष रह चुके हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की सलाहकार परिषद में रहकर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी और दोष रहित परीक्षा प्रणाली के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए नंदन नीलेकणी पर अगर भरोसा किया है तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैसे भी पीएम मोदी और नंदन नीलेकणी के बीच भरोसे का रिश्ता आज का नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नंदन नीलेकणी नरेंद्र मोदी से पहली बार तब मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
2: I met him for the first time in July of 2011. At that time, I was the chairman of the Unique Identification Authority of India and building the Aadhaar ID system. I was going around the country and meeting chief ministers in every state to talk about Aadhaar and its possible uses. I was extremely impressed at that time, Chief Minister Modi, because he had an instinctive grasp of technology
4: and how it can be used. And we had a very good 90-minute session. We talked about various kinds of things, including technology.

0: 16 साल की उम्र में नीलकणी ने IIT में दाखिला लेने का संकल्प लिया था, लेकिन तब वो कर्नाटक के एक छोटे से शहर धारवाड़ में अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में धारवाड़ शहर में रहकर IIT में जाने का सपना शायद ही कोई छात्र देखता होगा, पर नीलकणी ने तो ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में IIT क्रैक करना है। धारवाड़ में रहकर उन्होंने कैसे IIT क्रैक किया और कैसे अपने पिता के एक आदेश के अवहेलना की, ये जानना बेहद दिलचस्प है।
1: बेंगलुरु के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंदन नीलकणी यूं तो बेहद संस्कारी और शीलवान इंसान हैं, लेकिन जीवन में एक बार उन्होंने अपने पिता मोहन राव नीलकणी के आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर दी थी। ये साल 1973 की बात है। तब नंदन नीलकणी की उम्र 18 साल थी और उन्होंने IIT एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। IIT क्रैक करने के बाद उनके सामने इंस्टीट्यूट और ट्रेड को लेकर कई सारे विकल्प थे। तब पिता मोहन राव ने अपने बेटे को एक आदेशात्मक टेलीग्राम भेजकर IIT मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की बात कही थी, लेकिन नंदन नीलकणी ने पिता के इस आदेश की पूरी तरह अवहेलना कर IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकल्प चुन लिया।
2: टेक्निकली आई कुड हैव जॉइंड एनी IIT एंड माय फादर सेंट मी अ टेलीग्राम व्हेन आई हैड टू गो टू चेन्नई फॉर माय इंटरव्यू सेइंग जॉइन IIT चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एज ऑफ 18 यू वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर टेल्स यू, सो आई सेड नो, आई जॉइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन IIT बॉम्बे। सो दैट्स हाउ एंड ऑफ कोर्स आई हैड, एज आई सेड, आई हैड माय कजिन्स देयर, सो आई हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर IIT बॉम्बे।
1: पिता के आदेश की अवहेलना तब 18 साल के रहे नंदन नीलकणी ने किस मन स्थिति में की, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि अगर नंदन ने पिता का आदेश मानकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना समावेशी बनाने वाला नायाब नगीना भारत को शायद नहीं मिला होता। वैसे आपको बता दें कि इंफोसिस जैसी IIT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के सह संस्थापक नंदन नीलकणी का शुरुआती जीवन कतई आसान नहीं था। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलकणी के पिता मिनर्वा मिल्स में जनरल मैनेजर के पद पर थे, लेकिन बाद के दिनों में मिनर्वा मिल्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मोहन राव को नौकरी बदलनी पड़ी। नई नौकरी बहुत ज्यादा ट्रांसफरेबल थी, लिहाजा मोहन राव को लगा कि बार बार स्थान बदलने से बेटे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, लिहाजा उन्होंने नंदन नीलकणी को कर्नाटक के ही धारवाड़ में रह रहे अपने भाई के पास भेज दिया। तब महज 12 साल के रहे नंदन नीलकणी ने अपने चाचा के घर पर रहकर 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 12 की नादान उम्र में ही माँ बाप से अलग हो जाने की वजह से नंदन नीलकणी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को गहराई से समझने का मौका मिल गया।
2: Well, my background is very ordinary. I lived in Bangalore till the age of 12, and then my father's job got into difficulties because the entire textile industry got into difficulties, and he had to keep finding new jobs time on. And therefore, he said for the stability of my education, he put me up with my uncle in a small town called Dharwad, where I went to school and my PUC. And there I learned about living with my relatives, and I learned to become independent because I was not really living with my parents.
1: धारवाड़ में अपने अंकल के साथ रहते हुए ही नंदन नीलकणी ने IIT में जाने का सपना देखा, जिसे पूरा करना कतई आसान नहीं था। दरअसल धारवाड़ जैसे छोटे शहर में ना तो IIT की कोचिंग कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान थे, ना ही साथ पढ़ने वाले बच्चों का इस तरह का कोई रुझान था।
2: Unfortunately, in those days, people from small towns didn't really go to IITs, mainly because the big cities had all the infrastructure for people to study. They had classes where kids could go from good schools and learn and prepare for the IIT entrance exams. And we didn't have any of that infrastructure in a small town like Dharwad.
1: सपने देखना युवाओं की फितरत होती है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का जज्बा और इरादा बहुत कम लोगों में होता है। संयोग से नंदन नीलकणी IIT में जाने के अपने सपने को लेकर बेहद संजीदा थे, और जब चाह प्रबल होती है तो राह वहाँ फैला कर स्वागत करती है। दरअसल तब IIT बॉम्बे से नंदन नीलकणी के कुछ कजन्स बीटेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कजन की आईटी में जाने की बेकरारी देखी तो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी टेक्स्ट बुक की अपनी किताबें उन्हें मुहैया

0: मुहैया करा दी। राह मिल गई तो चाह और मजबूत हो गई। बारूद को एक छोटी सी चिंगारी की ही तो जरूरत होती है।
1: Fortunately for me, I had cousins in Mumbai who had gone to IIT and they had the textbooks from these various classes they had taken. So they sent me those textbooks. So I would sit in Dharwad with my friends and we'd solve the problems in those textbooks. And that's how I was able to appear for the IIT entrance exam and join IIT.
0: IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद नंदन इलेकणी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत पुणे स्थित पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की। क्या आप जानते हैं कि पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए नंदन इलेकणी का इंटरव्यू और सिलेक्शन किसने किया? यहाँ उनका इंटरव्यू और सिलेक्शन नारायण मूर्ति ने किया, जो उस समय कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रमुख थे। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के दो ऐसे आईटी जीनियस की मुलाकात थी जिन्होंने आगे चलकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। हालांकि इंजीनियरिंग में दोनों का ट्रेड आईटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल था। आईटी कानपुर से 1969 में एमटेक करने वाले नारायण मूर्ति ने पहली मुलाकात में ही नंदन इलेकणी की धारदार प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए महज 3 साल साथ काम करने के बाद नारायण मूर्ति और नंदन इलेकणी ने 5 और साथियों को साथ लेकर इन्फोसिस की नींव डाल दी। आपको शायद यकीन ना हो कि जिस इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो साल 1981 में महज 10,000 रुपए के निवेश से शुरू की गई थी। नंदन इलेकणी और नारायण मूर्ति किस लेवल के विजनरी और दूरंदेशी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की अधिकांश जनता कंप्यूटर के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय दोनों ने मिलकर आईटी क्षेत्र की कंपनी स्थापित कर दी। स्थापना के 10 साल बाद तक इन्फोसिस किसी तरह सर्वाइव करती रही, लेकिन साल 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली। नंदन इलेकणी के प्रयासों से साल 1999 में नैसडेक पर लिस्ट होने वाली इन्फोसिस भारत की पहली कंपनी बनी। नैसडेक पर लिस्ट होने के तुरंत बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर गया। कंपनी का गोल्डन एज साल 2002 में तब आया जब नंदन इलेकणी इसके CEO बने। बतौर CEO उनके 5 साल के कार्यकाल में कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब तक पहुँच गयी। नंदन इलेकणी सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अग्रदूत नहीं हैं, परोपकार और मानव सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान अद्भुत और अतुल्य रहा है। साल 2017 में इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर गिविंग प्लेज के तहत अपनी आधी संपत्ति मानवता की सेवा के लिए दान करने का फैसला लिया। जिस IIT बॉम्बे के नंदन इलेकणी एल्यूमिनाई हैं, उसके हॉस्टल्स की दशा में सुधार और शोध कार्यों के लिए साल 2023 में इन्होंने 315 करोड़ रुपए का दान दिया। इसी संस्थान के लिए वो पहले 85 करोड़ का दान भी दे चुके थे। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा और संरक्षा के लिए नंदन इलेकणी 50 करोड़ का डोनेशन भी दे चुके हैं। साफ है कि नंदन इलेकणी सिर्फ आईटी जायंट ही नहीं बल्कि सनातन की समावेशी संस्कृति के युगीन संवाहक भी हैं।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने नंदन इलेकणी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना और समझा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के बेमिसाल सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
4: continue to face political pressure to reach a peace deal,
3: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: राजधानी दिल्ली के पीएचडी हाउस में डॉक्टर राही मासूम रजा के जन्म शताब्दी समारोह का औपचारिक शुभारंभ हो गया। तस्वीरें देखिए, साल भर चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सार्वजनिक माटी न्यास की ओर से किया जा रहा है। डॉक्टर राही मासूम रजा को बीआर चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत के अमर संवादों और आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिलेख सादा कागज के अलावा कटरा भी आरजू जैसी कालजाई उपन्यासों के लिए याद किया जाता है। समारोह के दौरान तमाम वक्ताओं ने राही के लेखन को उनकी मानवता, करुणा और सामंजस्य के लिए याद किया। साथ ही कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और शैक्षणिक कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई।
10: मैं अलीगढ़ जब पहुंचा तो मुझे मासूम राजा साहब एक
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
11: Swing and a foul out of play off to the left.
3: Big 12 Radio.
12: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
3: Talk Sport.
13: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
3: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
5: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: खबरें
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स, Sage University, transforming your passion into profession.
9: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां, काशी, उज्जैन, देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट, भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा है अनोखा अंदाज, हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश, बोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, बारिश, भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल्थ टेक्निक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं? वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: J-20 चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शिगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है, हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: चीन के बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा, रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रेडार काम करते हैं। एक रेडार एल बैंड पर काम करता है, एक रेडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रेडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहां विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है जो भले ही 5th जनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकम इन आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं, यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं। तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफाल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आमतौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है, वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
0: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
4: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
3: Big 12 Radio.
5: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking down.
3: And talk sports.
6: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
3: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
11: मौसम खुलते ही अमरनाथ यात्रा का एक बार फिर से शुभारंभ हो चुका है। आज जम्मू से 3,000 से ज्यादा तीर्थयात्री रवाना किए गए, हालांकि बालटाल से कल से ही यात्रा शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए।

मौसम साफ होने के साथ ही बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आंशिक रूप से यातायात बहाल किया गया है, इसलिए आज सुबह जम्मू से श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया गया। भारी बारिश के कारण पिछले शुक्रवार को बालटाल मार्ग से यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। बालटाल मार्ग पर बारिश नहीं हुई, बादल छाए रहे, लेकिन मौसम में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने सुबह बालटाल मार्ग से श्रद्धालुओं को रवाना किया। तीन जुलाई से शुरू हुई यात्रा के लिए अब तक करीब 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं। पहलगाम मार्ग पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसलिए यात्रा को फिलहाल आंशिक रूप से चालू किया गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज तड़के 3,886 श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश, लैंडस्लाइड और यात्रा मार्गों पर बिगड़ती स्थिति के कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया था। विशेष रूप से अनंतनाग जिले के 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग पर सुरक्षा और मौसम को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। वैसे बीआरओ की टीमें खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद यातायात बहाली में लगी हुई हैं। कई जगहों से रास्तों पर आए मलबों को हटा दिया गया है। सड़कों की मरम्मत करने के लिए कई टीमों को इलाके में तैनात किया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा का आज 31वां दिन है और अभी यात्रा में करीब 1 महीने का समय बचा हुआ है। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न होगी, इसलिए सुरक्षा के इंतजामों में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। सुबह जब जम्मू से यात्रियों को रवाना किया गया तो पूरे काफिले को पर्याप्त सुरक्षा दी गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे। पहाड़ों पर सुरक्षा बलों की विशेष ड्यूटी लगाई गई थी ताकि किसी भी तरीके से कोई कोताही न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
1: है। Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
1: Talk Sport.
4: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all wrong.
1: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां, काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट, भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा है अनोखा अंदाज, हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश, भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने असम में बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोग के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, मानसूनी सीजन के 2 महीने ही टूट गए पिछले साल के रिकॉर्ड, खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करके लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई गई फूलमालाएं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: कल सावन का पहला सोमवार, एक बार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ केदारनाथ धाम। मानसून की चुनौतियों पर आस्था देखी भारी, लंबे समय बाद मंदिर परिसर में बड़ी हलचल, बर्फ से गुलजार देखिए रुद्रप्रयाग की पहाड़ी, केदारनाथ में बड़ी कांवड़ यात्रियों की आवाजाही। केदार नगरी की प्राकृतिक सुंदरता बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, भक्त बड़े ही उत्साह के साथ कर रहे हैं दर्शन पूजन। मंदिर में तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए खास इंतजाम। सावन के पहले सोमवार को लेकर देश भर में तैयारियां पूरी, झांसी के श्री सिद्धेश्वर महापीठ में लगा आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान सिद्धेश्वर का जलाभिषेक, महादेव से कर रहे हैं सुख समृद्धि की कामना। 20 साल में बनकर तैयार हुआ सिद्धेश्वर महापीठ, हर महीने सिर्फ पुष्य नक्षत्र में हुआ निर्माण। श्री यंत्र की आकृति पर बना है सिद्धेश्वर महापीठ, वास्तुकला का अद्भुत नजारा। सावन के शुभ दिनों में दूर दूर से सिद्धेश्वर महापीठ आते हैं श्रद्धालु, मंदिर आस्था अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का मुख्य केंद्र। देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में प्रशासन की ओर से किया गया शिव भक्तों का स्वागत, कावड़ियों की सेवा में जुटा प्रशासन, हरिद्वार में डीएम और एसएसपी की ओर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। हर की पौड़ी मनसा देवी पर प्रशासन की विशेष नजर, कावड़ यात्रा की सुरक्षा हाईटेक, 10 ड्रोन, 500 से ज्यादा सीसीटीवी की निगरानी। अर्की पौड़ी से अब तक 50 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर हुए हैं रवाना, कांवड़ शिविरों में पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम। हरिद्वार से आई शानदार तस्वीरें, कांवड़ यात्रा में दिखा खजब का उत्साह। 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, कांवड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बागपत से आए 26 कांवड़िए ले जा रहे हैं तिरंगा कांवड़, देशभक्ति की भावना और शहीदों के सम्मान में निकली यात्रा। हरिद्वार में जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का संयुक्त प्रयास लाया रंग, गंगा में डूब रहे 3 कांवड़ियों का सफल रेस्क्यू। गुजरात के गीर में सड़क पर देखे 12 शेर, लोगों ने मोबाइल में कैद किया। शिव अमरनाथ यात्रा का 31वां दिन आज, श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से भेजा जा रहा है धाम। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के कर चुके हैं दर्शन, यात्रियों में पूरा उत्साह। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 3,886 श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना हुआ। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात आंशिक रूप से बहाल। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकूट से गुजरा, सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं की यात्रा सुचारू रूप से जारी। प्रशासन यात्रा मार्ग पर मौसम और ट्रैक की स्थिति की लगातार कर रहा है मॉनिटरिंग। सीकर के खाटू श्याम के दरबार में पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ऋषिकेश में तैयार हुआ बजरंग सेतु, जल्द पर्यटकों के लिए होगा शुभारंभ। बजरंग सेतु पर एंट्री फीस आता है बच्चों के लिए 50, बड़ों के लिए 100 रुपए। चमोली में फूलों की घाटी में टूटा रिकॉर्ड, 2 महीने में पहुंचे 16,000 से ज्यादा पर्यटक। चमोली में सैलानी कर रहे हैं रंग बिरंगे फूलों से सजी घाटी का दीदार। कॉमनवेल्थ खेलों का आज आखिरी दिन, हाइड्रो में होने वाले आधिकारिक समारोह से होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को 9 पदकों की उम्मीद, ओलंपिकियन अवतार सिंह चूड़ू में दिला सकते हैं पदक। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ऑस्ट्रेलिया 62 गोल्ड के साथ टॉप पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम, शनिवार को 8 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में 4th पायदान पाया। पुरुष मुक्केबाजी के 60 किलो वर्ग में भारत ने झटका गोल्ड, बॉक्सर सचिन सिवाच ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम से एथलीट की वापसी शुरू हुई, कई पदक विजेता भारतीय वेटलिफ्टर एथलीट्स दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। स्वर्ण पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू और लवप्रीत सिंह सहित कई खिलाड़ी स्वदेश लौटे। ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ियों के स्वागत करने के लिए जबरदस्त तैयारियां। खिलाड़ियों ने CWG में प्रदर्शन पर जाहिर की खुशी, बोले अब एशियाई और ओलंपिक खेलों में देश का परचम लहराना लक्ष्य। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल लेकर दिल्ली पहुंचे बॉक्सर जादूमणि सिंह का जबरदस्त स्वागत। भारतीय शटर तन्वी शर्मा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ताइपे सुपर 300 का खिताब अपने नाम किया। 17 साल की तन्वी ने पहला वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम कर लिया, सीधे मुकाबले में वियतनाम को मात दी। सबसे कम उम्र में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बन गई तन्वी। भारत और मलेशिया के अंडर 21 पुरुष हॉकी टीमों के बीच बेंगलुरु में होगा मुकाबला, 7 से 13 अगस्त के बीच खेली जाएगी सीरीज। भारत और मलेशिया की टीमों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले मिलेगा अभ्यास करने का मौका। दिल्ली NCR में एक बार फिर से बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली के मयूर विहार समेत कई इलाकों में हुई तेज बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बरसे बदरा, गर्मी से लोगों को मिली राहत। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गुजरात के सूरत में जलजमाव से ट्रैफिक थमा, हाईवे पर भी सैलाब। श्रीनगर में बारिश के बीच सुहाना हुआ मौसम, हल्की फुहारों के बीच लोग उठा रहे हैं पर्यटन का लुत्फ। श्रीनगर की डल झील में भी दिख रहा है खूबसूरत नजारा, लेक किनारे वुड हाउस में रह रहे हैं लोग। बारिश से पूरी तरीके से भीगी हैं श्रीनगर की सड़कें, नहाए हुए से नजर आ रहे हैं पेड़ पौधे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खेतों और गांवों में भर गया पानी। असम के बाढ़ प्रभावित जिले शिवसागर पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा, लोगों की मदद की। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, साफापुरा इलाके में कई घरों में भर गया पानी। गांधरबल में प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया, नुकसान का आकलन कर रही है टीम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद रास्ते को किया जा रहा है साफ, बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी। लद्दाख के करगिल में भारी बारिश से चिकतान और समराह इलाके में अचानक आई बाढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी, 100 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। देशभर में 28,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के शामिल होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बताया भारत की असली ताकत, नशे से दूर रहने का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने नशे को बताया राष्ट्र की शक्ति कमजोर करने वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने नशा कारोबारियों पर सख्ती बरतने की बात कही, 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन भी नशा मुक्त में कर रहे हैं सहयोग। बेतिया के एक शख्स ने पेश की बहादुरी की मिसाल, तालाब में डूब रहे बच्चे को बाहर निकाला। झांसी के ईमानदार सिपाही कमलेश श्रीवास्तव को दी गई शानदार विदाई, नियम तोड़ने पर अधिकारियों की गाड़ियों पर भी कर देते थे चालान। वुडन सिटी सहारनपुर में लकड़ी से जुड़े कारीगरों और कारोबारियों के आए अच्छे दिन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से अच्छी खासी हो रही है कमाई। सहारनपुर की काष्ठ कला को नई तकनीक, आर्थिक मदद और ग्लोबल मार्केट से जोड़ना मकसद। दिल्ली में धड़ के 4:14 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, 2.9 तीव्रता। चीन में नादम फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ, किंग हाई प्रांत में दिखी मंगोलियाई संस्कृति की झलक। लोक नृत्य और पारंपरिक गीतों से सजाए आयोजन, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। तीन दिन तक चलेगा सांस्कृतिक महोत्सव, रोमांचक खेलों का आयोजन। घास के मैदानों में गूंजे उत्सव के रंग, 3 दिवसीय आयोजन, कई प्रारंभिक पारंपरिक प्रतियोगिताएं देखने को मिली। मैदानों में जुटे कलाकार और प्रतिभागी, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत मेल। बोलिविया में ग्रेट पावर फेस्टिवल की धूम देखने को मिली, सड़क पर रंग बिरंगी पोशाक में उतरे कलाकार। लापास की सड़कों पर उतरे हजारों डांसर, संगीत और नृत्य से गूंजा पूरा शहर।

0: स्टेट पावर महोत्सव में उमड़ा लोगों का सैलाब, हवा में उड़ा रंग और गुलाल। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने बिखेरा रंग, संस्कृति और विरासत का शानदार प्रदर्शन। इसराइल में 42 डिग्री तक पहुंच गया तापमान, हीटवेव से राहत पाने के लिए पानी में उतरे लोग। टेल अवीव के समुद्र तटों पर उमड़ी भीड़, ठंडे पानी में मस्ती करते हुए नजर आए बच्चे और पर्यटक। यरूशलम में स्प्लैश पैड पर बच्चों की मस्ती। इराक के करबला में जुटे लाखों शिया जायरीन, तपती गर्मी में किए गए राहत के इंतजाम। इमाम हुसैन की मजार पर पहुंचे जायरीन। इनर मंगोलिया में विदेशी पर्यटकों की बढ़ी संख्या, रेगिस्तान में मिल रहा है अनोखा अनुभव। चीन को उत्तरी इनर मंगोलिया क्षेत्र में मिल रहा है रोमांच का अनोखा अनुभव। इनर मंगोलिया के विदेशी पर्यटकों में 176% का उछाल, जुलाई से अब तक 16,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे। स्नो स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी, अनोखा रोलर कोस्टर भी बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। एरन हॉट में विदेशी पर्यटक स्थानीय संस्कृति का ले रहे हैं आनंद। बोस्निया के गांव में बसा प्राचीन रोम, रोमन फेस्टिवल में देखी ऐतिहासिक झलक। 200 ग्रामीणों की मेहनत से तैयार हुआ ऐतिहासिक रोमन महोत्सव, 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने 72 अलग अलग जोन। रोमन फेस्टिवल में देखी प्राचीन कला, संस्कृति और युद्ध कौशल की झलक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने पहना रोमन परिधान। फायर परफॉर्मेंस, रोमन सैनिकों की परेड, घुड़सवारी और प्राचीन शिल्प कला ने फेस्टिवल को बनाया खास, बड़ी संख्या में लोगों ने उत्सव में भाग लिया। बोस्निया में विरासत को पर्यटन से जोड़ने वाली कोशिश, उत्सव में ग्लैडिएटर मुकाबलों का मंचन। चीन के स्काई स्कूल बस बना मुख्य सहारा, 3 घंटे का सफर अब आधे घंटे में। चीन के यूनान प्रांत में छात्रों के लिए शुरू की गई स्काई स्कूल बस 288 मीटर ऊंचा एलिवेटर बना पहाड़ों की नई लाइफलाइन। तीन गुना बड़ी यात्रियों की क्षमता, अब हर घंटे 1200 लोग कर सकेंगे सफर। चीन के जियांगशी प्रांत में शानदार लाइट शो, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना पर समारोह। बीम ट्रैक्टरों से जीवंत हुआ नानचांग विद्रोह इतिहास।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: लेस इंटरप्शन मोर लिसनिंग With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और आखिर में बात करेंगे मौसम की। दिल्ली NCR में मौसम सुहाना बना हुआ है और उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि इस हफ्ते ऐसी ही मौसम रहेगा। पूरे देश में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: Рим Джим Париж. कभी बादलों के बीच से निकलती धूप, बादलों की आवाजाही के बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलती रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले पूरे हफ्ते मौसम सुहावना बना रहेगा। आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकांश दिनों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलते रहने की संभावना है। कुल मिलाकर दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए आने वाले सप्ताह का मौसम राहत भरा रहने वाला है। अलनीनो के बावजूद मॉनसून भारत में झूमकर बरस रहा है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार और ओडिशा में 5 अगस्त के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से मॉनसून लगातार मजबूत बना हुआ है, जिससे देश के करीब करीब हर इलाके में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने केरल और गुजरात के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अत्यधिक सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आईएमडी के अनुसार केरल के अलपुझा, एर्नाकुलम, इडुकी, कोटायम और पथानम थिट्टा जिलों में गरज चमक के साथ लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की दर से भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह गुजरात के अहमदाबाद, आनंद, अरावली, भरूच, भावनगर, बोटाद, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, मेहसाणा, मोरबी, पाटन, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और वडोदरा समेत कई जिलों में भी इसी प्रकार का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नंदुरबार और असम के कछार, जोरहाट और लखीमपुर जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: मंगल बदल रहे हैं अपनी चाल, किस राशि की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें और कौन सी राशि होने वाली है मालामाल, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
11: Sage University, transforming your passion into profession.
12: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां, काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट, भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा है अनोखा अंदाज, हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश, भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद नजर आया जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए उमड़े श्रद्धालु, बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने असम में बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, मानसूनी सीजन के 2 महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड, खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई फूल मालाएं।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास शो में बात होने जा रही है मंगल के राशि परिवर्तन और सावन के पहले सोमवार की। सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका आप सभी की राशियों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। इसके अलावा सावन का पहला सोमवार है, इस दिन कैसे पूजा उपासना करें ताकि शिव जी की कृपा आप सभी पर बरसे, इस शो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो आप कोशिश करिए गुड़ मिला हुआ जल नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ाइए और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। अगर आप नियमित रूप से गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाकर कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करेंगे तो कर्ज से छुटकारा आपको जल्दी मिलेगा।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कि 3 अगस्त 2026 यानी सोमवार का पंचांग क्या है।
1: 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात के 10:54 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात के 10 बजे तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है और किस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं।
1: जी देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि मंगल अपनी राशि बदल रहे हैं और मंगल का ये राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर और देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेगा। मंगल के राशि परिवर्तन की स्थिति क्या है। मंगल अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान थे, अब मंगल 2 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का मिथुन राशि में जाना ये स्थिति कुल मिलाकर मध्यम मानी जाती है, क्योंकि मिथुन के मंगल को बहुत अच्छा मंगल नहीं कहते। सिचुएशन मंगल की एवरेज रहेगी और मंगल मिथुन में सामान्यतः थोड़े कमजोर वाले हिस्से में होते हैं, तो मंगल की ये कमजोर स्थिति 18 सितंबर तक बनी रहेगी। मंगल का मिथुन में जाना बहुत अच्छी सूचना नहीं है। इस स्थिति में मंगल लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे, लोगों के जिंदगी में मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी।
0: और चलिए अब वक्त हो गया है दैनिक राशिफल के बारे में जानने का। पंडित जी से जानेंगे कि मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, करियर में आपके समस्या हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान दें, चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है।
1: देखिए, मंगल जो है ना, वो उपद्रव का, उत्पात का, निरंकुशता का स्वामी है। तो मंगल का राशि परिवर्तन राजनीति पर और लोकतंत्र पर बड़ा गहरा असर डालता है। मंगल के राशि परिवर्तन के समय मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में आ जाएंगे और मंगल शनि का केंद्र में एक दूसरे से आना ये बहुत अच्छा नहीं है। ये समय दुनिया भर में अशांति फैला सकता है। भयंकर दुर्घटनाएं, वायु की राशि में मंगल है तो वायु की दुर्घटनाएं, ट्रेन एक्सीडेंट और विस्फोट, एक्सप्लोजन और आतंकवादी घटनाएं जैसी स्थिति बन सकती है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल मिथुन में ही बैठे हुए हैं, इसलिए भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है, बेवजह की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लोगों का प्रदर्शन, लोगों का प्रोटेस्ट ज्यादा हो सकता है और जनता असंतुष्ट होगी तो आंतरिक अशांति फैलेगी। राजनैतिक रूप से बड़े पदों से लोगों को हटना पड़ेगा और राजनैतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है। जो तटीय इलाके हैं, समुद्र तट के इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, जैसे मुंबई है, उड़ीसा का क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, इन जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं से समस्या हो सकती है। यानी मंगल का ये राशि परिवर्तन एक तरफ प्राकृतिक आपदा दिखा रहा है और दूसरे तरफ ये भी दिखा रहा है कि देश में बेवजह के विवाद और बेवजह के उपद्रव बढ़ सकते हैं।
0: तो दुनिया पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या कुछ असर पड़ने वाला है, ये पंडित जी से आपने जाना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, आपकी पारिवारिक उलझने इस समय सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सवाल लेने का। पंडित जी, आज का सबसे पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
1: जी, आज का पहला प्रश्न प्रिया रस्तोगी ने हमें जयपुर से लिखा है। 25 मई 1983 का जन्म है, 10:04 प्रातः संभल उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि क्या मेरे जीवन में मुझे कोई सरकारी उच्च पद मिल सकेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रिया जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और तुला राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से कानून के क्षेत्र में, प्रशासन में या राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिलने की संभावना साल 2027 के आखिरी में या 2028 में दिखाई दे रही है। या तो कानून के क्षेत्र में उच्च पद मिलेगा या राजनीति में मिलेगा। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए, 14-15 रत्ती का मूंगा, चांदी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का दूसरा सवाल लेने का। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
1: जी, अब अगला प्रश्न श्लोक गुप्ता ने हमें इंदौर से लिखा है। 23 नवंबर 2009 का जन्म है, 2:42 दोपहर में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं अभी और मुझे किस तरह के करियर में सफलता मिलेगी। श्लोक आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और मकर राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए श्लोक, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं तो उसमें बेहतर सफलता की संभावनाएं बढ़िया हैं। अच्छे कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करके तकनीकी क्षेत्र में एक बेहतर करियर बना सकेंगे। एकाग्रता आपकी बेहतर हो, करियर में आपको सफलता मिले, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है अगला सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं कि मंगल का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है।
1: देखिए मंगल का जो राशि परिवर्तन है तकरीबन 1.5 महीने तक देश दुनिया पर और राशियों पर प्रभाव डालता है। तो आपको बताते हैं ब्रीफली मोटे तौर पर कि अलग अलग राशियों पर मंगल के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखा सकता है। मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन शुभ है। इनके तमाम रुके हुए काम, इनके महत्वपूर्ण काम इस समय पूरे होंगे और इनको इस समय सफलताएं बहुत मिलेंगी, लेकिन इनको जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। बाकी मेष, सिंह, कन्या और मकर के लिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। वृषभ, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो वृष, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। करियर में किसी तरह का कोई रिस्क, कोई जोखिम इस समय नहीं लेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा नकारात्मक है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए। इनको अपने पारिवारिक जीवन का, अपने करियर का बहुत ध्यान देना होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन वाले दुर्घटना से बचें। कोई सर्जरी या कोई शल्य चिकित्सा हो सकती है और मुकदमेबाजी आदि की नौबत आ सकती है। तो 12 राशियों में आप अगर देखें तो मेष, सिंह, कन्या और मकर के लिए राशि परिवर्तन सबसे अच्छा है। कर्क, वृश्चिक, मीन के लिए सबसे बुरा है और बाकियों के लिए मध्यम है, लेकिन कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन 8 राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है।
0: तो ये तो हमने जाना कि मंगल के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है। आप पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचें, धन की हानि हो सकती है, चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो हमने मंगल की राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में तो जान लिया, वक्त हो चला है ये जानने का कि अगर आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं।
1: देखिए, 12 राशियों में केवल 4 राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल है, बाकी 8 राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है। क्या उपाय करें इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए? मंगल का ये राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा नकारात्मक है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए। अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है तो इस समय रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, इस स्तुति को सुबह शाम पढ़िए। संभव हो तो नियमित रूप से गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करिएगा। जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, अगर ऐसे लोग लाल रंग की चीजों का प्रयोग करें तो वो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं।
0: और चलिए अब बात कर लेते हैं सावन के पहले सोमवार के बारे में, जो कि 3 अगस्त को है। जान लेते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर क्या कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर बरसे।
1: देखिए, पूरे सावन आप पूजा करें या ना करें, समय ना निकाल पाएं, लेकिन सावन का हर सोमवार बहुत मूल्यवान है। अगर आप सावन के पहले सोमवार पर व्रत रखते हैं, पूजा उपासना करते हैं, शिव जी का मंत्र जप, ध्यान या स्तुति करते हैं, तो संपूर्ण सावन का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है, क्या उपाय करेंगे? प्रयास करें कि शिव जी की पूजा या तो 12 बजे के पहले प्रातः काल कर लें, या शिव जी की पूजा प्रदोष काल में सावन के सोमवार पर करिएगा। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, इस समय में शिव जी की पूजा करिए। इस समय शिवलिंग पर बेल पत्र और जल की धारा आपको अर्पित करना है, और इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा, और इसके पश्चात शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है, और इसके बाद शिव जी से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करिएगा। तो सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करें, और सावन के सोमवार में संध्या में अंधेरा हो जाने के बाद एक घी का दीपक शिव मंदिर में जरूर जला दें। अगर आप सावन के पहले सोमवार पर ऐसा करेंगे तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी।
0: और चलिए, अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के दैनिक राशि फल के बारे में जानने का।
1: मकर राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, दूसरों के मामले में ना पड़ें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर मेल करके आप अपने सवाल पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई दुविधा है इस मेल आईडी पर अपना प्रश्न आप पंडित जी को भेज सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं।
1: जी अगला प्रश्न तुलिका कुमारी ने बिहार से लिखा है। 12 दिसंबर 1994 का जन्म है, 11 बजे सवेरे मुजफ्फरपुर बिहार। ये पूछ रही हैं कि मैं संतान के लिए कंसीव कब कर पाऊंगी, संतान के योग कब तक हैं, क्या मेरी कुंडली में कोई मेडिकल दिक्कत की सूचना भी है। तुलिका जी आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए ज्योतिष के हिसाब से मेडिकल की कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं लग रही है, थोड़ा हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर ठीक कर देंगे, कोई बहुत जटिल समस्या आपकी कुंडली में नहीं बनती है। और संतान होने का समय, कंसीव करने का समय चल रहा है, आपके पास इस साल के अगस्त से लेकर और फरवरी तक का बेहतर समय है जिस समय में आप गर्भ धारण कर सकती हैं। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का, कृष्ण मंत्र का जप करें, संतान के लिए प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से जानने का कि आज का आखिरी सवाल पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
1: जी आज का अंतिम प्रश्न रश्मि ने देहरादून से हमें लिखा है। 10 मार्च सन 2000 का जन्म है, 9:05 सवेरे देहरादून उत्तराखंड। ये कह रही हैं कि मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है, मुझे लगातार सोचने की, लगातार चिंता करने की आदत है और मेंटली मैं परेशान रहती हूँ, इसलिए स्वास्थ्य भी मेरा, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी मेंटल कंडीशन बेहतर हो और मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। रश्मि आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है। चंद्र शनि का जो कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, ये बहुत साफ तौर से दिखाता है कि बेवजह की तनाव और चिंता की आदत है आपको, और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सर में दर्द वगैरह भी आपको होता होगा या सर में भारीपन हमेशा बना रहता होगा। आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 3 अगस्त को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: 3 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, दूर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: सामान्यतः कोई मूर्ति देवी देवता की अगर खंडित हो जाती है तो हम उसकी पूजा नहीं करते, उसे हटा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। क्या शिवलिंग के खंडित होने के बावजूद भी उसकी पूजा की जा सकती है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? शिवलिंग पर यह नियम लागू क्यों नहीं होता? देखिए, शिवलिंग जो है वो शिव जी का निराकार स्वरूप है। इसके खंडित होने के बावजूद इसकी ऊर्जा पर, इसकी शुभता पर, पॉजिटिविटी पर असर नहीं पड़ता। इसीलिए शिवलिंग के खंडित होने पर भी इसकी पूजा की जा सकती है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जानने का कि 3 अगस्त 2026 का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 3 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब जान लेते हैं कि आज की आपकी गुड लक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कौन से मंत्र का जप करें जिससे उन्हें लाभ होगा। आज की गुड लक राशि है तुला। आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करना चाहिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में हर प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होगी।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पंडित जी से जान लेते हैं कि आज कौन से महा उपाय करने चाहिए।
0: जी,

0: मंत्र पढ़ते हैं, उपासना करते हैं, उस समय मन में खराब बातें आती हैं, बुरे विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं, तो क्या करेंगे? स्नान करके या अच्छी तरह हाथ पैर धो करके ही पूजा करिएगा। पूजा की शुरुआत करने के पहले जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करें कि आपका मन शुद्ध हो। इसके बाद पूजा आरंभ करिएगा, आपके मन में बुरे और नकारात्मक विचार पूजा के दौरान नहीं आएंगे।
1: इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: मौसम खुलते ही अमरनाथ यात्रा का एक बार फिर से शुभारंभ हो चुका है। आज जम्मू से 3,000 से ज्यादा तीर्थयात्री रवाना किए गए। हालांकि बालटाल से कल से ही यात्रा शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए।

0: मौसम साफ होने के साथ ही बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आंशिक रूप से यातायात बहाल किया गया है, इसलिए आज सुबह जम्मू से श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया गया। भारी बारिश के कारण पिछले शुक्रवार को बालटाल मार्ग से यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। बालटाल मार्ग पर बारिश नहीं हुई, बादल छाए रहे, लेकिन मौसम में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने सुबह बालटाल मार्ग से श्रद्धालुओं को रवाना किया। तीन जुलाई से शुरू हुई यात्रा के लिए अब तक करीब 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं। पहलगाम मार्ग पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसलिए यात्रा को फिलहाल आंशिक रूप से चालू किया गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज तड़के 3,886 श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश, लैंडस्लाइड और यात्रा मार्गों पर बिगड़ती स्थिति के कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया था। विशेष रूप से अनंतनाग जिले के 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग पर सुरक्षा और मौसम को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। वैसे बीआरओ की टीमें खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद यातायात बहाली में लगी हुई हैं। कई जगहों से रास्तों पर आए मलबों को हटा दिया गया है। सड़कों की मरम्मत करने के लिए कई टीमों को इलाके में तैनात किया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा का आज 31वां दिन है और अभी यात्रा में करीब 1 महीने का समय बचा हुआ है। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न होगी, इसलिए सुरक्षा के इंतजामों में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। सुबह जब जम्मू से यात्रियों को रवाना किया गया तो पूरे काफिले को पर्याप्त सुरक्षा दी गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे। पहाड़ों पर सुरक्षा बलों की विशेष ड्यूटी लगाई गई थी ताकि किसी भी तरीके से कोई कोताही न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश टुडे।
1: कल सावन का पहला सोमवार है जिसको लेकर मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में भक्त शिवालय पहुंचेंगे और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। कांवड़िया भी इस सोमवार को शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे, इसलिए जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। विशेष व्यवस्थाएं की गई। हरिद्वार में तो प्रशासन ने उनका सम्मान पुष्प वर्षा से किया और फूड पैकेट्स और पानी की बॉटल्स भी दिए।

0: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इसी महीने का हर सोमवार खास होता है, लेकिन पहला सोमवार सबसे अधिक शुभ माना जाता है। कल यानी 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने और उनका अभिषेक करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही सुख शांति और तरक्की का आशीर्वाद मिलता है। सावन के पहले सोमवार को देखते हुए शिवालयों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि कल हर शिवालय में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में अभी से खास रौनक दिखने लगी है। रविवार के होते हुए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। सावन का महीना है तो कांवड़ यात्रा भी पूरे धूमधाम से चल रही है। महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लगातार यहां पर कांवड़िए पहुंच रहे हैं। दरअसल सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिससे विष निकला था, जिसका पान भगवान शंकर ने किया था और वह नीलकंठ कहलाए थे। इस वजह से उनके शरीर का ताप बढ़ गया था, तब देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया था और तब से ही यही परंपरा चली आ रही है। और तभी से ही भक्त सावन के महीने में भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में सोमवार का खास महत्व माना जाता है।
1: भगवान शिव को जल से, दूध से और इच्छु रस से जैसी जिसकी कामना होती है उसके अनुरूप भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं। निश्चित रूप से जब श्रावण मास आता है तो शिव भक्त जो है भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं और आकर जो है महाकालेश्वर स्वयं का दर्शन करते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं।
0: देश के कई इलाकों में कांवड़ यात्रा में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रयागराज के संगम से गंगा जल लेकर लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से गुजरते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने इस साल भी नेशनल हाईवे 19 यानी प्रयागराज से काशी तक के लिए एक लेन पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी है, जबकि दूसरी लेन से गाड़ियों की आवाजाही कराई जाएगी। ये व्यवस्था पूरे सावन माह तक प्रभावी रहेगी। भदोही जिले के अलग अलग इलाके से कांवड़िये जल लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए जगह जगह विशेष इंतजाम किए गए हैं, शिविर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, व्यवस्थित और सकुशल संपन्न हो।
2: ये जो हमारा नेशनल हाईवे 9 है, इसकी उत्तरी लेन को पूर्ण रूप में जो कांवड़ यात्री हैं उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है और यहाँ से इस वाली लेन पर केवल और केवल कांवड़ यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे।

0: सात्विक और बढ़िया भोजन होता है। हम लोग पिछले बार भी खाया था, इस बार भी व्यवस्था देख रहे हैं कि बढ़िया है। और हम लोग जा रहे हैं देवघर के लिए, सुल्तानगंज से जल लेकर जाएंगे पैदल। हाँ,
1: रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है खान पान की।
0: बढ़िया व्यवस्था की है इस बार।
1: सात्विक बोला जो जो भी रेलवे दे रही है आज आज अच्छा भोजन दे रहे हैं, बिना लहसुन प्याज के दे रहे हैं कांवड़ यात्रा वाले बम लोगों को। बहुत अच्छी व्यवस्था है जो कि पहले नहीं था ये चीज।
2: हरिद्वार के प्रसिद्ध कांवड़ मेला पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। अभी तक महज 4 दिनों में ही करीब 50 लाख से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िए यहां से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों और शिवालयों की ओर रवाना हो चुके हैं। पूरा हरिद्वार बम बम भोले और जय शिव शंभू के जयकारों से गुंजायमान है। प्रशासन भी शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा में मुस्तैदी से जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आज शंकराचार्य चौक पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने खुद सड़कों पर उतरकर गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का शानदार स्वागत किया। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और उन्हें अपने हाथों से खाद्य सामग्री, फल और जल वितरित किए गए।
3: कांवड़ मेले में लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और सभी संस्थाओं के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा लगातार उनकी सुविधाएं बनी रहे, उनको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए तैयारियां की गई हैं। आज इसी क्रम में कांवड़ सेवा शिविर का आयोजित किया गया था, जिसमें कांवड़ियों को उनका स्वागत किया गया, साथ ही उनको आवश्यक पेयजल, खाने की सुविधाएं दी गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कैंप्स भी आयोजित किए गए।
2: हरिद्वार में सुरक्षा के साथ साथ भीड़ प्रबंधन का खास ख्याल रखा जा रहा है। हर इलाके में पुलिस के जवान तैनात हैं और हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी कांवड़िए को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। दिल्ली से आशुतोष कुमार, भदोही से महेश कुमार जायसवाल, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब आपको लेकर चलते हैं शिव के एक ऐसे धाम में जहां पर सावन में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। मान्यता यह है कि यहां आकर जो भी अपनी फरियाद भगवान के सामने रखता है उसकी मनोकामना पूरी करते हैं बाबा गरीबनाथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं भगवान गरीबनाथ की महिमा।

0: हर हर महादेव का जयकारा, भोल बम का जय घोष और बाबा गरीब नाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहा आस्था का सैलाब। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम का अपना ही महत्व है। आज ये स्थल बिहार की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कहा जाता है कि 200 साल पहले कपड़ा मंडी में मुंशी गिरी करने वाले एक गरीब शिव भक्त की बेटी का गौना होना था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि आभूषण तक बिक चुके थे। कोई रास्ता नहीं बचा तो वो रोज की तरह भगवान शिव के सामने अपनी व्यथा सुनाकर मंदिर में ही सो गए। उधर घर में पत्नी ने बेटी का गौना कराने के लिए अपना मकान बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन जब रजिस्ट्री नहीं हो सकी और वे निराश होकर घर लौटे तो वहाँ ऐसा दृश्य था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जरूरत का पूरा सामान पहले से घर में रखा मिला। गरीब शिव भक्त ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना और भाव विभोर होकर गरीबों के नाथ गरीब नाथ कहते हुए मंदिर पहुंच गए। तभी से यहां के भगवान शिव का धाम बाबा गरीब नाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
1: देखिए, आसपास के जितने भी जिले हैं तो वही हैं, आसपास के जितने राज्य भी वहां से भी लोग आते हैं। और अभी जैसे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ रही है तो विदेशी भी जो आते हैं पर्यटन में, वैशाली वगैरह भी यहाँ पर आते हैं।
0: गरीब शिव भक्त की मनोकामना पूरी होने की कथा दूर दूर तक फैल गई। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि बाबा गरीबनाथ के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा की कृपा से उनकी बिगड़ी जिंदगी भी संवर गई। कई लोग वर्षों से लगातार यहां आकर सेवा और पूजा करते हैं।

0: तकरीबन 25 सालों से कंटिन्यू आ रही हूँ यहाँ पर।
1: 25 वर्षों से आप आ रही
0: हैं? 25 वर्षों से कंटिन्यू आ रही हूँ, टाइम टू टाइम आती रहती हूँ, महीने में एक दो बार जरूर आती हूँ। मन में शांति मिलती है,
1: अच्छा मंदिर में आने से शांति
0: बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
2: करीब 200 साल पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था। जंगल की सफाई के दौरान एक विशाल बरगद का पेड़ काटा जा रहा था, तभी उसकी जड़ों से लाल रंग का द्रव्य निकलने लगा। इसे चमत्कार मानकर कटाई रोक दी गई। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर उस स्थान की खुदाई कराने का निर्देश दिया। अगले दिन खुदाई में शिवलिंग मिला और तभी से यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई। सावन के महीने में बाबा गरीबनाथ धाम की रौनक देखते ही बनती है। लाखों कांवरिये हाजीपुर से गंगाजल लेकर करीब 82 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। पिछले साल श्रावणी मेले में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया था। इस बार यह संख्या 25 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए इस बार मंदिर समिति ने भक्तों के लिए खास इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे।
3: और आखिर में बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना बना हुआ है और उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि इस हफ्ते ऐसी ही मौसम रहेगा। पूरे देश में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: मंगल बदल रहे हैं अपनी चाल, किस राशि की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें और कौन सी राशि होने वाली है मालामाल, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
0: Mangal badal rahe hain apni chaal. Kis rashi ki badhne wali hain mushkilein aur kaun si rashi hone wali hai malamal. क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: इफ यू आर सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, NBC स्पोर्ट्स रेडियो इज द प्लेस फॉर यू। स्टार्ट योर डे विद NFL अपडेट्स फ्रॉम माइक फ्लोरियो, देन जॉइन डैन पैट्रिक एंड द डैनेट्स फॉर इन-डेप्थ डिस्कशंस एंड द बिगेस्ट गेस्ट्स इन स्पोर्ट्स। प्लस डोंट मिस डैन लेबिटार्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स एंड पॉप कल्चर। Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: Good news today is अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां, काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट, भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज, हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश, भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री, स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, मानसूनी सीजन के 2 महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड, खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग, रियल हीरोज को पहनाई फूल माला है।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो समय जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहुंचने वालों की हर मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। देखिए, पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है, ऐसे में हम आपको भारत की आध्यात्मिक धरोहर जाने वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएंगे, जो केवल देखिए मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और अनगिनत पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक है। तो चलिए उन दिव्य धामों की यात्रा पर चलते हैं जहां स्वयं महादेव अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है।
1: जब धरती शिवमय हो जाती है, जब हवाओं में बम बम भोले का उद्घोष गूंजता है, जब हर भक्त का दिल महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, तब शिव शंकर माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। सावन का पावन महीना यानी महादेव की उपासना का अद्भुत और अलौकिक मौका। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयंभू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत भी हैं। शिव दर्शन की इसी पावन यात्रा में आज सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धाम जहां से ज्योतिर्लिंगों की गाथा शुरू होती है। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के श्लोक में जिसकी शुरुआत ही सोमनाथ से होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सृष्टि के आरंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी ईश्वर, यानी चंद्रमा के स्वामी। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज धीमा हो गया और वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। तब उन्होंने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। चंद्रमा के कष्ट को हरने वाले महादेव यहाँ सोमनाथ कहलाए और अनंत काल के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है, लेकिन सावन महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि की श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी किनारे श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सावन में इस धाम आकर शिव पार्वती का एक साथ पूजन कर ले, उसके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और उस पर महादेव के साथ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। हर दौर में इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। सावन में शिव दर्शन की इस पावन यात्रा में अब आपको लेकर चल रहे हैं अवंतिका नगरी, यानी राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पौराणिक काल में अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे। जब दूषण नाम के अत्याचारी राक्षस ने उज्जैनी की प्रजा और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब भक्तों की पुकार सुनकर ही महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर डाला। उज्जैन की प्रजा की प्रार्थना पर कालों के काल महादेव हमेशा के लिए यहीं महाकालेश्वर के रूप में विराजित हो गए, ताकि वो अपने भक्तों के काल और अकाल मृत्यु से रक्षा कर सकें। सावन महीने में महाकाल के दरबार की छटा ही निराली होती है। तड़के होने वाली अलौकिक भस्म आरती से लेकर महाकाल की शाही सवारी तक हर दृश्य में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र माना गया है और इसलिए यहाँ अवतरित शंभू महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहाँ कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी है, भस्म के माध्यम से वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं, इसलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती होती है।

सावन में शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा में अब आगे बढ़ते हैं उन धामों की ओर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। देखिए मध्य प्रदेश के ओंकार स्वरूप महादेव से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान बाबा केदारनाथ तक और भीमा शंकर से लेकर मोक्षदायिनी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी महिमा है जहां हर कदम पर महसूस होती है महादेव की अनंत शक्ति।

मध्य प्रदेश की पावन धरा पर ही नर्मदा के खूबसूरत आंचल की ओर जब बढ़ते हैं, तब खंडवा जिले में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम जहाँ पूरी पहाड़ी ही ओम के आकार में ढली हुई है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर दो रूपों में स्थापित हुए, एक नर्मदा के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर और दूसरे तट पर स्थित अमलेश्वर। हालांकि यद्यपि ये दो अलग अलग मंदिर है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए इसी ओमकारेश्वर धाम में ही पधारते हैं। इसीलिए हर रात यहाँ महादेव और माता पार्वती के लिए चौपड़ सजाए जाते हैं और शयन आरती की जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पासों की स्थिति बदली हुई मिलती है। सावन के महीने में ओमकारेश्वर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर मांधाता पर्वत की लगभग 7 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। हिमालय के केदारखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हर शिव भक्त की सबसे बड़ी साधना और अंतिम इच्छा है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3,500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव केदारखंड आ गए और भैंसों का रूप धारण कर मवेशियों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर यहाँ त्रिकोणीय शिला के रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहाँ साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की घनी और हरी भरी वादियों के दरमियान घने जंगलों और कलकल बहते झरनों के बीच विराजमान है 6ठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर। ये पावन धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर के अत्याचार से जब सृष्टि कांप उठी, तब महादेव ने इस स्थान पर उसका संहार कर भक्तों को अभय दान दिया था। मान्यता है कि युद्ध के बाद जब महादेव के शरीर से पसीना निकला, उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें भीमाशंकर कहा गया।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसे सबसे प्राचीन शहर के साथ साथ मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, ऐसी अविनाशी काशी के हृदय में विराजमान है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। गंगा के पावन तट पर बसी काशी के बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है और इसका संरक्षण स्वयं महादेव करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया ताकि वे सदा अपने भक्तों के बीच रह सके। मान्यता तो यह भी है कि प्रलय के समय भी काशी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और मोक्ष की अनंत परंपरा का प्रतीक है। इसलिए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं।
1: 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिव्य धाम, लेकिन हर धाम में बसती है एक ही आस्था, महादेव पर अटूट विश्वास की। कहीं सोमनाथ में चंद्रमा के कष्ट हरने वाले शिव हैं, तो कहीं केदारनाथ में पांडवों को पापों से मुक्ति देने वाले भोलेनाथ, कहीं काशी में मोक्ष के दाता विश्वनाथ हैं, तो कहीं रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराध्य हैं शिव। सावन का ये पावन महीना इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासंगम में तब्दील कर देता है।
2: देव का वो स्वरूप जिसे आरोग्य के रूप में पूजा जाता है, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के नवें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव वैद्य हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण की कामना लेकर उनके धाम पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा का संबंध लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके सिरों को वापस जोड़ दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग भी दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस शिवलिंग को लंका ले जाते समय कहीं रखना नहीं, पर ऐसा हो नहीं सका। कुछ समय के लिए एक ग्वाले को उसे शिवलिंग सौंपना पड़ा। उसके बाद रावण दोबारा शिवलिंग उठा नहीं सका और यही शिवलिंग आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सावन के पावन महीने में तो बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है, जब लाखों कांवड़िए गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में इन दिनों बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है, क्योंकि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्रयंबकेश्वर महादेव की महिमा भी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। शिव के इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के 3 छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस धाम का नाम भी त्रयंबकेश्वर यानी 3 स्वरूपों वाले ईश्वर पर पड़ा।
3: ये मंदिर त्रयंबकेश्वर मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों मिलके यहाँ पे इस मंदिर में आपको शिवलिंग रूप में मिलेंगे। हर जगह शिवलिंग लिंग ऊपर होती है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ तीनों लिंग मिलते हैं और उसी के अंदर से पानी आते रहते हैं, गंगा जल।
2: जितना पावन महादेव का ये धाम है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा ने यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर दिया। तब भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। सावन के पावन महीने में त्र्यंबकेश्वर धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। अब दर्शन कीजिए भगवान शिव के ऐसे धाम का, जहां महादेव को नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अरब सागर के तट के पास मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के अधिपति नागेश्वर के रूप में विराजमान है। तो साल के 12 महीने नागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और उसकी पत्नी दारुका अपने वन में अत्याचार करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय नामक वैश्य को बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्त ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, दारुक का अहंकार खत्म किया और अपने भक्तों की रक्षा। तभी से ये धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और जीवन में साहस संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये है महादेव का ऐसा धाम जो अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव ने भक्त की श्रद्धा को अमर कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। प्राचीन शिल्प कला और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र।
4: 10 जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो अभिषेक का जो जल जाता है, कोई भी आप शिवलिंग देखेंगे या आत्मलिंग देखेंगे तो उसका जो जल है वो नॉर्थ की ओर जाता है। लेकिन खाली दो ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, एक महाकाल और एक घृष्णेश्वर, जिसका जल पूरब की ओर जाता है।
2: घृष्णेश्वर धाम धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद अहम है। विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के करीब मौजूद ये मंदिर भारतीय संस्कृति कला और सनातन आस्था का अनोखा संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह सुदेहा और उनकी छोटी बहन घुष्मा रहती थी। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। बहन की भक्ति से ईर्ष्या कर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को मारकर उसे उसी सरोवर में फेंक दिया। घुष्मा ने अपार दुख की इस घड़ी में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से भक्त घुष्मा के नाम पर ये स्थान घुष्मेश्वर या कृष्णेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से पारिवारिक सुख, संतान का आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम में बसा रामेश्वरम धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम वो पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। लेकिन जब हनुमान जी को देर हुई तो माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की। तभी से ये स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन के महीने में रामेश्वरम धाम में विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से पापों का शमन होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग 12 धाम, लेकिन आस्था अनन्य, भगवान शिव में अटूट विश्वास, सावन का पावन महीना इन सभी तीर्थों को भक्ति की उमंग, श्रद्धा की तरंग और सनातन परंपरा के विराट उत्सव में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
3: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां। काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट। भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी। भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मानसूनी सीजन के 2 महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग। रियल हीरोज को पहनाई फूल मालाएं।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। नौ जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलतबेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल्थ टेक्निक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं। वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शिगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है। हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है, यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा, रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रेडार काम करते हैं। एक रेडार एल बैंड पर काम करता है, एक रेडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रेडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहां विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता, जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है, जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही 5th जनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है, J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वही रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है।

0: करें तो राफेल में ये ताकत है कि वो J-20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है।
1: राफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रल सिस्टम J-20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
2: भारत ने जब फ्रांस से राफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल राफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। राफेल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं, यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं, तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं, तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
1: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। राफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J-20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J-20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J-20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। राफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J-20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि राफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। राफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J-20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है। यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J-20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J-20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J-20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
2: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन

0: दुश्मन को दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
1: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाए। Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
4: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
3: Big 12 Radio.
5: Today is Big 12 Insider's game day. We're breaking
3: and
5: down.
3: And talk sports.
6: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform in results.
3: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
8: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां। काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट। भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी। भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मानसूनी सीजन के 2 महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग। रियल हीरोज को पहनाई फूल माला है।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो समय जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहुंचने वालों की हर मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। देखिए, पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है, ऐसे में हम आपको भारत की आध्यात्मिक धरोहर जाने वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएंगे, जो केवल देखिए मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और अनगिनत पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक है। तो चलिए उन दिव्य धामों की यात्रा पर चलते हैं जहां स्वयं महादेव अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है।
1: जब धरती शिवमय हो जाती है, जब हवाओं में बम बम भोले का उद्घोष गूंजता है, जब हर भक्त का दिल महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, तब शिव शंकर माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। सावन का पावन महीना यानी महादेव की उपासना का अद्भुत और अलौकिक मौका। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयंभू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत भी हैं। शिव दर्शन की इसी पावन यात्रा में आज सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धाम जहां से ज्योतिर्लिंगों की गाथा शुरू होती है। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के श्लोक में जिसकी शुरुआत ही सोमनाथ से होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सृष्टि के आरंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी ईश्वर, यानी चंद्रमा के स्वामी। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज धीमा हो गया और वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। तब उन्होंने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। चंद्रमा के कष्ट को हरने वाले महादेव यहाँ सोमनाथ कहलाए और अनंत काल के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है, लेकिन सावन महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि की श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी किनारे श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव, यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सावन में इस धाम आकर शिव पार्वती का एक साथ पूजन कर ले, उसके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और उस पर महादेव के साथ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। हर दौर में इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। सावन में शिव दर्शन की इस पावन यात्रा में अब आपको लेकर चल रहे हैं अवंतिका नगरी, यानी राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पौराणिक काल में अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे। जब दूषण नाम के अत्याचारी राक्षस ने उज्जैनी की प्रजा और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब भक्तों की पुकार सुनकर ही महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर डाला। उज्जैन की प्रजा की प्रार्थना पर कालों के काल महादेव हमेशा के लिए यही महाकालेश्वर के रूप में विराजित हो गए, ताकि वो अपने भक्तों के काल और अकाल मृत्यु से रक्षा कर सकें। सावन महीने में महाकाल के दरबार की छटा ही निराली होती है। तड़के होने वाली अलौकिक भस्म आरती से लेकर महाकाल की शाही सवारी तक हर दृश्य में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र माना गया है और इसलिए यहाँ अवतरित शंभू महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहाँ कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी हैं। भस्म के माध्यम से वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं, इसलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती होती है।

सावन में शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा में अब आगे बढ़ते हैं उन धामों की ओर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। देखिए मध्य प्रदेश के ओंकार स्वरूप महादेव से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान बाबा केदारनाथ तक और भीमा शंकर से लेकर मोक्षदायिनी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी महिमा है, जहां हर कदम पर महसूस होती है महादेव की अनंत शक्ति।

की पावन धरा पर ही नर्मदा के खूबसूरत आंचल की ओर जब बढ़ते हैं, तब खंडवा जिले में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम जहाँ पूरी पहाड़ी ही ओम के आकार में ढली हुई है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर दो रूपों में स्थापित हुए, एक नर्मदा के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर और दूसरे तट पर स्थित अमलेश्वर। हालांकि यद्यपि ये दो अलग अलग मंदिर है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए इसी ओमकारेश्वर धाम में ही पधारते हैं। इसीलिए हर रात यहाँ महादेव और माता पार्वती के लिए चौपड़ सजाए जाते हैं और शयन आरती की जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पासों की स्थिति बदली हुई मिलती है। सावन के महीने में ओमकारेश्वर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर मांधाता पर्वत की लगभग 7 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। हिमालय के केदारखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हर शिव भक्त की सबसे बड़ी साधना और अंतिम इच्छा है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3,500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव केदारखंड आ गए और भैंसों का रूप धारण कर मवेशियों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर यहाँ त्रिकोणीय शिला के रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहाँ साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की घनी और हरी भरी वादियों के दरमियान घने जंगलों और कलकल बहते झरनों के बीच विराजमान है 6ठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर। ये पावन धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर के अत्याचार से जब सृष्टि कांप उठी, तब महादेव ने इस स्थान पर उसका संहार कर भक्तों को अभय दान दिया था। मान्यता है कि युद्ध के बाद जब महादेव के शरीर से पसीना निकला, उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें भीमा शंकर कहा गया।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसे सबसे प्राचीन शहर के साथ साथ मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, ऐसी अविनाशी काशी के हृदय में विराजमान है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। गंगा के पावन तट पर बसी काशी के बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है और इसका संरक्षण स्वयं महादेव करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया ताकि वे सदा अपने भक्तों के बीच रह सके। मान्यता तो यह भी है कि प्रलय के समय भी काशी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और मोक्ष की अनंत परंपरा का प्रतीक है। इसलिए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं।
1: 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिव्य धाम, लेकिन हर धाम में बसती है एक ही आस्था, महादेव पर अटूट विश्वास की। कहीं सोमनाथ में चंद्रमा के कष्ट हरने वाले शिव हैं, तो कहीं केदारनाथ में पांडवों को पापों से मुक्ति देने वाले भोलेनाथ, कहीं काशी में मोक्ष के दाता विश्वनाथ हैं, तो कहीं रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराध्य हैं शिव। सावन का ये पावन महीना इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासंगम में तब्दील कर देता है।
2: देव का वो स्वरूप जिसे आरोग्य के रूप में पूजा जाता है, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के नवे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव वैद्य है, यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण की कामना लेकर उनके धाम पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा का संबंध लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके सिरों को वापस जोड़ दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ बैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग भी दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस शिवलिंग को लंका ले जाते समय कहीं रखना नहीं। पर ऐसा हो नहीं सका, कुछ समय के लिए एक ग्वाले को उसे शिवलिंग सौंपना पड़ा। उसके बाद रावण दोबारा शिवलिंग उठा नहीं सका और यही शिवलिंग आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सावन के पावन महीने में तो बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है, जब लाखों कांवड़िए गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में इन दिनों बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है, क्योंकि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर महादेव की महिमा भी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। शिव के इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के 3 छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस धाम का नाम भी त्र्यंबकेश्वर यानी 3 स्वरूपों वाले ईश्वर पर पड़ा।
3: ये मंदिर त्र्यंबकेश्वर मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों मिलके यहाँ पे इस मंदिर में आपको शिवलिंग रूप में मिलेंगे। हर जगह शिवलिंग लिंग ऊपर होती है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ तीनों लिंग मिलते हैं और उसी के अंदर से पानी आते रहते हैं, गंगा जल।
2: जितना पावन महादेव का ये धाम है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा ने यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर दिया। तब भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। सावन के पावन महीने में त्र्यंबकेश्वर धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। अब दर्शन कीजिए भगवान शिव के ऐसे धाम का, जहां महादेव को नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अरब सागर के तट के पास मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के अधिपति नागेश्वर के रूप में विराजमान है। तो साल के 12 महीने नागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और उसकी पत्नी दारुका अपने वन में अत्याचार करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय नामक वैश्य को बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्त ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, दारुक का अहंकार खत्म किया और अपने भक्तों की रक्षा। तभी से ये धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और जीवन में साहस संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये है महादेव का ऐसा धाम जो अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव ने भक्त की श्रद्धा को अमर कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। प्राचीन शिल्प कला और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र।
4: 10 जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो अभिषेक का जो जल जाता है, कोई भी आप शिवलिंग देखेंगे या आत्मलिंग देखेंगे तो उसका जो जल है वो नॉर्थ की ओर जाता है, लेकिन खाली दो ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, एक महाकाल और एक घृष्णेश्वर, जिसका जल पूरब की ओर जाता है।
2: घृष्णेश्वर धाम धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद अहम है। विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के करीब मौजूद ये मंदिर भारतीय संस्कृति कला और सनातन आस्था का अनोखा संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह सुदेहा और उनकी छोटी बहन घुष्मा रहती थी। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। बहन की भक्ति से ईर्ष्या कर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को मारकर उसे उसी सरोवर में फेंक दिया। घुष्मा ने अपार दुख की इस घड़ी में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से भक्त घुष्मा के नाम पर ये स्थान घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से पारिवारिक सुख, संतान का आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम में बसा रामेश्वरम धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम वो पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। लेकिन जब हनुमान जी को देर हुई तो माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की। तभी से ये स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन के महीने में रामेश्वरम धाम में विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से पापों का शमन होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग 12 धाम, लेकिन आस्था अनन्य, भगवान शिव में अटूट विश्वास, सावन का पावन महीना इन सभी तीर्थों को भक्ति की उमंग, श्रद्धा की तरंग और सनातन परंपरा के विराट उत्सव में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: गुड न्यूज़ चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
4: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
2: गुड न्यूज़ चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's Global Hits to start listening now.
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां। काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट। भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी। भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मानसूनी सीजन के दो महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग। रियल हीरोज को पहनाई फूल मालाएं।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। नौ जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलतबेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल्थ टेक्निक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं? वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शिगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है, हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: चीन के बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है, यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा, रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रेडार काम करते हैं। एक रेडार एल बैंड पर काम करता है, एक रेडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रेडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहां विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता, जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है, जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही 5th जनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है, J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वही रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ

0: ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्विलांस रडार को जैम कर सकता है, दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफाइल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकम इन आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं, यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं, तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
1: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफाल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J-20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J-20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J-20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफाल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J-20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफाल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफाल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J-20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है। यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J-20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J-20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब रफाल का IRST सिस्टम बिना रडार के J-20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
0: रफाल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आमतौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
1: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू किया।

0: कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
2: Welcome to Get Real.
3: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
3: Oh my God.
4: It's got to be deliciously desperate.
5: Why do these girls forget him?
6: She has a soft spot for troubled men.
4: Boo bloody hoo.
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
3: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
8: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों
0: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां। काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट, भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मानसूनी सीजन के 2 महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग। रियल हीरोज को पहनाई फूल माला है।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो समय जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहुंचने वालों की हर मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। देखिए, पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है, ऐसे में हम आपको भारत की आध्यात्मिक धरोहर जाने वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएंगे, जो केवल देखिए मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और अनगिनत पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक है। तो चलिए उन दिव्य धामों की यात्रा पर चलते हैं जहां स्वयं महादेव अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है।
1: जब धरती शिवमय हो जाती है, जब हवाओं में बम बम भोले का उद्घोष गूंजता है, जब हर भक्त का दिल महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, तब शिव शंकर माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। सावन का पावन महीना यानी महादेव की उपासना का अद्भुत और अलौकिक मौका। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयंभू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत भी हैं। शिव दर्शन की इसी पावन यात्रा में आज सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धाम जहां से ज्योतिर्लिंगों की गाथा शुरू होती है। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के श्लोक में जिसकी शुरुआत ही सोमनाथ से होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सृष्टि के आरंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी ईश्वर, यानी चंद्रमा के स्वामी। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज धीमा हो गया और वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। तब उन्होंने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। चंद्रमा के कष्ट को हरने वाले महादेव यहाँ सोमनाथ कहलाए और अनंत काल के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है, लेकिन सावन महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि की श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी किनारे श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सावन में इस धाम आकर शिव पार्वती का एक साथ पूजन कर ले, उसके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और उस पर महादेव के साथ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। हर दौर में इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। सावन में शिव दर्शन की इस पावन यात्रा में अब आपको लेकर चल रहे हैं अवंतिका नगरी, यानी राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पौराणिक काल में अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे। जब दूषण नाम के अत्याचारी राक्षस ने उज्जैनी की प्रजा और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब भक्तों की पुकार सुनकर ही महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर डाला। उज्जैन की प्रजा की प्रार्थना पर कालों के काल महादेव हमेशा के लिए यहीं महाकालेश्वर के रूप में विराजित हो गए, ताकि वो अपने भक्तों के काल और अकाल मृत्यु से रक्षा कर सकें। सावन महीने में महाकाल के दरबार की छटा ही निराली होती है। तड़के होने वाली अलौकिक भस्म आरती से लेकर महाकाल की शाही सवारी तक हर दृश्य में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र माना गया है और इसलिए यहाँ अवतरित शंभू महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहाँ कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी है, भस्म के माध्यम से वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं, इसलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती होती है।

सावन में शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा में अब आगे बढ़ते हैं उन धामों की ओर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। देखिए मध्य प्रदेश के ओंकार स्वरूप महादेव से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान बाबा केदारनाथ तक और भीमा शंकर से लेकर मोक्षदायिनी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी महिमा है, जहां हर कदम पर महसूस होती है महादेव की अनंत शक्ति।

प्रदेश की पावन धरा पर ही नर्मदा के खूबसूरत आंचल की ओर जब बढ़ते हैं, तब खंडवा जिले में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम जहाँ पूरी पहाड़ी ही ओम के आकार में ढली हुई है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर दो रूपों में स्थापित हुए, एक नर्मदा के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर और दूसरे तट पर स्थित अमलेश्वर। हालांकि यद्यपि ये दो अलग अलग मंदिर है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए इसी ओमकारेश्वर धाम में ही पधारते हैं। इसीलिए हर रात यहाँ महादेव और माता पार्वती के लिए चौपड़ सजाए जाते हैं और शयन आरती की जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पासों की स्थिति बदली हुई मिलती है। सावन के महीने में ओमकारेश्वर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर मांधाता पर्वत की लगभग 7 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। हिमालय के केदारखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हर शिव भक्त की सबसे बड़ी साधना और अंतिम इच्छा है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3,500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव केदारखंड आ गए और भैंसों का रूप धारण कर मवेशियों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर यहाँ त्रिकोणीय शिला के रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहाँ साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की घनी और हरी भरी वादियों के दरमियान घने जंगलों और कलकल बहते झरनों के बीच विराजमान है 6ठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर। ये पावन धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर के अत्याचार से जब सृष्टि कांप उठी, तब महादेव ने इस स्थान पर उसका संहार कर भक्तों को अभय दान दिया था। मान्यता है कि युद्ध के बाद जब महादेव के शरीर से पसीना निकला, उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें भीमा शंकर कहा गया।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसे सबसे प्राचीन शहर के साथ साथ मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, ऐसी अविनाशी काशी के हृदय में विराजमान है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। गंगा के पावन तट पर बसी काशी के बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है और इसका संरक्षण स्वयं महादेव करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया ताकि वे सदा अपने भक्तों के बीच रह सके। मान्यता तो यह भी है कि प्रलय के समय भी काशी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और मोक्ष की अनंत परंपरा का प्रतीक है। इसलिए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं।
1: 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिव्य धाम, लेकिन हर धाम में बसती है एक ही आस्था, महादेव पर अटूट विश्वास की। कहीं सोमनाथ में चंद्रमा के कष्ट हरने वाले शिव हैं, तो कहीं केदारनाथ में पांडवों को पापों से मुक्ति देने वाले भोलेनाथ, कहीं काशी में मोक्ष के दाता विश्वनाथ हैं, तो कहीं रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराध्य हैं शिव। सावन का ये पावन महीना इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासंगम में तब्दील कर देता है।
2: का वो स्वरूप जिसे आरोग्य के रूप में पूजा जाता है, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के नवे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव वैद्य हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण की कामना लेकर उनके धाम पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा का संबंध लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके सिरों को वापस जोड़ दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ बैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग भी दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस शिवलिंग को लंका ले जाते समय कहीं रखना नहीं। पर ऐसा हो नहीं सका, कुछ समय के लिए एक ग्वाले को उसे शिवलिंग सौंपना पड़ा। उसके बाद रावण दोबारा शिवलिंग उठा नहीं सका और यही शिवलिंग आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सावन के पावन महीने में तो बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है, जब लाखों कांवड़िए गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में इन दिनों बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है, क्योंकि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्रयंबकेश्वर महादेव की महिमा भी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। शिव के इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के 3 छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस धाम का नाम भी त्र्यंबकेश्वर यानी 3 स्वरूपों वाले ईश्वर पर पड़ा।
3: ये मंदिर त्र्यंबकेश्वर मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों मिलके यहाँ पे इस मंदिर में आपको शिवलिंग रूप में मिलेंगे। हर जगह शिवलिंग लिंग ऊपर होती है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ तीनों लिंग मिलते हैं और उसी के अंदर से पानी आते रहते हैं, गंगा जल।
2: जितना पावन महादेव का ये धाम है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा ने यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर दिया। तब भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। सावन के पावन महीने में त्र्यंबकेश्वर धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। अब दर्शन कीजिए भगवान शिव के ऐसे धाम का, जहां महादेव को नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अरब सागर के तट के पास मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के अधिपति नागेश्वर के रूप में विराजमान है। तो साल के 12 महीने नागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और उसकी पत्नी दारुका अपने वन में अत्याचार करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय नामक वैश्य को बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्त ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, दारुक का अहंकार खत्म किया और अपने भक्तों की रक्षा। तभी से ये धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और जीवन में साहस, संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये है महादेव का ऐसा धाम जो अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव ने भक्त की श्रद्धा को अमर कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। प्राचीन शिल्प कला और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र।
4: 10 जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो अभिषेक का जो जल जाता है, कोई भी आप शिवलिंग देखेंगे या आत्मलिंग देखेंगे तो उसका जो जल है वो नॉर्थ की ओर जाता है, लेकिन खाली दो ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, एक महाकाल और एक घृष्णेश्वर, जिसका जल पूरब की ओर जाता है।
2: घृष्णेश्वर धाम धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद अहम है। विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के करीब मौजूद ये मंदिर भारतीय संस्कृति, कला और सनातन आस्था का अनोखा संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह सुदेहा और उनकी छोटी बहन घुष्मा रहती थी। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। बहन की भक्ति से ईर्ष्या कर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को मारकर उसे उसी सरोवर में फेंक दिया। घुष्मा ने अपार दुख की इस घड़ी में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से भक्त घुष्मा के नाम पर ये स्थान घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि यह सच्चे मन से की गई पूजा से पारिवारिक सुख, संतान का आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम में बसा रामेश्वरम धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम वो पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। लेकिन जब हनुमान जी को देर हुई तो माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की। तभी से ये स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन के महीने में रामेश्वरम धाम में विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से पापों का शमन होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग 12 धाम, लेकिन आस्था अनन्य, भगवान शिव में अटूट विश्वास, सावन का पावन महीना इन सभी तीर्थों को भक्ति की उमंग, श्रद्धा की तरंग और सनातन परंपरा के विराट उत्सव में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
8: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां। काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट। भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी। भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मॉनसूनी सीजन के दो महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग। रियल हीरोज को पहनाई फूल माला है।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। नौ जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल तकनीक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती कर दी है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं? वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियरिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शिगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है, हमने बहुत पैनी नजर रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है, अगर जरूरत पड़ी तो भारत रशिया से सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: चीन के बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के बयान ने यह संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा। रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रडार काम करते हैं। एक रडार एल बैंड पर काम करता है, एक रडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहाँ विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है जो भले ही 5th जनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है J20 Mach 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल Mach 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9,500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वही रफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं, तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती

0: राफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर G20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। G20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान G20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। राफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि राफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। राफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है। यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है, वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन को, दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
0: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Die Hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे।

0: तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
1: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Tune in Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
4: मंगल बदल रहे हैं अपनी चाल, किस राशि की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें और कौन सी राशि होने वाली है मालामाल, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां। काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट, भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मानसूनी सीजन के दो महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग। रियल हीरोज को पहनाई फूल माला है।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो समय जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहुंचने वालों की हर मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। देखिए, पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है, ऐसे में हम आपको भारत की आध्यात्मिक धरोहर जाने वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएंगे, जो केवल देखिए मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और अनगिनत पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक है। तो चलिए उन दिव्य धामों की यात्रा पर चलते हैं जहां स्वयं महादेव अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है।
1: जब धरती शिवमय हो जाती है, जब हवाओं में बम बम भोले का उद्घोष गूंजता है, जब हर भक्त का दिल महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, तब शिव शंकर माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। सावन का पावन महीना यानी महादेव की उपासना का अद्भुत और अलौकिक मौका। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयंभू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत भी हैं। शिव दर्शन की इसी पावन यात्रा में आज सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धाम जहां से ज्योतिर्लिंगों की गाथा शुरू होती है। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के श्लोक में जिसकी शुरुआत ही सोमनाथ से होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सृष्टि के आरंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी ईश्वर, यानी चंद्रमा के स्वामी। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज धीमा हो गया और वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। तब उन्होंने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। चंद्रमा के कष्ट को हरने वाले महादेव यहाँ सोमनाथ कहलाए और अनंत काल के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है, लेकिन सावन महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि की श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी किनारे श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सावन में इस धाम आकर शिव पार्वती का एक साथ पूजन कर ले, उसके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और उस पर महादेव के साथ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। हर दौर में इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। सावन में शिव दर्शन की इस पावन यात्रा में अब आपको लेकर चल रहे हैं अवंतिका नगरी, यानी राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पौराणिक काल में अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे। जब दूषण नाम के अत्याचारी राक्षस ने उज्जैनी की प्रजा और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब भक्तों की पुकार सुनकर ही महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर डाला। उज्जैन की प्रजा की प्रार्थना पर कालों के काल महादेव हमेशा के लिए यही महाकालेश्वर के रूप में विराजित हो गए, ताकि वो अपने भक्तों के काल और अकाल मृत्यु से रक्षा कर सकें। सावन महीने में महाकाल के दरबार की छटा ही निराली होती है। तड़के होने वाली अलौकिक भस्म आरती से लेकर महाकाल की शाही सवारी तक हर दृश्य में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र माना गया है और इसलिए यहाँ अवतरित शंभू महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहाँ कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी है, भस्म के माध्यम से वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं, इसलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती होती है।

सावन में शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा में अब आगे बढ़ते हैं उन धामों की ओर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। देखिये, मध्य प्रदेश के ओंकार स्वरूप महादेव से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान बाबा केदारनाथ तक और भीमा शंकर से लेकर मोक्षदायिनी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी महिमा है, जहां हर कदम पर महसूस होती है महादेव की अनंत शक्ति।

मध्य प्रदेश की पावन धरा पर ही नर्मदा के खूबसूरत आंचल की ओर जब बढ़ते हैं, तब खंडवा जिले में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम जहाँ पूरी पहाड़ी ही ओम के आकार में ढली हुई है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर दो रूपों में स्थापित हुए, एक नर्मदा के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर और दूसरे तट पर स्थित अमलेश्वर। हालांकि यद्यपि ये दो अलग अलग मंदिर है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए इसी ओमकारेश्वर धाम में ही पधारते हैं। इसीलिए हर रात यहाँ महादेव और माता पार्वती के लिए चौपड़ सजाए जाते हैं और शयन आरती की जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पासों की स्थिति बदली हुई मिलती है। सावन के महीने में ओमकारेश्वर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर मांधाता पर्वत की लगभग 7 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम शांति।

हिमालय के केदारखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हर शिव भक्त की सबसे बड़ी साधना और अंतिम इच्छा है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3,500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव केदारखंड आ गए और भैंसों का रूप धारण कर मवेशियों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर यहां त्रिकोणीय शिला के रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहां साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की घनी और हरी भरी वादियों के दरमियान घने जंगलों और कलकल बहते झरनों के बीच विराजमान है 6ठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर। ये पावन धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर के अत्याचार से जब सृष्टि कांप उठी तब महादेव ने इस स्थान पर उसका संहार कर भक्तों को अभय दान दिया था। मान्यता है कि युद्ध के बाद जब महादेव के शरीर से पसीना निकला उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें भीमाशंकर कहा गया।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसे सबसे प्राचीन शहर के साथ साथ मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, ऐसी अविनाशी काशी के हृदय में विराजमान है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। गंगा के पावन तट पर बसी काशी के बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है और इसका संरक्षण स्वयं महादेव करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया ताकि वे सदा अपने भक्तों के बीच रह सके। मान्यता तो यह भी है कि प्रलय के समय भी काशी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और मोक्ष की अनंत परंपरा का प्रतीक है। इसलिए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं।
1: 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिव्य धाम, लेकिन हर धाम में बसती है एक ही आस्था, महादेव पर अटूट विश्वास की। कहीं सोमनाथ में चंद्रमा के कष्ट हरने वाले शिव हैं, तो कहीं केदारनाथ में पांडवों को पापों से मुक्ति देने वाले भोलेनाथ, कहीं काशी में मोक्ष के दाता विश्वनाथ हैं, तो कहीं रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराध्य हैं शिव। सावन का ये पावन महीना इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासंगम में तब्दील कर देता है।
2: देव का वो स्वरूप जिसे आरोग्य के रूप में पूजा जाता है, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के नवे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव वैद्य हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण की कामना लेकर उनके धाम पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा का संबंध लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके सिरों को वापस जोड़ दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग भी दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस शिवलिंग को लंका ले जाते समय कहीं रखना नहीं। पर ऐसा हो नहीं सका, कुछ समय के लिए एक ग्वाले को उसे शिवलिंग सौंपना पड़ा। उसके बाद रावण दोबारा शिवलिंग उठा नहीं सका और यही शिवलिंग आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सावन के पावन महीने में तो बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है, जब लाखों कांवड़िए गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में इन दिनों बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है, क्योंकि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्रयंबकेश्वर महादेव की महिमा भी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। शिव के इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के 3 छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस धाम का नाम भी त्रयंबकेश्वर यानी 3 स्वरूपों वाले ईश्वर पर पड़ा।
3: ये मंदिर त्रयंबकेश्वर मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों मिलके यहाँ पे इस मंदिर में आपको शिवलिंग रूप में मिलेंगे। हर जगह शिवलिंग लिंग ऊपर होती है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ तीनों लिंग मिलते हैं और उसी के अंदर से पानी आते रहते हैं, गंगा जल।
2: जितना पावन महादेव का ये धाम है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा ने यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर दिया। तब भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। सावन के पावन महीने में त्र्यंबकेश्वर धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। अब दर्शन कीजिए भगवान शिव के ऐसे धाम का, जहां महादेव को नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अरब सागर के तट के पास मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के अधिपति नागेश्वर के रूप में विराजमान है। तो साल के 12 महीने नागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और उसकी पत्नी दारुका अपने वन में अत्याचार करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय नामक वैश्य को बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्त ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, दारुक का अहंकार खत्म किया और अपने भक्तों की रक्षा। तभी से ये धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और जीवन में साहस संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये है महादेव का ऐसा धाम जो अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव ने भक्त की श्रद्धा को अमर कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। प्राचीन शिल्प कला और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र।
4: 10 जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो अभिषेक का जो जल जाता है, कोई भी आप शिवलिंग देखेंगे या आत्मलिंग देखेंगे तो उसका जो जल है वो नॉर्थ की ओर जाता है। लेकिन खाली दो ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, एक महाकाल और एक घृष्णेश्वर, जिसका जल पूरब की ओर जाता है।
2: घृष्णेश्वर धाम धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद अहम है। विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के करीब मौजूद ये मंदिर भारतीय संस्कृति कला और सनातन आस्था का अनोखा संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह सुदेहा और उनकी छोटी बहन घुष्मा रहती थी। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। बहन की भक्ति से ईर्ष्या कर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को मारकर उसे उसी सरोवर में फेंक दिया। घुष्मा ने अपार दुख की इस घड़ी में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से भक्त घुष्मा के नाम पर ये स्थान घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से पारिवारिक सुख, संतान का आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम में बसा रामेश्वरम धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम वो पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। लेकिन जब हनुमान जी को देर हुई तो माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की। तभी से ये स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन के महीने में रामेश्वरम धाम में विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से पापों का शमन होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग 12 धाम, लेकिन आस्था अनन्य, भगवान शिव में अटूट विश्वास, सावन का पावन महीना इन सभी तीर्थों को भक्ति की उमंग, श्रद्धा की तरंग और सनातन परंपरा के विराट उत्सव में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
5: मुझे तकरीबन
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
12: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां। काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट, भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मानसूनी सीजन के 2 महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग। रियल हीरोज को पहनाई फूल माला।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। नौ जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल टेक्निक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं। वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शीगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है, हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा। रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रेडार काम करते हैं। एक रेडार एल बैंड पर काम करता है, एक रेडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रेडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहाँ विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है जो भले ही 5th जनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है J20 Mach 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल Mach 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं रफेल एयर टू एयर मेट्योर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेट्योर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है लेकिन इसका स्पेक्ट्रो सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉइल्स होती हैं, तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉइल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफाल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से जे

0: है तो पायलट माइका आईआर मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम तौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन को, दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
0: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
5: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया।

0: है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
3: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
2: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
1: Good news today is really good. In this case, वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां। काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट। भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी। भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मानसूनी सीजन के 2 महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग। रियल हीरोज को पहनाई फूल माला।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो समय जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहुंचने वालों की हर मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। देखिए, पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है, ऐसे में हम आपको भारत की आध्यात्मिक धरोहर जाने वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएंगे, जो केवल देखिए मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और अनगिनत पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक है। तो चलिए उन दिव्य धामों की यात्रा पर चलते हैं जहां स्वयं महादेव अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है।
1: जब धरती शिवमय हो जाती है, जब हवाओं में बम बम भोले का उद्घोष गूंजता है, जब हर भक्त का दिल महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, तब शिव शंकर माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। सावन का पावन महीना यानी महादेव की उपासना का अद्भुत और अलौकिक मौका। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयं भू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत भी हैं। शिव दर्शन की इसी पावन यात्रा में आज सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धाम जहां से ज्योतिर्लिंगों की गाथा शुरू होती है। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के श्लोक में जिसकी शुरुआत ही सोमनाथ से होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सृष्टि के आरंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी ईश्वर यानी चंद्रमा के स्वामी। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज धीमा हो गया और वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। तब उन्होंने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृत्व का वरदान दिया। चंद्रमा के कष्ट को हरने वाले महादेव यहाँ सोमनाथ कहलाए और अनंत काल के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है, लेकिन सावन महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि की श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी किनारे श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सावन में इस धाम आकर शिव पार्वती का एक साथ पूजन कर ले, उसके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और उस पर महादेव के साथ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। हर दौर में इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। सावन में शिव दर्शन की इस पावन यात्रा में अब आपको लेकर चल रहे हैं अवंतिका नगरी, यानी राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन। शिप्रा नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पौराणिक काल में अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे। जब दूषण नाम के अत्याचारी राक्षस ने उज्जैनी की प्रजा और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब भक्तों की पुकार सुनकर ही महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर डाला। उज्जैन की प्रजा की प्रार्थना पर कालों के काल महादेव हमेशा के लिए यहीं महाकालेश्वर के रूप में विराजित हो गए, ताकि वो अपने भक्तों के काल और अकाल मृत्यु से रक्षा कर सकें। सावन महीने में महाकाल के दरबार की छटा ही निराली होती है। तड़के होने वाली अलौकिक भस्म आरती से लेकर महाकाल की शाही सवारी तक हर दृश्य में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र माना गया है और इसलिए यहाँ अवतरित शंभु महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहाँ कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी है, भस्म के माध्यम से वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं, इसलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती होती है।

सावन में शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा में अब आगे बढ़ते हैं उन धामों की ओर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। देखिए मध्य प्रदेश के ओंकार स्वरूप महादेव से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान बाबा केदारनाथ तक और भीमा शंकर से लेकर मोक्षदायिनी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी महिमा है जहां हर कदम पर महसूस होती है महादेव की अनंत शक्ति।

की पावन धरा पर ही नर्मदा के खूबसूरत आंचल की ओर जब बढ़ते हैं, तब खंडवा जिले में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम जहाँ पूरी पहाड़ी ही ओम के आकार में ढली हुई है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर दो रूपों में स्थापित हुए, एक नर्मदा के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर और दूसरे तट पर स्थित अमलेश्वर। हालांकि यद्यपि ये दो अलग अलग मंदिर है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए इसी ओमकारेश्वर धाम में ही पधारते हैं। इसीलिए हर रात यहाँ महादेव और माता पार्वती के लिए चौपड़ सजाए जाते हैं और शयन आरती की जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पासों की स्थिति बदली हुई मिलती है। सावन के महीने में ओमकारेश्वर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर मांधाता पर्वत की लगभग 7 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। हिमालय के केदारखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हर शिव भक्त की सबसे बड़ी साधना और अंतिम इच्छा है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3,500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव केदारखंड आ गए और भैंसों का रूप धारण कर मवेशियों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर यहां त्रिकोणीय शिला के रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहां साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की घनी और हरी भरी वादियों के दरमियान घने जंगलों और कलकल बहते झरनों के बीच विराजमान है 6ठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर। ये पावन धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर के अत्याचार से जब सृष्टि कांप उठी, तब महादेव ने इस स्थान पर उसका संहार कर भक्तों को अभय दान दिया था। मान्यता है कि युद्ध के बाद जब महादेव के शरीर से पसीना निकला, उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें भीमा शंकर कहा गया।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसे सबसे प्राचीन शहर के साथ साथ मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, ऐसी अविनाशी काशी के हृदय में विराजमान है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। गंगा के पावन तट पर बसी काशी के बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है और इसका संरक्षण स्वयं महादेव करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया ताकि वे सदा अपने भक्तों के बीच रह सके। मान्यता तो यह भी है कि प्रलय के समय भी काशी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और मोक्ष की अनंत परंपरा का प्रतीक है। इसलिए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं।
1: 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिव्य धाम, लेकिन हर धाम में बसती है एक ही आस्था, महादेव पर अटूट विश्वास की। कहीं सोमनाथ में चंद्रमा के कष्ट हरने वाले शिव हैं, तो कहीं केदारनाथ में पांडवों को पापों से मुक्ति देने वाले भोलेनाथ, कहीं काशी में मोक्ष के दाता विश्वनाथ हैं, तो कहीं रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराध्य हैं शिव। सावन का ये पावन महीना इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासंगम में तब्दील कर देता है।
2: का वो स्वरूप जिसे आरोग्य के रूप में पूजा जाता है, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के नवे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव वैद्य हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण की कामना लेकर उनके धाम पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा का संबंध लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके सिरों को वापस जोड़ दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ बैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग भी दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस शिवलिंग को लंका ले जाते समय कहीं रखना नहीं। पर ऐसा हो नहीं सका, कुछ समय के लिए एक ग्वाले को उसे शिवलिंग सौंपना पड़ा। उसके बाद रावण दोबारा शिवलिंग उठा नहीं सका और यही शिवलिंग आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सावन के पावन महीने में तो बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है, जब लाखों कांवड़िए गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में इन दिनों बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है, क्योंकि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर महादेव की महिमा भी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। शिव के इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के 3 छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस धाम का नाम भी त्र्यंबकेश्वर यानी 3 स्वरूपों वाले ईश्वर पर पड़ा।
3: ये मंदिर त्र्यंबकेश्वर मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों मिलके यहाँ पे इस मंदिर में आपको शिवलिंग रूप में मिलेंगे। हर जगह शिवलिंग लिंग ऊपर होती है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ तीनों लिंग मिलते हैं और उसी के अंदर से पानी आते रहते हैं, गंगा जल।
2: जितना पावन महादेव का ये धाम है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा ने यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर दिया। तब भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। सावन के पावन महीने में त्र्यंबकेश्वर धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। अब दर्शन कीजिए भगवान शिव के ऐसे धाम का, जहां महादेव को नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अरब सागर के तट के पास मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के अधिपति नागेश्वर के रूप में विराजमान है। तो साल के 12 महीने नागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और उसकी पत्नी दारुका अपने वन में अत्याचार करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय नामक वैश्य को बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्त ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, दारुक का अहंकार खत्म किया और अपने भक्तों की रक्षा। तभी से ये धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और जीवन में साहस, संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये है महादेव का ऐसा धाम जो अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव ने भक्त की श्रद्धा को अमर कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। प्राचीन शिल्प कला और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र।
4: 10 जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो अभिषेक का जो जल जाता है, कोई भी आप शिवलिंग देखेंगे या आत्मलिंग देखेंगे तो उसका जो जल है वो नॉर्थ की ओर जाता है, लेकिन खाली दो ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, एक महाकाल और एक कृष्णेश्वर, जिसका जल पूरब की ओर जाता है।
2: कृष्णेश्वर धाम धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद अहम है। विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के करीब मौजूद ये मंदिर भारतीय संस्कृति, कला और सनातन आस्था का अनोखा संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह सुदेहा और उनकी छोटी बहन घुष्मा रहती थी। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। बहन की भक्ति से ईर्ष्या कर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को मारकर उसे उसी सरोवर में फेंक दिया। घुष्मा ने अपार दुख की इस घड़ी में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से भक्त घुष्मा के नाम पर ये स्थान घुष्मेश्वर या कृष्णेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से पारिवारिक सुख, संतान का आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम में बसा रामेश्वरम धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम वो पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। लेकिन जब हनुमान जी को देर हुई तो माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की। तभी से ये स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन के महीने में रामेश्वरम धाम में विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से पापों का शमन होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग 12 धाम, लेकिन आस्था अनन्य, भगवान शिव में अटूट विश्वास, सावन का पावन महीना इन सभी तीर्थों को भक्ति की उमंग, श्रद्धा की तरंग और सनातन परंपरा के विराट उत्सव में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
4: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां। काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट, भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी, भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मानसूनी सीजन के दो महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग। रियल हीरोज को पहनाई फूल माला।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है।